सुप्रभात। मीडियम वेव 314.47 मीटर अर्थात 954 किलो हर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये नजीबाबाद केंद्र है। आज शनिवार है, शक संवत 1948 के ज्येष्ठ मास की दूसरी तिथि, तदनुसार 23 मई 2026। इस समय प्रातः के 5:58 और 38 सेकंड हो रहे हैं। हमारी प्रातःकालीन सभा के प्रसारण अब आरंभ हो रहे हैं।

0: आकाशवाणी का ये नजीबाबाद केंद्र है। सवेरे के 6 बजने को है। अब से कुछ ही क्षणों में आप सुनेंगे हिंदी में समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 19वें रोजगार मेले में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से विभिन्न

0: बाद संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों ने द्विपक्षीय संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाया। उन्होंने कहा कि साइप्रस के साथ रक्षा सहयोग भी बढ़ा है।
1: आज हमने साइबर सिक्योरिटी, मैरिटाइम सिक्योरिटी और काउंटर टेररिज्म सहयोग को भी और मजबूत करने का निर्णय लिया है। इतना ही नहीं, हम इंडो पैसिफिक ओशन इनिशिएटिव और इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर जैसे महत्वपूर्ण पहलों से कनेक्टिविटी सुनिश्चित करने के लिए भी साथ मिलकर काम करेंगे।
0: दोनों नेताओं ने आतंकवाद से निपटने के लिए बहुपक्षीय प्रयासों को मजबूत करने और संयुक्त राष्ट्र के ढांचे के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद पर व्यापक समझौता को शीघ्र अंतिम रूप देने और अपनाने का आह्वान किया। उन्होंने आतंकवाद के प्रति अपनी शून्य सहिष्णुता के दृष्टिकोण को भी दोहराया। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो 4 दिन की भारत यात्रा पर आज कोलकाता पहुंचेंगे। ये उनकी पहली भारत यात्रा है। श्री रूबियो नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भेंट करेंगे। श्री रूबियो विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर से बातचीत भी करेंगे। उनका अमरीकी दूतावास में होने वाले अमरीकी स्वतंत्रता दिवस समारोह में शामिल होने का कार्यक्रम है। श्री रूबियो मंगलवार को नई दिल्ली में क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में भाग लेंगे। बैठक में ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वोंग और जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोतेगी भी शामिल होंगे। विदेश मंत्रालय ने कहा कि क्वाड बैठक में स्वतंत्र और मुक्त हिंद प्रशांत के दृष्टिकोण के अनुरूप जारी पहलू की प्रगति की समीक्षा की जाएगी। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कल नई दिल्ली में इन्वेस्टमेंट कंपनी इंस्टीट्यूट ऑफ द अमेरिका के एशिया और ग्लोबल एनालिटिक्स के प्रबंध निदेशक मैथ्यू मोहलिंग कैंप से मुलाकात की और भारत की तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था में निवेश के अवसरों पर चर्चा की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री गोयल ने बताया कि चर्चा का मुख्य केंद्र प्रौद्योगिकी, अवसंरचना, इलेक्ट्रॉनिक्स और डिजिटल व्यवस्था सहित उच्च विकास वाले क्षेत्रों में अमरीकी संस्थागत निवेश को मजबूत करना, साथ ही विनिर्माण, नवाचार और रोजगार सृजन को बढ़ावा देना था। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने कहा है कि पूरे देश में पेट्रोल और डीजल की पर्याप्त उपलब्धता है और आपूर्ति स्थिर बनी हुई है। सोशल मीडिया पोस्ट में मंत्रालय ने नागरिकों को घबराहट में खरीदारी न करने और केवल आवश्यकता के अनुसार ईंधन खरीदने की सलाह दी है। मंत्रालय ने कहा कि कुछ खुदरा दुकानों पर अस्थायी दबाव को तेल विपणन कंपनियों द्वारा निरंतर आपूर्ति निगरानी और समन्वित वितरण प्रयासों के माध्यम से दूर किया जा रहा है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने नीट परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक मामले में पुणे से एक और महिला को गिरफ्तार किया है। आरोपी की पहचान मनीषा हवलदार के रूप में हुई है, जिन्हें राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी एनटीए द्वारा विशेषज्ञ के रूप में नियुक्त किया गया था। अब इस मामले में 11 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। ओडिशा के चांदीपुर एकीकृत परीक्षण रेंज से कम दूरी के बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 1 का सफल परीक्षण किया गया। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि परीक्षण सभी प्रचालनगत और तकनीकी मानकों पर सटीक उतरा। ये सफल परीक्षण भारत की रणनीतिक रक्षा तैयारियों में एक अन्य मील का पत्थर है, जो देश की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है। लेबनान में संयुक्त राष्ट्र प्रांतिरक्षा मिशन में कार्यरत भारतीय सेना के अधिकारी मेजर अभिलाषा बराक को 2025 के संयुक्त राष्ट्र सैन्य लैंगिक समानता समर्थक पुरस्कार के लिए चुना गया है। मेजर बराक वर्तमान में लेबनान में संयुक्त राष्ट्र अंतरिम बल में महिला सहभागिता दल की कमांडर के रूप में भारतीय बटालियन में कार्यरत हैं। आईपीएल क्रिकेट में सनराइजर्स हैदराबाद ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को 55 रन से हरा दिया। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए सनराइजर्स हैदराबाद ने 20 ओवर में 4 विकेट पर 255 रन बनाए। प्रतियोगिता में आज लखनऊ सुपर जायंट्स का मुकाबला शाम 7:30 बजे पंजाब किंग्स से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: मीडियम वेव 314.47 मीटर अर्थात 956 किलो हर्ट्स पर आकाशवाणी का ये नजीबाबाद केंद्र है। प्रातः के 6:05 हो रहे हैं। प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। आइए सर्वप्रथम हम नमन करते हैं शनिदेव को, क्योंकि आज है दिन शनिवार। नीति न्याय के देवता शनिदेव हमें हमारे कर्मों के अनुसार फल देते हैं। नीति न्याय के देवता शनि हैं मेरे नाथ, फल मनुष्य के कर्म के देते हैं हाथों हाथ। कोटि कोटि वंदन प्रभु, विनती बारंबार, छत्र छाया रखो सदा मुझ सेवक के माथ।

करते होंगे और बेहतर स्थिति यहीं से अंदाज करने में आती है। मैंगनीज की कमी के कारण पौधों की बढ़वार रुक जाती है। जई जो हम चारा फसल के रूप में उगाते हैं उसके पौधों में ग्रे स्पेक रोग का प्रकोप भी बढ़ जाता है। नई पत्तियों का रंग फीका होकर उनमें धब्बे पड़ने लगते हैं। पत्तियों की शिराओं के बीच में क्लोरोसिस हो जाता है। उसमें आपने देखा कि किनारे किनारे से शुरुआत होती है, लेकिन ये पत्तियों के बीच में ही धब्बे धब्बे धब्बे छोटे छोटे बन जाते हैं। कभी कभी हम ये देखते हैं कि भ्रांति सी हमारे गांव में होती है कि जब सूर्य ग्रहण लगा रहता है तब कहते हैं लोग कि देखिए उसी का असर है। नहीं, वहां पर ये मैग्नीज की कमी है, उसको आप गंभीरता से लें और उसकी आपूर्ति के लिए घोल बनाकर छिड़काव करें, यह एक अच्छी स्थिति होती है। चुकंदर और जई, वहां से आप इसको बेहतर ढंग से देख सकते हैं। एक और स्थिति है जिसको हमको समझना आवश्यक हो जाता है, वह यह है कि बोरान की कमी भी जरूरत पड़ती है। नींबू में विशेष रूप से देखते हैं, आम है या जो फल वाले पौधे हैं उसमें बोरान की कमी देखी जा रही है, इसलिए बोरैक्स का छिड़काव भी करना आवश्यक होता है। इसी तरह से मॉलिब्डेनम भी कहीं कहीं देखने को आता है, क्लोरीन भी है, लेकिन ये कुछ जो सूक्ष्म पोषक तत्व हैं इन सबका सम्मिश्रण भी आजकल मिल रहा है बाजार में, तो ऐसी स्थिति में आप उसका प्रयोग करें।

0: फसलों के सूक्ष्म पोषक तत्व, इस विषय पर डॉक्टर नगेंद्र सिंह रघुवंशी से सुन रहे थे अभी आप आज की कृषि चर्चा। आकाशवाणी का ये लखनऊ केंद्र है। नमस्कार, लखनऊ में अब समय है सुविचार का। श्रोताओं, हमारे वेदों में नारी को शक्ति, ज्ञान और सृजन का आधार माना गया है। इसी विषय पर आइए सुने आज का सुविचार, वेदों में नारी का वैभव।
1: वैदिक काल देवी उपासना से भरा पूरा है। सामाजिक विज्ञान की दृष्टि से ये काल स्त्री आदर का है। यो देवी शक्तियां स्त्रीलिंग या पुल्लिंग नहीं होती, लेकिन समाज अपने श्रद्धा भाव के चलते देवों को भी माया पिता कहता है। ऋग्वैदिक मंत्रों के दृष्टा ऋषि हैं। ऋग्वेद में प्रत्येक सूक्त पर दृष्टा ऋषियों के नाम लिखे जाते हैं। ऋग्वेद और अथर्ववेद में 25 ऋषिकाओं के नाम हैं। वे 422 मंत्रों की दृष्टा हैं। वागंभृणी, घोषा, अपाला, उर्वशी, इंद्राणी, शची, रोमशा, श्रद्धा, कामायनी, वैवस्वती आदि प्रख्यात ऋषिकाएं हैं। ऋग्वेद में लोप मुद्रा का कथन सारगर्भित है। सत्य की साधना करने वाले देवतुल्य ऋषियों ने भी संतति प्रवाह चलाया है। वे भी जीवन के अंत तक ब्रह्मचारी ही नहीं रहे, बल्कि उनकी भी पत्नियां थीं। यहाँ गृहस्थ आश्रम की महत्ता है, संतति प्रवाह न रोकने की स्थापना है। एक मंत्र अगस्त्य का है कि हमने जीवन के तप साधनाओं पर विजय पाई है, हम दंपत्ति अब संतति प्रवाह में लगेंगे। यहाँ लोप मुद्रा ऋषिका है और वो अगस्त्य ऋषि की पत्नी है। प्रत्यक्ष रूप में ये वार्ता व्यक्तिगत दिखाई पड़ती है, लेकिन इसकी स्थापनाएं दिशा बोधक हैं। लोप मुद्रा का जोर गृहस्थ आश्रम की दृढ़ता पर है, अगस्त्य का जोर तप साधना पर, लेकिन लोप मुद्रा और अगस्त्य का समन्वय प्रीतिकर है। वैदिक स्त्री कमजोर एवं शोषक नहीं, वो खुलकर बात करती है। लोप मुद्रा अपने ऋषि पति से भी संवाद करते समय खुलकर बोलती हैं। ऐसी ही एक ऋषिका है इंद्राणी। इंद्राणी का कथन है कि मैं मूर्धन्य और उग्र वक्ता हूँ। इंद्राणी अथर्ववेद की भी मंत्र दृष्टा ऋषिका है। यहाँ उनकी उद्घोषणा वैदिक काल से भी पहले के नारी सम्मान का यथार्थ दर्शन कराती है। वो कहती हैं, प्राचीन काल से ही नारी यज्ञों और महोत्सवों में भाग लेती रही है। ऋग्वेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद में भी सभा एवं समितियां हैं। अथर्ववेद में सभा और समिति को प्रजापति की पुत्रियां कहा गया है। सभा और समिति जैसी आदर्श संस्थाएं पुत्रियां हैं, पुत्र नहीं। इसी से जान सकते हैं कि स्त्रियां गुणों की खान हैं। ऋग्वेद में ऋषिका रोमशा कहती हैं, जिस प्रकार गंधार की भेड़ रोमों से भरी होती है, उसी प्रकार मैं गुणों से भरपूर हूँ। ऋग्वेद में महिलाएं केवल ऋषिकाएं ही नहीं, यहाँ अनेक वीर महिलाओं के वर्णन भी हैं। विश्पला का पैर युद्ध में टूटा, अश्विनी देवी ने उसके कृत्रिम पैर लगाया। ऐसी ही एक योद्धा है मुद्गलानी। वह रथारूढ़ होकर युद्ध जीती, उस समय उनके वस्त्रों को वायुदेव ने संभाला। ग्रंथों और उपनिषद साहित्य में स्त्री विद्वानों के अनंत प्रसंग है। याज्ञवल्क्य और मैत्री का सारगर्भित वाद विवाद सभी को पता है। गार्गी और याज्ञवल्क्य का प्रश्नोत्तर पठनीय है। गार्गी सभा नेत्री है, वैदिक स्त्री स्वाधीन है, वे पुरुष के सामने स्वाभिमानी है, वो मंत्र दृष्टा ऋषिका है, वो युद्ध में वीरवती है और यज्ञकार में बराबर की भागीदार है, वो देवोपासक है, बावजूद इसके वो मर्यादा का उल्लंघन कभी नहीं करती। ऋग्वैदिक काल की स्त्री की स्थिति सम्मानजनक है और वे आदरणीय है। वैदिक काल की यही परंपरा पौराणिक काल तक अविच्छिन्न है। शिव पार्वती में पार्वती समतुल्य रूप में आदरणीय हैं, सीताराम में सीता माता हैं और श्रीराम कौशल्या, सुमित्रा के साथ कैकेयी को भी आदरणीय मानते हैं। पुराण काल की दुर्गा सप्तशती की समूची कथा ही देवी की पराक्रम गाथा है। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। नारी सम्मान की उक्त उद्घोषणा विश्व समुदाय को भारतीय संस्कृति की ही देन है। भारतीय वांग्मय में हजारों नारी पात्र हैं जो उल्लेखनीय और पठनीय हैं। भारत मातृ शक्ति आराधक राष्ट्र है। यहाँ गंगा माता है, गाय माता है, सिंधु माता है, वाणी माता है, नदियां माता हैं और वृक्ष भी माता ही हैं। सृष्टि का कड़कड़ यहाँ मातृ स्वरूप है। या देवी सर्वभूतेषु मातृ रूपेण संस्थिता। भारत शब्द पुरुषवाचक है, लेकिन भारतीय अनुभूति में भारत भी माता है, पृथ्वी भी माता है, समस्त विद्याएं माता हैं और समूची स्त्री सृष्टि माता ही है। वैदिक काल की इस वैभवशाली परंपरा के प्रादुर्भाव की आज आवश्यकता है। आज नारी को भोग्या मान लिया गया है और कई बार उसका शोषण किया जाता है। जब तक हम इस मानसिकता को दूर

0: नहीं करेंगे तब तक समाज का सर्वांगीण विकास नहीं संभव है। आने वाला समय संवेदना के विस्तार का है, जिसे केवल नारी में विद्यमान संवेदना से ही साकार किया जा सकेगा।
1: वेदों में नारी का महत्व, इस विषय पर अभी आप सुन रहे थे आज का सुविचार। वाचक स्वर था डॉक्टर शीबा राकेश का। आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से इस समय आप सुन रहे हैं नमस्कार लखनऊ। श्रोताओं, जीवन के सभी कष्टों और समस्याओं का समाधान हमें केवल ईश्वर की शरण में ही मिल सकता है, इसलिए आइए बिना देर किए हम भी चलते हैं उनकी शरण में और करते हैं उस परम पिता परमेश्वर की आराधना।

श्रोताओं नमस्कार। जब मन ईश्वर की भक्ति में पूरी तरह डूब जाता है तब संसार की हर चिंता छोटी लगने लगती है। भक्ति ही वो मार्ग है जो मन को शांति और हृदय को आनंद देता है। आइए सुबह सवेरे हम भी उसी भक्ति रस में डूबते हैं। भक्ति का एक सुर जीवन को प्रकाशमय बना देता है और आइए हम भी चलते हैं उस नटवर नागर नंदा की शरण में।

श्रोताओं, तकनीकी कुछ गड़बड़ी की वजह से कार्यक्रम में बाधा रही, उसके लिए हम माफी चाहेंगे। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। लीजिए प्रस्तुत है ये नात।

श्रोताओं, नियमित रूप से की गई प्रार्थना मन के विकारों, चिंताओं और तनाव को दूर करने में हमारी मदद करती है। इसलिए नियमित रूप से प्रभु का सुमिरन हमें हमेशा करते रहना चाहिए।

राम नाम का स्मरण ही आत्मा का आलोक है। राम नाम का जाप ही सबसे बड़ी साधना है जो जीवन में शांति और स्थिरता लाता है। हर श्वास में यदि राम बस जाए तो जीवन स्वयं एक भजन बन जाता है।

मीडियम वेव 314.47 मीटर अर्थात 954 किलोहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये नजीबाबाद केंद्र है। श्रोताओं, प्रातः के 6:30 हो रहे हैं। लीजिए प्रस्तुत है श्री रामचरित मानस गान।

श्री राम और लक्ष्मण पिता के वचन पालन हेतु वनगमन के लिए तैयार हैं। इधर सीता अपने स्वामी का साथ छोड़ अयोध्या के महलों में रहने को सहमत नहीं। कहती हैं, स्वामी के संग में पशु पक्षी उनके कुटुंब होंगे। वन ही नगर और वृक्षों की छाल ही निर्मल वस्त्र होंगे। उदार हृदय वन देवी और वन देवता सास ससुर की भांति उनकी देखरेख करेंगे। कंद मूल और फल अमृत के समान आहार होंगे।

0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे श्री रामचरित मानस गान। गायक कलाकार थे रंजना जोगलेकर और संगीत दिया था सतीश भाटिया ने। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। लीजिए प्रस्तुत है आज का चिंतन।
1: एपिसोड नंबर 100।
2: ईश्वर की सृष्टि में प्रत्येक कण का अपना अस्तित्व होता है। प्रत्येक को कुछ न कुछ करने के लिए ही परवरदिगार ने बनाया है। उन्हीं में मैं भी हूं। उसकी मदद से मैंने जो कुछ भी हासिल किया है वह उसकी इच्छा की अभिव्यक्ति ही तो है। कुछ विलक्षण गुरुओं और साथियों के माध्यम से ईश्वर ने मुझ पर यह कृपा की और जब मैं इन सर्वश्रेष्ठ व्यक्तियों के प्रति अपनी श्रद्धा एवं सम्मान व्यक्त करता हूं तो मैं उसकी महिमा का ही गुणगान कर रहा होता हूं। ये सब रॉकेट और मिसाइलें उसी के काम हैं जो कलाम नाम के एक छोटे से व्यक्ति के माध्यम से खुदा ने कराए हैं। इसलिए भारत के कई कोटि जनों को कभी भी छोटा या असहाय महसूस नहीं करना चाहिए। हम सब अपने भीतर दैवीय शक्ति लेकर जन्मे हैं। हम सबके भीतर ईश्वर का तेज छिपा है। हमारी कोशिश इस तेज पुंज को पंख देने की रहनी चाहिए जिससे ये चारों ओर अच्छाइयां एवं प्रकाश फैला सके। श्वार्टर्स हाईस्कूल के मेरे एक शिक्षक आया दुरे सोलोमन उन उत्सुक छात्रों के लिए एक आदर्श मार्गदर्शक थे जिनके समक्ष उस समय संभावनाओं और विकल्पों की अनिश्चितता थी। आया दुरे सोलोमन कहा करते थे, जीवन में सफल होने और नतीजों को हासिल करने के लिए तुम्हें तीन प्रमुख शक्तिशाली ताकतों को समझना चाहिए, इच्छा, आस्था और उम्मीदें। उन्होंने ही मुझे सिखाया कि मैं जो कुछ भी चाहता हूं पहले उसके लिए मुझे तीव्र कामना करनी होगी, फिर निश्चित रूप से मैं उसे पा सकूंगा। बचपन से ही मैं आकाश एवं पक्षियों के उड़ने के रहस्यों के प्रति काफी आकर्षित था। मैं सारस को समुद्र के ऊपर मंडराते और दूसरे पक्षियों को ऊंची उड़ान भरते देखा करता था। हालांकि मैं एक बहुत ही साधारण स्थान का लड़का था, लेकिन मैंने निश्चय किया कि एक दिन मैं भी आकाश में ऐसी ही उड़ाने भरूंगा। और वास्तव में कालांतर में उड़ान भरने वाला मैं रामेश्वरम का पहला बालक निकला। जीवन में खुशी, संतुष्टि और सफलता हमारे सही चुनाव पर निर्भर करती है। अपनी प्रगति को परखना बड़ा मुश्किल होता है। जीवन के इम्तिहान में पर्चा भी खुद बनाना होता है और उत्तर भी खुद ही लिखने होते हैं, यहां तक कि उन्हें जांचना भी खुद ही को होता है। जब आप स्वयं अपनी इच्छा एवं जिम्मेदारी से कोई काम अपने हाथ में लेते हैं तब आप एक इंसान बन जाते हैं। तीन बड़े वैज्ञानिक प्रतिष्ठानों, अंतरिक्ष, रक्षा शोध एवं परमाणु ऊर्जा में मुझे काम करने का महान अवसर मिला है। इन तीनों प्रतिष्ठानों में एक जो खास बात है वो ये कि अपने मिशनों में काम के दौरान इन वैज्ञानिकों और तकनीशियनों को असफलता का डर कभी भी नहीं लगा। असफलता के साथ उनके भीतर सफलता के बीज भी रहे हैं। इसी से कहीं बेहतर टेक्नोलॉजी सामने आई है। मैं पूरे उत्साह से उम्मीद और प्रार्थना करता हूं अंततो गत्वा हमारा राष्ट्र एक मजबूत, खुशहाल और विकसित राष्ट्र जरूर बनेगा।
0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे आज का चिंतन। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। सवेरे के 6:45 हो रहे हैं। लीजिए प्रस्तुत है ब्रजराज किशोर का काव्य पाठ, कार्यक्रम काव्यधारा के अंतर्गत।
3: पहली गजल है, गर

0: कर।
1: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे ब्रजराज किशोर का काव्य पाठ कार्यक्रम काव्यधारा के अंतर्गत। मीडियम वेव 314.47 मीटर अर्थात 954 किलो हर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये नजीबाबाद केंद्र है। सवेरे के 6:55 होने को हैं। आपसे कुछ ही क्षणों में आप सुनेंगे समाचार।
2: इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचकः पुनीत त्रिपाठी। अथ वार्ताः। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी तथा साइप्रस देशस्य राष्ट्रपतिः निकोस क्रिस्टोडोलाइट्स इत्येषश्च आतंकवादं निवारणाय बहुपक्षीय प्रयासानां सुदृढीकरणाय तथा संयुक्त राष्ट्र संघस्य संरचनान्तर्गतं अन्ताराष्ट्रीय आतंकवादस्य विषये समग्र सम्मेलनं शीघ्रमेव अन्तमीकृत्य स्वीकर्तुं आहूतवन्तौ। ह्यः नवदिल्ल्याम् उभयोः नेत्रोः मध्ये वार्तायाः अनन्तरं प्रदत्ते संयुक्त वक्तव्ये उभौ पक्षौ संयुक्त राष्ट्र संघे तथा यूरोपीय

0: संघे च निर्दिष्टानां आतंकवादिनां आतंकिसंघटनानां च विरुद्धं अपि च संयुक्तराष्ट्रसंघस्य सुरक्षापरिषत् प्रतिबन्धसमित्याः अन्तर्गतं सूचीबद्धानां सप्तषष्ट्यधिकद्विशतोत्तरैकसहस्रं यावत् आतंकिसंघटनानां विरुद्धं प्रबलं समन्वितं च कार्याचरणाय आग्रहं कृतवन्तौ।
1: आज हमने साइबर सिक्योरिटी, मैरिटाइम सिक्योरिटी और काउंटर टेररिज्म सहयोग को भी और मजबूत करने का निर्णय लिया है। इतना ही नहीं, हम इंडो पैसिफिक ओशन इनिशिएटिव और इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर जैसे महत्वपूर्ण पहलों से कनेक्टिविटी सुनिश्चित करने के लिए भी साथ मिलकर काम करेंगे।
0: उभौ पक्षौ साइबर सुरक्षायाम् अपि च उदयोन्मुख प्रौद्योगिक्यां विशेषावधानेन सह रक्षा उद्योगयोः मध्ये सहयोगेन सह रक्षा सुरक्षा सहकारं सुदृढीकरणेऽपि सहमतौ अभवताम्। अस्मिन् सन्दर्भे साइप्रस डिफेंस एंड स्पेस इंडस्ट्रीज क्लस्टर तथा सोसाइटी ऑफ इंडियन डिफेंस मैन्युफैक्चरर्स इत्येतयोः मध्ये संधिपत्रे हस्ताक्षरं जातम्। प्रधानमंत्री श्रीनरेन्द्रमोदी अद्य 21वें रोजगार मेलायां विविध प्रशासकीय विभागेषु संस्थासु च नवनियुक्तानां यूनां कृते 150,000+ नियुक्तिपत्राणां वितरणं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग इति आभासीय माध्यमेन करिष्यति। अमेरिकादेशस्य विदेश सचिवः मार्को रूबियो इत्येषः अद्य भारतस्य चतुर्दिवसीय यात्रायां कोलकातानगरम् आगमिष्यति। इदम्

एस जयशंकरेण सह वार्तालापं करिष्यति। सः अमेरिकादेशस्य दूतावासस्य स्वातन्त्र्यदिवसोपलक्ष्ये आयोजिते कार्यक्रमेऽपि भागं ग्रहीष्यति। सोमवासरे श्रीरूबियोवर्यः आगरा जयपुरनगरयोः भ्रमणं करिष्यति। तत्पश्चात् मंगलवासरे भारते आयोजिते क्वाड विदेशमन्त्रिणां सभायां भागं ग्रहीतुं नवदिल्ल्यां प्रत्यागमिष्यति। भारत ऋतु विभागेन अद्य पूर्वीय मध्य प्रदेशे पूर्वीय उत्तर प्रदेशे विदर्भे च तीव्रतर उष्णतरंगस्य स्थित्यै रक्तवर्णीया संचेतना प्रसारितास्ति। अद्य दिल्ली हरियाणा पंजाब चंडीगढ़ राजस्थान बिहार छत्तीसगढ़ झारखंड ओडिशा इत्येतेषु प्रदेशेषु उष्णतरंगस्य स्थित्यां आईएमडी विभागेन नारंगवर्णीया संचेतना प्रदत्ता अस्ति। तटीये आंध्रप्रदेशे तेलंगानायां पश्चिम मध्य प्रदेशे पश्चिम उत्तर प्रदेशे च अद्य दिने तथैव स्थितिः भविष्यति। अद्य दिल्ल्याम् अधिकतमं तापमानं 45 डिग्री सेल्सियस यावत् न्यूनतम तापमानं 27 डिग्री सेल्सियस यावत् भवितुं शक्नोति। अन्त्यक्रीडा वार्तायाम् आईपीएल क्रिकेट क्रीडायां सनराइजर्स हैदराबाद दलेन हैदराबादे रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु दलं 55 धावनांकैः पराजितम्। अद्य सायं 7:30 लखनऊ नगरे पंजाब किंग्स लखनऊ सुपर जायंट्स दलयोः मध्ये क्रीडा भविष्यति। इति वार्ताः।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 19वें रोजगार मेले में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से 51,000 से अधिक युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। इनमें विभिन्न सरकारी विभागों और संगठनों में नवनियुक्त युवा शामिल हैं। श्री मोदी इस अवसर पर उपस्थित लोगों को संबोधित भी करेंगे। ये रोजगार मेला देश में 47 स्थानों पर आयोजित किया जाएगा। रोजगार मेला प्रधानमंत्री मोदी की रोजगार सृजन को सर्वोच्च प्राथमिकता देने की प्रतिबद्धता दर्शाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलाइट्स ने आतंकवाद से निपटने के लिए बहुपक्षीय प्रयासों को मजबूत करने और संयुक्त राष्ट्र ढांचे में अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद पर व्यापक सम्मेलन को शीघ्र अंतिम रूप देने तथा अपनाने का आह्वान किया है। दोनों नेताओं ने आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने की नीति को दोहराते हुए दोहरे मापदंड, राज्य प्रायोजित आतंकवाद और किसी भी परिस्थिति में आतंकवादी कृत्यों के औचित्य को अस्वीकार कर दिया। नई दिल्ली में कल दोनों नेताओं के बीच हुई वार्ता के बाद दोनों देशों ने संयुक्त राष्ट्र और यूरोपीय संघ द्वारा नामित सभी आतंकियों और आतंकी संगठनों के खिलाफ मजबूत और समन्वित कार्रवाई का आग्रह किया। दोनों नेताओं ने उग्रवाद, कट्टरता, आतंकवाद का वित्त पोषण और धन शोधन का मुकाबला करने के लिए अधिक सहयोग की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने आतंकी गतिविधियों के लिए नई और उभरती प्रौद्योगिकियों का दुरुपयोग रोकने तथा आतंकियों की भर्ती से निपटने का भी आह्वान किया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि साइप्रस के साथ भारत के रक्षा सहयोग में वृद्धि हुई है।
1: आज हमने साइबर सिक्योरिटी, मैरिटाइम सिक्योरिटी और काउंटर टेररिज्म सहयोग को भी और मजबूत करने का निर्णय लिया है। इतना ही नहीं, हम इंडो पैसिफिक ओशन इनिशिएटिव और इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर जैसे महत्वपूर्ण पहलों से कनेक्टिविटी सुनिश्चित करने के लिए भी साथ मिलकर काम करेंगे।
0: अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो 4 दिन की भारत यात्रा पर आज कोलकाता पहुंचेंगे। ये उनकी पहली भारत यात्रा है। श्री रूबियो नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भेंट करेंगे। श्री रूबियो विदेश मंत्री एस जयशंकर से बातचीत भी करेंगे। श्री रूबियो मंगलवार को नई दिल्ली में क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में हिस्सा लेंगे। बैठक में ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री पेनी वोंग और जापान के विदेश मंत्री तोशी मित्सु मोतेगी भी शामिल होंगे। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि क्वाड बैठक में स्वतंत्र और मुक्त हिंद प्रशांत के दृष्टिकोण के अनुरूप जारी पहलों की प्रगति की समीक्षा की जाएगी। अमेरिका की राष्ट्रीय खुफिया निदेशक तुलसी गैबार्ड ने इस्तीफा दे दिया है। सुश्री गैबार्ड ने कहा कि वे 30 जून से अपने पद से हट जाएंगी। राष्ट्रपति ट्रंप ने सुश्री गैबार्ड की प्रशंसा करते हुए कहा कि प्रशासन को उनकी कमी महसूस होगी। सुश्री गैबार्ड के बाद राष्ट्रीय खुफिया प्रधान उपनिदेशक अरुण लुकास कार्यवाहक निदेशक के रूप में कार्यभार संभालेंगे। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने कहा है कि देश में पेट्रोल और डीजल की पर्याप्त उपलब्धता है। मंत्रालय ने नागरिकों को घबराहट में खरीदारी न करने और केवल आवश्यकता के अनुसार ईंधन खरीदने की सलाह दी। मंत्रालय ने कहा कि जिम्मेदारी के साथ उपयोग और जनता का सहयोग ईंधन की सुचारू उपलब्धता सुनिश्चित करने में सहायक होगा। लेबनान में संयुक्त राष्ट्र शांति रक्षा मिशन में कार्यरत भारतीय सेना के अधिकारी मेजर अभिलाषा बराक को वर्ष 2025 के संयुक्त राष्ट्र सैन्य लैंगिक समानता समर्थक पुरस्कार के लिए चुना गया है। मेजर बराक भारतीय सेना की पहली महिला लड़ाकू हेलीकॉप्टर पायलट भी हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए केंद्र सरकार को रिकॉर्ड 2,86,000 करोड़ रुपए का अधिशेष हस्तांतरित करने की मंजूरी दे दी है। ये रिजर्व बैंक के अब तक के सबसे अधिक लाभांश में से एक है। यह निर्णय कल मुंबई में राज्यपाल संजय मल्होत्रा की अध्यक्षता में बैंक के केंद्रीय निदेशक मंडल की बैठक में लिया गया। आईपीएल क्रिकेट में सनराइजर्स हैदराबाद ने रॉयल चैलेंजर्स बंगलुरु को 55 रन से हरा दिया। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए सनराइजर्स हैदराबाद ने 20 ओवर में 4 विकेट पर 255 रन बनाए। जवाब में रॉयल चैलेंजर्स बंगलुरु 20 ओवर में 4 विकेट पर 200 रन ही बना सकी। ईशान किशन को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: मीडियम वेव 314.47 मीटर अर्थात 954 किलो हर्ट्स पर आकाशवाणी का ये नजीबाबाद केंद्र है। सवेरे के 7:05 हो रहे हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम स्वास्थ्य चर्चा के अंतर्गत जानकारी सर्व रोग हारा नीम विषय पर।
1: अनुसंधानों के अनुसार नीम में एंटीसेप्टिक यानी जीवाणुनाशक प्राकृतिक गुण प्रत्यक्ष में ही है, साथ ही साथ सौंदर्यवर्धक गुण भी समाये हुए हैं। इससे त्वचा संबंधी अनेक रोग नष्ट होते हैं। नीम प्रारंभिक काल से ही औषधि वृक्षों में से एक है। नीम की दातुन अति गुणकारी होती है। इसमें छिपे हुए कीटाणुओं को नष्ट करने की क्षमता है। सफाई कर दुर्गंध को मिटाता है। पूर्वजों का कथन है कि 2.5 पत्ती नीम की 5 काली मिर्च को नियमित कुछ दिन सेवन करने से फोड़ा फुंसी से छुटकारा मिलता है। नीम में त्वचा निखार रक्त शोधक गुण है। नीम के तेल का उपयोग एक्जिमा, दाद, खाज, खुजली, फोड़ा, फुंसी आदि रोगों पर किया जाता है। पर्यावरण निवारण हेतु नीम के पेड़ के पत्तों की झकझोर हवा सबसे ज्यादा भूमिका निभाती है। नीम कीटाणुनाशक पर्यावरण शोधक है। त्वचा बालों के सौंदर्य के लिए नीम का साबुन, नीम का तेल सर्वविदित है। प्रदूषण के दुष्प्रभावों से बचने के लिए नीम द्वारा निर्मित पदार्थ वस्तुएं प्रयोग में लाई जाती हैं। शहरी क्षेत्रों में घातक रासायनिक वायु प्रदूषण मनुष्य को प्रभावित करते हैं, जिससे त्वचा में सूखापन, फटना आदि परिणाम सामने आते हैं। वृक्षों में नीम सबसे उत्तम और उपयोगी है। नीम का प्रत्येक भाग गुणकारी है। असाध्य रोग बवासीर के लिए निमोली विशेष ही लाभप्रद है। 2.5 पत्ती नीम, काली मिर्च 5 नियमित सेवन करने से फोड़ा फुंसी से छुटकारा मिल जाता है। नीम की पत्ती पानी के साथ खाने से अल्सर रोग नष्ट हो जाता है। नीम की दांतुन नियमित करने से दांतों का कोई भी रोग नहीं होता है। नीम की नई नई कोंपले 11 पत्ती, 5 काली मिर्च सेवन करने से शरीर में व्यथा नहीं रहती तथा पेट साफ हो जाता है, रक्त शुद्ध हो जाता है, चर्म रोग का भय नहीं होता है, चेहरे पर सौंदर्यता झलकती है, पेट के कीड़े मर जाते हैं। ये योग 1 सप्ताह तक करें। शरीर में खुजलाहट हो तो नीम की पत्तियों को पीसकर लेप कर लें, उसमें कपूर अवश्य ही मिलाएं तो इस योग से खुजली नष्ट हो जाती है। नीम का तेल निकालने के पश्चात नीम की पत्तियों की उत्तम खाद बनती है, जिससे कीटाणु नष्ट हो जाते हैं और धरती उपजाऊ होती है, फसल अच्छी होती है। खेत पर नीम का पेड़ लगाने से खेत उपजाऊ होता है, वहां पर फसलों को नष्ट करने वाले कीट पैदा ही नहीं होते। घर में मच्छर, मक्खी, खटमल आदि से परेशानी हो तो नीम की सूखी पत्तियों को धुआं करने से मच्छर, मक्खी, खटमल मर जाते हैं या भाग जाते हैं। युवावस्था प्राप्त होते ही चेहरे पर मुहासे हो जाते हैं, काफी इलाज करने पर भी लाभ नहीं होता। उसके लिए नीम की एक अचूक दवा है, नीम की जड़ पीसकर लगाने से मुहासे ठीक हो जाते हैं। नीम की निमोली रात भर पानी में भिगो दें। प्रातःकाल गूदा निकालकर सिर पर लेप करने से मैल, जुएं, लीख आदि नष्ट हो जाते हैं। सर्पदंश लगने पर रोगी को नीम की पत्ती चबानी चाहिए, इससे सर्प विष कम होता है। विशेष अवस्था में रोगी को नीम के लहरों व दवा रखने पर रोगी को आराम होता है। नीम के लहरों को अनाज के भंडार में डाल दें, अनाज में कीड़े न लग सकेंगे।
0: स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे सर्व रोग हारा नीम विषय पर जानकारी। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 314.47 मीटर अर्थात 954 किलो हर्ट्ज पर प्रस्तुत है कार्यक्रम खेती की बातें। जानकारी का विषय है फसलों में कीटों व रोगों का जैविक नियंत्रण विषय पर।
2: किसान भाइयों नमस्कार, खेती की बातें कार्यक्रम में आपका स्वागत है। हमारे किसान भाई खेती करते हैं और खेती से लाभ भी कमाते हैं, और हमें लाभ लेने के लिए अपनी फसलों की देखभाल करना जरूरी होता है, क्योंकि हमारी जो फसल है उसमें रोग और कीट लगते हैं जो हमारी फसल के उत्पादन को काफी प्रभावित करते हैं। तो आज इसी के संबंध में एक जानकारी लेकर आए हैं जिसका विषय है फसलों के कीटों और रोगों का जैविक नियंत्रण। किसान

0: कृषि उत्पादन बढ़ाने में कीटों और रोगों का नियंत्रण अत्यंत आवश्यक है। लंबे समय तक रासायनिक कीटनाशकों और फफूंद नाशकों के अधिक प्रयोग से मिट्टी की जो उर्वरता है वो घटती जा रही है और पर्यावरण भी प्रदूषित हो रहा है और साथ साथ मानव और पशुओं के स्वास्थ्य पर भी इसका बुरा प्रभाव पड़ रहा है। तो किसान भाइयों, इन समस्याओं को देखते हुए आज जैविक नियंत्रण का महत्व तेजी से बढ़ रहा है। जैविक नियंत्रण जिसमें हमारे किसान भाई कीटों और रोगों को नियंत्रित करने के लिए प्राकृतिक जीवों, सूक्ष्म जीवों और तथा जैविक पदार्थों का उपयोग करते हैं। किसान भाई, यह पर्यावरण के अनुकूल, सुरक्षित तथा टिकाऊ कृषि पद्धति है। किसान भाइयों, फसलों को नुकसान पहुंचाने वाले कीटों, रोगजनकों और खरपतवारों को नियंत्रित करने के लिए प्राकृतिक शत्रुओं, जीवाणुओं, कवकों, परजीवियों तथा जैविक उत्पादों का उपयोग करना जैविक नियंत्रण कहलाता है। किसान भाइयों, अगर जैविक नियंत्रण की बात करें तो इसमें सबसे पहले आता है परभक्षी जीवों द्वारा नियंत्रण। किसान भाइयों, इसमें कुछ जीव हानिकारक कीटों को खाकर उनकी संख्या को कम करते हैं, इन्हें परभक्षी कहा जाता है। जैसे लेडीबर्ड बीटल माहू और चूसा कीटों को खाती है। मकड़ियां छोटे छोटे कीटों को नष्ट कर देती है। ड्रैगन फ्लाई और क्राइसोपा भी हानिकारक कीटों को खाकर नष्ट कर देती है। इन जीवों के संरक्षण से खेत में कीटों की संख्या नियंत्रित रहती है। किसान भाइयों, परजीवी द्वारा नियंत्रण भी हमारे किसान भाई करते हैं। किसान भाई, इसमें कुछ सूक्ष्म कीट दूसरे कीटों के शरीर में अंडे देते हैं और उन्हें नष्ट कर देते हैं, इन्हें परजीवी कीट कहते हैं। जैसे ट्राइकोग्रामा एक अत्यंत उपयोगी परजीवी कीट है जो तना छेदक और फल छेदक के अंडे को नष्ट करता है। किसान भाइयों, इन परजीवी कीटों को खेत में छोड़कर कीट नियंत्रण हमारे किसान भाई आराम से कर सकते हैं। कई प्रकार के जीवाणु, कवक और वायरस कीटों तथा रोगों को नियंत्रित करते हैं। जैसे बैसिलस थुरिंजिएंसिस बीटी एक प्रसिद्ध जीवाणु है जो इल्ली वर्ग के कीटों को खाकर नष्ट करता है, जिससे इनकी संख्या घट जाती है। यह ज्यादातर कपास, गोभी, टमाटर आदि फसलों के लिए उपयोगी होता है। किसान भाइयों, कुछ कवकनाशी होते हैं। जैसे ट्राइकोडर्मा एक लाभकारी कवक है जो मिट्टी में रहने वाले रोगजनक कवकों को नियंत्रित करता है। किसान भाइयों, ये जड़ गलन, उकता और डैम्पिंग ऑफ रोग में उपयोगी होता है। कुछ किसान भाई हमारे वनस्पति आधारित जैविक नियंत्रण करते हैं। इसमें कुछ पौधे ऐसे हैं जिनमें प्राकृतिक कीटनाशक गुण पाए जाते हैं। जैसे नीम, नीम सबसे महत्वपूर्ण जैविक कीटनाशक है। नीम की खली, नीम का तेल और नीम का अर्क का उपयोग हमारे किसान भाई जैविक नियंत्रण के लिए करते हैं। किसान भाइयों, यह चूसक एवं खाने वाले कीटों के लिए बहुत प्रभावी है। नीम की गंध कीटों को दूर रखती है और प्रजनन से रोकती है। किसान भाइयों, अन्य पौधे भी हैं जो हमारे जैविक नियंत्रण के लिए काम आते हैं। जैसे लहसुन अर्क, तंबाकू का घोल, धतूरा, इनका उपयोग हमारे किसान भाई घरेलू जैविक कीटनाशक के रूप में भी कर सकते हैं। किसान भाइयों, कुछ रोग भी हमारे फसलों में लगते हैं जिसका जैविक नियंत्रण हमारे किसान भाई आराम से कर सकते हैं। इनके नियंत्रण के लिए जैविक उपाय अत्यंत उपयोगी हैं जो हमारी फसलों के लिए लाभ पहुंचाते हैं। जैसे ट्राइकोडर्मा का उपयोग, बीज उपचार में ट्राइकोडर्मा का उपयोग किया जाता है। यह रोगजनक कवकों को बढ़ने नहीं देता और ये सब्जी, दलहनी और तिलहनी फसलों के लिए अत्यंत लाभकारी है। कुछ किसान भाई हमारे गोबर की खाद, वर्मी कंपोस्ट का उपयोग करते हैं। इससे मिट्टी में लाभकारी सूक्ष्म जीवों की संख्या बढ़ती है और रोग भी कम लगते हैं। किसान भाइयों, जैविक नियंत्रण के साथ साथ कुछ अन्य उपाय भी हैं जिससे हमारे किसान भाई आसानी से रोगों और कीटों का नियंत्रण कर सकते हैं। जैसे फसल चक्र अपनाना, एक ही खेत में बार बार एक ही फसल बोने से रोग और कीट बढ़ते हैं। फसल चक्र अपनाने से उसका प्रकोप कम हो जाता है और जो रोग और कीटों की संख्या वो भी कम हो जाती है। हमारे किसान भाई मिश्रित खेती भी कर सकते हैं। तीसरा, हमारे किसान भाई समय पर बुआई करें, क्योंकि समय पर बुआई करने से कई कीटों और रोगों से बचाव हो जाता है। हमारे किसान भाई संतुलित उर्वरक का प्रयोग करके भी कीटों रोगों से सुरक्षा कर सकते हैं। और साथ साथ एक बात हमारे किसान भाई को ध्यान रखनी है, वो है खेत की स्वच्छता। कभी कभी खरपतवार, संक्रमित पौधे और फसल अवशेषों को नष्ट करने से भी रोग और कीट कम फैलते हैं, इसलिए खेत की स्वच्छता बहुत जरूरी है। किसान भाइयों, जैविक जब नियंत्रण हमारे किसान भाई करते हैं तो उसके कुछ लाभ भी मिलते हैं। एक तो पर्यावरण सुरक्षित रहता है, मिट्टी की उर्वरता बनी रहती है, मानव और पशुओं के स्वास्थ्य पर दुष्प्रभाव भी नहीं पड़ता है और साथ साथ उत्पादन की गुणवत्ता भी बढ़ती है। लाभकारी कीट सुरक्षित रहते हैं और लागत कम होती है, जिससे हमारे किसान भाइयों को लाभ मिलता है। तो किसान भाइयों, कुल मिलाकर बात यूँ निकल कर आती है कि किसानों को रासायनिक दवाओं पर निर्भरता कम करके जैविक विधियों को अपनाना चाहिए। तो किसान भाइयों, खेती की बातें कार्यक्रम आज यहीं पर संपन्न होता है। कल एक और नई जानकारी के साथ आपके बीच उपस्थित होंगे। किसान भाइयों, नमस्कार।
1: खेती की बातें कार्यक्रम के अंतर्गत श्रोता सुन रहे थे जानकारी फसलों के कीटों व रोगों का जैविक संरक्षण, जैविक नियंत्रण विषय पर। आकाशवाणी का ये नजीबाबाद केंद्र है। सवेरे के 7:15 हो रहे हैं। प्रस्तुत है हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों के विषय में जानकारी। सात बजकर 7:31 पर श्रोता सुनेंगे जानकारी और मनोरंजन से भरा कार्यक्रम सूरज के साथ साथ। लोक संगीत के कार्यक्रम धरती गाती है के अंतर्गत हम आपको सुनवाएंगे राजकुमार और साथियों की गाई रागनी सवेरे 9:25 पर। कार्यक्रम बात आसपास की सवेरे 10:00 सवेरे 9:50 पर। भारत में रेडियो प्रसारण के 90 साल के उपलक्ष में हमारा विशेष कार्यक्रम सुहाना सफर सुबह 10:30 पर। महिला जगत कार्यक्रम का प्रसारण किया जाएगा दिन में 1:15 पर। इस कार्यक्रम में कल चर्चा का विषय होगा प्रकृति और जीवों की रक्षा तथा महिलाओं की भागीदारी विषय पर। साथ ही बहनें सुनेंगी लघु नाटिका हुनर। आलेख होगा बिना कोटनाला का। प्रतिभागी होंगे विवेक प्रताप सिंह, अक्षी त्यागी, सना परवीन और बिना कोटनाला। निर्देशक अंकित सैनी और प्रस्तुतकर्ता होंगे शोभित शर्मा। लोक संगीत के कार्यक्रम लोकधारा के अंतर्गत दिन में 1:45 पर रविन्द्र वर्मा के गाए जौनसारी लोकगीत प्रसारित किए जाएंगे। आकाशवाणी के 90 वर्षों के उपलक्ष में आकाशवाणी नजीबाबाद से जुड़े श्रोताओं के अनुभव पर आधारित कार्यक्रम रिश्ता ये खास है आप सुनेंगे शाम 5:00। युवा श्रोताओं का मनपसंद कार्यक्रम युवाणी शाम 5:15 पर। कृषि जगत कार्यक्रम का प्रसारण शाम 6:05 पर। इस कार्यक्रम में चर्चा का विषय होगा पशुशाला प्रबंधन। साथ ही श्रोता सुनेंगे लोकगीतों पर व रागनियों का सजीव प्रसारण। श्रोताओं की फरमाइश पर फोन इन कार्यक्रम हेलो लोक मंजरी। कार्यक्रम विविधा के अंतर्गत श्रोता सुनेंगे भेंटवार्ता। तापघात यानी लू लगना, कारण लक्षण और बचाव विषय पर डॉक्टर ज्ञानचंद्र से एस के नौटियाल की बातचीत। समय होगा शाम 6:45। कार्यक्रम सालाना उर्स दरगाह आलिया ए नजफ हिंद जोगीरमपुरा का भाग नंबर 2। इस कार्यक्रम के प्रायोजक होंगे शिया वक्फ बोर्ड ऑफ इंडिया। वाचन स्वर एवं प्रस्तुति सहयोग अलीना अंजुम और साद अहमद का होगा। समय होगा शाम 7:32। श्री खाटू श्याम सेवा समिति किरतपुर द्वारा आयोजित श्याम संकीर्तन आधारित कार्यक्रम की रेडियो रिपोर्ट आप सुनेंगे शाम 7:45 पर। इस कार्यक्रम के प्रायोजक होंगे श्री खाटू श्याम सेवा समिति होली वाला कुआ किरतपुर। वाचन स्वर एवं प्रस्तुति सहयोग होगा जसवंत सिंह का। राष्ट्रीय विज्ञान पत्रिका विज्ञान भारती रात्रि 9:30 पर। संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम रात्रि 10:00। ये दोनों ही कार्यक्रम हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। तो ये थी जानकारी हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों के विषय में। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। प्रातः के 7:18 होने को है। आपसे कुछ ही क्षणों में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: कमजोर हो सकता है और सबसे बुद्धिमान गलती कर सकता है। एपीजे अब्दुल कलाम।
1: जैसे सूर्य सबको एक सा प्रकाश देता है, बरसात सबके लिए बरसती है, उसी तरह विद्या वृष्टि सब पर बरकरार होनी चाहिए। महात्मा गांधी।
0: आकाश की तरफ देखिए, हम अकेले नहीं हैं। सारा ब्रह्मांड हमारे लिए अनुकूल है और जो सपने देखते हैं, मेहनत करते हैं, उन्हें प्रतिफल देने की साजिश करता है। एपीजे अब्दुल कलाम। निरंतर विकास जीवन का नियम है और जो व्यक्ति खुद को सही दिखाने के लिए हमेशा अपनी रूढ़िवादिता को बरकरार रखने की कोशिश करता है, वह खुद को गलत स्थिति में पहुंचा देता है। महात्मा गांधी।
1: मानव का दानव होना उसकी हार है, मानव का महामानव होना उसका चमत्कार है और मनुष्य का मानव होना उसकी जीत है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन।
0: कोई त्रुटि तर्क वितर्क करने से सत्य नहीं बन सकती और ना ही कोई सत्य इसलिए त्रुटि बन सकता है क्योंकि कोई उसे नहीं देख रहा है। महात्मा गांधी।
2: आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ मैं वैष्णवी त्रिपाठी। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 51,000 से अधिक युवाओं को वितरित करेंगे नियुक्ति पत्र। राजधानी लखनऊ सहित देश भर के 47 स्थानों पर होगा रोजगार मेले का आयोजन। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने देवरिया में 655 करोड़ रुपए लागत की 19 परियोजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास। कहा, अच्छी सड़कें, फ्लाईओवर और मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर ही रोजगार और निवेश की नींव। जनगणना 2027 के पहले चरण के तहत प्रदेश भर में मकानों की गणना शुरू। पहले दिन 1,35,00,000 से अधिक मकानों की हुई गिनती। और प्रदेश भर में भीषण गर्मी और लू का प्रकोप जारी। मौसम विभाग ने प्रदेश के पूर्वी व पश्चिमी क्षेत्रों में अगले 3 दिनों तक और लू चलने की जारी की चेतावनी। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 19वें रोजगार मेले में विभिन्न सरकारी विभागों और संगठनों में 51,000 से अधिक नवनियुक्त युवाओं को नियुक्ति पत्र वितरित करेंगे। वे आयोजन को संबोधित भी करेंगे। एक रिपोर्ट।
3: 19वें रोजगार मेले का आयोजन प्रदेश की राजधानी लखनऊ सहित देश भर के 47 स्थानों पर किया जाएगा। लखनऊ में केंद्रीय राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह कार्यक्रम में शामिल होंगे। देश के सभी हिस्सों से चयनित नव नियुक्त उम्मीदवार रेल मंत्रालय, गृह मंत्रालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, वित्तीय सेवा विभाग, उच्च शिक्षा विभाग सहित केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों और विभागों में कार्यभार ग्रहण करेंगे। रोजगार मेला आरंभ किए जाने के बाद देश में अब तक आयोजित 18 रोजगार मेलों के माध्यम से लगभग 12 लाख नियुक्ति पत्र जारी किए जा चुके हैं। समाचार कक्ष से सुशील चंद्र तिवारी।
2: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल देवरिया में 655 करोड़ रुपए की लागत से 19 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश और उत्तर प्रदेश ने विकास की नई गति पकड़ी है और अब विकास की यह यात्रा रुकने वाली नहीं है। श्री योगी ने कहा कि अच्छी सड़कें, फ्लाईओवर, पुल और मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर ही रोजगार व निवेश की नींव होते हैं। आज पूरे देश में उत्तर प्रदेश का नाम सम्मान व गर्व के साथ लिया जाता है। यूपी विरासत और विकास दोनों का संगम बन चुका है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में वर्ष 2014 के बाद नए भारत का निर्माण हुआ है।
4: 2014 के बाद आज जिस नए भारत का हम सब दर्शन कर रहे हैं, इसके पीछे प्रधानमंत्री मोदी जी का नेतृत्व और उनका वह विजन है जो विकास को प्राथमिकता देता है। और प्रधानमंत्री जी के उसी विजन को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने इस बात को हमेशा प्राथमिकता दी है कि गति जितनी तेज होगी, विकास का लाभ उतनी तेजी के साथ आम जन को प्राप्त होगा।
2: इस अवसर पर कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही, परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह, राज्य मंत्री ग्राम्य विकास विजय लक्ष्मी गौतम सहित कई गणमान्य उपस्थित रहे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल लखनऊ में यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण के अंतर्गत 17 निवेशकों को औद्योगिक आवंटन पत्र प्रदान किया। इस पहल से प्रदेश में नए निवेश, रोजगार और औद्योगिक गतिविधियों को नई गति मिलेगी। मुख्यमंत्री ने निवेशकों के साथ संवाद कर उन्हें प्रदेश में उपलब्ध औद्योगिक संभावनाओं और सरकार की योजनाओं से भी अवगत कराया। इस अवसर पर श्री योगी ने कहा कि उत्तर प्रदेश टूरिज्म, ट्रेड और इन्वेस्टमेंट के वर्ल्ड क्लास डेस्टिनेशन के रूप में उभरा है। उन्होंने कहा कि जेवर और यमुना एक्सप्रेसवे डेवलपमेंट अथॉरिटी के आसपास जो परिवर्तन दिखाई दे रहा है वह नए भारत के, नए उत्तर प्रदेश की नई तस्वीर है। इस कार्यक्रम में औद्योगिक विकास मंत्री नंद गोपाल गुप्ता भी उपस्थित रहे। केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय के पेयजल और स्वच्छता विभाग की ओर से जारी स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2025 की रिपोर्ट में वाराणसी को सेंट्रल जोन का सर्वश्रेष्ठ जिला घोषित किया गया है। वहीं उत्तर प्रदेश राज्यों की श्रेणी में पहले स्थान पर रहा। वाराणसी के मुख्य विकास अधिकारी प्रखर कुमार सिंह ने बताया कि स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के तहत यह सर्वेक्षण देश के गांवों में स्वच्छता की वास्तविक स्थिति जानने के लिए कराया गया था।
5: यह जो स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण होता है, ये मुख्यतः इसके चार पिलर्स हैं। पहला पिलर जिसमें थर्ड पार्टी एजेंसी द्वारा गांव का सर्वे किया जाता है, इसके अलावा जो सेवा स्तरीय प्रगति होती है उसकी भी निगरानी इस सर्वेक्षण में होती है। तीसरा जो हमारे नागरिक हैं उनका जो फीडबैक है, सिटीजन फीडबैक के भी इसमें 100 अंक होते हैं। और इसके अलावा जो विभिन्न तरह के संयंत्र हमारे जनपद में लगे हुए हैं, जैसे कि 3 प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट यूनिट है, बायोगैस प्लांट है, FSTP है, फीकल स्लज ट्रीटमेंट प्लांट, इन सबके जो कार्य क्षमता है उसका भी आकलन इस सर्वे में किया जाता है।
2: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन हमारे YouTube चैनल AIR न्यूज गोरखपुर और X हैंडल AIR News_GKP पर भी उपलब्ध है। जनगणना 2027 के पहले चरण के अंतर्गत कल से प्रदेश में मकानों की गणना और सूचीकरण का कार्य शुरू हो गया है। इसी क्रम में राज्य के 3,89,312 मकान सूचीकरण ब्लॉक में प्रगणकों और पर्यवेक्षकों द्वारा सर्वेक्षण कार्य शुरू किया गया। इस दौरान लखनऊ में मुख्यमंत्री आवास, गोरखपुर में गोरखनाथ मंदिर और आगरा में ताजमहल परिसर की भी गणना की गई। इस बार सिर्फ घरों की गिनती ही नहीं बल्कि प्रदेश की ऐतिहासिक और सांस्कृतिक पहचान भी जनगणना का हिस्सा बन रही है। अभियान के पहले ही दिन 1,35,00,000 से अधिक घरों पर जनगणना मकान संख्या अंकित की गई। इससे पूर्व 7 से 21 मई तक स्वगणना का कार्य किया गया। मऊ के जिलाधिकारी आनंद वर्धन ने जनगणना कार्य को समयबद्ध, पारदर्शी और गुणवत्ता के साथ संपन्न कराने के निर्देश दिए हैं। अमरोहा में जनगणना में संपूर्ण जिले को कुल 3,682 गणना ब्लॉक में विभाजित किया गया है। गोरखपुर में कुल 9,322 गणना ब्लॉक बनाए गए हैं, जिनमें 11,000 से अधिक प्रगणक और पर्यवेक्षक तैनात किए गए हैं। अमरोहा के जिलाधिकारी डॉ. नितिन गौड़ ने बताया कि प्रगणक घर घर जाकर जनगणना संबंधी आंकड़ों को इकट्ठा कर रहे हैं।
6: हमारे 3,680 HLBs हैं और हर किसी को अराउंड 150 एवरेज, यानी कि अराउंड 600-800 की पॉपुलेशन हर किसी एन्यूमरेटर को करना है। और ये काम जैसे वो अपने स्कूल की ड्यूटी करते हैं उसके बाद के 1 घंटे में करना है। और जो ये कैलकुलेशन हुई है इसकी साइंटिफिक टूल्स के हिसाब से, उसके हिसाब से एक परिवार के कराने में लगभग 10 मिनट लग रहे हैं। तो अगर एन्यूमरेटर डेली 1 से 1.5 घंटा भी देंगे तो अपने वो दैनिक लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं।
2: सर्वोच्च न्यायालय 1 जुलाई से कक्षा 9 के छात्रों के लिए 3 भाषाओं का अध्ययन अनिवार्य करने के CBSE के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर अगले सप्ताह सुनवाई करेगा। वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी ने मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली और न्यायमूर्ति जॉय माल्य बागची और विपुल एम पंचोली की पीठ के समक्ष ये मामला उठाया। उन्होंने कहा कि ये जनहित याचिका छात्रों, शिक्षकों और अभिभावकों द्वारा दायर की गई है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने कक्षा 12 की बोर्ड परीक्षा की उत्तर पुस्तिका की स्कैन कॉपी प्राप्त करने की अंतिम तिथि 1 दिन बढ़ाकर 24 मई कर दी है। CBSE ने यह निर्णय वेबसाइट पर अत्यधिक आवेदन और तकनीकी व्यवधान के बाद लिया है, जिससे वेबसाइट बाधित हो रही थी। बोर्ड ने बताया कि विद्यार्थियों को उत्तर पुस्तिका की स्कैन कॉपी मिलने के बाद पुनर्मूल्यांकन का आवेदन करने के लिए 2 दिन का समय मिलेगा। प्रदेश भर में भीषण गर्मी और लू का प्रकोप जारी है। मौसम विभाग के अनुसार कल बांदा लगातार 6ठे दिन प्रदेश में सबसे गर्म जिला रहा, जहां अधिकतम तापमान 46.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इसी तरह प्रयागराज में तापमान 46 डिग्री सेल्सियस, झांसी और उरई में 45.4 डिग्री सेल्सियस और आगरा में तापमान 45.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम विभाग ने अगले 3 दिनों के लिए प्रदेश के पूर्वी और पश्चिमी क्षेत्रों में दिन में लू चलने की चेतावनी जारी की है। लखनऊ मौसम विज्ञान केंद्र के वरिष्ठ वैज्ञानिक अतुल कुमार सिंह ने बताया कि इस दौरान कई इलाकों में तेज धूल भरी हवाएं चलने की भी आशंका है।
7: प्रदेश में आगामी एक सप्ताह के दौरान कुछ स्थानों पर उष्ण लहर से भीषण उष्ण लहर के साथ कहीं कहीं उष्ण लहर से होने की संभावना के दृष्टिगत 24 मई तक प्रदेश के दक्षिणी भागों के लिए रेड अलर्ट, जबकि उसके बाद 26 मई तक के लिए ऑरेंज वार्निंग जारी की गई है भीषण लू और उष्ण रात्रि के लिए, और लोगों से दी गई सलाह के अनुसार सावधानी बरतने की अपेक्षा की जाती है।
2: देश में कल वरिष्ठ नागरिकों के लिए जीवन मोबाइल एप्लीकेशन शुरू किया गया। इसका उद्देश्य वरिष्ठ नागरिकों के लिए सहायता प्रणालियों को मजबूत करना है। जीवन ऐप सरकारी कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी, आपातकालीन सहायता और वरिष्ठ नागरिक आवास की जानकारी उपलब्ध कराएगा। अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 51,000 से अधिक युवाओं को वितरित करेंगे नियुक्ति पत्र। राजधानी लखनऊ सहित देश भर के 47 स्थानों पर होगा रोजगार मेले का आयोजन। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने देवरिया में 655 करोड़ रुपए लागत की 19 परियोजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास। कहा, अच्छी सड़कें, फ्लाईओवर और मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर ही रोजगार और निवेश की नींव। जनगणना 2027 के पहले चरण के तहत प्रदेश भर में मकानों की गणना शुरू। पहले दिन 1,35,00,000 से अधिक मकानों की हुई गिनती। और प्रदेश भर में भीषण गर्मी और लू का प्रकोप जारी। मौसम विभाग ने प्रदेश के पूर्वी व पश्चिमी क्षेत्रों में अगले 3 दिनों तक और लू चलने की जारी की चेतावनी। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का यह बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला समाचार अब से थोड़ी देर बाद सुबह 8 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
0: तब तक लड़ना मत छोड़ो जब तक अपनी तय की हुई जगह तक न पहुँच जाओ। यही अद्वितीय तुम हो। जिंदगी में एक लक्ष्य रखो, लगातार ज्ञान प्राप्त करो, कड़ी मेहनत करो और महान जीवन को प्राप्त करने के लिए दृढ़ रहो। APJ अब्दुल कलाम। असंतुष्ट व्यक्ति के लिए सभी कर्तव्य नीरस होते हैं। उसे तो कभी भी किसी वस्तु से संतोष नहीं होता, फलस्वरूप उसका जीवन असफल होना स्वाभाविक है। स्वामी विवेकानंद।
8: एक सैनिक के रूप में आपको हमेशा 3 आदर्शों को संजोना और उन पर जीना होगा, सच्चाई, कर्तव्य और बलिदान। जो सिपाही हमेशा अपने देश के प्रति वफादार रहता है, जो हमेशा अपना जीवन बलिदान करने को तैयार रहता है, वो अजेय है। अगर तुम भी अजेय बनना चाहते हो तो इन 3 आदर्शों को अपने हृदय में समाहित कर लो। सुभाष चंद्र बोस।
9: मीडियम वेव 314.47 मीटर अर्थात 954 किलो हर्ट्ज पर आकाशवाणी का यह नजीबाबाद केंद्र है। सवेरे के 7:31 हो रहे हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम सूरज के साथ साथ।

0: कार्यक्रम सूरज के साथ साथ सुनने वाले सभी श्रोताओं को हमारा नमस्कार। कार्यक्रम लेकर हाजिर हूं मैं, आपकी दोस्त रेणु राजपूत। रुकावट आती है सफलता की राहों में, यह कौन नहीं जानता, फिर भी वह मंजिल पा ही लेते हैं जो कि कभी हार नहीं मानते। इसी सकारात्मक विचार के साथ हम शुरू करते हैं आज का अपना कार्यक्रम सूरज के साथ साथ। श्रोताओं, आज है विश्व कछुआ दिवस, जो कि 23 मई को यानी आज ही के दिन मनाया जाता है। यह दिवस कछुओं के संरक्षण के महत्व को रेखांकित करने के लिए प्रतिवर्ष 23 मई को विश्व कछुआ दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिवस को मनाने की शुरुआत वर्ष 2000 में वैश्विक स्तर पर कछुओं के संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाने और उन्हें बढ़ावा देने के लिए की गई थी। श्रोताओं, कछुआ एक सरीसृप है जो अपनी पसलियों से विकसित एक उपास्थिल कवच द्वारा पहचाने जाते हैं, जो कि एक सुरक्षा कवच का निर्माण करता है। अन्य कवचधारी प्राणियों के विपरीत कछुआ अपने कवच को न तो त्याग सकता है और न ही उससे बाहर आ सकता है, क्योंकि वह उनके कंकाल का अभिन्न अंग है। श्रोताओं, कछुए स्वतः स्वच्छ जल और समुद्री दोनों जल में रह लेते हैं। कछुए आमतौर पर शर्मीले और एकांत प्रिय होते हैं और भूमि पर घोंसले का निर्माण कर अपने अंडों को सुरक्षित रखते हैं। श्रोताओं, कछुए असमतापी प्रजाति है, अर्थात वे उष्ण और शीत वातावरण के बीच विचरण करके अपने शरीर के तापमान को नियंत्रित कर सकते हैं। अन्य बाह्यतापी जीवों जैसे कि कीट, मत्स्य और उभयचरों की तरह इनमें धीमी चयापचय क्रिया होती है तथा ये भोजन या जल के बिना भी लंबे समय तक जीवित रह सकते हैं। श्रोताओं, भारत में मीठे जल के कछुओं की 30 प्रजातियां पाई जाती हैं, जिनमें से 26 को वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची के अंतर्गत सूचीबद्ध किया गया है। श्रोताओं, कछुओं को कई गंभीर खतरों का सामना करना पड़ता है, जिससे आवासीय क्षेत्र का विनाश, जलवायु परिवर्तन, प्लास्टिक प्रदूषण, अवैध वन्यजीव व्यापार शामिल है। और कछुओं के संरक्षण के लिए उत्तर प्रदेश में 30 किलोमीटर के कछुआ अभयारण्य में कछुआ संरक्षण केंद्र स्थापित करके कछुओं के संरक्षण में अग्रणी भूमिका निभा रहा है। वन्य विभाग अवैध व्यापार पर सक्रिय रूप से अंकुश लगाता है।
1: अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए लीजिए आकाशवाणी का सहयोग और दीजिए उसे बुलंदियों के पंख।
2: आपका बिजनेस लोकल है या राष्ट्रीय, आकाशवाणी देती है उपभोक्ताओं तक पहुंचने का हर विकल्प।
1: और अब तो आप घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे कर सकते हैं आकाशवाणी के किसी भी केंद्र के लिए विज्ञापनों की बुकिंग।
2: आकाशवाणी के विभिन्न चैनलों पर विज्ञापन देना सुलभ और सस्ता।
1: बुकिंग है तो संपर्क करें 8700001-4242 पर।
2: 8700001-4242।
3: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। 9 दशक यानी 90 साल, जब टीवी का पर्दा कोरा था और इंटरनेट एक सपना, तब धुन की इस लहर ने भारत के हर घर में अपनी जगह बनाई। क्रिकेट के रोमांचक आंखों देखे हाल से लेकर मन की बात के संवाद तक,
4: आसमान में सिर उठाकर घने बादलों को चीरकर रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है।
3: आकाशवाणी सिर्फ एक रेडियो स्टेशन नहीं, हर भारतीय के संघर्ष और सफलता का साक्षी है। सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का सबसे भरोसेमंद साथी। आज भी पहाड़ों की चोटी से लेकर सुदूर गांव तक हमारी आवाज ही आपकी पहचान है।

श्रोताओं, एक बार फिर से आपका स्वागत है कार्यक्रम सूरज के साथ साथ में। श्रोताओं, अब जानकारी इंटरनेशनल डे टू एंड ऑब्स्टेट्रिक्स फेस्टुला के बारे में। यह हर साल 23 मई को मनाया जाता है। इसका उद्देश्य प्रसव के दौरान महिलाओं को होने वाली इस गंभीर और कष्टदायक चोट यानी फिस्टुला के बारे में जागरूकता बढ़ाना है और इसे पूरी तरह समाप्त करने के लिए वैश्विक कदम उठाना है। श्रोताओं, फिस्टुला एक बहुत ही गंभीर शारीरिक चोट है जो कि महिलाओं को प्रसव के दौरान होती है। जब किसी महिला का प्रसव बहुत लंबा यानी कई दिनों तक बाधित होता है और उसे समय पर आपातकालीन चिकित्सा सुविधा जैसे कि सिजेरियन की सुविधा नहीं मिल पाती, तो बच्चे के सिर के दबाव के कारण मां के आंतरिक ऊतक नष्ट हो जाते हैं। इसके परिणाम स्वरूप जन्म नलिका और ब्लैडर और रेक्टम के बीच में फिस्टुला बन जाता है, जिससे कि महिला के शरीर से लगातार रिसाव होने लगता है, जिसके कारण त्वचा में लगातार संक्रमण और बदबू के कारण महिला को बहुत ही शारीरिक और मानसिक पीड़ा होती है। फिस्टुला के कारण महिला को परिवार और समाज से अलग कर दिया जाता है और उन्हें इस मानसिक तनाव का सामना करना पड़ता है। फिस्टुला के मुख्य कारण है गरीब क्षेत्रों में उचित पोषण और स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी का होना तथा बाल विवाह और कम उम्र में मां बनना। ऐसी स्थिति में इस बीमारी की संभावना बहुत बढ़ जाती है। श्रोताओं, फिस्टुला एक लाइलाज बीमारी नहीं है, बल्कि सर्जरी के माध्यम से इसे पूरी तरह ठीक किया जा सकता है और इससे बचने का सबसे अच्छा उपाय है प्रसव पूर्व देखभाल, आपातकालीन प्रसूति सेवाओं तक पहुंच और बाल विवाह पर रोक लगाना। श्रोताओं, संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 20 दिसंबर 2012 को एक प्रस्ताव पारित किया गया था। इसके बाद 23 मई 2013 को पहली बार जागरूक करने के लिए यह आंतरिक दिवस मनाया गया। इंटरनेशनल डे टू एंड ऑब्स्टेट्रिक्स फिस्टुला दिवस मनाने का मुख्य उद्देश्य दुनिया भर में जागरूकता फैलाना और इससे प्रभावित महिलाओं को समाज में वापस उनका सम्मान दिलाना है और सन 2030 तक इस बीमारी को पूरी तरह से समाप्त करना है।

श्रोताओं, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे इस कार्यक्रम सूरज के साथ साथ में। तो श्रोताओं, जैसा कि हम सभी जानते ही हैं कि हमारे बच्चों की गर्मियों की छुट्टियां शुरू हो गई हैं। तो श्रोताओं, गर्मियों की छुट्टियों को मनोरंजक और ज्ञानवर्धक दोनों बनाने के लिए सबसे अच्छा है कि आप मौज मस्ती और शिक्षा का संतुलन बनाएं और बच्चों को किसी नई भाषा की कोडिंग को सीखने, विज्ञान से जुड़े प्रोजेक्ट बनाने और ऐतिहासिक स्थानों की यात्रा करने या किताबों की रोमांचक दुनिया में ले जाने जैसे उपाय में हम कर सकते हैं अपनी गर्मियों की छुट्टियों में। साथ ही गर्मियों की छुट्टियों में ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए कुकिंग, ग्राफिक डिजाइनिंग आदि सीखें। साथ ही गर्मियों की छुट्टियों में गाइडिंग, पेंटिंग, स्केचिंग या फोटोग्राफी करें, जो कि स्कूल कॉलेज के दिनों में करने का समय नहीं मिलता। श्रोताओं, अब बात करते हैं गर्मी से राहत पाने की। तो श्रोताओं, गर्मियों से राहत पाने के लिए थोड़ा सा पहाड़ी भ्रमण भी जरूरी है। तो हम अपने बच्चों को पहाड़ी क्षेत्रों में, जिससे कि इस चिलचिलाती धूप से राहत भी मिलेगी और प्रकृति के नज़ारे भी, तो इन नज़ारों को का मज़ा भी लेंगे। इन नज़ारों का मज़ा लेने के लिए उत्तराखंड, हिमाचल या कश्मीर की वादियों में जा सकते हैं, जहां जाने से प्राकृतिक सौंदर्य का लुत्फ तो उठाते ही हैं, साथ ही हमें मानसिक शांति भी मिलती है। और अब चलते हैं अपनी किताबों की दुनिया की ओर। आप इस समय का सदुपयोग करते हुए अपने कोर्स की किताबें और मोटिवेशनल या बायोग्राफी की किताबें पढ़ने की आदत डालें। श्रोताओं, बच्चों का सामाजिक होना भी जरूरी है, तो बच्चों को सामाजिक कार्य भी अवश्य कराएं, क्योंकि सामाजिक सेवा से बच्चों में मदद करने की भावना विकसित होती है। श्रोताओं, अंत में हम तो यही कहेंगे कि छुट्टियां केवल आराम करने का समय नहीं होती, बल्कि यह एक ऐसा अवसर होती है जो खुद को बेहतर बनाने और नई चीजें सीखने और अपने शौक पूरे करने का समय होता है, जिससे कि छुट्टियों का आनंद भी बना रहे और कुछ नया सीख भी लें।

0: अपने व्यापार को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाना चाहते हैं?
1: तो इंतजार किस बात का,
0: अभी बुक कराइए अपना विज्ञापन आकाशवाणी नजीबाबाद के संग।
1: विज्ञापन बुकिंग कराने के लिए आज ही संपर्क करें।
0: हमारा मोबाइल नंबर है 8865845809।
1: नंबर एक बार फिर सुन लीजिए 8865845809।
0: और हमारा ईमेल आईडी है
1: akashvaninajibabad@gmail.com।
0: तो देर किस बात की, उठाइए अपना फोन और बुक कराइए अपना विज्ञापन
1: आकाशवाणी नजीबाबाद के संग।
2: श्रोताओं, अब चलते हैं हम कार्यक्रम के अगले पड़ाव की ओर और अब हम बात करते हैं 23 मई को हुए इतिहास में प्रमुख आविष्कार अंतरिक्ष एवं पर्वतारोहण से जुड़ी महत्वपूर्ण उपलब्धियों और देश विदेश में घटी घटनाओं के बारे में। सन 1785 में बेंजामिन फ्रैंकलिन ने बाइफोकल चश्मे के आविष्कार की घोषणा की थी, जिससे कि दूर और पास दोनों साफ देखने में मदद मिलती है। यह आविष्कार हुआ था आज ही के दिन यानी 23 मई को 1785 में। बचेंद्री पाल दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट को फतह करने वाली पहली महिला बनी थी सन 1984 में, आज ही के दिन यानी 23 मई को। सन 2010 में सुप्रीम कोर्ट ने भारत में बिना शादी किए महिला और पुरुष के साथ यानी लिव इन रिलेशन में रहने को अपराध की श्रेणी से बाहर माना था। 23 मई सन 2008 में भारत ने स्वदेशी तकनीकी से निर्मित सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल पृथ्वी 2 का सफल परीक्षण किया था। और अब जानकारी आज ही के दिन जन्म लेने वाले प्रसिद्ध व्यक्ति के बारे में। जयपुर की पूर्व महारानी और प्रसिद्ध शिक्षाविद महारानी गायत्री देवी का जन्म 23 मई 1919 को हुआ था। सन 1951 में चीन ने एक स्वायत्त क्षेत्र के रूप में तिब्बत पर कब्जा कर लिया था 23 मई 1951 में। और श्रोताओं, अब चलते हैं समाचार पत्रों की ओर, तो देखते हैं आज के समाचार पत्रों में क्या है विशेष। हिंदुस्तान टाइम्स लिखता है, महिला जाबाजों ने एवरेस्ट फतह किया। आईटीबीपी और

BSF की महिला पर्वतारोहण टीमों ने अलग अलग अभियानों के तहत दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट फतह कर इतिहास रच दिया। इस खबर को प्रमुखता दी है हिंदुस्तान टाइम्स ने। दैनिक जागरण लिखता है, उत्तर पुस्तिकाओं को स्कैन कॉपी लेने के लिए आवेदन तिथि को 24 मई किया गया। सीबीएसई ने 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों को बड़ी राहत देते हुए उत्तर पुस्तिका की स्कैन कॉपी लेने की अंतिम तारीख एक दिन के लिए और बढ़ा दी है। पहले अंतिम तिथि 23 मई थी, लेकिन अब विद्यार्थी 24 मई तक इसके लिए आवेदन कर सकेंगे।

उदित नारायण के गाए इस गीत के साथ ही कार्यक्रम सूरज के साथ साथ अब यहीं पर संपन्न करने की अपनी दोस्त रेनू राजपूत को दीजिए इजाजत। नमस्कार।

0: साथ साथ।
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सूरज के साथ साथ, आकाशवाणी का ये नजीबाबाद केंद्र है। सवेरे के 8 बजने को है, अब से कुछ ही क्षणों में आप सुनेंगे समाचार।
2: अतिरिक्त बिजली पैदा हुई तो बिजली ग्रिड को बेचकर पैसे भी कमा सकते हैं, तो बैठे क्यों हो, अभी रजिस्टर करो pmsuryaghar.gov.in पर।
3: हर घर सूर्य घर।
4: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 19वें रोजगार मेले में 51,000 से अधिक चयनित युवाओं को नियुक्ति पत्र वितरित करेंगे। रिजर्व बैंक ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए केंद्र सरकार को 2,86,000 करोड़ रुपए के अधिशेष हस्तांतरण को मंजूरी दी। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो भारत की 4 दिन की यात्रा पर कोलकाता पहुंचे, आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात करेंगे। मौसम विभाग ने आज पूर्वी मध्य प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश और विदर्भ में भीषण लू का रेड अलर्ट जारी किया। भारतीय सेना के अधिकारी मेजर अभिलाषा बराक को प्रतिष्ठित संयुक्त राष्ट्र सैन्य लैंगिक समानता समर्थक पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया। और आईपीएल क्रिकेट में मेजबान सनराइजर्स हैदराबाद ने रॉयल चैलेंजर्स बंगलुरु को 55 रन से हराया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 19वें रोजगार मेले में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से 51,000 से अधिक युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। इनमें विभिन्न सरकारी विभागों और संगठनों में नव चयनित युवा शामिल हैं। श्री मोदी इस अवसर पर उपस्थित लोगों को संबोधित भी करेंगे। ये रोजगार मेला देश में 47 स्थानों पर आयोजित किया जाएगा। हमारे संवाददाता ने बताया है कि रोजगार मेला प्रधानमंत्री मोदी की रोजगार सृजन को सर्वोच्च प्राथमिकता देने की प्रतिबद्धता दर्शाता है।
5: यह रोजगार मेला रोजगार सृजन के प्रति प्रधानमंत्री की प्रतिबद्धता को पूरा करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। यह रोजगार मेला युवाओं को सशक्त बनाने और राष्ट्र निर्माण में उनकी भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए उन्हें सार्थक अवसर प्रदान कर रहा है। देश भर में अब तक आयोजित 18 रोजगार मेलों के माध्यम से 12 लाख नियुक्ति पत्र जारी किए जा चुके हैं। यह 19वां रोजगार मेला देश भर में 47 स्थानों पर आयोजित किया जाएगा। इसमें देश के सभी हिस्सों से चयनित नव नियुक्त उम्मीदवार केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों और भागों में नियुक्त होंगे, जिसमें रेल मंत्रालय, गृह मंत्रालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय और उच्च शिक्षा विभाग सहित अन्य विभाग शामिल हैं। यह रोजगार मेला देश के विकास में युवाओं की भागीदारी को मजबूत करने की दिशा में एक और बड़ा कदम है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
4: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलाइट्स ने आतंकवाद से निपटने के लिए बहुपक्षीय प्रयासों को मजबूत करने और संयुक्त राष्ट्र ढांचे में अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद पर व्यापक सम्मेलन को शीघ्र अंतिम रूप देने का आह्वान किया है। दोनों नेताओं ने आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने की नीति को दोहराते हुए दोहरे मापदंड, राज्य प्रायोजित आतंकवाद और किसी भी परिस्थिति में आतंकवादी कृत्यों के औचित्य को अस्वीकार कर दिया। नई दिल्ली में कल दोनों नेताओं के बीच हुई वार्ता के बाद दोनों देशों ने संयुक्त राष्ट्र और यूरोपीय संघ द्वारा नामित सभी आतंकियों और आतंकी संगठनों के खिलाफ मजबूत और समन्वित कार्रवाई का आग्रह किया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि

0: साइप्रस के साथ भारत के रक्षा सहयोग में वृद्धि हुई है।
1: आज हमने साइबर सिक्योरिटी, मैरिटाइम सिक्योरिटी और काउंटर टेररिज्म सहयोग को भी और मजबूत करने का निर्णय लिया है। इतना ही नहीं, हम इंडो पैसिफिक ओशन इनिशिएटिव और इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर जैसे महत्वपूर्ण पहलों से कनेक्टिविटी सुनिश्चित करने के लिए भी साथ मिलकर काम करेंगे।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि सेमीकंडक्टर, अंतरिक्ष और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में भारत और साइप्रस के बीच सहयोग की अपार संभावनाएं हैं। राष्ट्रपति ने कहा कि भारत और साइप्रस की मित्रता साझा मूल्यों और एकजुटता पर आधारित है।
2: 1962 में हमारे राजनयिक संबंधों की स्थापित के बाद से ही भारत और साइप्रस एक दूसरे के साथ खड़े हुए हैं। हमारे जानसीपुर की मित्रता अब से सम्मान, साझा मूल्यों, विश्वास और एकजुटता पर आधारित है। आने वाले वर्षों में भारत साइप्रस के साथ अपने व्यापक सहयोग को आगे बढ़ाने के लिए उत्सुक है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपके मार्गदर्शन और नेतृत्व के साथ हमारी मित्रता निरंतर सुदृढ़ होती जाएगी।
0: राष्ट्रपति मुर्मू ने कल राष्ट्रपति भवन में साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलाइट्स के सम्मान में राजकीय भोज का आयोजन किया। भारतीय रिजर्व बैंक ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए केंद्र सरकार को रिकॉर्ड 2,86,000 करोड़ रुपए का अधिशेष हस्तांतरित करने की मंजूरी दे दी है। ये रिजर्व बैंक के अब तक के सबसे अधिक लाभांश में से एक है। ये निर्णय कल मुंबई में रिजर्व बैंक के गवर्नर संजय मल्होत्रा की अध्यक्षता में बैंक के केंद्रीय निदेशक मंडल की 623वीं बैठक में लिया गया। बैंक ने कहा कि वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान उसकी सकल आय पिछले वर्ष की तुलना में 26.42% बढ़ी। बैंक का व्यय 27.6% बढ़ा। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने कहा है कि देश में पेट्रोल और डीजल की पर्याप्त उपलब्धता है और आपूर्ति स्थिर बनी हुई है। सोशल मीडिया पोस्ट में मंत्रालय ने नागरिकों को घबराहट में खरीदारी न करने और केवल आवश्यकता के अनुसार ईंधन खरीदने की सलाह दी। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में आज 91 पैसे प्रति लीटर तक की वृद्धि हुई। पिछले 10 दिन में तेल के मूल्यों में ये तीसरी वृद्धि है। दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 87 पैसे बढ़कर 99.51 रुपए प्रति लीटर हो गई है, जबकि डीजल के मूल्य 91 पैसे बढ़कर 92.49 रुपए प्रति लीटर हो गया है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @YARNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।
3: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा, अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
4: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
3: अब तक इस योजना से 8,85,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
0: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो 4 दिन की भारत यात्रा पर कोलकाता पहुंच गए हैं। श्री रूबियो की पहली भारत यात्रा है। ये यात्रा अमेरिका और भारत के बीच आपसी संबंधों को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इसका मुख्य उद्देश्य व्यापार, रक्षा, ऊर्जा सुरक्षा, प्रौद्योगिकी और हिंद प्रशांत रणनीति में सहयोग का विस्तार करना है। भारत में अमेरिका के राजदूत सर्जियो गोर ने हवाई अड्डे पर श्री रूबियो का स्वागत किया। श्री रूबियो आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भेंट करेंगे। श्री रूबियो विदेश मंत्री एस जयशंकर से भी बातचीत करेंगे। उनका अमरीकी दूतावास में होने वाले अमरीकी स्वतंत्रता दिवस समारोह में शामिल होने का भी कार्यक्रम है। श्री रूबियो मंगलवार को नई दिल्ली में क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में हिस्सा लेंगे। बैठक में ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री पेनी वोंग और जापान के विदेश मंत्री तोशी मित्सो मोतेगी भी शामिल होंगे। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि क्वाड बैठक में स्वतंत्र और मुक्त हिंद प्रशांत क्षेत्र के दृष्टिकोण के अनुरूप जारी पहलों की प्रगति की समीक्षा की जाएगी। बैठक में आपसी हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर चर्चा होने की संभावना है। भारतीय सेना के अधिकारी मेजर अभिलाषा बराक को वर्ष 2025 के संयुक्त राष्ट्र सैन्य लैंगिक समानता समर्थक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। मेजर अभिलाषा बराक लेबनान में संयुक्त राष्ट्र शांति रक्षा मिशन में कार्यरत हैं।
5: मेजर अभिलाषा बराक वर्तमान में लेबनान में संयुक्त राष्ट्र अंतरिम बल में महिला सहभागिता दल की कमांडर के रूप में भारतीय बटालियन में कार्यरत हैं। मेजर बराक भारतीय सेना की पहली महिला लड़ाकू हेलीकॉप्टर पायलट भी हैं। मेजर बराक ये पुरस्कार प्राप्त करने वाली तीसरी भारतीय शांति रक्षक बन गई हैं। इससे पहले मेजर सुमन गवानी को 2019 में और मेजर राधिका सेन को 2023 में ये पुरस्कार मिला था। वर्ष 2016 में स्थापित ये पुरस्कार प्रतिवर्ष संयुक्त राष्ट्र शांति अभियानों में तैनात बलों के कमांडरों और मिशन प्रमुखों के नामांकनों में से चुना जाता है। भारत संयुक्त राष्ट्र शांति अभियानों में सैनिकों और पुलिस कर्मियों का सबसे बड़ा योगदान देने वाले देशों में शामिल है। समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार।
0: भारत तिब्बत सीमा पुलिस के महिला दल ने एवरेस्ट शिखर पर सफलतापूर्वक चढ़ाई की है। ये उनका पहला अभियान था। 14 सदस्यीय दल में 11 महिला पर्वतारोही और 3 तकनीकी तथा सहायक कर्मचारी शामिल थे। एक रिपोर्ट।
6: इस दल ने 21 मई को नेपाल की ओर से दक्षिण कोल मार्ग से विश्व की सबसे ऊंची चोटी पर सफलतापूर्वक चढ़ाई की। अभियान को 19 अप्रैल को बल के मुख्यालय से रवाना किया गया था। स्वच्छ हिमालय ग्लेशियर बचाओ अभियान के अंतर्गत दल ने पर्यावरण जागरूकता गतिविधियां भी चलाई और एवरेस्ट क्षेत्र से गैर बायोडिग्रेडेबल कचरा एकत्र किया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इस सफलता पर दल को बधाई दी है। श्री शाह ने कहा कि दुर्गम भूभाग और कठोर परिस्थितियों में यह उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल करके टीम ने बल के आदर्श वाक्य राष्ट्र सर्वोपरि को कायम रखा है। इस उपलब्धि के साथ बल ने अब तक 232 पर्वतारोहण अभियान पूरे कर लिए हैं। इनमें एवरेस्ट पर 5 सफल चढ़ाई शामिल हैं। बल ने एवरेस्ट, कंचनजंगा, मकालू, लोहतसे, धौलागिरी और मनालसू सहित दुनिया की 8000 मीटर से अधिक ऊंची 6 चोटियों पर भी चढ़ाई की है। समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
0: मध्य प्रदेश सरकार ने समान नागरिक संहिता UCC की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कल सचिवालय में वेबसाइट ucc.mp.gov.in का शुभारंभ किया। इस पोर्टल के माध्यम से नागरिक, राजनीतिक दल और सामाजिक संगठन प्रस्तावित यूसीसी पर अपने विचार और सुझाव साझा कर सकते हैं। प्रतिक्रिया देने की अंतिम तिथि इस वर्ष 15 जून है। आईपीएल क्रिकेट में सनराइजर्स हैदराबाद ने रॉयल चैलेंजर्स बंगलुरु को 55 रन से हरा दिया। हैदराबाद ने कल टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए सनराइजर्स हैदराबाद ने निर्धारित 20 ओवर में 4 विकेट पर 255 रन बनाए। जवाब में रॉयल चैलेंजर्स बंगलुरु की टीम निर्धारित 20 ओवर में 4 विकेट पर केवल 200 रन ही बना सकी। प्रतियोगिता में आज लखनऊ सुपर जायंट्स का सामना पंजाब किंग्स से होगा। ये मैच लखनऊ में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। मौसम विभाग ने आज पूर्वी मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और विदर्भ में भीषण लू का रेड अलर्ट जारी किया है। विभाग ने अगले 5 दिन में दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, राजस्थान, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड और उड़ीसा में भी लू की चेतावनी जारी की है। आकाशवाणी समाचार के विशेष कार्यक्रम पीपल्स पद्म की अगली कड़ी में हम प्रसिद्ध वायलिन वादिका एन राजम से बातचीत करेंगे। उन्हें प्रतिष्ठित पद्म विभूषण से सम्मानित किया जाएगा। ये कार्यक्रम आज सुबह 9:10 पर आकाशवाणी के FM गोल्ड चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। इसे न्यूज ऑन AIR ऐप और न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर भी सुना जा सकता है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं फरहत नाज।
7: धन्यवाद कनकलता। आरक्षण को लेकर सर्वोच्च न्यायालय का बयान अनेक अखबारों की पहली सुर्खी है। अमर उजाला ने न्यायालय के हवाले से लिखा है, माता पिता में से कोई भी IAS अफसर तो बच्चों को आरक्षण क्यों। राजस्थान पत्रिका की ऐसी ही सुर्खी है, जनसत्ता लिखता है, मलाईदार तबके के आरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने उठाया सवाल। नीट पेपर लीक केस में एक और शिक्षिका की गिरफ्तारी हिंदुस्तान के पहले पृष्ठ पर है। राजस्थान पत्रिका की सुर्खी है, तीसरी मनीषा फिजिक्स की एक्सपर्ट हुई गिरफ्तार। दैनिक भास्कर लिखता है, अब तक 11 गिरफ्तार, इनमें से 7 आरोपी महाराष्ट्र के। दैनिक जागरण ने शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का बयान दिया है, नीट UG की दोबारा होने वाली परीक्षा को कराएंगे 100% त्रुटि रहित। नवभारत टाइम्स ने त्रिषा शर्मा मामले में लिखा है, पोस्टमार्टम फिर होगा, त्रिषा का 10 दिन से फरार पति हिरासत में। दैनिक ट्रिब्यून ने कुश्ती महासंघ द्वारा पहलवान विनेश फोगाट को घरेलू प्रतियोगिताओं में भाग लेने के अयोग्य घोषित करने पर हाईकोर्ट की कड़ी फटकार की खबर देते हुए लिखा है, प्रतिशोध की भावना से काम ना करें WFI। लोकसत्ता की हेडलाइन है, आसमानी आग में झुलसा देश, पारा 47 डिग्री के पार। जनसत्ता संपादकीय में लिखता है, इस बात पर भी गंभीरता से विचार किया जाना चाहिए कि आखिर मैदानों के साथ अब पहाड़ भी क्यों तपने लगे हैं। मौसम विज्ञानियों का मानना है कि पहाड़ी क्षेत्रों में वनों की अंधाधुंध कटाई, अवैज्ञानिक तरीके से खनन और पर्यटक वाहनों के बढ़ते दबाव से स्थानीय मौसम चक्र में बदलाव हो रहा है। ऐसे में अगर अब भी हम नहीं संभले तो निकट भविष्य में इसका परिणाम भयावह हो सकता है। एनसीईआरटी की आठवीं की किताब में न्यायपालिका पर विवादित चैप्टर मामले में सुप्रीम कोर्ट ने 3 शिक्षाविदों को ब्लैकलिस्ट से हटाया, दैनिक भास्कर में है।
0: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 19वें रोजगार मेले में 51,000 से अधिक चयनित युवाओं को नियुक्ति पत्र वितरित करेंगे। रिजर्व बैंक ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए केंद्र सरकार को 2,86,000 करोड़ रूपए के अधिशेष हस्तांतरण को मंजूरी दी। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो भारत की 4 दिन की यात्रा पर कोलकाता पहुंचे, आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात करेंगे। मौसम विभाग ने आज पूर्वी मध्य प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश और विदर्भ में भीषण लू का रेड अलर्ट जारी किया और आईपीएल क्रिकेट में मेजबान सनराइजर्स हैदराबाद ने रॉयल चैलेंजर्स बंगलुरु को 55 रन से हराया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
8: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम सुनील वर्मा। द हेडलाइंस। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी टू डिस्ट्रीब्यूट ओवर 51,000 अपॉइंटमेंट लेटर्स टू न्यू रिक्रूट्स इन वेरियस गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स टुडे। आरबीआई प्रूव्स रिकॉर्ड सरप्लस ट्रांसफर of 2.86 lakh crore rupees to central government for financial year 2025-26. US Secretary of State Marco Rubio arrives in Kolkata on his maiden four-day visit to India to call on Prime Minister Modi in New Delhi this afternoon. IMD issues red alert for severe heat waves over East Madhya Pradesh, East Uttar Pradesh and Vidarbha today. Indian Army Officer Major Abhilasha Barak honored with prestigious UN Military Gender Advocate of the Year Award 2025. And in IPL cricket, hosts Sunrisers Hyderabad beat Royal Challengers Bengaluru by 55 runs. Prime Minister Narendra Modi will distribute more than 51,000 appointment letters to newly recruited youth in various government departments and organizations at the 19th Rozgar Mela through video conferencing today. Mr. Modi will also address the gathering on the occasion. Our correspondent reports that the Rozgar Mela is a key initiative reflecting the Prime Minister's commitment to giving top priority to employment generation and turning this vision into reality.
9: Rozgar Mela is a step towards fulfillment of the Prime Minister's commitment to accord highest priority to employment generation. The Rozgar Mela is playing a significant role in providing meaningful opportunities to the youth for their empowerment and participation in nation building. Since its inception, around 12 lakh recruitment letters have been issued through 18 Rozgar Melas organized across the country. The 19th Rozgar Mela will be held at 47 locations across the country. The newly recruited candidates selected from across the country will be joining various ministries and departments, including Ministries of Railways, Home Affairs, Health and Family Welfare, and Department of Higher Education, among others. With Dipendra Kumar, Rishu Jaiswal, Akashwani News, Delhi.
8: The Reserve Bank of India, RBI, has approved a transfer of record 2.86 lakh crore rupees as surplus to the central government for the financial year 2025-26, marking one of the highest dividend payouts by the central bank. The decision was taken during the 623rd meeting of the Central Board of Directors of the RBI, chaired by Governor Sanjay Malhotra in Mumbai yesterday. The RBI, in its release, said its gross income increased by 26.42% during financial year 2025-26 compared to the previous year, while expenditure before risk provisions rose 27.60%. U.S. Secretary of State Marco Rubio arrived in Kolkata today on a four-day visit to India. This is his maiden visit to India, marking an important step in strengthening bilateral ties between Washington and New Delhi. The visit is expected to focus on expanding cooperation in trade, defense, energy security, technology and Indo-Pacific strategy. U.S. Ambassador to India Sergio Gore received Mr. Rubio at the airport. The U.S. Department of State said during his stay in Kolkata, Mr. Rubio will visit Mother House.

0: time. And finally, in a bold push to boost biodiversity and climate resilience, the Andhra Pradesh Forest Department has launched preparations to produce 25 million seed balls in June during the monsoon season, writes the statesman. And with that, it's back to you, Sunil.
1: Thank you, Nina. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi to distribute over 51,000 appointment letters to new recruits in various government departments today. RBI approves record surplus transfer of 2.86 lakh crore rupees to central government for financial year 2025-26. US Secretary of State Marco Rubio arrives in Kolkata on his maiden four-day visit to India to call on Prime Minister Modi in New Delhi this afternoon. IMD issues red alert for severe heat wave over East Madhya Pradesh, East Uttar Pradesh and Vidarbha today. Indian Army Officer Major Abhilasha Barak honored with prestigious UN Military Gender Advocate of the Year Award 2025. And in IPL cricket, host Sunrisers Hyderabad beat Royal Challengers Bengaluru by 55 runs. And with that, we end the morning news. Have a nice day.
2: Akashvani se pesh hai khabarnama. आदाब खबरनामे के साथ मैं जमीर रजवी सबसे पहले इस वक्त की सुर्खियां वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज मुख्तलिफ सरकारी महकमों में नए भर्ती किए गए अफराद को 51,000 से ज्यादा तकरीरनामे तकसीम करेंगे आरबीआई ने माली साल 2025-26 के लिए 2.86 लाख करोड़ रुपए की इजाफी रिकॉर्ड रकम मरकजी हुकूमत को सौंपने की इजाजत दी है अमरीकी वजीर खारजा मार्को रूबियो भारत के अपने पहले चार रोजा दौरे पर कोलकाता पहुंच गए हैं वो आज दोपहर नई दिल्ली में वजीर आजम नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे भारतीय महकमे मौसमियात ने मशरकी मध्य प्रदेश मशरकी उत्तर प्रदेश और विदर्भ में आज शदीद गर्मी के पेश नजर रेड अलर्ट जारी किया है भारतीय फौज के अफसर मेजर अभिलाषा बराक को साल 2025 का अक्वामे मुत्तहदा की फौजी सिन्फी वकील के अवार्ड से नवाजा गया है और आईपीएल क्रिकेट में मेजबान सनराइजर्स हैदराबाद ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को 55 रन से हरा दिया अब खबरें तफसील से वजीर आजम नरेंद्र मोदी 19वें रोजगार मेले के तहत आज मुख्तलिफ सरकारी महकमों और इदारों में 9 तकररशुदा 51,000 से ज्यादा नौजवानों में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए तकरीरनामे तकसीम करेंगे जनाब मोदी इस मौके पर तकरीब से खिताब भी करेंगे हमारे नामा निगार ने खबर दी है कि रोजगार मेला वजीर आजम नरेंद्र मोदी की जानिब से रोजगार पैदा करने को दी जा रही तरजीह की अक्कासी करता है और इस विजन को हकीकत में बदल रहा है तफसील हमारे नामा निगार से
3: रोजगार मेला वजीर आजम मोदी की जानिब से रोजगार पैदा करने को तरजीह देने की जानिब एक अहम कदम है जो नौजवानों को बामाना मौके फराहम करने और मुल्क की तामीर में अहम रोल अदा कर रहा है अपने आगाज के बाद से मुल्क भर में मुनक़िद हुए 18 रोजगार मेलों में अब तक 12 लाख तकरीरनामे जारी किए जा चुके हैं 19वां रोजगार मेला मुल्क भर के 47 मकामात पर होगा मुल्क भर से तकरीरी पाने वाले उम्मीदवार मुख्तलिफ वजारतों और महकमों में मुलाजमत हासिल करेंगे जिनमें रेलवेज दाखिला सेहत व खानदानी बहबूद और आला तालीम समेत दीगर महकमे और वजारतें शामिल हैं नई दिल्ली से दीपेंद्र कुमार की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं मुजीब अख्तर
2: भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने रिकॉर्ड 2.86 लाख करोड़ रुपए की रकम इजाफी असासे के तौर पर मरकजी हुकूमत को मुंतकिल करने की इजाजत दी है ये रकम माली साल 2025-26 के लिए थी जो आरबीआई की जानिब से मुनाफे की तकसीम डिविडेंड की अब तक की सबसे बड़ी रकम है ये फैसला आरबीआई के डायरेक्टर्स के मरकजी बोर्ड की 623वीं मीटिंग में लिया गया जिसकी सदारत कल मुंबई में गवर्नर संजय मल्होत्रा ने की आरबीआई ने अपने बयान में कहा है कि उसने मजमुई आमदनी में पिछले साल के मुकाबले इस साल यानी 2025-26 के दौरान 26.42% इजाफा हुआ है जबकि अखराजात में जिनमें इम्कानी खतरात शामिल नहीं हैं 27.60% का इजाफा हुआ है अमरीकी वजीर खारजा मार्को रूबियो अपने चार रोजा भारत दौरे पर आज कोलकाता पहुंच गए हैं ये भारत का उनका पहला दौरा होगा जो वॉशिंगटन और नई दिल्ली के दरमियान दो तरफा ताल्लुकात को मुस्तहकम करने की जानिब अहम कदम साबित होगा जनाब रूबियो के दौरे के दौरान तिजारत दिफा तवानाई की यकीनी फराहमी टेक्नोलॉजी और भारत बहरुल काहिल हिकमत अमली जैसे शोबों में तआवुन को वसत देने पर तवज्जो मरकूज किए जाने का इम्कान है भारत में अमरीकी सफीर सर्गियो गोर ने हवाई अड्डे पर जनाब रूबियो का इस्तकबाल किया अमरीकी वजारत खारजा ने कहा है कि कोलकाता में अपने क्याम के दौरान जनाब रूबियो मदर हाउस सेंट टेरेसा मिशनरीज ऑफ चैरिटी और शहर के

0: चिल्ड्रन होम का दौरा करेंगे। सोशल मीडिया पोस्ट में जनाब गौर ने बताया कि जनाब रूबियो दिन में नई दिल्ली का सफर करेंगे और वजीर आजम नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे। अमरीकी सफीर के मुताबिक ये दौरा बुनियादी तौर पर दिफाई शराकत दारियों, जदीद टेक्नोलॉजीज, तिजारती ताल्लुकात और क्वाड फ्रेमवर्क के तहत इश्तराक जैसे अहम स्ट्रेटेजिक शोबों में तआवुन को मुस्तहकम करने पर तवज्जो मरकूज करेगा। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि भारत और कुब्रुस के दरमियान सेमीकंडक्टर्स, खला और मसनूई जहानत जैसे नए और उभरते हुए शोबों में तआवुन की बेपनाह सलाहियत मौजूद है। राष्ट्रपति भवन में कल कुब्रुस के अपने हमनसब निकोलस क्रिस्टोडोलाइड्स और उनके वफद को दिए गए इशाइये के बाद सदर जमहूरिया इजहार ख्याल कर रही थीं। उन्होंने कहा कि टेक्नोलॉजी और जिद्दत तराजी दो तरफा ताल्लुकात के मुस्तकबिल के मैदानों के तौर पर उभरे हैं।
1: 1962 में हमारे राजनयिक संबंधों की स्थापित के बाद से ही भारत और साइप्रस एक दूसरे के साथ खड़े हुए हैं। हमारे जानसीपुर की मित्रता अब से सम्मान, साझा मूल्य, विश्वास और एकजुटता पर आधारित है। आने वाले वर्षों में भारत साइप्रस के साथ अपने व्यापक सहयोग को आगे बढ़ाने के लिए उत्सुक है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपके मार्गदर्शन और नेतृत्व के साथ हमारी मित्रता निरंतर सुदृढ़ होती जाएगी।
0: सदर जमहूरिया ने सरहद पार दहशतगर्दी और कसीर जहती इदारों में इस्लाहात जैसे अहम मामलों पर कुब्रुस की हिमायत की सताइश की। सदर जमहूरिया ने कुब्रुस की सालमियत, इत्तेहाद और इलाकाई यकजहती के तहत भारत की गैर मुतजलजल हिमायत का एयादा भी किया। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि दो तरफा ताल्लुकात को स्ट्रेटेजिक साझेदारी में बदल दिया गया है, जो भारत और कुब्रुस के दरमियान बढ़ती सूझबूझ, गहराई और बाहमी एतमाद की अक्कासी करते हैं। ये खबरनामा आकाशवाणी से नशर किया जा रहा है। भारतीय फौज के अफसर मेजर अभिलाषा बराक को जो लेबनान में अक्वामे मुत्तहदा के क्याम अमन मिशन में खिदमात अंजाम दे रही हैं, अक्वामे मुत्तहदा के 2025 के एक बावकार अवार्ड के लिए मुंतखब किया गया है। उन्हें यह अवार्ड इस साल की फौजी सिन्फी वकील के तौर पर दिया जा रहा है। मेजर बराक, जो फिलहाल एक भारतीय बटालियन में लेबनान में अक्वामे मुत्तहदा की उबूरी फोर्स में खवातीन की सरगर्मी वाली टीम की कमांडर UNIFIL के तौर पर खिदमात अंजाम दे रही हैं, भारतीय फौज के जंगजू हेलीकॉप्टर की पहली खातून पायलट भी हैं। ये अवार्ड हासिल करने वाली मेजर बराक तीसरी भारतीय क्याम अमन फौजी हैं जिन्हें ये एजाज हासिल हुआ है। इससे पहले मेजर सुमन गवानी को साल 2019 में जनूबी सूडान में अक्वाम मुत्तहदा मिशन के तहत खिदमात अंजाम देने पर इस अवार्ड से नवाजा गया था और मेजर राधिका सेन को साल 2023 में इस अवार्ड से नवाजा गया था। उन्हें यह अवार्ड जमहूरिया कांगो में अक्वामे मुत्तहदा के इस्तेकाम मिशन के तहत उनकी खिदमात पर दिया गया था। भारत तिब्बत सरहद पुलिस ITBP ने माउंट एवरेस्ट पहुंचने वाली अभी तक की पहली ऐसी बैन अल-अक़वामी कोहे पैमा मुहिम मुकम्मल कर ली है जो सिर्फ खवातीन पर मुश्तमिल है। ये कामयाबी इस फौज की कोहे पैमाई के मैदान में तारीखी संग मील है। पेश है एक रिपोर्ट। ITBP की एक 14 रकनी कोह पैमा टीम ने, जो 11 खवातीन, 3 तकनीकी माहरीन और मददगार अमले पर मुश्तमिल है, इस माह की 21 तारीख को दुनिया की सबसे ऊंची चोटी सर कर ली। इस मुहिम को 19 अप्रैल को ITBP के सदर दफ्तर से रवाना किया गया था। अपनी हिमालय साफ करो और ग्लेशियर को महफूज करो मुहिम के तहत टीम ने माहौलियाती बेदारी की सरगर्मियां अंजाम दी और एवरेस्ट खित्ते से नॉन बायोडिग्रेडेबल कचरे को इकट्ठा किया। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने टीम को माउंट एवरेस्ट पर कौमी झंडा फहराने पर मुबारकबाद दी। जनाब शाह ने कहा कि इस बुलंदतरीन इलाके और सख्त आबोहवा के हालात में यह काबिल तहसीन कारनामा अंजाम देकर टीम ने ITBP के खुद से पहले मुल्क के मोटो की शान बरकरार रखी है। जिज्ञासा पांडे की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं असलम बेग।
2: आज पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 91 पैसे फी लीटर इजाफा हुआ है। 10 दिन से भी कम मुद्दत में ये तीसरा इजाफा है। दिल्ली में पेट्रोल की कीमत में 87 पैसे का इजाफा हुआ है और ये 99 रुपये 51 पैसे फी लीटर हो गया है, जबकि डीजल की कीमत में 91 पैसे का इजाफा होकर ये 92 रुपये 49 पैसे लीटर हो गया है। ये इजाफा ईरान तनाज़े और आमनाए हुरमुज में रुकावट के सबब खाम तेल की आलमी कीमतों में अचानक इजाफे के दौरान हुआ है। इस दौरान पेट्रोलियम और कुदरती गैस की वजारत ने बताया कि भारत में पेट्रोल और डीजल भरपूर मकदार में दस्तियाब है और पूरे मुल्क में सप्लाई भी मुस्तहकम है। सोशल मीडिया पोस्ट में वजारत ने शहरियों को मशवरा दिया है कि वो घबराहट में खरीदारी ना करें और ईंधन की खरीदारी अपनी असल जरूरत के मुताबिक

0: करें। वजारत ने मजीद कहा कि जिम्मेदारी के साथ की जाने वाली खपत और आवाम के तआवुन से इस यकीन दहानी में मदद मिलेगी कि ज्यादा मांग वाले इन दिनों के दौरान ईंधन सभी के लिए दस्तियाब है। मध्य प्रदेश सरकार ने यकसा सिविल कोड UCC की जानिब एक अहम कदम उठाया है। वजीर आला मोहन यादव ने कल सेक्रेटेरिएट में UCC.MP.GOV.IN वेबसाइट का आगाज किया। पोर्टल के जरिए सियासी पार्टियां और समाजी तंजीमें मुजवजा UCC मामले पर अपने ख्यालात और मशवरे पेश कर सकती हैं। रद्दमल दाखिल करने की आखिरी तारीख इस साल 15 जून मुकर्रर की गई है। सानवी तालीम के मरकजी बोर्ड CBSE ने 12वीं जमात के बोर्ड इम्तिहानात के जवाबी पर्चों की स्कैंड फोटोकॉपी हासिल करने की आखिरी तारीख में एक दिन की तौसी करते हुए इसे 24 मई तक बढ़ा दिया है। इससे पहले इसकी आखिरी तारीख आज तक थी। CBSE ने कहा कि पिछले कुछ दिनों से इसकी वेबसाइट पर गैर मुतवक्क ट्रैफिक और गैर मजाज इंटरफेस के मुतादित कोशिशों से खलल अंदाजी के खदशे के बाद ये फैसला लिया गया। बोर्ड ने इत्तला दी है कि जवाबी पर्चों की स्कैन कॉपी हासिल करने के बाद पर्चों की दोबारा जांच के लिए तलबा को 2 दिन मिलेंगे। भारतीय महकमा मौसमियात ने मशरकी मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश और विदर्भ में आज शदीद गर्मी से मुतालिक रेड अलर्ट जारी किया है। महकमा मौसमियात ने दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, राजस्थान, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड और ओडिशा में अगले 5 दिन के दौरान सख्त गर्मी से मुतालिक ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया है। इसी तरह के मौसमी हालात अगले 5 दिन तक साहिली आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, मगरबी मध्य प्रदेश और मगरबी उत्तर प्रदेश में भी रहेंगे। गंगाई मगरबी बंगाल, तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल में आज मौसम के गर्म और मरतूब रहने का इम्कान है। इस दौरान भारतीय महकमा मौसमियात ने अरुणाचल प्रदेश, आसाम, मेघालय, जैली हिमालय, मगरबी बंगाल और सिक्किम में कल तक शदीद बारिश की पेशगोई की है। मध्य प्रदेश में शदीद गर्मी के हालात जारी हैं। रियासत के 42 जिलों में भारतीय महकमा मौसमियात ने शदीद गर्मी से मुतालिक वार्निंग जारी की है। कई खित्तों में दर्जे हरारत के औसत से ज्यादा रहने पर रेड, ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी किए गए हैं। तफसील हमारे नामा निगार से।
1: मध्य प्रदेश शदीद गर्मी की गिरफ्त में है। रियासत में टीकमगढ़, छतरपुर और पन्ना सबसे ज्यादा मुतासिर हैं। इन तीनों मकामात पर रेड अलर्ट जारी किया गया है। ग्वालियर और 20 दिगर जिलों में शदीद गर्मी से मुतालिक रेड अलर्ट जारी किया गया है, जबकि ग्वालियर और दिगर 20 जिलों में ऑरेंज अलर्ट और भोपाल, इंदौर समेत दिगर 16 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है। मध्य प्रदेश के 10 जिलों में दर्ज हरारत कल 44 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा रहा। गर्मी की यह शदीद लहर 31 मई तक जारी रहेगी। इसका मतलब यह है कि मध्य प्रदेश के लोगों को अगले 10 दिन तक गर्मी से कोई राहत नहीं मिलेगी। भोपाल से अभिनव गोयल की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं मुजीब अख्तर।
0: ट्रंप इंतजामिया ने अमेरिका के ग्रीन कार्ड तरीक़ेकार में बड़ी तब्दीली की है। उन्होंने कहा है कि उन गैर मुल्की शहरियों को जो मुस्तकिल सकूनत चाहते हैं इसकी दरख्वास्त देने के लिए अपने वतन वापस जाना होगा। इस कदम से पहले अमरीकी शहरियत और इमिग्रेशन खिदमात USCIS ने एक पॉलिसी तैयार की थी जिसमें अमेरिका में रहने वाले सिर्फ उन लोगों को मंजूरी दी जाएगी जो गैर मामूली हालात से दो चार हैं। अमरीकी नेशनल इंटेलिजेंस की डायरेक्टर तुलसी गबार्ड ने अपने ओहदे से इस्तीफे का ऐलान किया है। मोहतरमा गबार्ड ने कहा है कि वो अपने शौहर अब्राहम विलियम्स में हड्डियों के कैंसर की तशखीस के बाद अपने ओहदे से इस्तीफा दे रही हैं, जो 30 जून से नाफिज हो जाएगा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को लिखे इस्तीफे में मोहतरमा गबार्ड ने कहा कि वो गुज़िश्ता 1.5 साल से नेशनल इंटेलिजेंस के डायरेक्टर के ओहदे पर फराइज अंजाम देने का मौका फराहम करने पर बेहद मशकूर हैं। IPL क्रिकेट में कल रात हैदराबाद में खेले गए मैच में सनराइजर्स हैदराबाद ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को 55 रन से शिकस्त दी। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए सनराइजर्स हैदराबाद ने मुकर्रर 20 ओवर्स में 4 विकेट के नुकसान पर शानदार 255 रन बनाए। आज लखनऊ में शाम 7:30 बजे लखनऊ जायंट्स का मुकाबला पंजाब किंग्स से होगा। ये थी खबरें और अब अखबारात के आईने के साथ हैं मुजीब अख्तर।
1: शुक्रिया जमीर। राजधानी दिल्ली से शाये होने वाले आज के अखबारात ने अलग अलग खबरों को शह सुर्खी बनाया है। रोजनामा हिंदुस्तान एक्सप्रेस ने वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी और कुब्रुस के सदर क्रिस्टोविड लराइस के दरमियान हुई बातचीत पर तवज्जो मरकूज की है। बातचीत के बाद एक मुश्तरका बयान में जनाब मोदी ने कहा कि भारत और कुब्रुस ने ताल्लुकात को स्ट्रेटेजिक शराकतदारी की सतह तक ले जाने का फैसला किया है और सरमायाकारी को दोगुना करने का हदफ मुकर्रर किया है। रोजाना प्रताप और इंकलाब ने वजारत खारजा के हवाले से खबर दी है कि क्वाड ममालिक के वजारत खारजा की मीटिंग 26 तारीख को मुनक़िद होगी जिसमें शिरकत के लिए अमरीका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के वजारत खारजा भारत आएंगे। इस मौके पर भारत बहरुल काहिल खित्ते और बाहमी मफादात के बैनुल अक़वामी मसायल पर गौर व खौज किया जाएगा। राज्यसभा की 26 सीटों पर इंतखाबात 18 जून को होंगे। इस खबर को रोजनामा इंकलाब ने खसूसी तौर पर शाया किया है। इस बात का ऐलान इंतखाबी कमीशन ने कल किया।
0: और आखिर में खास खास खबरें एक बार फिर। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज मुख्तलिफ सरकारी महकमों में नए भर्ती किए गए अफराद को 51,000 से ज्यादा तकरीरनामे तकसीम करेंगे। RBI ने माली साल 2025-26 के लिए 2.86 लाख करोड़ रुपए की रिकॉर्ड इजाफी रकम मरकजी हुकूमत को सौंपने की इजाजत दी है। अमरीकी वजीर खारजा मार्को रूबियो भारत के अपने पहले 4 रोजा दौरे पर कोलकाता पहुंच गए हैं। वो आज दोपहर नई दिल्ली में वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे। भारतीय महकमा मौसमियात ने मशरकी मध्य प्रदेश, मशरकी उत्तर प्रदेश और विदर्भ में आज शदीद गर्मी के पेश नजर रेड अलर्ट जारी किया है। भारतीय फौज के अफसर मेजर अभिलाषा बराक को साल 2025 का अक्वामे मुत्तहदा की फौजी सिंफी वकील के अवार्ड से नवाजा गया है। इसके साथ ही आकाशवाणी से खबरनामा खत्म हुआ।
2: मीडियम वेव 314.47 मीटर अर्थात 954 किलोहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का यह नजीबाबाद केंद्र है। सुबह के 8:45 हो रहे हैं। प्रस्तुत है फिल्मी गीतों का कार्यक्रम गोल्डन हिट्स। कार्यक्रम का ये गीत हमने लिया है फिल्म बलमा से। गायक स्वर हैं आशा भोंसले और कुमार शानू के। शब्द रचना की है समीर ने और धुन तैयार की है नदीम श्रवण ने। तुम्हारे आने से जिंदगी में रौनक है, तुम्हारे आने से जिंदगी में रौनक है, तुम्हारी बातों से दिल को सुकून है। तुम साथ हो तो हर पल खूबसूरत है, तुम दूर होकर भी मेरे सबसे करीब हो। ये मोहब्बत है या दुआ समझ नहीं आता, बस इतना जानता हूँ तुम्हारे बिना कुछ भी अधूरा सा लगता है।

0: घर घर तक पहुंचाएं आपका विज्ञापन, आकाशवाणी और दूरदर्शन के विभिन्न चैनल। देश के किसी भी कोने में विज्ञापन देने के लिए प्रसार भारती के मार्केटिंग प्रभाग से संपर्क कीजिए।
1: ही रांझा, ये है फिल्म का नाम और इस गीत को गाया है लता मंगेशकर। और लता मंगेशकर ने शब्द रचना है कैफी आजमी की और धुन तैयार की है मदन मोहन ने। कुछ रिश्ते शब्दों से परे होते हैं, जहां बातें कम और एहसास ज्यादा होते हैं। नाम लेने की जरूरत नहीं होती, दिल जानता है किसका साथ अपना है। दूर होकर भी जो पास हो वही रिश्ता सबसे खास होता है। कोई वादा नहीं, कोई शर्त नहीं, फिर भी भरोसा अटूट होता है। वक्त चाहे बदल जाए, मंजिलें चाहे कहीं भी ले जाएं, पर कुछ रिश्ते दिल में हमेशा ज्यों के त्यों बने रहते हैं। ऐसे रिश्ते मिलते नहीं, बस एक बार मिल जाएं तो जिंदगी खूबसूरत बन जाती है।

0: कम समय में ज्यादा मुनाफा, बस एक क्लिक में, कमाल है।
1: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए, RBI कहता है
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से इस समय आप सुन रहे हैं फिल्मी गीतों का कार्यक्रम गोल्डन हिट्स। आइए अब सुनते हैं फिल्म इतिहास का ये गीत, जिसे स्वर दिया है हरिहरन और अनुराधा पौडवाल ने, संगीत दिया है दिलीप सेन ने और गीत को लिखा है कसमीर ने।

आकाशवाणी एट 90 90 साल की आवाज दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल पुरानी यादें नया जोश है देश का रेडियो अब भी बॉस है आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

नगीना, ये है फिल्म का नाम जिसका गीत अब हम आपको सुनवाने जा रहे हैं। गायक स्वर है मोहम्मद अजीज और अनुराधा पौडवाल के, संगीत दिया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने और शब्द रचना की है आनंद बख्शी ने।

कार्यक्रम के अंत में पेश है फिल्म तेरे नाम का एक गीत, जिसे आवाज दी है उदित नारायण और अलका याग्निक ने, संगीत दिया है हिमेश रेशमिया ने और गीत को लिखा है समीर ने।

अलका याग्निक और उदित नारायण के गाए इस गीत के साथ ही कार्यक्रम गोल्डन हिट्स अब यहीं पर संपन्न होता है। आकाशवाणी का ये नजीबाबाद केंद्र है। सवेरे के 9:15 होने को हैं। अब से कुछ ही क्षणों में आप सुनेंगे जिले की हलचल।

0: जिले की हलचल। आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है जिले की हलचल। आज सुनिए इटावा और हमीरपुर जिलों की हलचल। पहले सुनते हैं इटावा जिले की हलचल। आलेख और स्वर है अमित कुमार तिवारी का।
1: इटावा के बुद्धा पार्क में पर्यटन एवं संस्कृति विभाग के द्वारा 14 करोड़ लागत से होने वाले 11 परियोजनाओं का शिलान्यास एवं लोकार्पण किया गया। इनको जल्द ही शुरू कर दिया जाएगा। इस मौके पर मुख्य अतिथि के तौर पर पहुंचे पर्यटन एवं संस्कृति विभाग कैबिनेट मंत्री जयवीर सिंह ने कहा कि महिला आरक्षण बिल सरकार के द्वारा महिलाओं को हक दिलाने के लिए लाया जा रहा है। इससे महिलाएं समाज में अपना हक प्राप्त करेंगी। उत्तर प्रदेश सरकार में होमगार्ड, नागरिक सुरक्षा मंत्री व जनपद इटावा के प्रभारी मंत्री धर्मवीर प्रजापति ने संसद में नारी शक्ति से जुड़े विधेयकों के विरोध को लेकर कांग्रेस सपा पर तीखा हमला बोला। धर्मवीर प्रजापति ने कहा कि 16 व 17 अप्रैल को संसद में पेश महत्वपूर्ण विधेयकों का विरोध कर विपक्ष ने महिलाओं की आकांक्षाओं को ठेस पहुँचाई है। कड़ी मेहनत और लगन से हर सपना पूरा हो सकता है, इसे साबित किया है जसवंत नगर की प्रख्या भदौरिया ने। यूपी बोर्ड हाईस्कूल परीक्षा 2026 में प्रदेश में 5वां स्थान हासिल कर प्रख्या ने जिले का नाम रोशन किया है। प्रख्या भदौरिया ने 600 में से 582 अंक प्राप्त कर 97% के साथ यूपी टॉप 5 में जगह बनाई। प्रख्या ने बताया कि वह अपने लक्ष्य को प्राप्त करके IPS बनना चाहती है और देश की सेवा करना चाहती है। इटावा पुलिस लाइन ग्राउंड में दीक्षांत समारोह आयोजित हुआ। मुख्य अतिथि DIG हरीश चंद्र ने 483 महिला आरक्षी रिक्रू की पासिंग आउट परेड की सलामी ली। कार्यक्रम में ऑनलाइन माध्यम से DGP और मुख्यमंत्री का उद्बोधन सुना गया। SSP ब्रजेश कुमार श्रीवास्तव ने महिला आरक्षियों की लगन और ट्रेनिंग की तारीफ करते हुए बधाई दी। DIG ने उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाली महिला आरक्षियों को प्रमाण पत्र और शील्ड देकर सम्मानित किया और ईमानदारी कार्यकुशलता के साथ ड्यूटी करने का मंत्र दिया। इटावा में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन से 1,05,000 से ज्यादा महिलाएं जुड़ चुकी हैं। उपायुक्त विनय सिंह ने बताया कि जिले में 9,849 स्वयं सहायता समूह एक्टिव हैं। महिलाओं के स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए पंचनद ब्रांड की स्थापना की गई है। इसके तहत 18 सरस शॉप और 4 कैंटीन खोली गई है जिन्हें समूह की महिलाएं ही चला रही है। पंचनद ब्रांड के अचार, साबुन, फिनाइल, मसाले का उत्पादन हो रहा है। इटावा के विकास भवन में शिक्षा मित्र सम्मान समारोह और बड़े हुए मानदेय वितरण कार्यक्रम का आयोजन हुआ। सदर विधायक सरता भदौरिया की अध्यक्षता में हुए कार्यक्रम में CM योगी आदित्यनाथ के संबोधन का लाइव प्रसारण दिखा गया। विधायक ने बताया कि शिक्षा मित्रों का मानदेय 1 अप्रैल 2026 से 10,000 से बढ़ाकर 18,000 कर दिया गया है। जिलाधिकारी शुभ्रांत कुमार शुक्ल ने बताया कि 1,286 शिक्षा मित्रों के खाते में बढ़ा हुआ मानदेय भेज दिया गया है। कार्यक्रम में 10 शिक्षा मित्रों को प्रतीकात्मक चेक भी दिए गए। इटावा में यमुना की सफाई पर DFO विकास नायक ने सख्त रुख खाया है। जिला गंगा समिति की बैठक में उन्होंने STP चालू न होने पर नाराजगी जताई और कहा कि 8-9 महीने से सिर्फ आश्वासन मिल रहे हैं, गंदा पानी सीधे यमुना में बह रहा है। उन्होंने आउटलेट का सैंपल जांचने और यमुना के किनारे सफाई के निर्देश दिए। वृक्षारोपण में इमली के ज्यादा पौधे लगाने और ट्री गार्ड से सुरक्षा करने को कहा। भरतना में सभी MRF सेंटर चालू कराने के आदेश भी दिए हैं। इटावा डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन ने प्रधानमंत्री के ऊर्जा बचत अपील को समर्थन दिया। डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन ने सभी वकीलों से कहा कि कार की जगह बाइक, ई रिक्शा या साइकिल से कचहरी आए। दूर से आने वाले वकील कारपूल बनाकर चले। DBA अध्यक्ष एडवोकेट राजेश कुमार त्रिपाठी ने कहा कि सभी वकील अब ऊर्जा बचत से देश की प्रगति में योगदान देंगे।
2: प्रधानमंत्री मोदी जी की अपील का समर्थन करते हुए समस्त वकील जितना अधिक से अधिक डीजल बचाकर राष्ट्र हित में अपना योगदान दें। हम सब वकील अधिक से अधिक डीजल और पेट्रोल की बचत करेंगे। जो लोग कार से आते हैं वो लोग कारपूल बनाकर चलें अथवा इलेक्ट्रिक वाहन का इस्तेमाल करें। जितना हो सके ऊर्जा को बचाने का प्रयास करें।
1: इटावा में राज्य मंत्री कैलाश सिंह राजपूत ने प्रेरणा सभागार में 102 अंशकालिक अनुदेशकों को सम्मानित किया और 10 को बढ़े हुए मानदेय के चेक दिए। उन्होंने बताया कि प्रदेश सरकार ने अनुदेशकों का मानदेय 9,000 से बढ़ाकर 17,000 रुपए कर दिया है। इससे पहले शिक्षा मित्रों का मानदेय भी बढ़ाया गया था। राज्य मंत्री ने CM योगी को बधाई दी। लखनऊ के कार्यक्रम का लाइव प्रसारण भी देखा गया। इटावा में नशे के खिलाफ पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली। ऑपरेशन दहन के तहत पुलिस ने 206 केसों में बरामद 5,774 किलो से ज्यादा मादक पदार्थ नष्ट कर दिए। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ब्रजेश कुमार श्रीवास्तव ने कहा कि जिला स्तरीय ड्रग डिस्पोजल कमेटी ने कानपुर देहात के इंसिनेटर प्लांट में वीडियोग्राफी के साथ पूरे मादक पदार्थ जलाए।
3: उत्तर प्रदेश शासन ने पुलिस मुख्यालय के निर्देशानुसार चलाए जा रहे ऑपरेशन दहन के अंतर्गत जनपद इटावा पुलिस द्वारा बड़ी उल्लेखनीय कार्रवाई की गई है। जिला स्तरीय ड्रग डिस्पोजल कमेटी की देखरेख में जनपद इटावा के विभिन्न थानों पर NDPS एक्ट के अंतर्गत पंजीकृत कुल 206 अभियोगों में बरामद लगभग 5,775 किलोग्राम मादक पदार्थों का नियमानुसार विनष्टीकरण कराया गया। विनष्ट किए गए मादक पदार्थों में अवैध गांजा, डोडा, स्मैक, चरस एवं अफीम तथा अन्य नशीले पदार्थ शामिल हैं।
1: इंसानों के साथ अब जानवर भी भीषण गर्मी से बेहाल हैं। इटावा सफारी पार्क में वन्य जीवों को राहत देने के लिए खास इंतजाम किए गए हैं। बब्बर शेरों के नाइट सेल में खस की चटाई और डेजर्ट कूलर लगे हैं। ब्रीडिंग सेंटर में शेरनी और सांपों के लिए एयर कंडीशनर चल रहे हैं। उप निदेशक विनय सिंह ने बताया कि क्रॉल और सफारी क्षेत्र में फॉगर सावर से तापमान कम किया जा रहा है।
4: सफारी पार्क में जो भी वन्य जीव है उनको गर्मी और लू से बचाने के लिए एक विशेष इंतजाम किए जाते हैं, जिनके अंतर्गत जो हमारे हाउस हैं उनमें खस की चटाई लगाना, इसके साथ कूलर को लगाते हैं, बाहर जो क्रॉल एरिया है इसमें फॉगर लगे हुए हैं, तो इनके चलाने से जो हवा में नमी है वो बनी रहती है और टेम्परेचर मेंटेन रहता है।
1: गर्मी को देखते हुए सफारी का समय भी बदला गया है। सुबह 6:30 बजे से पर्यटकों के लिए सफारी खुल रही है ताकि दोपहर की धूप से बचा जा सके।
0: इटावा जिले की हलचल के बाद आइए सुनते हैं हमीरपुर जिले की हलचल। आलेख और स्वर है शिव कुमार सेठी का।
5: जनपद हमीरपुर में पिछले 3-4 दिनों में गर्मी ने 6 वर्षों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। 19 मई को 46.2 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड किया गया। लू के थपेड़ों से जनजीवन प्रभावित हो रहा है, साथ ही उल्टी दस्त डायरिया के मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। तेज गर्मी के कारण सड़कों में सन्नाटा देखने को मिल रहा है। चिकित्सकों ने लोगों से अपील की है कि दोपहर के वक्त बाहर न निकलें, बाहर का खाना न खाएं, घर का बना ताजा भोजन ही करें। सत्तू, बेल का शरबत, आम का पना, नारियल पानी और फलों का जूस आदि का सेवन अधिक करें। मौसम विभाग के अनुसार आगे आने वाले दिनों में और अधिक गर्मी बढ़ने की संभावना है। जनपद हमीरपुर के सर्राफा एसोसिएशन के व्यापारियों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील का समर्थन करते हुए कहा कि गोल्डन मोडर्नाइजेशन स्कीम को आकर्षक बनाया जाए, घरों में रखी पुरानी ज्वेलरी को रिसाइकिल कर नई ज्वेलरी बनवाने के लिए लोगों को प्रोत्साहित किया जाए। व्यापारियों ने सुझाव दिया है कि अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए बुलियन व बार की खरीद को कुछ समय के लिए टाला जाए। व्यापारियों ने अपने इस सुझाव से संबंधित ज्ञापन भी जिलाधिकारी को सौंपा। स्मार्ट प्रीपेड मीटरों को फिर से पोस्टपेड करने के आदेश का जनपद हमीरपुर के लोगों ने स्वागत किया है। इस फैसले से उपभोक्ता खुश हैं क्योंकि अब आए दिन बिजली कटने की समस्या से उपभोक्ताओं को जूझना नहीं पड़ेगा। अधीक्षण अभियंता ज्ञान चंद यादव कहते हैं कि सभी प्रीपेड स्मार्ट मीटरों को पोस्टपेड करने का सरकार ने निर्णय लिया है। करीब 1 सप्ताह में ही सभी मीटरों को पोस्टपेड में बदल दिया जाएगा। उपभोक्ताओं को उनके मोबाइल पर हर माह का बिल भेज दिया जाएगा। उन्होंने सभी उपभोक्ताओं से अपील की है कि जिनका भी मोबाइल नंबर पंजीकृत नहीं है वह मीटर अकाउंट में अपना नंबर जरूर पंजीकृत करा लें। जनपद हमीरपुर के संचालित 1500 आंगनबाड़ी केंद्रों में अब नौनिहालों, गर्भवती व धात्री महिलाओं को पका हुआ ताजा व पौष्टिक आहार परोसने का सरकार ने निर्णय किया है, जिससे अब केंद्रों में सूखा पुष्टाहार वितरित नहीं किया जाएगा बल्कि नौनिहालों व प्रसूताओं को आटे बेसन का हलवा, बर्फी तथा स्वादिष्ट खिचड़ी खिलाई जाएगी। इससे 6 माह से 3 माह के सामान्य बच्चों को शिशु अमृत व शिशु आहार के तहत आटा बेसन का मीठा हलवा और 3 माह से 6 वर्ष के बच्चों को बाल पुष्टकर के रूप में आटा बेसन की मीठी बर्फी और नमकीन दलिया व मूंग की दाल की खिचड़ी दी जाएगी। सरकार का यह निर्णय बच्चों और गर्भवती महिलाओं को सेहत में सुधार की ओर एक अच्छा कदम माना जा रहा है। इससे राशन की कालाबाजारी आदि में भी रोक लगेगी। जिला कार्यक्रम अधिकारी इंद्रपाल सिंह ने बताया कि सरकार द्वारा किए गए निर्णय के अनुसार सभी केंद्रों में बच्चों, गर्भवती धात्री महिलाओं तथा कुपोषित बच्चों को ताजा व पौष्टिक पोषाहार खिलाया जाएगा। अब सूखा दाल, दलिया, पंजीरी, रिफाइंड आदि का वितरण नहीं होगा। इस माह सभी ब्लॉकों में नेफेड द्वारा राशन सामग्री की आपूर्ति की जाएगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विगत दिनों बेसिक शिक्षा विभाग के लखनऊ में आयोजित कार्यक्रम में कहा कि सप्ताह में एक दिन शिक्षक और बच्चे स्वच्छता अभियान चलाएं। उन्होंने कहा कि विद्यालयों में बच्चे श्रमदान करते हुए दिखाई दें तो इसे नकारात्मक रूप से प्रस्तुत न किया जाए। इस संबंध में बेसिक शिक्षा अधिकारी ने बताया कि गर्मियों के अवकाश के बाद स्कूल खुलने पर सप्ताह में एक दिन निर्धारित किया जाएगा। उस दिन सभी शिक्षक और बच्चे स्वच्छता अभियान चलाएंगे। उन्होंने कहा कि इससे बच्चों में अनुशासन और स्वच्छता की भावना विकसित होगी। अभियान के तहत जो स्कूल स्वच्छ और सुंदर होंगे उन स्कूलों के शिक्षकों और बच्चों को सम्मानित किया जाएगा।
0: ये था आकाशवाणी लखनऊ के क्षेत्रीय समाचार एकांश द्वारा प्रस्तुत जिले की हलचल का आज का अंक।
6: जिले की हलचल में आज आपने सुनी इटावा और हमीरपुर।

0: जिलों की खबरें। हम आकाशवाणी
1: मीडियम वेव 314.47 मीटर अर्थात 954 किलो हर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये नजीबाबाद केंद्र है। सवेरे के 9:25 हो रहे हैं। प्रस्तुत है लोकगीतों का कार्यक्रम धरती गाती है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत आज हम आपको सुनवा रहे हैं राजकुमार और साथियों की गाई रागनी।

आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से इस समय आप सुन रहे हैं लोकगीतों का कार्यक्रम धरती गाती है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत आप सुन रहे हैं राजकुमार और साथियों की गाई रागनी।

राजकुमार और साथियों की गाई इस रागनी के साथ ही कार्यक्रम धरती गाती है अब यहीं पर संपन्न होता है। आकाशवाणी का ये नजीबाबाद केंद्र है। सवेरे के 9:50 हो रहे हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम बात आसपास की। वाचन स्वर एवं संकलन अलीना अंजुम का है।

0: नमस्कार श्रोताओं, मैं अलीना अंजुम आप सभी का आकाशवाणी नजीबाबाद के इस खास कार्यक्रम बात आसपास की में स्वागत करती हूं। देश की सबसे बड़ी मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट एक बार फिर चर्चाओं में है। परीक्षा खत्म होने के बाद रद्द हो चुकी है। नीट यानी नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट देश की सबसे बड़ी मेडिकल प्रवेश परीक्षा मानी जाती है। इसी परीक्षा के जरिए छात्रों को MBBS, BDS और ऐसे कई अन्य मेडिकल कोर्सेज में दाखिला मिलता है। हर साल लाखों छात्र डॉक्टर बनने का सपना लेकर इस परीक्षा में शामिल होते हैं। परीक्षा का आयोजन नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी NTA द्वारा किया जाता है, लेकिन पिछले कुछ वर्षों से ये परीक्षा लगातार विवादों में आ रही है। साल 2024 में पेपर लीक और ग्रेस मार्क्स को लेकर देश भर में विरोध प्रदर्शन हुए। मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा, जहां परीक्षा रद्द करने की मांग उठी। हालांकि अदालत ने सुनवाई के बाद कहा कि देश भर में ऐसी कोई व्यापक गड़बड़ी साबित नहीं हुई है जिससे पूरी परीक्षा रद्द की जाए, इसीलिए 2024 की परीक्षा को बरकरार रखा गया। वहीं इस साल यानी कि 2026 में एक बार फिर नीट विवादों के केंद्र में आ गया। 3 मई 2026 को आयोजित नीट का एग्जाम पेपर लीक के बाद गैस पेपर वायरल होने की खबरें आने लगी। छात्रों और अभिभावकों की चिंता बढ़ी। मामला बढ़ने पर 12 मई 2026 को NTA ने केंद्र सरकार की मंजूरी के बाद परीक्षा रद्द करने का ऐलान कर दिया। इसके बाद लाखों छात्र दोबारा परीक्षा की नई तारीख का इंतजार कर रहे हैं। लगातार सामने आ रहे विवादों ने अब परीक्षा प्रणाली की ऊपर सुरक्षा व्यवस्था और छात्रों के भविष्य से छेड़छाड़ के ऊपर कई मामले खड़े कर दिए हैं, जिनसे सवाल पूछे जा रहे हैं कि अब आगे क्या होगा। लाखों छात्र परीक्षा देकर अपने भविष्य के सुनहरे सपने सजाए हुए थे, लेकिन फिर अचानक पेपर लीक की खबरें आने लगी और पूरे देश में हलचल मच गई। कई जगहों पर छात्रों ने निष्पक्ष जांच और परीक्षा रद्द करने की मांग उठाई, और फिर परीक्षा रद्द होने की खबर के बाद छात्रों और अभिभावकों में असमंजस और चिंता का माहौल है। आज की इस विशेष रिपोर्ट में हम जानेंगे आखिर क्या है छात्रों की स्थिति और अभिभावकों का क्या कहना है, और प्रशासन व शिक्षा विभाग का इस पूरे मामले में क्या जवाब है। परीक्षा खत्म होने के बाद ज्यादातर छात्र राहत महसूस कर रहे थे, लेकिन कई छात्रों ने छुट्टियों की भी योजना बना ली थी, तो कुछ रिजल्ट का इंतजार कर रहे थे। लेकिन सोशल मीडिया पर पेपर लीक और गड़बड़ियों की खबरें सामने आने लगी और माहौल अचानक से बदल गया। अब वही छात्र दोबारा तैयारी कर रहे हैं और भविष्य की चिंता को लेकर के परेशान हैं। तो आइए जानते हैं सबसे पहले एक छात्र से जिसने हाल फिलहाल में यानी कि 2026 में नीट का एग्जाम दिया था और वो अब चैन की सांस ले रही थी, लेकिन अचानक से परीक्षा रद्द होने के बाद उसका क्या कहना है और इस बात पर वो क्या करने वाली हैं आगे, वो जानते हैं। आपका नाम क्या है और आप हमें ये बताइए कि परीक्षा के बाद आपको क्या लग रहा था कि अब मामला क्या हो सकता है।
1: जी, मेरा नाम मंतशा जमाल है और मैंने नीट 2026 का एग्जाम दिया था। पेपर के बाद सोशल मीडिया पर बहुत सारी चीजें वायरल होने लगी। पहले तो लगा ये सब अफवाह होंगी, लेकिन धीरे धीरे मामला बढ़ता गया।
0: अच्छा, तो आप मुझे बताइए कि जब परीक्षा रद्द होने की खबर सामने आई तो आप क्या महसूस कर रही थी?
1: बहुत निराशा हुई, क्योंकि पेपर देने के बाद एक मानसिक राहत मिल जाती है, अब फिर से वही दबाव शुरू हो गया।
0: तो क्या आप दोबारा पेपर देने के लिए तैयार हैं?
1: अगर निष्पक्ष परीक्षा होती है तो देंगे, लेकिन मानसिक तौर से तैयार होना आसान नहीं है।
0: जितनी चिंता बच्चों को अपने भविष्य की है, उससे कहीं ज्यादा चिंता अभिभावकों को अपने बच्चों के भविष्य की है। तो ऐसे ही अब हम बात करने जा रहे हैं मंतशा के घर वालों से और जानते हैं उनसे कि उनका इस बारे में क्या कहना है। हमारे साथ मौजूद हैं मंतशा की माता जी, तो आप हमें बताइए कि इस मामले को आप किस तरह से देख रहे हैं।
2: देखिए, बच्चे महीनों नहीं बल्कि सालों से तैयारी करते हैं। परीक्षा खत्म होने के बाद उन्हें लगा था कि अब थोड़ा सा सुकून मिलेगा, लेकिन अचानक से विवाद सामने आया तो उससे बच्चे फिर से तनाव में आ गए। हम बस यही चाहते हैं कि जो भी फैसला हो वो निष्पक्ष हो और बच्चों के भविष्य को ध्यान में रखकर लिया जाए।
0: पूरे साल बच्चे जिस हिसाब से मेहनत करते हैं उसके पीछे कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा हाथ उनके शिक्षकों का होता है। तो ऐसे ही हमारे साथ एक शिक्षक मौजूद हैं जो कि स्पेशली नीट की कोचिंग देते हैं, तो आइए उनसे जानते हैं कि उनका इस बारे में क्या कहना है।
3: शारिक खान है और मैं बच्चों को नीट की कोचिंग देता हूँ।
0: आप हमें ये बताइए कि ये जो घटनाएं हैं इन्हें रोकने के लिए क्या करना चाहिए।
3: इसके लिए आपको एग्जाम प्रोसेस के अंदर सिक्योरिटी और ट्रांसपेरेंसी दोनों को मजबूत करना होगा और स्टूडेंट्स का भरोसा बढ़ाने के लिए आपको समय पर उनको क्लियर इन्फॉर्मेशन देनी होगी। स्टूडेंट्स की मेंटल हेल्थ पर पड़ा है और वो इस टाइम पर सिस्टम को लेकर इनसिक्योर फील कर रहे हैं और उनका भरोसा सिस्टम से उठ चुका है।
0: नीट एक ऐसा इम्तिहान जिसके लिए लाखों बच्चे साल भर दिन भर पढ़ाई करके रात भर पढ़ाई करके मेहनत करते हैं, किताबों के बीच उनका सारा बचपन कहीं पीछे छूट जाता है। त्योहार, छुट्टियां, दोस्तों की महफिल, सब कुछ सिर्फ एक सपने के लिए, डॉक्टर बनने का सपना। और इसके बीच अगर परीक्षा रद्द होने की खबर सामने आए तो सिर्फ एक एग्ज़ाम नहीं टूटता, टूटती है सारी उम्मीदें। लेकिन उस पूरे सफ़र में किसी ने अगर सबसे ज़्यादा मेहनत की होती है तो वो केवल एक छात्र नहीं, उसके शिक्षक भी हैं। वो शिक्षक जो हर बच्चे के नंबर से पहले उसकी मेहनत देखते हैं, जो देर रात तक बच्चों के सवाल हल करते हैं, जो खुद की थकान भूलकर हर बच्चे को ये यकीन दिलाते हैं कि तुम कर सकते हो। नीट की तैयारी सिर्फ किताबों की लड़ाई नहीं होती, ये मानसिक दबाव, उम्मीद और संघर्षन का सफ़र होता है। और इस सफ़र में शिक्षक हर कदम पर बच्चों के साथ खड़े होते हैं। जब पेपर रद्द होने जैसी खबर आती है तो सिर्फ दर्द छात्रों को नहीं होता, उनके शिक्षकों को भी होता है, जिन्हें अपने बच्चों की तरह इन विद्यार्थियों को संभालना होता है, क्योंकि एक शिक्षक के लिए

हर छात्र सिर्फ रोल नंबर नहीं होता, वो उसकी मेहनत, उसकी उम्मीद और उसका सपना होता है। और शायद यही वजह है कि जब एक छात्र टूटता है, तो कहीं ना कहीं उसका शिक्षक भी अंदर से बिखर जाता है। एक छात्र जब एग्जाम हॉल से बाहर निकलता है, तो वो सिर्फ अपनी आंसर शीट नहीं जमा करके आता, वो अपने कई महीनों की थकान को भी वहीं छोड़ आता है। लेकिन जब उस परीक्षा के ऊपर सवाल उठने लगे, तो सबसे ज्यादा चोट उस भरोसे को लगती है जो छात्र ने शिक्षा व्यवस्था पर किया था। आज लाखों छात्र फिर इंतजार में हैं एक नए फैसले के, और उनके अंदर अभी भी थोड़ी उम्मीद है कि फैसला शायद उनके लिए कहीं ना कहीं लाभ लेकर आए। परीक्षा खत्म हो चुकी है, लेकिन विवाद अभी बाकी है। अब सभी की निगाहें प्रशासन और उनके आने वाले फैसलों पर टिकी हैं। उम्मीद बस इतनी है कि जो भी निर्णय हो, वो छात्रों की मेहनत, उनके भविष्य और उनके भरोसे तीनों के साथ न्याय कर सके। आज की रिपोर्ट में बस इतना ही। मैं अलीना अंजुम आपसे विदा लेती हूँ। फिर मुलाकात होगी इसी मंच पे किसी और मुद्दे के साथ। तब तक के लिए सुनते रहिए बात आसपास की।

0: तहे दिल से स्वागत है आप सभी श्रोताओं का हमारे इस विशेष कार्यक्रम सुहाना सफर में। आज के इस अंक में हम आपसे बात करेंगे। मैं हूं आपकी दोस्त रेनू राजपूत
1: और श्रोताओं मैं हूं अनुपम मिश्रा। तो आप सभी श्रोताओं को हम दोनों की तरफ से स्नेह भरा नमस्कार।
0: हर दिन की तरह आज हम फिर हाजिर हैं कार्यक्रम सुहाना सफर लेकर।
1: जी हाँ रेनू जी, कार्यक्रम तो वही है जो रोजाना 10 बजे शुरू होता है और जिसे हमारे श्रोता बड़े ही उत्साह के साथ सुनते हैं, मगर बातें हर दिन हमारी कुछ अलग होती हैं।
0: बिल्कुल ठीक कहा अनुपमा तुमने, हर दिन हम अपने श्रोताओं के लिए कुछ अलग और विशेष जानकारियां लेकर आने का प्रयास करते हैं। अब देखो ना अनुपम, हम बात तो आज भी वर्ष 2020 की ही कर रहे हैं, मगर साल 2020 से जुड़ी कुछ ऐसी जानकारियां देंगे जो श्रोताओं अभी तक आपने नहीं सुनी होंगी।
1: जी हाँ, तो ज्यादा सस्पेंस ना रखते हुए रेनू जी, आज के कार्यक्रम का हम आगाज करते हैं।
0: बिल्कुल सही अनुपमा, और कार्यक्रम की शुरुआत में हम करेंगे उन कार्यक्रमों के विषय में बात जो शुरू हुए थे बच्चों के लिए और विशेष रूप से प्रसारित किए जाते थे।
1: जी हाँ रेनू जी, आकाशवाणी के कई केंद्रों पर बाल मंडल नाम से एक कार्यक्रम प्रसारित किया जाता था जिसमें बाल गीत, कहानियां, कविताएं, चुटकुले और पहेलियां प्रसारित की जाती थीं।
0: अच्छा, और इन कार्यक्रमों में बच्चे भाग लेकर अपनी रचनाएं और नाटक, किस्से, कहानियां जरूर प्रस्तुत करते होंगे।
1: जी हाँ बिल्कुल रेनू जी, और 2020 वो दौर था जब दुनिया श्रोताओं कोविड-19 नामक बीमारी से जूझ रही थी। ऐसे समय में आकाशवाणी ने अपने कार्यक्रमों के माध्यम से आम जन को जानकारी दी कि वो किस तरह से इस महामारी से अपने को बचा सकते हैं।
0: बिल्कुल ठीक कह रही हो अनुपमा, उस समय में सिर्फ हमारे पास एक साधन जानकारी का था, आकाशवाणी।
1: बिल्कुल,
0: और सही और सटीक जानकारी के मामले में आकाशवाणी सबसे बेस्ट है,
1: हमेशा से रहा है।
0: जी, और अब आगे बढ़ते हुए अपने श्रोताओं को सुनवाते हैं एक प्यारा सा गीत।
1: विचार अति उत्तम है रेनू जी। तो श्रोताओं पेश है साल 2020 में आई फिल्म मलंग का ये गीत।

0: फिल्म मलंग में वेद शर्मा के गाए इस गीत के बाद श्रोताओं हम फिर से हाजिर हैं कार्यक्रम सुहाना सफर लेकर, और आज हम बात कर रहे हैं वर्ष 2020 की।
1: और वर्ष 2020 के दौरान प्रसारित होने वाले हम उन कार्यक्रमों के विषय में फिलहाल बात कर रहे हैं जो कि जुड़े हुए थे बच्चों से।
0: अनुपम, लॉकडाउन के समय जो हमारे कार्यक्रम होते थे
1: जी,
0: वो उनमें शिक्षावाणी नाम से दैनिक जो शैक्षिक कार्यक्रम शुरू हुए थे जो कक्षा 1 से 12 तक के बच्चों के लिए होते थे, और इसमें NCERT आधारित पाठ्य पुस्तिकाएं के आधार पर ही पाठ कराए जाते थे, है ना?
1: जी बिल्कुल। और इन कार्यक्रमों में कक्षा 3 से कक्षा 8 तक के लिए विज्ञान, गणित आदि विषयों के पाठ और उच्च माध्यमिक कक्षाओं के लिए विषयवार व्याख्या प्रस्तुत शामिल थी, जिसे 51 दिनों तक नियमित रूप से प्रसारित किया गया था।
0: इसके अलावा वर्ष 2020 में आकाशवाणी केंद्रों से रेडियो स्कूल नाम से कक्षा 1 से 5 तक के बच्चों के लिए रोचक कहानियों और पाठ्यक्रम आधारित सामग्री प्रसारित की जाती थी।
1: जी हाँ श्रोताओं, इस कार्यक्रम का उद्देश्य था लॉकडाउन के दौरान स्कूल बंद रहने पर भी प्राथमिक कक्षाओं के बच्चों की शिक्षा निरंतरता को बनाए रखना।
0: आकाशवाणी के कुछ केंद्रों पर थोड़ी सी मस्ती थोड़ी सी पढ़ाई नाम से बेसिक स्कूलों में बच्चों के लिए दैनिक कार्यक्रम चलाए जा रहे थे, जिसमें गीत, छोटी कहानियां, पहेलियां और नैतिक शिक्षा को शामिल किया गया था।
1: और रेनू जी, ये कार्यक्रम आम तौर पर सुबह 11:30 से 12 बजे तक प्रसारित होता था, और बेसिक शिक्षा विभाग के निर्देशानुसार बच्चों को रेडियो कक्षा से जोड़ने के उद्देश्य से डिजाइन किया गया था।
0: इसके अलावा मीना की दुनिया नामक कार्यक्रम भी प्रसारित होता था जो बच्चों के साथ साथ बड़ों को भी पसंद आता था।
1: तो रेनू जी, अब बारी है संगीत की दुनिया की सैर करने की, तो आइए सुनते हैं वर्ष 2020 में रिलीज हुई फिल्म।

0: कार्यक्रम सुहाना सफर में, और आज हम बात कर रहे हैं वर्ष 2020 के विषय में। और कार्यक्रम में श्रोताओं, अब बारी है वर्ष 2020 में प्रसारित उन कार्यक्रमों के विषय में बात करने की जो जुड़े थे महिलाओं से। आकाशवाणी आगरा सहित कई केंद्रों पर घर संसार नाम से कार्यक्रम प्रसारित किया जाता था, जिसमें घरेलू टिप्स, बचत, बच्चों की देखभाल और बजट और पारिवारिक संबंधों से जुड़ी जानकारियां भी दी जाती थी। ये सभी का कार्य जो करते हैं वो हमारा आकाशवाणी ही कर सकता है।
1: बिल्कुल, क्योंकि आकाशवाणी जो है वो समाज के हर वर्ग को ध्यान में रखकर कार्यक्रम बनाता है, हर वर्ग की समस्याओं को वो समझता है।
0: बिल्कुल सही कहा अनुपम तुमने।
1: और श्रोताओं, इन कार्यक्रमों में स्थानीय महिला उद्यमियों, आयुर्वेदिक विशेषज्ञों और पारिवारिक परामर्शदाताओं के विचार भी शामिल होते थे।
0: आकाशवाणी के अनेक केंद्रों पर महिलाओं के लिए हेल्थ टिप्स फॉर लेडीज जैसे विशेष संस्करण प्रसारित होते थे, जिनमें गर्भावस्था, स्तनपान, तनाव जैसे मुद्दों पर चर्चा होती थी।
1: योग और नारी स्वास्थ्य जैसे कार्यक्रम श्रोताओं आयुर्वेद और योग के विषय में जानकारी प्रदान करते थे, ताकि महिलाओं की सेहत अच्छी बनी रहे।
0: कई आकाशवाणी केंद्रों पर महिला अधिकतर घरेलू हिंसा, रोजगार जैसे विषयों पर जागरूकता बढ़ाने के लिए विशेष वार्ता कार्यक्रम प्रसारित होते थे, जिनमें कानून विशेषज्ञ, समाज सेवी और पुलिस अधिकारी भी बतौर अतिथि आमंत्रित किए जाते हैं।
1: जी हाँ,
0: और किए भी जाते थे पहले से ही, है ना?
1: जी हाँ, और इन कार्यक्रमों का उद्देश्य महिलाओं को उनके कानूनी अधिकार, शिकायत प्रक्रिया और सरकारी योजनाओं से अवगत कराना था। कुछ कार्यक्रम महिलाओं की आवाज, महिला वार्ता जैसे नामों से भी चलते थे, जिनमें उनकी समस्याएं, अनुभव और समाधान संवाद शामिल होते थे।
0: अनुपम, कार्यक्रम में बातें तो होती ही रहेंगी, मगर फिलहाल हम लेते हैं एक म्यूजिकल ब्रेक और श्रोताओं के साथ साथ हम भी एंजॉय करते हैं ये वर्ष 2020 का ये गीत।
1: बिल्कुल रेनू जी।

0: श्रोताओं, ये गीत अभी आपने सुना मोहित चौहान के सुर में। फिल्म का नाम था लव आजकल टू। उम्मीद करते हैं गीत आपको पसंद आया होगा। और गीत के बाद चलिए वापस लौटते हैं कार्यक्रम सुहाना सफर की ओर, जिसमें आज हम बात कर रहे हैं साल 2020 की।
1: श्रोताओं, कार्यक्रम में अब करते हैं युवाओं से जुड़ी कुछ बातें, जो कि साल 2020 में कार्यक्रम द्वारा प्रसारित किए जा रहे थे।
0: जी हाँ, तो श्रोताओं, अगर युवाओं से जुड़े कार्यक्रमों की बात करें तो आकाशवाणी के अनेक केंद्रों पर युवाओं के लिए करियर गाइडेंस, शैक्षिक मार्गदर्शन और प्रतियोगी परीक्षाओं से जुड़ी विशेष जानकारियों के साथ विशेष कार्यक्रम प्रसारित किए जाते थे, जिनमें शिक्षक, कोच और सफल उम्मीदवार बतौर मेहमान भाग लिया करते थे।
1: बिल्कुल सही कहा अनुपम तुमने। हमारे यहाँ 2020 में बहुत ज्यादा युवाओं का ध्यान रखा जाता था, क्योंकि उस समय एक वो दौर ऐसा था कि जिस समय में हम सभी अपने घरों में
0: कैद हो गए थे। बिल्कुल, इस महामारी से हम पूरा पूरा देश क्या पूरी दुनिया ही जूझ रही थी। लेकिन हमारे यहाँ पे एक प्लस पॉइंट रेणु जी ये रहा था कि हमारे आकाशवाणी ने उस समय बहुत ज्यादा अपनी एक अहम भूमिका को निभाया था। बच्चों की पढ़ाई बिल्कुल भी सफल नहीं हुई थी और कोशिश की थी कि घर बैठे लोगों को जानकारी मिले
1: और वो इस बीमारी से भी उभरने में
0: मदद
1: करते थे हमारे आकाशवाणी के कार्यक्रमों के द्वारा।
0: तो एक बहुत बड़ी उपलब्धि मेरे हिसाब से ये है आकाशवाणी की।
1: अनुपम, साथ ही परीक्षा पे चर्चा जैसे कार्यक्रम, परीक्षा तैयारी, तनाव प्रबंधन और समय प्रबंधन पर विशेष रूप से चर्चा करते थे। इसके अलावा आकाशवाणी ने युवाओं की रचनात्मकता को निखारने के लिए कविता पाठ, नाटक और भाषणों को शामिल करते हुए कार्यक्रम का प्रसारण किया, जिससे कि युवा भागीदार हुए इन कार्यक्रमों में और उनकी भागीदारी से कार्यक्रम भी रोचक बने।
0: बिल्कुल, तो जब कार्यक्रम हमारे 2020 में इतने रोचक रहे थे रेणु जी, तो क्यों ना कार्यक्रम को भी थोड़ा सा रोचक हम और बना दें गीत के साथ।
1: वो तो तुम्हारे चेहरे से लगी रहा।
0: तो कौन सा गीत हम अपने श्रोताओं को सुनवा रहे हैं? ये हम आपको सुनवाएंगे श्रोताओं फिल्म थप्पड़ का गीत।
1: हाँ, मैं इसीलिए नहीं बोल रही थी। और इसको गाया है किसने? छवि यादव ने।
0: जी,

0: श्रोताओं, अभी आपने ये गीत सुना और उम्मीद करते हैं कि इस गीत के साथ आप भी थोड़ा सा थिरकने लगे होंगे। मैं और रेणु जी तो थिरक रहे
1: बिल्कुल
0: थे।
1: सही कहा अनुपम
0: तो
1: तुमने।
0: चलिए वापस लौटते हैं अपनी बातचीत की ओर। तो वर्ष 2020 में आकाशवाणी के द्वारा देश के किसानों के लिए भी कार्यक्रम प्रसारित किए गए, जिनमें बीज योजना, उर्वरक सब्सिडी, फसल बीमा योजना, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना पर जानकारी विशेष वार्ता कार्यक्रमों के माध्यम से किसानों तक पहुंचाई जाती थी।
1: साथ ही कुछ कार्यक्रम महिला किसान, युवा किसान और जल संरक्षण किसान जैसी थीम पर भी बनाए जाते थे, जिससे कि अलग-अलग वर्गों के किसानों को लक्षित और अच्छी जानकारी मिल सके।
0: बिल्कुल। और रेणु जी, बातें तो बहुत हो गई जो हमें अपने श्रोताओं के साथ साझा करनी है, मगर घड़ी का इशारा है कि अब हमें आज के अंक को यहीं पर समेटना होगा।
1: अच्छा हाँ, टाइम तो हो गया है।
0: तो चलते चलते श्रोताओं को एक गीत और सुनवा दिया जाए।
1: हाँ जरूर।

0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे भारत में रेडियो प्रसारण के 90 साल के उपलक्ष्य में विशेष कार्यक्रम सुहाना सफर। आकाशवाणी का ये नजीबाबाद केंद्र है। प्रातः के 10:30 हो रहे हैं। प्रस्तुत है श्रोताओं के पत्रों व व्हाट्सएप मैसेज पर आधारित फिल्मी गीतों का कार्यक्रम गीत तुम्हारे। श्रोताओं, स्वागत है आप सभी का हमारे इस कार्यक्रम गीत तुम्हारे में। और श्रोताओं, इस कार्यक्रम में आप सभी के मैसेज हमें प्राप्त हो रहे हैं और इस आप सभी सुनना चाहते हैं इस गीत को। फिल्म है क्योंकि, और इस गीत को स्वर दिया है उदित नारायण और अलका याग्निक ने। और पसंद करता है आप सभी श्रोतागण नागचुन रोड संजय कॉलोनी खंडवा से अब्दुल गफ्फार डावर, खुश नसीब अब्दुल हक डावर, जियाउल हक डावर, मोहम्मद उमर डावर और राजेंद्र कटारे, भाटापारा छत्तीसगढ़ से सोहन जोशी और पायल जोशी।
1: इसी के साथ ये हमारे श्रोता हैं कुंभार गली कोलगांव से पांडु चंदन, उषा चंदन, रानी चंदन, प्रतीक्षा, अभिषेक, सार्थक, प्रथमेश, संतोष और पांडु कुमार कुंभार।
0: दादरी गेट भिवानी से कृष्ण मेहर, कोमल मेहरा, किरण मेहरा, कपिल मेहरा, कुणाल मेहरा और इनके परिवार के सभी सदस्य।
1: खुर्जा उत्तर प्रदेश से हैं तिलक राज अरोड़ा, प्रकाश अरोड़ा, चंदन अरोड़ा और अंकुश अरोड़ा।
0: और इसी गीत को सुनना चाहते हैं रियासत हुसैन सिद्दीकी, नाजमा बेगम सिद्दीकी, रियाज रिफाकत, मोहम्मद रिहान, समरीन परवीन, माहिरा नूर, ये हमें पत्र लिख भेजते हैं जसपुर उत्तराखंड से।
1: मोहल्ला हलवायान कस्बा शेरकोट जिला बिजनौर से हैं मोहम्मद वक्कार फरीदी, मोहम्मद इकबाल फरीदी, सितारा बेगम, नसरीन परवीन, रोजी परवीन, बिट्टू भैया, साजदा रानी और हिना कौसर।
0: तो आइए श्रोताओं, सुनते हैं इन सभी श्रोताओं की फरमाइश पर ये गीत।

0: और श्रोताओं, कार्यक्रम का अगला गीत हमने लिया है फिल्म दबंग से। इस गीत को आवाज दी है राहत फतेह अली खान और श्रेया घोषाल ने, और इस गीत को सुनना पसंद करते हैं आप सभी श्रोतागण। मुगलपुरा बागपत से अब्दुल सत्तार अब्बासी,
1: ये है सेक्टर 5 सूर्यनगरी जोधपुर राजस्थान से हमारे श्रोता रमेश चंद्र चौहान, मोहिनी चौहान, कल्पित चौहान और बेबी गर्वी।
0: सेक्टर 67 मोहाली चंडीगढ़ से टीडी मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा, प्रतीक मल्होत्रा, अनिल शर्मा, जयवीर सिंह, डॉक्टर अमनदीप, कालका से शुभ चंद्र बजाज, साहिल बजाज और बिट्टा बजाज।
1: मोहल्ला अफगानान शेरकोट से हैं नदीम बाकी, कलीम बाकी, अलीम बाकी, अजीम बाकी, अदीम बाकी, अब्दुल गनी, अलमीर, मोहम्मद जैन और जन्नत।
0: और इसी गीत को सुनना चाहते हैं हमारे श्रोता सदर बाजार मारवाड़ बिलाड़ा राजस्थान से रमेश चंद्र चौहान, जय नारायण चौहान, तरुण चौहान और प्रतीक चौहान।
1: रेलवे रोड गंज डुंडवारा से हैं मोहम्मद कलीम जख्मी, भुवन प्रकाश गौतम, डॉक्टर दबीरुल हसन, बेगम शबनम अनवार, नजमा बेगम नाज और भाभी सरिता गौतम। रेनू जी, जो नए श्रोता हमारे साथ जुड़े हैं उन्हें हम अपना फोन नंबर बता देते हैं मैसेज भेजने के लिए
0: जी।
1: तो श्रोताओं, अगर आप हमारे साथ अभी अभी जुड़े हैं और आपको हमारा नंबर नहीं पता है तो जल्दी से नोट करें हमारा व्हाट्सएप नंबर। हमारा नंबर है 9457078288। और इसी के साथ हम कार्यक्रम में शामिल कर रहे हैं ये अगला मैसेज।
0: जिला कासगंज उत्तर प्रदेश से योगेंद्र नायक, श्रीमती गीता नायक, निहारिका नायक, सुशांत नायक और दोस्त सुरेश चौरसिया। तो इन सभी श्रोताओं की फरमाइश पर आइए सुनते हैं ये गीत।

0: प्रसार भारती, भारत का लोक सेवा प्रसारक।
1: कम समय में ज्यादा मुनाफा, बस एक क्लिक में, कमाल है।
2: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए, RBI कहता है
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
4: आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से श्रोताओं, समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम गीत तुम्हारे, और गीत तुम्हारे की जो अगली फरमाइश है वो है फिल्में अजनबी के लिए। आवाजें हैं कुमार सानू और सुनिधि चौहान की,
5: और पसंद करता है आप सभी श्रोतागण आशा नारंग, सोनाली नारंग, सुरेश नारंग, ये हमें लिख भेजते हैं पत्र सहारनपुर से।
4: ये है कृष्णा पार्क दिल्ली से हमारे श्रोता सुखविंदर सिंह जौड़ा, सिटी दीवाना, पंखा रोड जनकपुरी से पिंटू दीवाना, राजेंद्र सिंह ओबराय।
5: वाइट फील्ड बेंगलुरु से भारत भूषण, अंजू श्रीवास्तव, दिव्येंदु भूषण और संस्कृति और इनके भाई पौरुष।
4: इसी गीत को सुनने के ख्वाहिशमंद हैं कच्छ गुजरात से गंगा वणकर, गोविंद, प्रीति जूली, गीता महिमा, विशाल, विजय, विराट, विकास, रमेश, महेश और जयंती।
5: और इसी गीत को सुनना चाहते हैं हमारे श्रोता रघुवीर नगर से दिलावर खान, हसीना बानो, एलिजा नायाब और लड्डू।
4: ये है हमारे श्रोता मोहल्ला वारादरी महमूद खान रामपुर से भाई रफत साहब, सईद भाई मंसूरी, राशिद भाई मंसूरी, असद भाई बहन, फिरोजा मुस्कान और अफसर अली, और साथ में है नगमा नाज मंसूरी।
5: तो आइए श्रोताओं सुनते हैं फिल्म अजनबी का ये गीत जिसे आवाज दी है कुमार शानू और सुनिधि चौहान ने।

0: और श्रोताओं, अब कार्यक्रम के अंत में हम आपको सुनवाएंगे फिल्म में बादल का गीत अनुराधा पौडवाल, सुखविंदर सिंह और साथियों की आवाजों में। फरमाइश करता है हमारे श्रोता।
1: टैगोर गार्डन नई दिल्ली से रविंद्र सिंह छाबड़ा, इंद्रजीत कौर छाबड़ा, स्वीटी छाबड़ा और इनके परिवार के सभी सदस्य।
0: ये हैं जिला मुरादाबाद ग्राम दूल्हापुर उत्तर प्रदेश से मुकेश कश्यप, शीतल कश्यप, सोनू सुरेश, राजपाल पंकज, काजल सीमा, मानवी तन्वी, लक्ष्य सोनी, मोहिनी ऋतिक और बलबीर सिंह।
1: और नाज पैलेस अजमेर शरीफ से सैयद आलम हाशमी, गुलनाज सलमा, असद अरहाम और मोहम्मद आलम हाशमी।
0: रेलवे कॉलोनी हनुमानगढ़ जंक्शन राजस्थान से हैं जगमाल सिंह डागला, हैप्पी डागला, जेएस नायक, शोभा नायक और समस्त डागला परिवार।
1: उत्तम कुमार भगत, श्वेता भगत, कीसु, तासु, अर्णव, आनंद, सत्यम और आनंद, ये हमें पत्र लिख भेजते हैं पाकुड़ झारखंड से। बोहाड़ी गाछी पश्चिम बंगाल से भी एक पत्र हमें आया है मुन्ना भगत और गुड्डी भगत का। तो आइए सुनते हैं इन सभी श्रोताओं की फरमाइश पर ये गीत।

बोल राधा बोल, इस फिल्म का गीत श्रोताओं अभी आपने सुना, कुमार सानू और पूर्णिमा की आवाज़ों में। शब्द रचना समीर की थी और धुन तैयार की थी आनंद मिलिंद ने। आइए सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत किशोर कुमार के स्वर में। फिल्म का नाम है धर्मात्मा। गीत के बोल लिखे हैं इंदिवर ने और उन्हें संगीत से सजाया है कल्याण जी आनंद जी ने।

0: सुनो ना,
1: हाँ?
0: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
1: तो रोका किसने है, हाँ?
0: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
1: मुझसे।
0: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
1: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
0: पर उससे मेरा क्या फायदा?
1: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुँच जाओ।
0: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
1: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो, 8700014242।
0: ओ 8700014242। लो अभी फोन लगाता हूँ 8700014242 पर।
2: फिल्म संगीत का कार्यक्रम चित्रपट संगीत आप आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से सुन रहे हैं। और श्रोताओं कार्यक्रम में अब हम आपको सुनवा रहे हैं कार्यक्रम का ये अगला गीत मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर की आवाज़ों में। फिल्म का नाम है हसीना मान जाएगी। गीत के बोल लिखे हैं अख्तर रोमानी ने और उन्हें संगीतबद्ध किया है कल्याण जी आनंद जी ने।

लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ों में अभी आपने सुना हसीना मान जाएगी फिल्म का ये गीत। गीत लिखा था अख्तर रोमानी ने और धुन तैयार की थी कल्याण जी आनंद जी ने। और आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम का ये अगला गीत। स्वर है लता मंगेशकर का, शब्द रचना इंदीवर की है और संगीत है कल्याण जी आनंद जी का।

पिघलता आसमान। श्रोताओं, इस फिल्म का गीत अभी आपने सुना लता मंगेशकर के स्वर में। गीत के बोल लिखे थे इंदिवर ने और संगीतबद्ध किया था कल्याण जी आनंद जी ने। आइए सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत, जिसे हमने लिया है फिल्म सौतन से। स्वर एक बार फिर लता मंगेशकर का है, संगीत उषा खन्ना का है और शब्द रचना है सावन कुमार की।

0: खुशी नहीं, यही नए भारत की पहचान है, जहां हर उपलब्धि के पीछे मेहनत की कहानी है और अवसर की समानता का अटूट विश्वास है। रोजगार मेला युवाओं की निरंतर प्रगति, विकसित भारत की गति शक्ति।
1: अब मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी से आग्रह करती हूँ कि कृपया रिमोट का बटन दबाकर 51,000 से अधिक नियुक्ति पत्रों के वितरण के इस अभियान का शुभारंभ करें।

साथियों, आज देश भर के हजारों युवाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण दिवस है। आज 51,000 से ज्यादा युवाओं को सरकारी नौकरी का नियुक्ति पत्र मिला है। आज आप सभी देश की विकास यात्रा में अहम भागीदार बन रहे हैं, जिम्मेवार भागीदार बन रहे हैं। रेलवे, बैंकिंग, डिफेंस, हेल्थ, एजुकेशन और दूसरे कई क्षेत्रों में आप सभी नई जिम्मेदारियां संभालने जा रहे हैं। आने वाले वर्षों में विकसित भारत के संकल्प को सिद्ध करने में आप सभी महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले हैं। साथियों, यहां तक पहुंचने के लिए आप सभी ने लंबी तैयारी और कड़ा परिश्रम जरूर किया होगा। इस उपलब्धि के लिए मैं आपको भी और आपके परिवारजनों को भी बहुत बहुत बधाई देता हूं। आपको यहां तक पहुंचाने में आपके माता पिता और परिवार

राष्ट्रपति वैसे ही संपूर्ण समाज के प्रति भी रहता है और मुझे विश्वास है इन सभी कामों के लिए आप अपने आप को और अधिक योग्य बनाएंगे। मैं आपको बहुत शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, आप सबको पता है अभी दो दिन पहले ही मैं 5 देशों की यात्रा कर करके लौटा हूं। कहने को तो ये सिर्फ 5 देशों की यात्रा थी, लेकिन इस दौरान मेरी दर्जनों देशों की बड़ी बड़ी कंपनियों के लीडर से बातें हुई, विस्तार से चर्चा हुई, मुलाकात हुई और हर जगह मैंने एक बात समान रूप से महसूस की है, दुनिया भारत के युवाओं और भारत की टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस को लेकर बहुत उत्साहित है। आज दुनिया भारत की विकास यात्रा का हिस्सा बनना चाहती है। भारत भी दुनिया के अलग अलग देशों के साथ पार्टनरशिप कर रहा है। इसका उद्देश्य यही है कि भारत के युवाओं को अवसर मिले, रोजगार मिले, उनका सामर्थ्य खिल उठे। साथ साथ मैं चाहता हूं मेरे देश के नौजवानों को ग्लोबल एक्सपोजर भी मिले। इस यात्रा के दौरान अब जैसे नीदरलैंड की मैं बात करूं तो नीदरलैंड के साथ सेमीकंडक्टर, वाटर, एग्रीकल्चर और एडवांस मैन्युफैक्चरिंग पर चर्चा हुई। स्वीडन के साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI और डिजिटल इनोवेशन, उस पर सहयोग की बहुत सारी बातें हुई। नॉर्वे के साथ ग्रीन टेक्नोलॉजी और मैरीटाइम कोऑपरेशन की बात आगे बढ़ी है। UAE के साथ स्ट्रेटेजिक एनर्जी और टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप पर महत्वपूर्ण समझौते हुए। इटली के साथ डिफेंस, क्रिटिकल मिनरल्स, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ऐसे अत्यंत महत्वपूर्ण क्षेत्रों में पार्टनरशिप्स पर एग्रीमेंट हुए। साथियों, इन सारे एग्रीमेंट्स का सीधा लाभ भारत के युवाओं को मिलने वाला है और आपने देखा होगा ये सारे विषय एक उज्जवल समर्थ भारत के भविष्य की गारंटी लेकर के आते हैं, क्योंकि हर नया निवेश, हर टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप, हर इंडस्ट्रियल कोलैबोरेशन भारत के युवाओं के लिए नई अपॉर्चुनिटीज तो लेकर के आता ही है, लेकिन अनगिनत नए अवसर तैयार करता है। मेरे नौजवान साथियों, हमें याद रखना है ये वो सेक्टर्स हैं जिनमें आने वाला इन्वेस्टमेंट और पार्टनरशिप आने वाले 3-4 दशक की ग्लोबल ग्रोथ को ये शेप करने वाली इंडस्ट्री तैयार करेगी और निश्चित तौर पर भारत के युवाओं की इसमें बहुत बड़ी भूमिका होगी। साथियों, भारत किस तरह दुनिया का एक भरोसेमंद सप्लाई चेन पार्टनर बन रहा है, इसका मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। जैसे नीदरलैंड की सेमीकंडक्टर कंपनी
आप में से बहुत

0: लोग इस नाम से परिचित होंगे, एएसएमएल। एएसएमएल के साथ भारत की टाटा कंपनी का एग्रीमेंट है। भारत दुनिया के कुछ ही देशों में से एक है जिसके साथ इस कंपनी ने समझौता किया है। एएसएमएल टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स के बीच ये अकेला समझौता ही भारत में रोजगार के अनगिनत नए मौके बनाएगा और भारत को एक नेक्स्ट जनरेशन टेक्नोलॉजी में प्रवेश द्वार खोल देगा। ऐसे ही स्वीडन के साथ टेक्नोलॉजी और एआई पार्टनरशिप्स, यूएई का साथ सुपर कंप्यूटिंग कोऑपरेशन भारत की टेक्नोलॉजी क्षमता को बहुत मजबूत करने वाले हैं। इन एग्रीमेंट से युवाओं के लिए नए अवसर तो होंगे ही होंगे। साथियों, आज क्लीन एनर्जी, क्रिटिकल मिनरल्स, ग्रीन हाइड्रोजन और सस्टेनेबल मैन्युफैक्चरिंग से जुड़े सेक्टर्स भी बहुत तेजी से ग्रो कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। इनसे जुड़ी पार्टनरशिप एक नई इकोनॉमी के न्यू अपॉर्चुनिटीज के दरवाजे खोल रही है। स्वीडन, नॉर्वे और इटली जैसे देशों के साथ ग्रीन ट्रांजिशन और सस्टेनेबल टेक्नोलॉजी में भी सहयोग बढ़ रहा है। ये भारत को क्लीन मैन्युफैक्चरिंग से जुड़ी फ्यूचर इंडस्ट्रीज में मजबूत करेगा। इसके अलावा भारत ने पोर्ट्स, शिपिंग और मैरिटाइम इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े एग्रीमेंट पर तेजी से काम किया है। यूएई और नॉर्वे के साथ पार्टनरशिप से भारत का शिप बिल्डिंग इकोसिस्टम मजबूत होगा। और आप तो जानते हैं, शिप बिल्डिंग यानी स्किल मैन पावर की बहुत जरूर पड़ती है। यानी भारत के इंजीनियर्स, टेक्नीशियंस और स्किल वर्कर्स के लिए इतनी मांग बढ़ने वाली है जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। कितने अवसर तैयार होंगे। साथियों, हर नई पार्टनरशिप के साथ हम भारतीय स्टार्टअप्स, रिसर्चर्स और यंग प्रोफेशनल्स के लिए दुनिया से जुड़ने के नए रास्ते बना रहे हैं। इससे भारतीय युवाओं को एडवांस एक्सपर्टीज, ग्लोबल मार्केट्स और ग्रोथ के नए मौके भी मिलेंगे। आज दुनिया उन देशों का सम्मान करती है जो इनोवेट करते हैं, जो बिल्ड करते हैं और जो बड़े स्तर पर डिलीवरी कर सकते हैं। भारत आज इन तीनों दिशाओं में तेजी से आगे बढ़ रहा है और इस परिवर्तन की सबसे बड़ी ताकत आप सब मेरे नौजवान साथी हैं, भारत का युवा है। और मैं दुनिया में जहां भी जाता हूं, मैं काफी समय चर्चा में भारत की युवा शक्ति की चर्चा करता हूं। साथियों, आज हर भारतीय एक बड़े संकल्प के साथ आगे बढ़ रहा है। ये संकल्प 2047 तक विकसित भारत के निर्माण का संकल्प है। इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आज देश अलग अलग सेक्टर्स में निवेश कर रहा है और इस निवेश से देश के युवाओं के लिए रोजगार के लाखों नए अवसर बन रहे हैं, जिसे आज भारत में सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग की पूरी सप्लाई चेन तैयार की जा रही है। आने वाले समय में भारत की 10 बड़ी सेमीकंडक्टर यूनिट्स दुनिया में अपना परचम लहराएगी। इनमें बड़ी संख्या में भारत के नौजवानों का सामर्थ्य होगा, भारत के नौजवानों की बुद्धि प्रतिभा होगी, भारत के नौजवानों का कमिटमेंट होगा और स्वाभाविक है रोजगार तो है ही है। भारत आज शिप बिल्डिंग से लेकर शिप रिपेयरिंग और ओवरहॉलिंग का भी इकोसिस्टम विकसित कर रहा है। इसके लिए करीब 75,000 करोड़ रुपए 75,000 करोड़ रुपीज का निवेश किया जा रहा है। इसी तरह भारत में ही हम पूरा एमआरओ इकोसिस्टम यानी मेंटेनेंस, ओवरहॉल और रिपेयर फैसिलिटीज तैयार कर रहे हैं। इससे देश के एविएशन सेक्टर को बहुत मदद मिलने वाली है और भारत के युवाओं के लिए रोजगार का नया सेक्टर तो खुलना ही खुलना है। साथियों, भारत आज एक बड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरर है और हम इलेक्ट्रॉनिक्स से जुड़ी कंप्लीट वैल्यू चेन भारत में ही बना रहे हैं। इसके लिए जो पीएलआई स्कीम चल रही है उससे देश में रिकॉर्ड इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्शन हो रहा है और युवाओं को लाखों की संख्या में जॉब्स भी मिल रही है। साथियों, ऐसे अनेकों अभियानों पर भारत का पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर मिलकर बहुत बड़ा निवेश कर रहा है। ये निवेश देश के युवाओं को देश में ही जॉब दे रहा है, उनके सपने पूरे कर रहा है। एक सरकारी कर्मचारी होने के नाते, जो कि आज नियुक्ति पत्र के भरने के बाद आपकी पहचान बनने वाली कि आप एक सरकारी कर्मचारी हैं, तो उस नाते आपको भी हमेशा ये ध्यान रखना है कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस देश की कितनी बड़ी प्राथमिकता है। साथियों, भारत की ग्रोथ स्टोरी और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, इसमें ये मानी हुई बात है, आप भी जानते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर इसकी बहुत बड़ी भूमिका होती है। जब गांव, छोटे शहर और दूर दराज के इलाके विकास से जुड़ते हैं, तभी देश की प्रगति का लाभ ज्यादा लोगों तक पहुंचता है। पिछले 12 वर्षों में रेलवे, हाईवे, एयरपोर्ट, लॉजिस्टिक्स, पोर्ट्स, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर पर कल्पना भर का तेज गति से विस्तार हुआ है, विकास हुआ है, हर स्तर पर काम हुआ है। आज आप अपने क्षेत्र में किसी की भी दिशा में 100 किलोमीटर अगर जाएंगे तो भारत सरकार द्वारा कोई न कोई काम चलता हुआ नजर आएगा आपको। आज गांवों में भी बदलाव तेजी से दिखाई दे रहा है। कनेक्टिविटी बढ़ने से किसानों, छोटे व्यापारियों, विद्यार्थियों के लिए नए रास्ते खुले हैं। आज करोड़ों परिवारों को पक्का घर मिला है। यानी दुनिया के कई देश हैं जिनके पास टोटल घर होते हैं उससे अनेक गुना घर हम नए बनाते हैं। इतना ही नहीं, जो मेरा स्वच्छता का अभियान है उसको तो मैं कभी भी भूलने नहीं देता हूं लोगों को, और नहीं मैं भी भूलता हूं। उसमें शौचालय की बहुत बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका है, हम उस पर भी बल दे रहे हैं। करोड़ों घरों तक आज बिजली पहुंची है, रूफटॉप सोलर एनर्जी, कितने नए नए वेंडर्स मैदान में आए हैं। अब देखिए जल जीवन मिशन से नल से जल पहुंचाना, मैं अभी देख रहा था कि मैं चाहता था कि शहरों में पीएनजी के कनेक्शन बढ़े, तो मुझे प्लम्बर नहीं मिल रहे थे, कमी पड़ रही थी, क्योंकि जल जीवन के मिशन में कई सारी बड़ी संख्या में प्लम्बर वहां लगे हुए थे। अब इधर मुझे एनर्जी के लिए बड़े शहरों में पीएनजी के कनेक्शन तेजी से बढ़ाने थे। तो आप कल्पना कर सकते हैं कि कभी कभी तो लोगों की जरूरत पड़े तो लोग कम पड़ जाते हैं। साथियों, इन बदलावों का असर सिर्फ सामान्य नागरिकों की सुविधाओं तक सीमित नहीं रहता। गांव तक सड़क पहुंची तो मार्केट तक आना जाना आसान हुआ, बिजली की सुविधा बेहतर हुई तो छोटे उद्योग धंधे आगे बढ़ने लगे, गांव में भी एग्रीकल्चर में वैल्यू एडिशन होने लगा। पहले अगर वो लाल मिर्ची बेचते थे, अब बिजली आई तो लाल मिर्ची का पाउडर बनाते हैं, पाउडर बना करके पैकेट बनाते हैं, पैकेट बना करके बेचते हैं। तो गांव में भी छोटे छोटे छोटे छोटे उद्योग इसके कारण बढ़ते जाते हैं। डिजिटल कनेक्टिविटी बढ़ी तो गांव के लोग भी पूरे विश्व के साथ जुड़ रहे हैं, आधुनिकता से जुड़ रहे हैं। शहर और गांव का फर्क मिटता चला जा रहा है और इससे अर्थव्यवस्था की गति तेज हुई है। और इन सब का पॉजिटिव प्रभाव देश के नौजवानों के उज्जवल भविष्य की गारंटी बन जाता है। रोजगार तो निर्माण होते ही होते हैं, लेकिन राष्ट्र भी एक नए स्वाभिमान के साथ आगे बढ़ जाता है, लाखों लोगों को नए मौके भी मिल जाते हैं। साथियों, आज भारत के युवा के पास जिस तरह से आगे बढ़ने के, अपने सपने पूरा करने के मौके हैं, ऐसा अवसर पहले नहीं मिला है। मैं किसी का दोष नहीं कर रहा हूं, लेकिन हकीकत है कि आज बहुत तेज गति से सब हो रहा है, विशाल फलक पे हो रहा है, विविधताओं से भरा हो रहा है। आज मैन्युफैक्चरिंग, टेक्नोलॉजी, स्टार्टअप, डिजिटल सर्विसेज, रेलवे, डिफेंस, इतना ही नहीं स्पेस, ऐसे अनेक क्षेत्रों में अनगिनत अवसर हमारा इंतजार कर रहे हैं। हमारा प्रयास है कि ज्यादा से ज्यादा युवा नए अवसरों का लाभ उठा सके और देश के युवाओं को अपनी प्रतिभा दिखाने का पूरा मौका मिले। इसलिए स्किल डेवलपमेंट, इंडस्ट्री लिंक एजुकेशन और फ्यूचर टेक्नोलॉजी पर लगातार जोर दिया जा रहा है। आईआईटीज को मॉडर्न बनाया जा रहा है, नेशनल स्किल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट को मजबूत किया जा रहा है, पीएम सेतु जैसे अभियान इसी दिशा में काम कर रहे हैं। साथियों, पिछले कुछ वर्षों में देश में सेल्फ एम्प्लॉयमेंट और एंटरप्रेन्योरशिप की एक नई संस्कृति विकसित हुई है। भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम है। देश में 2,30,000 से ज्यादा, ये आंकड़ा याद रखिए, 2,30,000 से ज्यादा रिकॉग्नाइज्ड स्टार्टअप्स हैं और उसमें भी दो चार नौजवान भी जुड़े हुए होते हैं। अहम बात यह है कि ये बदलाव सिर्फ बड़े शहरों तक सीमित नहीं है और मुझे इसका सबसे ज्यादा आनंद है। आजकल तो टीयर टू और टीयर थ्री शहरों के युवा भी बहुत बड़ी संख्या में स्टार्टअप और इनोवेशन की दुनिया में अपना ताकत दिखा रहे हैं, उनके सामर्थ्य की नोट लेनी पड़ रही है। ये परिवर्तन अब देश की अर्थव्यवस्था का महत्वपूर्ण हिस्सा है। इस बदलाव में हमारी नारी शक्ति की भूमिका भी लगातार बढ़ रही है। आज बड़ी संख्या में विमेन लेड स्टार्टअप्स, ये जब सुनते हैं ना मन गर्व से भर जाता है। मैं जब दुनिया के लोगों को बताता हूं कि हमारे यहां स्टार्टअप में महिलाओं की बहुत बड़ी भूमिका बढ़ रही है, बहुत बड़ी मात्रा में महिलाएं आगे आ रही है, मुद्रा योजना के तहत करोड़ों महिलाओं को फाइनेंशियल सपोर्ट मिला है, पीएम स्वनिधि जैसी योजनाओं ने भी लाखों महिलाओं को आत्मनिर्भर बनने का अवसर दिया है। आज गांवों में, छोटे शहरों में पहले से ज्यादा महिलाएं अपने दम पर नए काम शुरू कर रही हैं। साथियों, नीतियां और निर्णयों के इस अभियान के बीच आपको एक और बात याद रखनी है, किसी भी व्यवस्था की असली ताकत उसके लोग होते हैं, जनता जनार्दन की शक्ति होती है, जनशक्ति होती है और जनशक्ति ही तो राष्ट्र शक्ति बनती है। आप सभी जिस व्यवस्था का हिस्सा बनने जा रहे हैं उसका सीधा संबंध करोड़ों करोड़ों देशवासियों के जीवन से है, करोड़ों करोड़ों देशवासियों की आशा आकांक्षाओं से है। सरकारी नौकरी लोगों के जीवन को आसान बनाने का माध्यम ही होती है। आप जिस भी विभाग में काम करेंगे वहां आपके व्यवहार, संवेदनशीलता और काम करने के तरीके का बहुत महत्व होगा। देश ने आप पर भरोसा किया है, अब ये जिम्मेदारी आपकी है कि आप अपने काम से, अपने आचरण से, अपनी वाणी से, अपने व्यवहार से उस भरोसे को और मजबूती देंगे। देशवासियों के हृदय में एक नया विश्वास भर जाएगा, आपको मिलते ही वो नई आशा के साथ आगे बढ़ेगा। इसलिए हर युवा कर्मयोगी अपने काम को जिम्मेदारी की तरह देखें और मेरे लिए तो आप बहुत कुछ हैं। पहले जमाने में हम सुनते थे ना, सहस्त्र बाहु वाले फलाने, सहस्त्र बाहु वाले ढींकने, आज सरकार के बाहु आप ही है, सरकार का सामर्थ्य आप ही है। जो पहले से सरकार में है वो भी है, जो नए आ रहे हैं वो भी है। आज भारत के लोगों की आकांक्षाएं बहुत बढ़ रही है और मैं इसे विकास की पॉजिटिव साइन मानता हूं। हमें अपने देश के लोगों के एस्पिरेशंस को समझना भी है और उसके हिसाब से उतनी ही तेज गति से काम भी करना है। ऐसे में पब्लिक सर्विस में आने वाले युवाओं की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण हो गई है। आपको लगातार सीखते रहना होगा, खुद को नई टेक्नोलॉजी, नई सिस्टम और नई जरूरतों के हिसाब से तैयार करना होगा। इसमें आपको iGOT कर्मयोगी प्लेटफॉर्म से बहुत मदद मिलेगी। कर्मयोगी प्रारंभ जैसे मॉड्यूल से आपको अपनी जिम्मेदारियां समझने में बहुत सहूलियत होगी। मेरा आपसे आग्रह है कि इसका ज्यादा से ज्यादा लाभ उठाएं। साथियों, आज भारत का युवा दुनिया के हर क्षेत्र में अपनी पहचान बना रहा है। यही स्पिरिट, यही ऊर्जा पब्लिक सर्विस में भी दिखाई देनी चाहिए। विकसित भारत ऐसे ही युवाओं के प्रयास से बनेगा जो अपने काम को देश सेवा का माध्यम मानते हैं, जन सेवा का माध्यम मानते हैं। और हमारे तो यहां तो कहा, जन सेवा ही प्रभु सेवा। मुझे पूरा विश्वास है आज नियुक्ति पत्र पाने वाले हमारे युवा साथी भारत के विकास यात्रा को नई गति देंगे। आपके काम, आपके फैसलों से विकसित भारत के संकल्प की सिद्धि होगी। और आपको वो मंत्र कभी भूलना नहीं है। हमारा मंत्र है नागरिक देवो भव। नागरिक देवो भव, नागरिक का कल्याण ही हमारा कर्तव्य है। मैं एक बार फिर आज नियुक्ति पत्र पाने वाले सभी युवाओं को आगे के जीवन के लिए, देश सेवा के इस अवसर को निभाने के लिए अनेक अनेक शुभकामनाएं देता हूं। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।
1: अभी आप माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से देश भर के 47 स्थानों पर आयोजित 19 रोजगार मेले के अंतर्गत 51,000 से अधिक युवाओं को रोजगार पत्र वितरित करने के अवसर पर आयोजित समारोह और माननीय प्रधानमंत्री का संबोधन सुन रहे थे।

मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलोहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं।

हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। इस समय दिन के 12 बजे हैं। लीजिए सुनिए हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले प्रमुख कार्यक्रमों का संक्षिप्त विवरण।

संध्या 7:45 पर सुनिएगा श्री खाटू श्याम सेवा समिति किरतपुर द्वारा आयोजित श्याम संकीर्तन पर आधारित रेडियो रिपोर्ट। इस कार्यक्रम के प्रायोजक होंगे खाटू श्याम सेवा समिति किरतपुर। शाम 7:32 पर आप सुनेंगे सालाना उर्स दरगाह आलिया ए नजफ हिंद जोगी रंपुरी का एपिसोड नंबर 2। इस कार्यक्रम के प्रायोजक होंगे शिया बफ बोर्ड ऑफ इंडिया। किसान भाइयों के दैनिक कार्यक्रम कृषि जगत में आज शाम 6:05 पर आप सुनेंगे लोकगीतों व रागनियों का सजीव फरमाइशी फोन इन कार्यक्रम हेलो लोक मंजरी।

युवा साथियों के दैनिक कार्यक्रम युववाणी में शाम 5:15 पर खास क्रम रहेंगे गीत आपके नाम और बूस्टर्स। शाम 5 बजे सुनना ना भूलें आकाशवाणी के 90 वर्षों के उपलक्ष्य में आकाशवाणी नजीबाबाद से जुड़े श्रोताओं के अनुभव पर आधारित कार्यक्रम रिश्ता ये खास है।

कार्यक्रम महिला जगत में दिन में 1:15 पर सुनिएगा लघु नाटिका हुनर। दिन में 2:30 पर कार्यक्रम एक ही गीतकार में आज के गीतकार होंगे मजरूह सुल्तानपुरी। लोक संगीत के कार्यक्रम लोकधारा में दिन में 1:45 पर आज हम आपको सुनवाएंगे रविंद्र वर्मा के गाए जौनसारी लोकगीत। और अब से बस थोड़ी ही देर बाद यानी 12:05 पर सुनिएगा कंपेयर्ड और व्हाट्सएप मैसेज पर आधारित कार्यक्रम जिंदगी लाइव।

अभी आप सुन रहे थे हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले प्रमुख कार्यक्रमों के संबंध में जानकारी। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, इस समय दिन के 12:05 हुए हैं। लीजिए पेश है कंपेयर्ड और व्हाट्सएप मैसेज पर आधारित कार्यक्रम जिंदगी लाइव। नमस्कार श्रोताओं, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम जिंदगी लाइव में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं कि इन गर्म हवाओं के दौर में आप अपना और अपने परिवार का अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे। श्रोताओं, मौसम की गर्माहट को देखते हुए बहुत जरूरी है कि हम सब खुद को इन गर्म हवाओं से बचा के रखें। इसलिए श्रोताओं, आपसे आज बातचीत का हमारा विषय रहेगा लू से अस्त व्यस्त होता जनजीवन। तो जैसा कि आप जानते हैं कि आप भी इस कार्यक्रम का हिस्सा बनते हैं, तो इस विषय पर अपने विचार आप साझा करने के लिए हमें मैसेज कर सकते हैं, और मैसेज करने के लिए हमारा व्हाट्सएप नंबर है

7828। तो श्रोताओं, हमें आपके संदेशों का रहेगा इंतजार। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि आखिर लू किसे कहते हैं। गर्मी में चलने वाली बेहद गर्म और शुष्क हवा को लू कहा जाता है। लू लगने पर शरीर का तापमान काफी बढ़ जाता है। इसे आम तौर पर 104 डिग्री फॉरेनहाइट से ऊपर शरीर के तापमान का होना माना जाता है। जब भी हम गर्म हवा के बीच और बहुत देर तक धूप में रहते हैं तो हमारा चेहरा और सिर तेज धूप और गर्म हवा के संपर्क में आता है, तो ऐसी स्थिति में लू लगने की संभावना बढ़ जाती है। श्रोताओं, लू से जुड़ी ढेर सारी काम की बातें आज हम कार्यक्रम में करने वाले हैं, मगर फिलहाल करते हैं थोड़ा सा मनोरंजन और सुनते हैं गर्मी से भरा हुआ ये गीत।

तो श्रोताओं, गीत के बाद कार्यक्रम जिंदगी लाइव में आपका स्वागत है और आज आपसे बातचीत का हमारा विषय है लू से अस्त व्यस्त होता जनजीवन। तो अपने विचार हमारे साथ साझा कीजिए हमारे व्हाट्सएप नंबर 9457078288 पर मैसेज करके। तो चलिए हम वापस लौटते हैं अपने आज के विषय की ओर। लेकिन एक मैसेज स्क्रीन पर हमें दिखाई दे रहा है श्रोताओं, ये हमें भेजा है जिला मुरादाबाद ग्राम दूल्हापुर उत्तर प्रदेश से। हमारे श्रोता हैं ये भेजने वाले मुकेश कश्यप, शीतल कश्यप, सोनू सुरेश, राजपाल, पंकज, काजल, सीमा, मानवी, तन्वी, लक्ष्य सोनी, मोहिनी ऋतिक और बलवीर सिंह। इन्होंने लिखा है कि लू से बचाव के लिए घर से ज़रूरी काम हो तभी बाहर निकलें, सर पर छाता या कोई कपड़ा ज़रूर रखें, एक पानी की बोतल ज़रूर अपने साथ लेकर जाएं, नींबू पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिएं, घर में पीने का पानी ढककर रखें, सोते समय मच्छरदानी ज़रूर लगाएं। मैसेज करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया और बड़ी काम की बातें आपने बताई हैं कि पानी के बोतल अपने साथ रखें, बाहर कहीं जाएं तो सर पर छाता या फिर कोई कपड़ा ज़रूर लेकर जाएं। इसी तरह कार्यक्रम में हमारे साथ बने रहिए। तो श्रोताओं, ये थे हमारे श्रोता जिन्होंने व्हाट्सएप मैसेज के जरिए अपनी बात हम तक पहुंचाई थी। तो जिस तरह से लू हम इंसानों के लिए जानलेवा होती है श्रोताओं, उसी तरह से पशु पक्षियों और पेड़ पौधों के लिए भी नुकसानदायक होती है। अब ये बात और है कि हम तो अपनी परेशानी दूसरों को बता पाते हैं, वहीं पेड़ पौधे जीव जंतु बयां नहीं कर पाते, लेकिन हाँ, कुछ लक्षणों के आधार पर हम इनकी परेशानी को ज़रूर समझ सकते हैं। अब पेड़ पौधों को लू लगी है इसका हम कैसे पता करें, तो ये जानेंगे हम इस म्यूजिकल ब्रेक के बाद।

तो श्रोताओं, इस म्यूजिकल ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे कि किस तरह हम ये जान सकते हैं कि हमारे घर के पौधे लू की गिरफ्त में तो नहीं आ गए हैं। तो इसका सबसे पहला लक्षण है पौधों की पत्तियों का जलना। दरअसल तेज गर्म हवाएं पत्तियों से नमी बहुत ही तेजी के साथ सोख लेती हैं, जिससे कि पत्तियां किनारों से सूख कर भूरे रंग की हो जाती हैं और झुलस जाती हैं। इसके अलावा श्रोताओं, प्रकाश संश्लेषण की जो प्रक्रिया है वो भी इससे प्रभावित होती है, जिससे शाखाएं झुक जाती हैं और कलियां गिरने लगती हैं। तेज धूप के कारण पानी की कमी के चलते पौधों की जो बढ़वार है वो भी एकदम रुक सी जाती है। साथ ही साथ लू के शिकार पेड़ पौधों के फूल समय से पहले ही गिर जाते हैं और फलों का आकार छोटा रह जाता है। तो श्रोताओं, अगर हमें अपनी बगिया के पेड़ पौधों में ये लक्षण दिखाई दें तो फिर हमें तुरंत ही उन्हें लू से बचाने का प्रयास करना चाहिए।

0: प्रसार भारती के पास है भारतीय संस्कृति की अनमोल धरोहर। इसमें शामिल हैं शास्त्रीय संगीत, नृत्य, साहित्य, नाट्य विधाएं, धारावाहिक, वृत्तचित्र और अन्य दुर्लभ रिकॉर्डिंग। और अब आप आकाशवाणी और दूरदर्शन के खजाने की डीवीडीज और सीडीज हासिल कर सकते हैं भारत में अपने संग्रह के लिए। प्रसार भारती के कार्यक्रमों का खजाना अगर है आपको पाना, तो लॉग ऑन कीजिए www.prasarbhartiarchives.co.in। याद रहे www.prasarbhartiarchives.co.in।
1: श्रोताओं, आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम जिंदगी लाइव, और इस कार्यक्रम में आज हम बात कर रहे हैं आपसे लू के विषय में, लू से अस्त व्यस्त होता जनजीवन। तो इस विषय पर अपने विचार हमारे साथ जल्दी से साझा करें, और हमारा नंबर है 9457078288। और इसी के साथ एक मैसेज हमें और मिला है, ये है ग्राम गद्दा रोना से मदन गिरी जी ने हमें भेजा है। सबसे पहले तो आपका शुक्रिया, आपका स्वागत है कार्यक्रम में, आपने हमें मैसेज किया। और आप लिखते हैं कि गर्मी अपनी चरम सीमा पर है, इससे जनजीवन अस्त व्यस्त हो रहा है, हमें लू से बचाव रखना चाहिए। और उसके उपाय हैं कि 12 बजे के बाद बाहर कम से कम निकलें, अगर निकलें तो सिर पर कपड़ा बांध कर और पानी अधिक से अधिक पिए। मौसमी फलों का सेवन करें, तरबूजा, खरबूजा, ककड़ी, खीरा का इस्तेमाल करें। एक बार फिर से आपका शुक्रिया कार्यक्रम में मैसेज करने के लिए, और हमारे सभी श्रोताओं तक आपकी ये सलाह पहुंच रही है मदन गिरी जी। कार्यक्रम में यूं ही

हमारे साथ बने रहिए। और इसी के साथ एक और मैसेज हमें भेजा है हमारे श्रोता हैं ये मोहम्मद फरमान, मोहम्मद सलमान, मोहम्मद इरफान, मोहम्मद इसरार और नरगिस खातून। इन्होंने हमें ये मैसेज भेजा है ज़िला मुरादाबाद ग्राम धूलापुर उत्तर प्रदेश से। देखते हैं कि गर्मी आ गई है, अपना ख्याल रखना, पानी ज़्यादा पीना, खाना कम खाना और सबसे ज़रूरी बात सिर को धूप से बचाना। तो आपका भी शुक्रिया कार्यक्रम में मैसेज करने के लिए। और जैसा कि हम अभी इस ब्रेक से पहले श्रोताओं बात कर रहे थे कि पौधों को अगर लू लग गई है तो इसको हम किस तरह से अपने पौधों को बचा सकते हैं लू से, तो पौधों को लू से बचाने के लिए दिन में 2 बार श्रोताओं पानी ज़रूर लगाएं पौधों में। साथ ही इन्हें तेज़ धूप से बचाने के लिए ग्रीन नेट का इस्तेमाल बेहद कारगर सिद्ध होता है। इससे तेज़ धूप से बचाव होता है और नेट होने के कारण हल्की हल्की सी हवा भी पौधों को मिलती रहती है। अब आप सोच रहे होंगे कि अगर ग्रीन नेट ना हो तो तत्काल पौधों को लू से बचाना हो तो क्या करें? तो ऐसे में श्रोताओं हम कोई बारीक सूती कपड़ा लेकर पौधों को ढक सकते हैं। तो बातचीत के इस क्रम को देते हैं थोड़ा सा विराम और सुनते हैं गर्मी से राहत देने वाला ये प्यारा सा गीत।

श्रोताओं, कार्यक्रम जिंदगी लाइव में आपका फिर से स्वागत है। और श्रोताओं, आप सभी की वजह से हमारे कार्यक्रमों में चार चांद लगते हैं। और जैसा कि आज हो रहा है, आज एक लूका जो विषय हमने लिया है, जो कि जिस पर बात करना बहुत ज़रूरी है, और आप सभी श्रोता हमारे कितने जागरूक हैं ये आपके संदेशों से हमें पता चल रहा है। ये हमारे श्रोता हैं गांव और पोस्ट राहुल नगली से, और इन्होंने इनका नाम है आचार्य सत्यवीर सिंह, अलका चौहान, अक्षत चौहान और भूमिका चौहान। आपने अपने मैसेज में लिखा है कि आजकल बहुत गर्मी हो रही है, तो हर तरह से अपने आप को हमें धूप से बचाना है, मौसम के फलों का इस्तेमाल करना है, हरी सब्जियां खानी है, चाय कॉफ़ी का परहेज करें, और नींबू पानी, बेल का शरबत, सही दही की लस्सी, आम का पना इत्यादि का प्रयोग बेहतर है, और समय के अनुसार योग व्यायाम भी हमें ज़रूर करना चाहिए। बिल्कुल, आपने बहुत अच्छी बात बताई है कि तमाम सावधानियों के बीच हमें योग ज़रूर करना चाहिए। कार्यक्रम में मैसेज करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। एक और मैसेज श्रोताओं हमें मिला है, ये है मिसबा शमशी नगीना से। इनका भी मैसेज यही है कि गर्मी के मौसम में धूप से बचें, बार बार पानी पिएं, कम से कम बाहर निकलें और हल्के रंग के कपड़े पहने। इन्होंने एक बात और लिखी है कि मसालेदार और तला हुआ खाना ना खाएं, हमेशा ताज़े फल और सलाद खाएं, ज़रूरी काम ना हो तो बाहर ना निकलें। बिल्कुल सही बात है, हम जो मसालेदार खाना खाते हैं श्रोताओं, वो गर्मी के मौसम में हमें और ज़्यादा हमारे शरीर में दिक्कत करता है। बेहतर है कि हम हल्का फुल्का और ताज़ा खाना खाएं, कम चिकनाई का खाएं। तो कार्यक्रम को हम आगे बढ़ाते हुए श्रोताओं बात करेंगे कि हमारे जो पेड़ पौधे हैं वो हरे भरे रहें, उन पर लू का प्रभाव ना पड़े, तो इसके लिए हमें मिट्टी में नमी को बनाए रखने के लिए पौधों की जड़ों के आसपास सूखी घास या पुआल बिछा देना चाहिए। श्रोताओं, ऐसे छोटे छोटे उपायों से हम अपने पेड़ पौधों को लू लगने से बचा सकते हैं। गर्मी का पारा 45 डिग्री के आसपास होने पर जिस तरह हम मनुष्य प्रभावित होते हैं, वैसे ही पेड़ पौधे और जीव जंतु भी प्रभावित होते हैं। पेड़ पौधों को हम कैसे बचा सकते हैं, इस बारे में तो हम बात कर चुके हैं, तो अपनी बात करने से पहले आइए बात करते हैं उन जीव जंतुओं की जो बेजुबान होते हैं, हमें अपनी व्यथा बता नहीं सकते। बस हम अपने भीतर दया के भाव को ऊंचा उठाकर लक्षणों के आधार पर उनके दर्द को समझ सकते हैं।

श्रोताओं, कार्यक्रम जिंदगी लाइव में आज हम बात कर रहे हैं लू के प्रभाव के विषय में। तो श्रोताओं, लू, भीषण गर्मी और लू का जो प्रभाव है वो पशु पक्षियों और जीव जंतुओं पर बहुत घातक पड़ता है। इससे उनके शरीर का जो तापमान है वो अचानक बढ़ जाता है, जिससे वो डिहाइड्रेशन, तेज बुखार, हांफने और बेचैनी के शिकार हो जाते हैं। लू का सबसे ज्यादा असर होने पर उनकी जान भी जा सकती है। श्रोताओं, लू लगने पर जानवर खाना पीना कम कर देते हैं, जिससे इनका वजन तेजी से घटने लगता है। गाय और भैंस जैसे दुधारू पशुओं के दूध देने की क्षमता पर भी बुरा असर पड़ता है। अन्य पशु अतिरिक्त गर्मी को बाहर निकालने के लिए तेजी से सांस लेते हैं और मुंह से लार या जीव बाहर निकाल लेते हैं। साथ ही ये सुस्त हो जाते हैं, बेचैनी महसूस करते हैं, कभी बार बार उठते हैं तो कभी बैठते हैं। जंगलों और खुले स्थानों पर रहने वाले जीवों के लिए पानी और भोजन की कमी हो जाती है, जो भुखमरी और मौसमी बीमारियों का कारण बनती है। इन निरीह पशु पक्षियों को लू से कैसे बचा सकते हैं, श्रोताओं जानेंगे इस गीत के बाद।

तो श्रोताओं, हम बात कर रहे थे उन उपायों के बारे में जो कि ऐसे मौसम में हमारे पशुओं को लू से बचाकर रख सकते हैं। तो पशुओं को छायादार स्थान पर रखें, उन्हें तेज धूप से बचाएं, दिन में कई बार उन्हें पानी पिलाएं। श्रोताओं, पशुओं के चारे में भी बदलाव करें, उन्हें खली चोकर के साथ नमक और गुड़ मिलाकर दें ताकि ऊर्जा बनी रहे। पशुओं से खेतों में दोपहर 12 बजे से शाम 5 बजे के बीच काम ना कराएं और खुद भी इस समय खेतों में काम श्रोताओं ना करें। पक्षियों को दाना और पानी की व्यवस्था जरूर करें। श्रोताओं, आजकल तो वो रेडीमेड घोंसले भी आ रहे हैं ना, उन्हें भी हम लगा सकते हैं जिसमें कि पक्षी दोपहर के समय में आराम कर सकते हैं। और इस बात का भी ध्यान रखें कि जहाँ पशुओं को हमने रखा है वहाँ दरवाजे और वहाँ की जो खिड़कियाँ हैं उनको गीले टाट या बोरी से ज़रूर ढकें ताकि हवा की गर्माहट कुछ कम हो जाए। यदि पशु बीमार हो गया है लू के कारण तो उसे तुरंत नज़दीकी पशु चिकित्सालय से संपर्क कर उसका उपचार कराएं। टोल फ्री नंबर 1962 पर कॉल करके सहायता प्राप्त कर सकते हैं।

और श्रोताओं कार्यक्रम में हम शामिल कर रहे हैं अब ये मैसेज जो कि हमें भेजा है नगीना से अनिल बिनोचा जी ने। ये लिखते हैं कि लू या हीट स्ट्रोक लगने से तेज हमें बहुत सारी दिक्कतें हो सकती हैं, जैसे कि इन्होंने लिखा है कि चक्कर आ सकते हैं, मितली आ सकती है, ऐसे में नींबू पानी पिए, माथे पे ठंडे पानी की पट्टियां रखें और अगर दिक्कत बढ़े तो तत्काल ही डॉक्टर से संपर्क करें। साथ ही इन्होंने एक बड़ी मार्मिक बात कही है कि जब ये चिनाई करते हुए मजदूरों को देखते हैं तो इनका मन बहुत ही व्यथित हो जाता है। विनोचा जी बहुत ही अच्छी बात आपने कही है, जब ऐसे गर्म मौसम में हम किसी श्रमिक वर्ग को ऐसा काम करते हुए देखते हैं जिसमें कि कोई राहत नहीं है, कोई छाया नहीं है और धूप में लगे रहना है, तो वाकई कितना वो कष्टदायक होता है वो जीवन, और फिर भी जिम्मेदारी है तो करना होता है। और इसी के साथ अब हम बात करेंगे, हमने पशु पक्षियों और पेड़ पौधों की तो बात कर ली थी, लेकिन हम अब बात करेंगे हमारे यानी कि हम मनुष्यों की सुरक्षा की। लेकिन उससे पहले सुन लेते हैं एक और गीत।

तो श्रोताओं, हमें लू से बचने के लिए कुछ सुरक्षा उपाय अपनाने हैं, जैसे कि आम का पना, नारियल पानी, फलों का जूस, ORS, घोल, हरी सब्जियां और पर्याप्त मात्रा में पानी पीते रहना है। दोपहर के समय दरवाजे और खिड़कियों पर पर्दे डालकर रखने हैं। कोशिश करनी है कि अगर कोई ज़रूरी काम ना हो तो दोपहर के समय कहीं बाहर ना जाएं। अगर जाना पड़ता है तो फिर सिर को किसी सूती कपड़े से ढककर जाएं। छाते को ले जाना बिल्कुल भी ना भूलें और अपने पूरे शरीर को श्रोताओं हमें ढक के रखना है। थोड़ी थोड़ी देर में हमें पानी पीते रहना है और अगर किसी को चक्कर आते हैं, बुखार तेज़ हो जाता है, साथ ही उल्टियां होने लगती हैं, तो देर बिल्कुल भी ना करें और तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। ये छोटे छोटे उपाय हैं श्रोताओं, जिन्हें अपना कर हम लू से अपना बचाव कर सकते हैं, क्योंकि श्रोताओं ये तो मौसम की बात है, इसमें हम सिवाय जागरूकता रखने के, सावधानी बरतने के और कुछ नहीं कर सकते हैं। ये मौसम लू का है तो लू चलेगी, थोड़े दिनों के बाद जब सर्दियाँ आएंगी तो सर्द हवाएँ चलेंगी, तो हमें उनसे भी बचना होगा, तो हमें प्रकृति के अनुकूल अपने आप को ढालना पड़ता है, यही हमारा जीवन है। तो आप सभी लोग अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें श्रोताओं। इसी कामना के साथ आज का कार्यक्रम संपन्न करने की हम आपसे लेंगे अनुमति, लेकिन आपको चलते चलते हम सुनवा रहे हैं एक और प्यारा सा गीत।

0: अभी आप सुन रहे थे कंपेयर्ड और व्हाट्सएप मैसेज पर आधारित कार्यक्रम जिंदगी लाइव, आकाशवाणी का ये नजीबाबाद केंद्र है। दिन का एक बजने को है, कुछ ही पलों में आप सुनेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज 19वें रोजगार मेले में विभिन्न सरकारी विभागों और संगठनों में 51,000 से अधिक नवनियुक्त युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए रोजगार मेले को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि भारत दुनिया के विभिन्न देशों के साथ भी साझेदारी कर रहा है, जिसका उद्देश्य युवाओं को अवसर, रोजगार और वैश्विक अनुभव देना है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत दुनिया का भरोसेमंद आपूर्ति श्रृंखला साझेदार बन रहा है। उन्होंने कहा कि दुनिया भारत की विकास यात्रा का हिस्सा बनने के लिए उत्सुक है। श्री मोदी ने कहा कि हर भारतीय 2047 तक देश को विकसित भारत बनाने के संकल्प के साथ काम कर रहा है।
2: आज हर भारतीय एक बड़े संकल्प के साथ आगे बढ़ रहा है। ये संकल्प 2047 तक विकसित भारत के निर्माण का संकल्प है। इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आज देश अलग अलग सेक्टर्स में निवेश कर रहा है और इस निवेश से देश के युवाओं के लिए रोजगार

सम्राट चौधरी ने घोषणा की है कि राज्य में अगले 5 वर्ष में 1 लाख शिक्षकों की भर्ती की जाएगी। शिक्षा विभाग के उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे हर साल कम से कम 20,000 शिक्षकों की भर्ती सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि भर्ती प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने के लिए अब शिक्षकों की नियुक्ति के लिए अधिसूचना हर साल जुलाई महीने में जारी की जाएगी। बिहार सरकार ने 21 जून को नीट यूजी पुनः परीक्षा में शामिल होने वाले राज्य के सभी छात्रों के लिए सरकारी बसों में मुफ्त यात्रा की घोषणा की है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने सोशल मीडिया पर यह जानकारी दी। आंध्र प्रदेश के श्री सत्यसाई जिले में आज राष्ट्रीय सीमा शुल्क अप्रत्यक्ष कर और नारकोटिक्स अकादमी में भारतीय राजस्व सेवा के 76वें बेंच के अधिकारियों की पासिंग आउट परेड आयोजित की गई। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। इस अवसर पर श्री चौधरी ने कहा कि केंद्र सरकार ने युवाओं को लगभग 4 करोड़ रोजगार के अवसर सृजित किए हैं। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो आज दोपहर नई दिल्ली पहुंचे। वे मंगलवार को नई दिल्ली में होने वाली क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में भाग लेने के लिए 4 दिन की भारत यात्रा पर हैं। श्री रूबियो आज सेवा तीर्थ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे। अमेरिकी विदेश मंत्री कल विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर के साथ द्विपक्षीय बैठक भी करेंगे। इंडियन ऑयल ने कहा है कि देश में पेट्रोल और डीजल की आपूर्ति स्थिर है और ईंधन की कोई कमी नहीं है। इंडियन ऑयल ने एक बयान में कहा कि कुछ खुदरा दुकानों में मांग आपूर्ति असंतुलन और चुनिंदा क्षेत्रों में मांग बढ़ने के कारण अस्थिरता की खबर है। ऐसे मामले देश भर में 42,000 से अधिक खुदरा दुकानों के इंडियन ऑयल के नेटवर्क में से कुछ खुदरा दुकानों तक ही सीमित हैं। इंडियन ऑयल ने बताया कि 1 मई से 22 मई की अवधि के दौरान कंपनी ने ईंधन की बिक्री में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की है। इस दौरान पेट्रोल की बिक्री में 14% जबकि डीजल की बिक्री में करीब 18% की वृद्धि हुई है। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में आज वृद्धि हुई। पिछले 10 दिन में तेल के मूल्यों में तीसरी बार वृद्धि हुई है। दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 87 पैसे बढ़कर 99.51 रुपए प्रति लीटर हो गई है जबकि डीजल का मूल्य 51 पैसे बढ़कर 92.49 रुपए प्रति लीटर हो गया है। इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड ने आज सीएनजी की कीमत में 1 रुपए की वृद्धि की है। इस वृद्धि के बाद राजधानी में 1 किलोग्राम सीएनजी की नई दर 81.09 रुपए हो गई है। आईपीएल क्रिकेट में आज लखनऊ सुपर जायंट्स का मुकाबला पंजाब किंग्स से होगा। ये मैच लखनऊ में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। कल रात सनराइजर्स हैदराबाद ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को 55 रन से पराजित किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: highlighted that new employment opportunities are being created for the youth of the country.
1: आज हर भारतीय एक बड़े संकल्प के साथ आगे बढ़ रहा है. ये संकल्प 2047 तक विकसित भारत के निर्माण का संकल्प है. इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आज देश अलग अलग सेक्टर्स में निवेश कर रहा है और इस निवेश से देश के युवाओं के लिए रोजगार के लाखों नए अवसर बन रहे हैं, जिसे आज भारत में सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग की पूरी सप्लाई चेन तैयार की जा रही है.
0: बिहार चीफ मिनिस्टर सम्राट चौधरी हैज अनाउंस्ड दैट 1 लाख टीचर्स विल बी रिक्रूटेड इन द स्टेट ओवर द नेक्स्ट 5 years. During a high-level review meeting of the Education Department, the Chief Minister directed the officials to ensure recruitment of at least 20,000 teachers every year. He said that the notification for teacher appointments will now be issued annually in the month of July to streamline the recruitment process. The Bihar government today announced free travel on state-run buses for all students appearing for the NEET UG re-examination scheduled on June 21. In a social media post, Chief Minister Samrat Chaudhary said all NEET candidates in the state will be allowed to travel free of cost on government buses. The Chief Minister also appealed to district administrations, temples and non-governmental organizations to help arrange drinking water and sattu for students and their parents at bus stands, railway stations and other major locations. The Central Board of Secondary Education, CBSE, has extended the last date for obtaining scanned photocopies of answer books for Class 12 board examinations by one more day until tomorrow. Earlier, the deadline was today. The CBSE said the decision was made after its website experienced unprecedented traffic over the past few days, along with several attempts of unauthorized interference, making it prone to disruptions. Indraprastha Gas Limited, IGL, increased the price of compressed natural gas, CNG, by 1 rupee today. After the price hike, the new rate for 1 kilogram CNG in the national capital is 81 rupees and 9 paise. Indian Oil has reassured customers and the general public that there is no overall shortage of petrol and diesel in the country. In a statement, the oil marketing company said that the current situation being witnessed at certain retail outlets is highly localized and temporary in nature. In IPL cricket, Lucknow's Super Giants will take on Punjab Kings in Lucknow this evening at 7:30 p.m. Last night, Sunrisers Hyderabad defeated Royal Challengers Bengaluru by 55 runs in Hyderabad. And that is the end of this news bulletin.
2: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है.
3: अब आप शाइस्तवानों से इलाकाई खबरें सुनिए. वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज 19वीं रोजगार मेले में 51,000 से ज्यादा नए भर्ती होने वाले नौजवानों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए तकरीनामे तकसीम किए. इस मौके पर प्रोग्राम से खिताब करते हुए वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि मुल्क भर के हजारों नौजवानों के लिए आज का दिन बहुत अहम है.
1: आज देश भर के हजारों युवाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण दिवस है. आज 51,000 से ज्यादा युवाओं को सरकारी नौकरी का नियुक्ति पत्र मिला है. आज आप सभी देश की विकास यात्रा में अहम भागीदार बन रहे हैं, जिम्मेवार भागीदार बन रहे हैं. रेलवे, बैंकिंग, डिफेंस, हेल्थ, एजुकेशन और दूसरे कई क्षेत्रों में आप सभी नई जिम्मेदारियां संभालने जा रहे हैं. आने वाले वर्षों में विकसित भारत के संकल्प को सिद्ध करने में आप सभी महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले हैं.
3: समाजी इंसाफ के मरकजी वजीर मुमलकत बीएल वर्मा लखनऊ में तकरीबन 330 अहलकारों को तकरीनामे तकसीम किए. ये रोजगार मेला लखनऊ समेत मुल्क भर में 47 मुकामात पर मुनक्किद किया गया. मरकजी हुकूमत अब तक 12 लाख से ज्यादा नौजवानों को शफाफ तरीके से नौकरियां दे चुकी हैं. वहीं वज़ीर-ए-आला योगी आदित्यनाथ ने सोशल मीडिया पोस्ट में इन तमाम नौतैनात नौजवानों को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद दी. उन्होंने अवामी फलाही इकदाम के लिए वज़ीर-ए-आज़म का भी तहदिल से शुक्रिया अदा किया. मर्दमशुमारी 2027 के पहले मरहले में कल रियासत में घरों की गिनती और फहरिस्त साजी शुरू हुई. इस सिलसिले में शुमार कुंदगान और निगरानों ने रियासत के 3,89,312 घरों की फहरिस्तबंदी के ब्लॉक्स में सर्वे का काम शुरू किया. इस दौरान

0: लखनऊ में वजीर आला की रिहायश गाह, गोरखपुर में गोरखनाथ मंदिर और आगरा में ताजमहल को भी शुमार किया गया। इस मरतबा न सिर्फ घरों की गिनती बल्कि रियासत की तारीखी और सकाफती शिनाख्त भी मरदमशुमारी का हिस्सा बन रही है। मुहिम के पहले ही दिन 1,35,00,000 से ज्यादा घरों पर मरदमशुमारी के घरों के नंबर लगाए गए हैं। बुजुर्ग शहरियों के लिए जीवन मोबाइल एप्लीकेशन कल मुल्क भर में शुरू की गई। इसका मकसद बुजुर्ग शहरियों के लिए सपोर्ट सिस्टम को मुस्तहकम करना है। जीवन ऐप सरकारी फलाही स्कीमों, हंगामी इमदाद और बुजुर्ग शहरियों की रिहाइश के बारे में मालूमात फराहम करेगी। वजारत जल शक्ति के पीने के पानी और सफाई सुथराई के महकमे की तरफ से जारी करदा स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2025 की रिपोर्ट में वाराणसी को सेंट्रल जोन का बेहतरीन जिला करार दिया गया। रियासतों में उत्तर प्रदेश पहले नंबर पर। वाराणसी के चीफ डेवलपमेंट अफसर प्रखर कुमार सिंह ने कहा कि यह सर्वे स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के तहत मुल्क के देहातों में सफाई की असल हालत का जायजा लेने के लिए किया गया था। सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन CBSE ने दर्जे 12 के बोर्ड इम्तिहान के जवाबी शीटों की स्कैनशुदा कॉपियां हासिल करने की आखिरी तारीख को एक दिन बढ़ाकर 24 मई तक कर दिया है। CBSE ने यह फैसला अपनी वेबसाइट पर दरखास्तों में इजाफे और तकनीकी खराबियों के बाद किया। सुप्रीम कोर्ट यकम जुलाई से नवी जमात के तलबा के लिए 3 जबानों को लाजमी करार देने के CBSE के फैसले को चैलेंज करने वाली एक अर्जी पर अगले हफ्ते समाअत करेगी। सीनियर वकील मुकुल रोहतगी ने चीफ जस्टिस सूर्यकांत की सरबराही वाली और जस्टिस जॉय मालिया बागची और विपुल एम पंचोली पर मुश्तमिल बेंच के सामने मामला उठाया। उन्होंने कहा कि मुफाद आमा की अर्जी तलबा, असातजा और वालदैन ने दायर की है। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में आज 91 पैसे फी लीटर तक का इजाफा किया गया। ईंधन की कीमतों में ये तीसरी नजरेसानी है, जिसमें 15 मई को 3 रुपये फी लीटर, 19 मई को 90 पैसे का इजाफा हुआ। ये इजाफा ईरान के तनाजे और अबनाए हरमूज में रुकावटों के बाद आलमी खाम तेल की कीमतों में इजाफे के दरमियान हुआ है। बाराबंकी के फतेहपुर थाना इलाके में वाकई झांसा गांव में देर रात सड़क हादसे में एक ही खानदान के 4 अफराद की मौत हो गई। हादसा उस वक्त पेश आया जब तेज रफ्तार डंपर ने सड़क किनारे सोए हुए खानदान को कुचल दिया। हादसे में जख्मी होने वाली एक खातून को तश्वीशनाक हालत में लखनऊ के डॉक्टर राम मनोहर लोहिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज रिफर किया गया। ड्राइवर गाड़ी छोड़कर फरार हो गया। पुलिस ने डंपर को कब्जे में लेकर ड्राइवर की तलाश शुरू कर दी। आज IPL क्रिकेट मुकाबले में लखनऊ सुपर ज्वाइंट्स का मुकाबला पंजाब किंग्स से होगा। ये मैच लखनऊ के इकाना स्टेडियम में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। शदीद गर्मी और हीट वेव के हालात रियासत को अपनी लपेट में ले रहे। महकमा मौसमियात के मुताबिक बांदा कल लगातार 6ठे दिन रियासत का गर्म तरीन जिला रहा। महकमा मौसमियात ने अगले 3 दिनों तक रियासत के मशरिकी और मगरबी इलाकों में दिन के वक्त हीट वेव की वार्निंग जारी की है। लखनऊ महकमे मौसमियात के सीनियर साइंसदान अतुल कुमार सिंह ने कहा कि इस दौरान कई इलाकों में तेज धूल के तूफान की भी तवक्को है। इसी के साथ आकाशवाणी लखनऊ से इलाकाई खबरें खत्म हुई। अगला बुलेटिन दोपहर 2 बजे FM पर नशर किया जाएगा।
1: मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलो हर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। इस समय दिन के 1:15 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम महिला जगत।

कोई भी मुश्किल काम या समाज में कोई सार्थक बदलाव एक दिन में नहीं हो सकता, लेकिन धैर्य और लगन से एक दिन जरूर होगा। इसी पॉजिटिव थॉट्स के साथ शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। नमस्कार, स्वागत, अभिनंदन हमारी श्रोता बहनों का और साथ में हमारे सभी श्रोताओं का भी। बहनों, प्रकृति की बात हो या जीव जंतुओं की, इनके प्रति संवेदनशील होना ही असली मानवता है। आखिर हम सबका जीवन इन सबसे मिलकर ही तो बना है। बात अगर महिलाओं की हो तो प्राचीन वेदों से लेकर और आधुनिक समय तक महिलाएं प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण और पर्यावरण जागरूकता के प्रति एक सूत्रधार की तरह काम करती आई हैं। अब अगर हम आपको उत्तराखंड के चिपको आंदोलन की बात करें तो भला गौरा देवी को कौन नहीं जानता, जिन्होंने पेड़ों से लिपटकर उन्हें कटने से बचाया। राजस्थान की अमृता देवी बिश्नोई, जिन्होंने पेड़ों की रक्षा के लिए अपनी और अपनी तीन बेटियों का बलिदान दे दिया। ऐसे अनगिनत

उदाहरणों से भरा है हमारा समाज, हमारा इतिहास। और जहाँ प्रकृति के प्रति महिलाओं का जो योगदान है वो अतुलनीय है। आज भी महिलाएं वनों और वन्य जीवों के अवैध शिकार को रोकने के लिए सक्रिय भूमिका निभा रही हैं। महिलाओं की अगर हम बात करें तो भोजन, पानी, ईंधन, इन सब के इर्द गिर्द ही तो हम महिलाओं का जीवन बीतता है, और जिससे हम प्रकृति के सबसे करीब होती हैं और इन सबको करीब से महसूस करती हैं। इनकी जरूरत कितनी और किन्हें इन्हें कैसे इन्हें हमें उपयोग करना है, यानी कि इन संसाधनों का उपयोग हम महिलाएं समझदारी से करती हैं, और ऐसी समझदारी से हम सबको चलना भी चाहिए। अब देखिए, आजकल तो चारों तरफ, खासकर हमारे तो प्रधानमंत्री भी कह रहे हैं कि ऊर्जा की बचत कीजिए, और ऊर्जा की बचत तभी होगी जब हम जो है समझदारी से चलेंगे, और हमारे जो छोटे छोटे प्रयास हैं ये आगे चलकर बड़े साबित हो सकते हैं। तो इन संसाधनों का उपयोग हम समझदारी से करें, इनके प्रति हम यूं कहें कि मितवई हम बने, क्योंकि ये सीमित मात्रा में हैं और पूरे देश के लिए इन्हें जुटा पाना सच में एक चुनौती भरा काम है। तो हम समझदारी से चलेंगे तो सारी मुश्किलें आसान हो जाएंगी। और अब कार्यक्रम में हम आगे बढ़ेंगे कुछ संदेशों के साथ।

0: कम समय में ज्यादा मुनाफा, बस एक क्लिक में, कमाल है।
1: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए, RBI कहता है
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: इन संदेशों के बाद कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं बहनों। अब बात करेंगे हम आधी आबादी की, जहां महिलाएं जमीन से लेकर आसमां तक और संस्कृति से लेकर संस्कारों तक अपनी सफलता और संघर्षों की कहानी खुद बयां करती हैं। और आज के आधी आबादी में आपको एक संगीत में सफर तय करवाते हैं, क्योंकि आज की आधी आबादी संगीत की दुनिया से है, जिनके गीतों में मिट्टी की खुशबू है और संस्कृति की झलक। तो शुरू करते हैं। लोकगीत हमारे समाज की परंपराओं को आगे लेकर चलते हैं, समय के साथ ये लुप्त ना हो, इसीलिए इन्हें और अपनी संस्कृति को सहज कर आगे बढ़ाने का काम करते हैं लोक गायक। इन्हीं लोक गायिकाओं में शामिल है गीता रबारी।

0: कच्छ की कोयल के नाम से प्रसिद्ध गीता रबारी का जन्म 31 दिसंबर 1996 में कच्छ के टपर गांव में एक साधारण पशुपालक के घर में हुआ। रबारी समाज से होने के कारण ये लोग पशुओं को चराने के लिए जंगल जाते और जंगलों में ही रहते। गीता को बचपन से ही गाने का शौक था। गीता जब 5वीं कक्षा में थी तब गाना गाना शुरू कर दिया। अच्छी आवाज होने के कारण आसपास के गांव वाले अक्सर उन्हें गाने के लिए बुलाते। भजन, लोकगीत और संत वाणी से गायन का सफर शुरू किया और फिर ठान लिया कि गायिका ही बनना है। लेकिन रबारी समाज में लड़कियों का मंच पर गाना एक हिम्मत भरा फैसला था। गीता ने लोक गीतों में अपनी प्रसिद्धि न केवल देश बल्कि विदेशों में भी बना ली। लेकिन इतनी प्रसिद्धि पाने के बाद भी वो अपनी जड़ों से जुड़ी रही और अपनी पारंपरिक गुजराती वेशभूषा में ही स्टेज पर परफॉर्मेंस देती। उनका गुजराती लोकगीत रोणा शेरमा, ये गीत जब सुर्खियों में आया तो ये लोगों के दिलों पर छा गया और युवाओं के बीच गीता बहुत लोकप्रिय हो गई।
1: शेरमा रे रोणा शेरमा रे, चाली किस्मत ने गाड़ी टॉप गेर।

उनको देखकर और सुनकर लोग कच्छ की संस्कृति की तरफ भी आकर्षित हुए। गीता बताती है, जब वो छोटी थी तब उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी जी के सामने भी एक गीत सुनाया था। तब मोदी जी गुजरात के मुख्यमंत्री थे। गीता स्कूल पिकनिक के लिए रण उत्सव गई थी। वहाँ प्रधानमंत्री मोदी से उनकी भेंट हुई। वो सारे बच्चों को एक एक करके आगे बुला रहे थे और बच्चे कोई कविता सुना रहा था तो कोई जोक। गीता बताती है कि मुझे भी आगे बुलाया गया और पूछा, तुम्हें क्या आता है? तो मैंने एकदम से कहा, मुझे तो सिर्फ गाना आता है, और मैंने गुजराती गीत सुनाया। तब मोदी जी ने मुझे भेंट स्वरूप 250 रुपए दिए। यहाँ उनके जीवन में गायन का महत्वपूर्ण पड़ाव शुरू हुआ, क्योंकि ये उनका टर्निंग पॉइंट भी साबित हुआ। और स्कूल से शुरू हुआ ये सफर आज देश दुनिया तक मशहूर हो गया। कच्छ की कोयल के नाम से मशहूर गीता अपने गीतों के जरिए पूरी दुनिया में धूम मचा रही हैं। देश विदेश में उनकी मधुर आवाज और विशेष शैली में गीतों को गाने के कारण उनके कई प्रशंसक हैं। गीता ने बिना किसी औपचारिक प्रशिक्षण के अपने दम पर संगीत की दुनिया में एक खास पहचान बनाई। गीता बेटियों की शिक्षा की तरफ भी बहुत जोर देती हैं, क्योंकि वो कहती हैं कि हमें बेटी होने के कारण अधिक नहीं पढ़ाया गया, लेकिन मैं चाहती हूँ कि हर बेटी खूब पढ़े और जीवन में आगे बढ़े। बेटियों पे गाया उनका ये गीत बेहद मशहूर है। सच में गीता जैसी युवा बेटियां हमारे लिए एक प्रेरणा है कि हम अपनी सादगी और अपनी संस्कृति के साथ भी देश दुनिया में अपनी पहचान बना सकते हैं।

0: आधी आबादी क्रम में ये थी गीता रबारी, गुजरात की लोक गायिका। और आज है महीने का चौथा शनिवार, और इस शनिवार को हम आपको सुनवाते हैं लघु नाटिका। किसी भी विषय को लेकर आप तक हम ये नाटिका पहुंचाते हैं। तो आज भी हम आपके लिए लेकर आए हैं नाटिका हुनर। इसमें आलेख बीना कोटनाला, प्रतिभागी अक्षय त्यागी, विवेक प्रताप सिंह, सना परवीन और बीना कोटनाला। निर्देशन है इसमें अंकित सैनिका और प्रस्तुत करता है शोभित शर्मा। तो सुनते हैं नाटिका हुनर। कहते हैं सपने कभी नहीं मरते, बस जिम्मेदारियों की धूल में कहीं दब जाते हैं। लेकिन जब समय करवट लेता है, वही सपने उम्मीद बनकर लौटते हैं। और कई बार जिंदगी हमें वहीं लौटाती है जहां से अपने सपनों को हमने अधूरा छोड़ दिया था। बस जरूरत होती है तो हिम्मत के साथ एक नई शुरुआत की। और इसी ताने बाने से जुड़ी है हमारी आज की ये लघु नाटिका।
1: पलक बेटा, पहले मम्मा को देखो और फिर वैसे ही स्टेप करना जैसे मैं कर रही हूँ, ठीक है ना? लेट्स स्टार्ट।
2: ओके मम्मा।
3: कितनी देर से बैल बजा रहा हूँ, तुम्हें सुनाई नहीं देता?
1: सॉरी, वो मैं ना पलक को डांस प्रैक्टिस करवा रही थी। बताया था ना आपको कि उसके स्कूल में सोलो डांस कॉम्पिटिशन है, तो ना साउंड के कारण ना बैल सुनाई नहीं दी, सॉरी।
3: अरे तो इसका मतलब ये थोड़ी कि तुम्हें कुछ सुनाई और दिखाई ना दे।
2: पापा आप आ गए, देखो आज गुंगरू के साथ कथक की प्रैक्टिस करवाई मम्मी ने, आपको भी दिखाऊं मैंने क्या सीखा।
3: अभी नहीं, अभी मैं बहुत थका हुआ हूँ। और ये डांस वांस क्या है पलक, जाकर अपनी पढ़ाई पे फोकस करो।
2: ठीक है पापा।
1: ये क्या तरीका है राहुल बच्चे से बात करने का, वो तुम्हारे पास कितने प्यार से आई थी और तुमने उस पर ऑफिस का सारा गुस्सा निकाल दिया।
3: वो प्लीज नैना, अब तुम मत शुरू हो जाना, मेरा पहले से ही दिमाग बहुत खराब है, जाकर चाय बना के लाओ।
1: ये लो चाय, और अब बताओगे भी मुझे कि हुआ क्या है, किस बात की टेंशन लेकर बैठे हो तुम?
3: कुछ नहीं।
1: कुछ नहीं तो फिर जब से आए हो ठीक से बात तक नहीं कर रहे हो। देखो अगर कोई टेंशन है ना तो शेयर करो, बताने से मन भी हल्का हो जाएगा और हो सकता है मैं कोई सॉल्यूशन दे दूं, तुम्हारी कोई हेल्प कर दूं।
3: तो बिना जाने तुम मेरा पीछा नहीं छोड़ोगी?
1: पीछा छोड़ने के लिए साथ नहीं पकड़ा।
3: वो ऐसा है ना कि नैना, मेरी जॉब चली गई है।
1: जो हो गया सो हो गया, अब इतनी भी टेंशन मत लो, एक जॉब नहीं रही तो दूसरी मिल जाएगी।
3: इतना आसान है क्या जॉब का मिलना, कितना कंपटीशन है आजकल। मुझे सबसे बड़ी चिंता इस बात की है कि जब हर महीने सैलरी मिलती है तब भी हमारे घर के खर्चे मुश्किल से पूरे होते हैं, और ऐसे में कुछ समय भी अगर मैं घर पे बैठ गया तो घर के खर्चे चलाना बहुत मुश्किल हो जाएगा।
1: आप इतनी चिंता मत करो, देखो हमारी सेविंग्स कब काम आएंगी, मुश्किल वक्त के लिए ही तो बचत की जाती है। अच्छा अभी थोड़ी देर बिना किसी चिंता के बैठो, और तब तक मैं खाना बनाकर लाती हूँ, तब मैं आपसे बात करती हूँ।
2: पापा पापा आप मुझसे गुस्सा हो?
3: नहीं बेटा, पापा बहुत थक जाते हैं ना ऑफिस में, इसलिए ठीक से बात नहीं की आपसे।
2: आप ऑफिस में बहुत काम करते हैं तभी तो थक जाते हैं, एक काम करिए आप कल ऑफिस ही मत जाना।
3: हाँ बेटा, कल ही क्या, अब तो पता नहीं ऑफिस जाना कब हो।
1: पलक खाते समय बात नहीं करते बेटा, चुपचाप खाना खाओ और टाइम से सो जाओ, सुबह स्कूल भी तो जाना है ना।
2: मैंने तो खा लिया मम्मी, मैं सोने जा रही हूँ। गुड नाइट मम्मी, गुड नाइट पापा।
1: अच्छा अगर आप बुरा ना मानो तो एक बात कहूँ मैं आपसे?
3: हाँ, जैसे मेरे मना करने पे तुम बताओगी नहीं ना।
1: वैसे मैं ना डांस क्लास शुरू करने की सोच रही हूँ।
3: तो सोचो सोचो, सोचने में जाता ही क्या है।
1: आप मेरी बात को हल्के में ले रहे हो, मैं सच में बच्चों को डांस सिखाना चाहती हूँ, आखिर कथक में डिग्री होल्डर हूँ मैं, मुझे खुद भी डांस बहुत पसंद है।
3: लेकिन नैना मुझे ये नाच गाना बिल्कुल पसंद नहीं।
1: ओ, शादी से पहले तो आप मेरे डांस की बहुत तारीफ किया करते थे, बहुत पसंद था आपको।
3: तब की बात और कुछ थी, अब तुम मेरी पत्नी हो।
1: पत्नी हूँ तो क्या, शादी होने से हुनर हुनर नहीं रहता, और ये नाच गाना नहीं है, मेरा हुनर है।
3: देखो नैना, इस वक्त मैं बहस के बिल्कुल मूड में नहीं हूँ, मैं पहले से ही बहुत परेशान हूँ, प्लीज मुझे चैन से सोने दो।
1: हेलो।
2: हाय नैना, कैसी हो तुम?
1: ठीक हूँ। और रोमा, तुम्हारी जॉब कैसी चल रही है?
2: मस्त चल रहा है सब, पर तुम कुछ परेशान लग रही हो।
1: नहीं तो, लेकिन तुम बहुत खुश लग रही हो।
2: हाँ, और मेरी बात सुनकर अब तुम भी खुश हो जाओगी।
1: अच्छा, ऐसी भी क्या बात है मैडम, हम भी तो सुने जरा।
2: तो सुनो, आने वाले संडे को हम सारे कॉलेज फ्रेंड्स पिकनिक पर जा रहे हैं, सब खूब इंजॉय करेंगे।
1: ये तो बहुत अच्छा प्लान है तुम लोगों का, लेकिन सॉरी रोमा, मैं नहीं आ पाऊंगी।
2: क्यों नहीं आ पाओगी? ऐसे मौके पर तो तुम सबसे ज्यादा एक्साइटेड रहती हो। फिर आज क्या हुआ?
1: एक्चुअली वो राहुल अपनी जॉब को लेकर बहुत परेशान है, और ऐसे में मैं उन्हें अकेला नहीं छोड़ सकती।
2: तूने तो सारा हैप्पी मूड ही खराब कर दिया। अच्छा एक बात कहूँ?
1: बोल।
2: उतार चढ़ाव तो जिंदगी में आते जाते रहते हैं, लेकिन तुमको याद दिला दूं कि तुम कथक की बेहतरीन डांसर हो, और तुम चाहो तो डांस क्लास शुरू भी कर सकती हो। तुम्हारे हुनर को पहचान भी मिल जाएगी और घर में तो पैसे भी आएंगे। क्या कहती हो?
1: बात तो तुम सही कह रही हो, लेकिन शादी के बाद ना रोमा सब कुछ बदल गया है।
2: फिर भी मैं कहूंगी टैलेंट कभी खत्म नहीं होता मैडम, तुम इस बारे में अच्छे से सोच समझ कर फैसला लो। डरो नहीं, शुरू तो करो, पहला कदम तो उठाओ, बाकी रास्ता खुद बन जाएगा। अच्छा नैना, अब रखती हूँ, फिर बात करते हैं।
1: राहुल, फाइनली मैंने बहुत सोचा और सोच समझ कर ये फैसला लिया है कि मैं डांस क्लास शुरू कर रही हूँ।
3: हाँ, तुमने तो सोच लिया, और पलक को कौन देखेगा? मैं क्या हमेशा घर पे बैठने वाला हूँ?
1: आप मेरी बात को अलग ट्रैक पर लेकर जा रहे हो। पलक को मैं देखूंगी और हम दोनों मिलकर घर के लिए काम करेंगे। कमाएंगे तो घर के हालात अच्छे ही तो होंगे। वैसे मैं अभी ऑनलाइन डांस क्लास शुरू करूंगी, ऐसे में घर और काम दोनों को मैं मैनेज कर सकती हूँ।
3: तो तुमने जब सब कुछ सोच लिया है तो मुझे क्यों बता रही हो? तुम जानो, तुम्हारा काम जाने।
0: नैना अब हिम्मत के साथ और दृढ़ निश्चय के साथ ऑनलाइन डांस क्लास शुरू कर देती है, और धीरे धीरे नैना की डांस क्लास मशहूर होने लगी। सोशल मीडिया पे उसके वीडियो वायरल होने लगे और नैना को पहचान के साथ

0: शोहरत और पैसा भी मिलने लगा।
1: अरे नैना, तुमने तो कमाल कर दिया। आजकल तुम्हारे कथक डांस की चर्चा पूरे शहर भर में हो रही है। मैं ना कहती थी तुम गजब की डांसर हो। हुनर को बस एक मौके की तलाश होती है।
2: रोमा, तुमने हमेशा मुझे मोटिवेट किया है और हमेशा सही रास्ता भी दिखाया है। तुम मेरी सच्ची दोस्त हो जिसने हर मुश्किल वक्त में मेरा साथ दिया है। थैंक यू सो मच।
1: नैना जी, दोस्ती का एक उसूल होता है, नो थैंक यू नो सॉरी।
2: अच्छा, ये डायलॉग बाजी हो गई हो तेरी, तो एक बात ध्यान से सुन। अगले हफ्ते मुझे शहर के एक बड़े कार्यक्रम में परफॉर्म करने का ऑफर मिला है और साथ ही साथ मुझे अवार्ड भी दिया जाएगा, और तुझे जरूर जरूर जरूर आना है।
1: बिल्कुल आऊंगी। अच्छा अब रखते हैं, फिर मिलते हैं, बाय।
2: राहुल, मुझे अगले हफ्ते ना स्टेज परफॉर्मेंस के लिए बुलाया है। पलक की भी छुट्टी है, तो तुम प्लीज पलक को लेकर टाइम से वहाँ पहुँच जाना, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मेरी खुशी में मेरा परिवार भी साथ हो।
3: अब जब तुम यहाँ तक पहुँच ही गई हो तो अब मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं नैना।
2: राहुल, मुझे ना टाइम से पहुँचना है, और तो तुम पलक को लेकर ना वहाँ पर पहुँच जाना टाइम से। मैं चलती हूँ। ओके
3: ठीक है नैना, तुम बेफिक्र रहो। ऑल द बेस्ट नैना।
2: थैंक यू।

0: थैंक यू सो मच सर। वैसे आज मैं जो कुछ भी हूँ मेरे परिवार की वजह से हूँ। मेरे पति ने, मेरी बेटी ने मुझे हमेशा मोटिवेट किया और यहाँ तक आने का जो सफर है मेरा वो पूरा कराया। थैंक यू सो मच।
1: अच्छा सुनो नैना, एक बात बोलनी थी तुम्हें।
0: हाँ बोलो।
1: मैंने तुम्हारे हुनर को समझने में बहुत देर कर दी।
0: अरे ऐसा मत बोलो, परिवार साथ हो ना तो हर मुश्किल आसान हो जाती है मिस्टर।
1: तो चलो हम शाम को एक बहुत अच्छी सी पार्टी में चलेंगे।
0: या ये तो बहुत अच्छी बात कही तुमने।
2: कॉन्ग्रेचुलेशंस मामा, यू आर द बेस्ट।
1: तो नैना सोच रहा हूँ कि मैं तुम्हारे लिए एक ऑफलाइन डांस क्लास भी शुरू कर दूं।
0: सोचो सोचो, सोचने में क्या जाता है।
3: रिश्ते समझ और भरोसे से चलते हैं। जहाँ एक दूसरे के सपनों को समझकर जगह मिलती है, वहीं असली घर बसता है। नैना के कदम अब सिर्फ नृत्य नहीं बल्कि आत्मनिर्भरता की आहट बन चुके हैं। बहनों, ये थी लघु नाटिका हुनर, जिसमें आलेख पीना कोटनाला, प्रतिभागी अक्षी त्यागी, विवेक प्रताप सिंह, सना परवीन और निर्देशन अंकित सैनिका और प्रस्तुतकर्ता शोभित शर्मा। और इस नाटिका के बाद अब आपका मनोरंजन कराते हैं इस मीठे से गीत के साथ।

तो बहनों, नोक झोंक से भरा ये गीत आपके साथ हमने भी सुना और अब कार्यक्रम में थोड़ी सी बात चलते चलते भी कर लेते हैं। जैसे कि आजकल देश भर में 2-3 विषयों पर गंभीर रूप से चर्चा हो रही है, चाहे ईंधन की बात हो और जो गर्मी से हम बेहाल सभी पूरे देश भर के लोग हैं, खास करके उत्तर भारत के लोग और उस पर भी हमारा राज्य उत्तर प्रदेश इस गर्मी की मार से बेहाल है। और ऐसे में गर्मी से बचने के सभी उपाय हम समय समय पर आपको देते रहते हैं बहनों, और साथ ही सरकार की तरफ से भी जो प्रयास किए जा रहे हैं और जो सरकार की तरफ से गाइडलाइन जारी की जा रही हैं उनका भी आप ध्यान रखें और अपने आप को गर्मी से बचा कर रखें। बात अगर हम जनगणना की करें तो बहनों, अभी 7 मई से और 21 मई के बीच स्वगणना का जो दौर था वो शुरू हुआ था हमारे राज्य में, और अब कल से ही हमारे राज्य में जो है भवन गणना की जो कार्यक्रम है वो भी शुरू हो गया है, जो कि जनगणना का ही एक रूप है। तो हम आपसे ये कहना चाहेंगे बहनों कि जब भी भवन गणना के लिए प्रगणक यानी कि जो ये गणना करने वाले लोग हैं आपके घर पर आए तो आप उनके साथ सहयोग जरूर करें, और गर्मी बहुत है ऐसे में आप उन्हें पानी वगैरह भी पिला सकती हैं, क्योंकि बहनों जब भी कोई हमारे दरवाजे पर आता है खास करके इस गर्मी के मौसम में तो आप उन्हें पानी वगैरह जरूर पूछें, और साथ ही सही जानकारी आप उन लोगों तक दें। आपको डरने की कोई आवश्यकता नहीं है, ना ही संकोच करने की आवश्यकता है, क्योंकि जब भी ये प्रगणक आपके घर आएंगे उनके पास एक आई कार्ड होगा, साथ ही एक उनके पास किट है, एक छोटा सा बैग भी है जिसपे जनगणना से संबंधित हमारे जो भारत सरकार का लोगो वगैरह ये सब कुछ बना हुआ है, जिससे कि उन पर हम ट्रस्ट कर सकें कि हाँ कि जो लोग हमारे घर आ रहे हैं वो विश्वसनीय हैं और उन तक हम अपनी सही जानकारी दे सकते हैं। और सही जानकारी देना इसलिए भी जरूरी है बहनों, क्योंकि जब हम सही जानकारी देंगे तभी जो है ये बात सामने निकल कर आएगी कि हमारे देश का जो स्तर है, जीवन स्तर है लोगों का, वो सही मायने में क्या है। और इसी स्तर के आधार पर, इसी गणना के आधार पर बाद में सरकार जो है, जो हमारी जो सरकारी योजनाएं हैं ये भी चलाती है, ताकि वो योजनाएं उन लोगों तक पहुंच सके जिनके वो हकदार हैं। तो सही जानकारी देना तो बहनों बेहद जरूरी है। और दूसरी बात हम आपसे ये भी कहना चाहेंगे कि स्वगणना का जो दौर अभी चला था उसमें आप लोगों ने देखा होगा ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन आपने करवाया होगा, स्वगणना की थी और अब भवन गणना है और उसके बाद जनगणना का दौर भी चलेगा, तो उसमें भी आपने इन सारी बातों का ध्यान रखना है, क्योंकि ये एक सरकारी पहल होती, सरकारी कार्यक्रम होता और इसमें सहयोग देना हम सभी नागरिकों की जिम्मेदारी बनती है। और बहनों अब चलते चलते हम आपसे ये भी कहना चाहेंगे कि आपको हमारे कार्यक्रम कैसे लगते हैं, इस विषय में आप अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। आप हमें चिट्ठी भी लिख सकती हैं, हमारा पता है कार्यक्रम महिला जगत, द्वारा केंद्र निदेशक, आकाशवाणी नजीबाबाद और पिन कोड है 246763। और अगर बहनों जैसे कि आजकल सभी लोग चिट्ठियां नहीं लिखना चाहते, मोबाइल फोन का ही इस्तेमाल करते हैं, उसी में ही अपने मैसेज भेजकर अपनी शुभकामनाएं, अपने संदेश, अपना फीडबैक दे सकते हैं आप, जिसके लिए हमारा नंबर है 9457078288। एक बार हम अंग्रेजी में भी बता देते हैं जो कि आसानी से समझ में आजकल सबको आता है, 9457078288। इस नंबर पर आप अपने फीडबैक हम तक पहुंचाइए, और हमें ये रहेगा बहनों जब आप फीडबैक देती हैं कि जो कार्यक्रम हम बनाते हैं, जो कुछ हम मटेरियल आपके लिए लेकर आते हैं यहाँ पर बोलते हैं, बहुत रिसर्च करते हैं बहनों, बहुत पढ़ते हैं, बहुत सोच समझकर हम पूरी जानकारी के साथ माइक के आगे बैठते हैं कि हमारी बहनों तक, हमारे श्रोताओं तक सही जानकारी पहुंचे, और बदले में सिर्फ इतना चाहते हैं बहनों कि आप अपना जो फीडबैक है हमें जरूर दें, ताकि हमें पता तो चले कि हम जो भी कार्यक्रम आपके लिए करते हैं वो आपको कैसे लगते हैं। तो हमने आपको पता भी बता दिया, फोन नंबर भी आपको बता दिया, तो आप हमें फीडबैक जरूर दीजिएगा। और आज के कार्यक्रम को बहनों यहीं पर समेट लेते हैं, अगले अंक में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए हमें अनुमति दें, नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम महिला जगत, आकाशवाणी का ये नजीबाबाद केंद्र है। दिन के 1:45 हुए हैं। लोक संगीत के कार्यक्रम लोकधारा में आज हम आपको सुनवा रहे हैं रविंद्र वर्मा के स्वर में जौनसारी लोकगीत। तो श्रोताओं, लीजिए सुनिए आज के कार्यक्रम का ये पहला लोकगीत।

श्रोताओं, कार्यक्रम लोकधारा में आज हम आपको सुनवा रहे हैं रविंद्र वर्मा के स्वर में जौनसारी लोकगीत। लीजिए सुनिए कार्यक्रम का ये अंतिम लोकगीत।

0: ये संकल्प 2047 तक विकसित भारत के निर्माण का संकल्प है। इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आज देश अलग अलग सेक्टर्स में निवेश कर रहा है और इस निवेश से देश के युवाओं के लिए रोजगार के लाखों नए अवसर बन रहे हैं, जिसे आज भारत में सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग की पूरी सप्लाई चेन तैयार की जा रही है।
1: श्री मोदी ने नवनियुक्त कर्मचारियों को आईगॉट कर्मयोगी प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करने के लिए भी प्रोत्साहित किया।
0: कर्मयोगी प्रारंभ जैसे मॉड्यूल से आपको अपनी जिम्मेदारियां समझने में बहुत सहूलियत होगी। मेरा आपसे आग्रह है, इसका ज्यादा से ज्यादा लाभ उठाएं। आज भारत का युवा दुनिया के हर क्षेत्र में अपनी पहचान बना रहा है। यही स्पिरिट, यही ऊर्जा पब्लिक सर्विस में भी दिखाई देनी चाहिए। विकसित भारत ऐसे ही युवाओं के प्रयास से बनेगा जो अपने काम को देश सेवा का माध्यम मानते हैं।
1: 19वें रोजगार मेले में सरकार के अलग अलग विभागों और संगठनों में नवनियुक्त 51,000 से भी ज्यादा युवाओं को आज नियुक्ति पत्र सौंपे गए। संसदीय कार्य सूचना तथा प्रसारण राज्य मंत्री एल मुरुगन ने कहा है कि सरकार 2047 तक विकसित भारत के सपने को साकार करने के लिए प्रतिबद्ध है। चेन्नई स्थित ICF में आयोजित रोजगार मेले को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश बुनियादी ढांचे, डिजिटलीकरण, रोजगार के अवसरों और व्यापार में सुगमता के क्षेत्र में तीव्र प्रगति कर रहा है। कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा है कि रोजगार मेले के परिणाम स्वरूप पारदर्शी और समयबद्ध तरीके से नियुक्तियों में वृद्धि हुई है। नई दिल्ली में 19वें रोजगार मेले में डॉक्टर सिंह ने कहा कि इस पहल ने समय सीमा का सख्ती से पालन किया है, जिससे युवाओं में आत्मविश्वास बढ़ा है और योग्यता आधारित चयन प्रक्रिया सुनिश्चित हुई है। उन्होंने मिशन कर्मयोगी प्रारंभ के विकल्प के बारे में भी बताया।
2: मिशन कर्मयोगी के अंतर्गत आईगॉट प्लेटफॉर्म पर अभी तक 1,64,00,000 उम्मीदवार रजिस्टर हो चुके हैं और 4,776 से अधिक कोर्सेज उपलब्ध हैं। आज भी आपके द्वारा नियुक्ति पत्र प्राप्त करते ही प्रत्येक उम्मीदवार को साथ ही साथ मिशन कर्मयोगी प्रारंभ का विकल्प भी प्रदान कर दिया जाएगा।
1: देशव्यापी रोजगार मेला कार्यक्रम के अंतर्गत आज पश्चिम बंगाल में 3 जगहों पर नए भर्ती हुए उम्मीदवारों को 185 नियुक्ति पत्र सौंपे गए। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने मुख्य अतिथि के तौर पर इसमें भाग लिया। केरल में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस तथा पर्यटन राज्य मंत्री सुरेश गोपी ने आज तिरुवनंतपुरम में रोजगार मेले का उद्घाटन किया। सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू किया गया रोजगार मेला केवल एक भर्ती अभियान से कहीं अधिक है और इसका उद्देश्य युवा शक्ति को राष्ट्र शक्ति में बदलना है। पंजाब में आज रेल कोच फैक्ट्री RCF कपूरथला और पटियाला लोकोमोटिव वर्क्स पटियाला सहित 2 स्थानों पर रोजगार मेला आयोजित किया गया। यहां 281 नए लाभार्थियों को नियुक्ति पत्र वितरित किए गए। केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप पुरी ने कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए कहा कि रोजगार मेला एक सशक्त राष्ट्रीय संस्था बन गया है जो पारदर्शिता और योग्यता आधारित समयबद्ध भर्ती सुनिश्चित करता है। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने घोषणा की है कि राज्य में अगले 5 वर्ष में 1,00,000 शिक्षकों की भर्ती की जाएगी। शिक्षा विभाग की उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे हर साल कम से कम 20,000 शिक्षकों की भर्ती सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि भर्ती प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने के लिए अब शिक्षकों की नियुक्ति के लिए अधिसूचना हर साल जुलाई महीने में जारी की जाएगी। बिहार सरकार ने 21 जून को नीट UG पुनः परीक्षा में शामिल होने वाले राज्य के सभी छात्रों के लिए सरकारी बसों में मुफ्त यात्रा की घोषणा की है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने सोशल मीडिया पर यह जानकारी दी। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे newsonair ऐप पर भी उपलब्ध हैं। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने 12वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं की स्कैन कॉपी प्राप्त करने की अंतिम तिथि एक और दिन बढ़ाकर कल तक कर दी है। CBSE ने निर्णय वेबसाइट पर अत्यधिक आवेदन और तकनीकी व्यवधान के बाद लिया है, जिससे वेबसाइट बाधित हो रही थी। बोर्ड ने बताया कि विद्यार्थियों को उत्तर पुस्तिका की स्कैन कॉपी मिलने के बाद पुनर्मूल्यांकन का आवेदन करने के लिए 2 दिन का समय मिलेगा। सीबीएसई ने उम्मीदवारों को सलाह दी है कि वे इस विस्तारित समय सीमा का सदुपयोग करें और प्रक्रिया को पूरा करें। आंध्र प्रदेश के श्री सत्यसाई जिले में आज राष्ट्रीय सीमा शुल्क अप्रत्यक्ष कर और नारकोटिक्स अकादमी में भारतीय राजस्व सेवा के 76वें बैच के अधिकारियों की पासिंग आउट परेड आयोजित की गई। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। इस अवसर पर श्री चौधरी ने कहा कि केंद्र सरकार ने युवाओं को लगभग 4 करोड़ रोजगार के अवसर सृजित किए हैं। उन्होंने कहा कि युवाओं को राष्ट्र के विकास में सक्रिय भागीदार बनना चाहिए। श्री चौधरी ने कहा कि भारत एक विकसित राष्ट्र के संकल्प के साथ आगे बढ़ रहा है।
3: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व में भारत 2047 तक एक विकसित भारत के निर्माण के संकल्प के साथ आगे बढ़ रहा है और एक विकसित आत्मनिर्भर तकनीकी रूप से उन्नत और विश्व स्तर पर सम्मानित राष्ट्र को बनते हुए हम सब देख रहे हैं।
1: राजस्थान के जयपुर, जोधपुर, अजमेर और बीकानेर में आज रोजगार मेले का आयोजन किया गया। यहाँ 1100 से अधिक युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपे गए। जयपुर में आयोजित राज्य स्तरीय रोजगार मेले में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव शामिल हुए। इस अवसर पर श्री वैष्णव ने कहा कि सरकार पूरे देश में युवाओं को पारदर्शी और समयबद्ध रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है।
4: रेलवे में आज करीब करीब 1,60,778 भर्तियों पे काम चल रहा है। पहले 8-8, 10-10 साल में एक बार भर्ती निकलती थी या 4-4, 5-5 साल में एक बार भर्ती निकलती थी। कांग्रेस का वो युग था। मोदी जी ने जब जिम्मेदारी ली तो उस समय को कंप्रेस किया।
1: बॉम्बे उच्च न्यायालय ने महाराष्ट्र प्रशासन को जनगणना कार्य के लिए निजी गैर सहायता प्राप्त और अल्पसंख्यक विद्यालयों के लिए शिक्षकों को तैनात करने से रोक दिया है। न्यायमूर्ति गौतम अखंड और न्यायमूर्ति संदेश पाटिल की खंडपीठ ने पाया कि जनगणना अधिनियम और नियमों के अंतर्गत शिक्षकों पर जनगणना संबंधी कार्य करने का कोई दायित्व नहीं है। न्यायालय ने राज्य भर में 500 से अधिक विद्यालयों का प्रतिनिधित्व करने वाले विद्यालय संघों को अंतरिम राहत प्रदान की है। इंडियन ऑयल ने कहा है कि देश में पेट्रोल और डीजल की आपूर्ति स्थिर है और ईंधन की कोई कमी नहीं है। इंडियन ऑयल ने एक बयान में कहा कि कुछ खुदरा दुकानों पर मांग आपूर्ति असंतुलन और चुनिंदा क्षेत्रों में मांग बढ़ने के कारण अस्थिरता की खबर है। ऐसे मामले देश भर में 42,000 से अधिक खुदरा दुकानों के इंडियन ऑयल के नेटवर्क में से कुछ खुदरा दुकानों तक ही सीमित हैं। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में आज वृद्धि हुई है। पिछले 10 दिन में तेल के मूल्यों में ये तीसरी बार वृद्धि हुई है। दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 87 पैसे बढ़कर 99.51 रुपए प्रति लीटर हो गई है, जबकि डीजल का मूल्य 91 पैसे बढ़कर 92.49 रुपए प्रति लीटर हो गया है। इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड ने आज सीएनजी की कीमत में 1 रुपए की वृद्धि की है। इस वृद्धि के बाद राजधानी में 1 किलोग्राम सीएनजी की नई दर 81.09 रुपए हो गई है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो आज दोपहर नई दिल्ली पहुंचे। वे मंगलवार को नई दिल्ली में होने वाली क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में भाग लेने के लिए 4 दिन की भारत यात्रा पर हैं। श्री रूबियो आज सेवा 30वें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे। अमरीकी विदेश मंत्री कल विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर के साथ द्विपक्षीय बैठक भी करेंगे। उत्तरी चीन के शानकसी प्रांत में किनयुआन काउंटी में एक कोयला खदान में गैस विस्फोट के कारण मरने वालों की संख्या 82 हो गई है। ये गैस विस्फोट कल सुबह ल्यूशेन्यू कोयला खदान में हुआ। बचाव कार्य जारी है। चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग ने व्यापक बचाव अभियान और घायलों के उपचार के निर्देश जारी किए हैं। उन्होंने दुर्घटना के बाद की स्थिति से निपटने के लिए उचित कदम उठाने का आह्वान भी किया है। बांग्लादेश में महिलाओं और बच्चों के खिलाफ बढ़ती हिंसक घटनाओं पर यूनिसेफ ने गहरी चिंता जताई है। सुरक्षा प्रणालियों को मजबूत करने और पीड़ितों को न्याय दिलाने के लिए तत्काल कदम उठाने का आह्वान किया गया है। कल जारी एक बयान में बांग्लादेश में यूनिसेफ के प्रतिनिधि राणा फ्लावर्स ने कहा कि संगठन उन स्थानों पर बच्चों के साथ दुष्कर्म और हत्या के हालिया मामलों से बेहद आहत और दुखी है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कांगो में इबोला बुंजीबुगियो स्ट्रेन से उत्पन्न सार्वजनिक स्वास्थ्य खतरे को राष्ट्रीय स्तर पर उच्चतम कर दिया है। एक रिपोर्ट।
5: विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक टेड्रोस अदनोम घेब्रेयेसस ने कहा है कि राष्ट्रीय स्तर पर ये खतरा बहुत उच्च, क्षेत्रीय स्तर पर उच्च और वैश्विक स्तर पर निम्न है। उन्होंने बताया कि इस संक्रमण के अब तक 82 मामले सामने आए हैं और 7 लोगों की मौत हो चुकी है।

0: संगठन ने पहले इस प्रकोप को अंतर्राष्ट्रीय चिंता का सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल घोषित किया था। साथ ही ये स्पष्ट किया था कि ये महामारी के स्तर पर नहीं है। इबोला एक वायरल बीमारी है जो चमगादड़ों से फैलती है और संक्रमित व्यक्तियों या जानवरों के शरीर के तरल पदार्थों या दूषित वस्तुओं के सीधे संपर्क से फैलती है। दुर्लभ मामलों में हवा के माध्यम से भी ये बीमारी फैल सकती है। इसका ऊष्मायान काल 2 से 21 दिनों तक होता है, जिसके शुरुआती लक्षणों में बुखार, थकान, पेशियों में दर्द और गले में खराश शामिल है। समाचार कक्ष से आनंद पाठक।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन को उनके जन्मदिन पर शुभकामनाएं दी हैं। सोशल मीडिया पर प्रधानमंत्री ने कहा कि श्री नवीन के नए विचार, जोशीले नेतृत्व और संगठन के काम तथा प्रशासन दोनों की गहरी समझ ने उन्हें हर जगह बहुत सम्मान दिलाया है। आईपीएल क्रिकेट में आज लखनऊ सुपर जायंट्स का मुकाबला पंजाब किंग्स से होगा। ये मैच लखनऊ के भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी इकाना स्टेडियम में शाम 5:30 बजे से खेला जाएगा। कल रात सनराइजर्स हैदराबाद ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को 55 रन से हराया था। मौसम विभाग ने कल तक पूर्वी उत्तर प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश और विदर्भ में भीषण लू की स्थिति का रेड अलर्ट जारी किया है। दिल्ली का आज अधिकतम तापमान 41 से 43 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विभिन्न सरकारी विभागों के 51,000 से अधिक चयनित कर्मचारियों को नियुक्ति पत्र सौंपे। कहा, भारत युवाओं को अवसर, रोजगार और वैश्विक अनुभव प्रदान करने के लिए विश्व के विभिन्न देशों के साथ साझेदारी कर रहा है। बिहार सरकार अगले 5 वर्ष में राज्य में 1 लाख शिक्षकों की भर्ती करेगी। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 12वीं कक्षा बोर्ड परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं की स्कैन कॉपी प्राप्त करने की अंतिम तिथि 1 दिन और बढ़ाकर कल की। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबिया आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात करेंगे। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कांगो में इबोला के बुंडीबुग्यो स्ट्रेन से उत्पन्न स्वास्थ्य खतरे को उच्चतम किया। और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम लखनऊ सुपर जायंट्स का मुकाबला पंजाब किंग्स से होगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलो हर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये नजीबाबाद केंद्र है। इस समय दिन के 2:30 हुए हैं। आइए सुनते हैं कार्यक्रम एक ही गीतकार। श्रोताओं, आप सभी का आज के कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। आज इस कार्यक्रम में हम बात करेंगे मशहूर गीतकार मजरूह सुल्तानपुरी के बारे में। श्रोताओं, ये 1950 और 60 के दशक में अपनी कलम के जादू से लोगों के मन को मोहित करने वाले गीतकार और उर्दू शायर मजरूह सुल्तानपुरी साहब के बारे में आज ढेरों बातें हम आपसे करने वाले हैं।

जैसे जैसे हम सफल होते जाते हैं, लोग हमारे साथ जुड़ते जाते हैं। खैर, चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और आपको सुनवाते हैं मजरूह सुल्तानपुरी साहब का लिखा हुआ ये खूबसूरत नगमा।

तो चलिए श्रोताओं, अब बात करते हैं हमारे आज के गीतकार यानी मजरूह सुल्तान पुरी साहब की शुरुआती जीवन के बारे में। मजरूह साहब का जन्म 1 अक्टूबर सन 1919 को उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर ज़िले में एक मुस्लिम राजपूत परिवार में हुआ था। मजरूह साहब के जो पिता थे वो पुलिस विभाग में काम करते थे और वो अपने बेटे को अंग्रेज़ी शिक्षा दिलाने के इच्छुक बिल्कुल भी नहीं थे, इसलिए उन्होंने मजरूह को एक मदरसा में दाखिला दिलवा दिया। मजरूह साहब ने यहाँ आलिम का प्रमाण पत्र प्राप्त किया और यूनानी चिकित्सा की पढ़ाई के लिए लखनऊ चले गए। और बात ये है श्रोताओं, एक मूल बात यह है कि इनका जो मूल नाम है वो असरार उल हसन खान था। फिर कब और कैसे ये मजरूह सुल्तानपुरी बने और हिंदी सिनेमा का हिस्सा ये किस तरह से बने, ये सब जानेंगे हम इस म्यूजिकल ब्रेक के बाद।

0: शास्त्रीय संगीत का अमृत कलश रागम भारतीय शास्त्रीय संगीत को समर्पित आकाशवाणी का बेहतरीन चैनल रागम डीटीएच पर लाइव स्ट्रीमिंग के जरिए इंटरनेट और आपके मोबाइल ऐप पर भी रागम आनंद की अटूट रसधार।
1: अपने व्यापार को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाना चाहते हैं?
2: तो इंतजार किस बात का,
1: अभी बुक कराइए अपना विज्ञापन आकाशवाणी नजीबाबाद के संग।
2: विज्ञापन बुकिंग कराने के लिए आज ही संपर्क करें।
1: हमारा मोबाइल नंबर है 8865845809।
2: नंबर एक बार फिर सुन लीजिए 8865845809।
1: और हमारा ईमेल आईडी है
2: akashwaninajibabad@gmail.com।
1: तो देर किस बात की, उठाइए अपना फोन और बुक कराइए अपना विज्ञापन आकाशवाणी नजीबाबाद के संग।
3: आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम एक ही गीतकार। और श्रोताओं, आज इस कार्यक्रम में हम बात कर रहे हैं गीतकार मजरूह सुल्तानपुरी के बारे में। श्रोताओं, जब हकीम के रूप में मजरूह साहब अपनी सेवाएं आम जन को दे रहे थे, तभी संयोगवश उन्होंने सुल्तानपुर के एक मुशायरे में अपनी एक गज़ल सुनाई। गज़ल श्रोताओं को बहुत पसंद आई और बस फिर क्या था, उन्होंने चिकित्सा को छोड़ गज़ल और शेर व शायरी की ओर रुख किया और उसके बाद जिगर मुरादाबादी के शागिर्द बन गए और नाम पड़ा मजरूह सुल्तानपुरी।

तो श्रोताओं, मुशायरों से धीरे धीरे मजरूह साहब के कदम फिल्मों की ओर बढ़ने लगे। शुरुआत एक मुशायरे से हुई थी, लेकिन उसके बाद उनकी पहचान फिल्मों की तरफ बनने लगी। सबसे पहले मजरूह साहब को साल 1946 में आई फिल्म शाहजहां के लिए गीत लिखने का मौका मिला। इसके बाद साल 1947 में फिल्म नाटक डोली और 1948 में आई फिल्म अंजुमन के लिए गीत लिखने का मौका मिला, लेकिन उन्हें सबसे बड़ी सफलता मिली साल 1949 में प्रदर्शित फिल्म अंदाज से। श्रोताओं, मजरूह साहब देश प्रेम की भावना से भी सराबोर थे, क्योंकि उन्होंने गुलामी देखी थी। ऐसे में उनकी कविताओं में देशभक्ति के रंग देखने को मिलते थे। इसी कारण उन्हें 2 साल कैद की सजा भी सुनाई गई थी। खैर, साल 1953 में गुरुदत्त की फिल्म एक आई थी जिसका नाम था बाज, और उन्होंने उस फिल्म से ही श्रोताओं अपने फिल्मी करियर को नए सिरे से शुरू किया था।

श्रोताओं, मजरूह सुल्तानपुरी साहब ने परदेसी वतन के रखवाले कयामत से कयामत तक घर घर की कहानी लाल दुपट्टा मलमल का दिल आशना है क्या कहना जैसी अनगिनत हिट फिल्मों के लिए गीत लिखे। उन्होंने साल 1965 में आई फिल्म दोस्ती के गीत चाहूंगा मैं तुझे सांझ सवेरे के लिए सर्वश्रेष्ठ गीतकार का फिल्म फेयर पुरस्कार भी जीता था। वर्ष 1993 में उन्हें दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। गीतकार के रूप में उनकी आखिरी फिल्म 1-2 का 4 थी, जो उनकी मृत्यु के बाद यानी 2001 में रिलीज हुई थी। बात अगर अब उनके निधन की करें श्रोताओं, तो मजरूह साहब फेफड़ों की बीमारी से लंबे समय से पीड़ित रहे थे और इसी के चलते 24 मई 2000 को 80 वर्ष की आयु में उन्होंने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। दुनिया से जाकर भी अपने गीतों और शेरो शायरी के जरिए वो हमेशा हमारे दिलों में जिंदा रहेंगे।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम एक ही गीतकार, जिसमें आज गीतकार थे मजरूह सुल्तानपुरी। मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलोहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। अपराह्न के 3 बजे हैं। हमारी सभा के प्रसारण अब यहीं संपन्न होते हैं। संध्याकालीन सभा में शाम 5 बजे आपसे पुनः भेंट होगी। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए।

0: मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलोहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 5 बज रहे हैं। हमारी दूसरी सभा के प्रसारण अब आरंभ होते हैं। सभा के आरंभ में सुनते हैं आकाशवाणी के 90 वर्षों के उपलक्ष में आकाशवाणी नजीबाबाद से जुड़े श्रोताओं के अनुभव पर आधारित कार्यक्रम। रिश्ता ये खास है। आकाशवाणी पिछले 90 वर्षों से देश भर के लोगों तक ज्ञान, सूचना और मनोरंजन पहुंचाने का महत्वपूर्ण कार्य कर रही है। इसके विभिन्न कार्यक्रम हर आयु वर्ग के लोगों को ध्यान में रखकर तैयार किए जाते हैं। आकाशवाणी के समाचार कार्यक्रम देश और दुनिया की सही एवं विश्वसनीय जानकारी प्रदान करते हैं। किसानों के लिए कृषि कार्यक्रम प्रसारित किए जाते हैं, जिनसे उन्हें नई तकनीक और खेती से जुड़ी उपयोगी जानकारी मिलती है। विद्यार्थियों के लिए शैक्षिक कार्यक्रम तथा युवाओं के लिए प्रेरणादायक कार्यक्रम भी प्रसारित किए जाते हैं। इसके अलावा संगीत, लोकगीत, कवि सम्मेलन, नाटक और सांस्कृतिक कार्यक्रम भारतीय संस्कृति को जीवित रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। विविध भारती जैसे कार्यक्रम आज भी लोगों के बीच बहुत लोकप्रिय हैं। आपदा और संकट के समय आकाशवाणी लोगों तक आवश्यक सूचनाएं पहुंचाने का सबसे भरोसेमंद माध्यम बन गया है। इस प्रकार आकाशवाणी के कार्यक्रम केवल मनोरंजन ही नहीं बल्कि शिक्षा, जागरूकता और संस्कृति के संरक्षण का भी महत्वपूर्ण माध्यम है। तो शुरू करते हैं ये रिश्ता खास है। नमस्कार। रेडियो के 90 साल पूरे होने के उपलक्ष में आज हमारे स्टूडियो में हमारे साथ हैं RSM डिग्री कॉलेज के सहायक प्रोफेसर श्री धनीराम जी। ये शिक्षा विभाग में कार्यरत हैं। आज हम जानेंगे शिक्षा के क्षेत्र में रेडियो की क्या भूमिका रही है। सर, आपका हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है।
1: धन्यवाद मैडम जी। रेडियो सुनने वाले सभी श्रोताओं को भी मेरा नमस्कार। जैसा कि आप लोग सब जानते हैं कि मूल रूप से ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना 8 जून सन 1936 को हुई थी। इसके पश्चात वर्ष 1957 में इसे आधिकारिक रूप से आकाशवाणी नाम दिया गया। आकाशवाणी के 90 वर्ष पूर्ण होने पर नजीबाबाद आकाशवाणी केंद्र पर वॉकेथन कार्यक्रम का भव्य व सफल आयोजन किया गया। इसके लिए मैं पूरी टीम को शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। एक बहुत अच्छा कार्यक्रम और नजीबाबाद शहर में प्रभात रैली के माध्यम से आपने बहुत जागरूक किया है। मैं आकाशवाणी नजीबाबाद का नियमित श्रोता भी हूं और वक्ता भी। मैं आप सभी से बताना चाहता हूं कि आकाशवाणी नजीबाबाद से मेरी कई वार्ता और परिचर्चा प्रसारित हो चुकी हैं। विशेष अवसरों पर भी मेरे विचार प्रसारित हो चुके हैं। आज का विषय मेरे व्यवसाय से जुड़ा है, मेरे कार्य क्षेत्र से जुड़ा है।

0: प्रदान करने के लिए किया जाता था। समय के साथ साथ शिक्षा के क्षेत्र में भी परिवर्तन आया। परंपरागत शिक्षा प्रक्रिया में नई तकनीक का प्रयोग होने लगा और हमारे बीएड और बीए एजुकेशन विषयों में भी आईसीटी का प्रयोग होने लगा। कुछ वर्षों पूर्व जब हमारे पास मोबाइल और इंटरनेट नहीं था, उस समय रेडियो पर शैक्षिक कार्यक्रमों का संचालन किया जाता था। स्कूली शिक्षा और प्रौढ़ शिक्षा के अंतर्गत रेडियो पर प्रसारित कार्यक्रम बहुत ही महत्वपूर्ण हुआ करते थे। रेडियो का प्रयोग मात्र एक मनोरंजन ही नहीं, रेडियो के द्वारा देश विदेश की जानकारी, खेल की जानकारी, कृषि की जानकारी, व्यवसाय की जानकारी और साथ ही साथ युवाओं को रोजगार की जानकारी आकाशवाणी रेडियो पर मिलती थी। कोई ऐसा क्षेत्र नहीं था जिसकी जानकारी हमें रेडियो के माध्यम से न मिलती हो। प्रत्येक कक्षा के अनुसार पाठ को बहुत ही सरल भाषा में समझाया जाता था। रेडियो पर ही कविता का वाचन किया जाता था, कहानी नाटक का प्रसारण किया जाता था और सभी छात्र शांत मुद्रा में बैठकर उसका श्रवण करते थे। युवाणी कार्यक्रम में युवा वर्ग को बहुत सी महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। प्रति सप्ताह शाम के समय रोजगार समाचार प्रसारित किए जाते थे। विभिन्न प्रकार की सूचनाओं के लिए रेडियो ही एक विशेष माध्यम था। समय के साथ साथ परिवर्तन होना स्वाभाविक है। आज का युग विज्ञान का युग है। विज्ञान के प्रयोग से शिक्षा व्यवस्था में भी परिवर्तन आया है। आज इंटरनेट, मोबाइल, लैपटॉप, कंप्यूटर का प्रयोग शिक्षा के क्षेत्र में अत्यधिक हो रहा है। व्हाट्सएप, यूट्यूब, फेसबुक, चैट जीपीटी आदि ऐसे बहुत से प्लेटफॉर्म हैं जहाँ पर शिक्षा की विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति बहुत ही सरलता से हो जाती है। संपूर्ण पुस्तक पाठ नेट पर उपलब्ध हो जाता है, जहाँ पर छात्र घर बैठकर के अपने विषय को ठीक भली भांति उसको समझ लेते हैं। सब कुछ बदला, लेकिन रेडियो ने अपनी पहचान नहीं खोई। इस बदलती तकनीक के साथ मोबाइल में न्यूज़ ऑन AIR ऐप के माध्यम से आकाशवाणी ने नए तेवर के साथ अपनी पहचान बनाई। आज फिर से लोग न्यूज़ ऑन AIR ऐप पर सभी चैनलों को सुन लेते हैं। बदलती वैश्विक मांग के अनुसार कार्यक्रमों को नए स्वरूप में प्रस्तुत किया जा रहा है। आशा है कि आने वाले समय में भी आकाशवाणी के माध्यम से शिक्षा से संबंधित कार्यक्रमों का संचालन निरंतर चलता रहेगा।
1: धन्यवाद सर, आप हमारे स्टूडियो में आए और इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी।

अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी के 90 वर्षों के उपलक्ष्य में आकाशवाणी नजीबाबाद से जुड़े श्रोताओं के अनुभव पर आधारित कार्यक्रम रिश्ता ये खास है। आकाशवाणी का ये नजीबाबाद केंद्र है। मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलोहर्ट्ज़ पर। शाम के 5:10 हो रहे हैं। आइए अब डालते हैं एक नज़र आज और कल प्रसारित होने वाले कार्यक्रम पर। पहले एक नज़र आज के शेष कार्यक्रम पर। रात्रि 9:30 पर राष्ट्रीय विज्ञान पत्रिका विज्ञान भारती और रात्रि 10:00 संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम हमारे दिल्ली केंद्र से रिले किया जाएगा। शाम 5:15 पर कार्यक्रम युववाणी में सुनवाएंगे कुछ खास है आज में कोयल सेटिंग के सही तरीके पर चर्चा। शाम 6:05 पर किसान भाइयों को सुनवाएंगे लोकगीतों व रागनियों का सजीव फरमाइशी फोन इन कार्यक्रम हेलो लोक मंजरी। शाम 6:45 पर कार्यक्रम विविधा में सुनवाएंगे डॉक्टर ज्ञान चंद्र से एसके नौटियाल की बातचीत। विषय रहेगा तापघात कारण लक्षण और बचाव। 7:32 पर आपको सुनवाएंगे मजलिस ए अजा दरगाह ए आलिया नजफ ए हिंद के संवादित अंश पर आधारित रेडियो रिपोर्ट। और 7:45 पर श्री खाटू श्याम सेवा समिति किरतपुर द्वारा आयोजित श्याम संकीर्तन आधारित कार्यक्रम की रेडियो रिपोर्ट। ये थी जानकारी आज प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रम की। अब एक नज़र कल प्रसारित होने वाले मुख्य कार्यक्रम पर। कल रात्रि 9:30 पर नेशनल साइंस मैगजीन रेडियोस्कोपी और रात्रि 10:00 अखिल भारतीय रविवासरीय संगीत सभा का प्रसारण हमारे दिल्ली केंद्र से रिले किया जाएगा। प्रातः 6:40 पर समय रहेगा चिंतन का। प्रातः 7:05 पर कार्यक्रम स्वास्थ्य चर्चा में जानकारी का विषय रहेगा गर्मी और लू से बचाव। 7:10 पर खेती की बातें कार्यक्रम में देंगे जानकारी किसान की आमदनी बढ़ाने के नवीन तरीके पर। सूरज के साथ साथ कार्यक्रम का समय रहेगा प्रातः 7:31 पर। 9:20 पर धरती गाती है कार्यक्रम में सुनवाएंगे नीलम सक्सेना की आवाज में रुहेलखंडी लोकगीत। दिन में 10:00 प्रस्तुत करेंगे भारत में रेडियो प्रसारण के 90 साल के उपलक्ष्य में कार्यक्रम सुहाना सफर। आपका पत्र मिला कार्यक्रम का समय रहेगा 12:05। 12:30 पर कार्यक्रम फिल्मी संडे में सुनवाएंगे फिल्म सौदागर। 1:15 पर बाल वाटिका कार्यक्रम में देंगे जानकारी राष्ट्रमंडल दिवस पर। साथ ही चर्चा करेंगे सांप्रदायिक सौहार्द आपसी मेल मिलाप को झलकाते भारतीय पर्व पर। 1:45 पर कार्यक्रम लोकधारा में सुनवाएंगे लता कुंजवाल की आवाज में चंद कुमाऊनी लोकगीत। 2:30 पर एक और अनेक कार्यक्रम में सुनवाएंगे सुनील दत्त और साथी कलाकार पर फिल्माई चंद गीत। शाम 5:00 आकाशवाणी के 90 वर्षों के उपलक्ष्य में

आकाशवाणी नजीबाबाद से जुड़े श्रोताओं के अनुभव पर आधारित कार्यक्रम सुनवाएंगे, रिश्ता ये खास है। 5:15 पर कार्यक्रम युववाणी में कुछ खास है आज में सुनवाएंगे। साइलेंट बर्नआउट क्या होता है और इसे कैसे पहचाने। 6:05 पर कार्यक्रम कृषि जगत में सुनवाएंगे डॉक्टर पिंटू कुमार से जितेंद्र कुमार की बातचीत। विषय रहेगा कद्दूवर्गीय फसलों में कीट व रोग प्रबंधन। साथ ही चर्चा करेंगे फसल चक्र के महत्व पर। 6:45 पर कार्यक्रम विविधा में सुनवाएंगे कहानीकार सत्यवीर सिंह की कहानी सिलवटी। ये थी जानकारी आज के शेष और कल प्रसारित होने वाले मुख्य कार्यक्रम की। आकाशवाणी का ये नजीबाबाद केंद्र है। मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलोहर्ट्ज पर। शाम के 5:15 हो रहे हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम युववाणी।

0: हेलो, आदाब, नमस्कार, खुशामदीद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने पसंदीदा कार्यक्रम युववाणी में, और मैं हूं आपका अपना दोस्त मोहम्मद तौहीद।
1: नमस्कार, कैसे हैं आप? मैं हूँ तौहीद के साथ यूसुफा जैदी, और आज प्रोग्राम में लगातार आपसे जुड़ी रहूंगी।
0: बिल्कुल, शाबाश, क्या बात है यूसुफ। हमें आपसे ही तो मिलने का इंतजार था, और सभी दोस्तों को भी हमारा इंतजार था। तो आइए शुरू करते हैं। और यूसुफा, मई का ये महीना सूरज की एक तरफा मोहब्बत, तपिश अपने शबाब पर, इसमें अगर कहीं ठंडी हवा का एहसास है तो वो है, और कहाँ, वो है बस युवाणी, युवाणी और युवाणी।
1: जी, ठंडी बातें, ठंडे एहसास और बातूनी हवाएं तो अक्सर हम चलाते ही रहते हैं।
0: आज आपसे ये पूछते हैं, क्या वाकई ठीक है अपने आसपास के माहौल से, अजीब गरीब खबरों से परेशान तो नहीं हैं आप?
1: अगर ऐसा कुछ होता है तो तौहीद किस मर्ज की दवा है? ये आपको अपने एक ऐसे किस्से सुनाने की काबिलियत रखता है जिसके बाद आप कहेंगे कि बस भाई, हम ठीक हैं।
0: वेरी फनी। ओके, तो दोस्तों मैं आपको एक राज बताता हूँ। गर्मी में सफेद कपड़े ज्यादा पहने, क्योंकि इसका जवाब मिलेगा आपको आज सेगमेंट गीत है आपके नाम में, कि आखिर सफेद कपड़े क्यों पहने गर्मी में।
1: जी, तो नोट कीजिए। अरे, सेगमेंट का पता नोट कीजिए। गीत आपके नाम 9457078288।
0: जी हाँ दोस्तों, शुरू करते हैं हमारा सेगमेंट गीत आपके नाम।
2: गीत गीत

0: में हमारी गीत आपके,
1: गीत आपके नाम।
2: तो दोस्तों शुरू हो चुका है हमारा पहला सेगमेंट गीत आपके नाम, जिसमें आप सभी को पता ही है कि हम क्या करते हैं। जी हाँ, आप हमें भेजते हैं अपने नाम हमारे व्हाट्सएप नंबर 9457078288 पर, और हम शामिल करते हैं उन सभी नामों को और आपको सुनवाते हैं प्यारे और खूबसूरत गीत। तो जल्दी जल्दी से भेजिए हमें अपने नाम, और उससे पहले आइए सुन लेते हैं ये खूबसूरत गीत।

0: कम समय में ज्यादा मुनाफा, बस एक क्लिक में, कमाल है।
1: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए, RBI कहता है
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: हम हंसाएंगे, आप मुस्कुराएंगे,
4: हो जाओगे हंस-हंस कर लोटपोट,
3: क्योंकि यह है लाफ्टर का सॉलिड डोज।
5: और डोज में क्या है?
4: डोज में है मजा।
3: जी हाँ, मजा आ गया।
5: और भाई क्या हाल चाल है? और ये जख्म वखम कैसे हो रहे हैं? कहाँ ठुक गया?
3: अब भी क्यों आई है मेरे पास? क्या फायदा है तुम्हारे आने का मेरे पास?
5: बता तो सही, हुआ क्या है?
3: मैं क्यों बताऊं? और क्यों मिलने आई है अभी तुम मुझसे?
5: अरे वो तो हम इधर से गुजर रहे, तो रास्ते में घर दिख गया तो हम आ गए।
3: ऐसा दोस्त होने का क्या फायदा जो मेरा एक्सीडेंट हो गया और मुझसे एक बार भी मिलने नहीं आई?
5: ओ, तेरा एक्सीडेंट हो गया, ये तो बड़ी बुरी बात है। तू बताना अगली बार जब भी तेरा एक्सीडेंट होगा ना, पक्का मिलना आऊंगी।
3: जी हाँ, मजा आ गया।

0: आकाशवाणी एट 90।
1: तो वेलकम बैक मेरे प्यारों। तो बात कर रहे थे गर्मी में सफेद कपड़े क्यों पहनने चाहिए। तो जवाब है कि जब हम सूरज में निकलते हैं और ज्यादा सूरज हम पर मेहरबान होता है, तब ये सफेद कपड़े हमारे और सूरज के बीच आकर उसकी किरणों को 90% तक यानी 90% वापस सूरज को ही सौंप देते हैं।
2: वाह, क्या स्मार्टनेस का सबूत दिया है जनाब ने।
1: है ना, हूँ तो मैं स्मार्ट बचपन से ही, बस लोग यकीन नहीं करते उस वहाँ।
2: अच्छा तो बताओ स्मार्टनेस यानी कि स्मार्ट की फुल फॉर्म क्या होती है।
1: बताते हैं बिल्कुल। तो स्मार्ट की फुल फॉर्म है स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रिलेवेंट और T4 टाइम बाउंड। आ गया यकीन?
2: यकीन तो हम खुद को दिलाने की कोशिश कर रहे हैं कि लाइफ में अनसर्टेनिटी होना ही जिंदा होने की दलील है।
1: और इसको कहते हैं हसरत।
2: तो
1: सिंपल ख्वाहिश पूरे करने का तरीका है गोल सेट करो दोस्तों। अगर आपको अपनी ख्वाहिशें पूरी करनी है तो एक गोल सेट करो। अपने बाल सेट करने से जिंदगी नहीं पूरी होती दोस्तों। और तरीका हम बताते हैं जो कि है स्मार्ट, SMART, जिसकी फुल फॉर्म है स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रिलेवेंट और टाइम बाउंड।
2: जैसे कि मुझे साल में 12 बुक पढ़नी है, तो सिर्फ एक महीने के बारे में सोचो कि एक महीने में एक बुक खत्म करनी है, सिंपल।
1: और अपने परिवार से, अपनी फैमिली से प्रोग्रेस का आइडिया लो कि क्या आपको मैं सही दिशा पे चलता हुआ नजर आ रहा हूँ, क्या वो सही रास्ता है।
2: और अचीवेबल ख्वाहिशें ऐसी हों जिसे दिल कहे कि हाँ हो जाएगा, तुम कर सकते हो।
1: और रेलेवेंट इतना हो कि जो हम सोच रहे हैं बादशाह बनने की, तो हम वजीर के रास्ते को भी सोचें। और लास्ट वक्त कितना इन्वेस्ट करें, ये बहुत जरूरी है। और यही आज की खास बात, कुछ खास है आज में गोल सेट करने का सही तरीका।
2: क्योंकि सही दिशा से सही मंजिल जरा जल्दी मिल जाती है। तो आप अपनी दिशा में चलते रहिए, रास्ते में पत्थर आएंगे उन्हें साइड कीजिए। और फिलहाल हम भी अपनी बातों को थोड़ा साइड करते हैं और आपको ले चलते हैं गीत आपके नाम के इस दूसरे गीत की ओर।
1: जी हाँ, जिसमें हम करेंगे शामिल मैसेजेस को। और यूसुफ, हमारे पास बहुत सारे मैसेजेस आने शुरू भी हो चुके हैं। तो दोस्तों एक बार फिर से बता दे, जल्दी से भेजिए हमें अपने नाम हमारे व्हाट्सएप नंबर 9457078288 पर। और इतने आप ये करते हैं, सुन लेते हैं एक और खूबसूरत गीत।

0: हम हंसाएंगे, आप मुस्कुराएंगे,
1: हो जाओगे हंस हंस कर लोट पोट,
0: क्योंकि यह है लाफ्टर का सॉलिड डोज।
2: और डोज में क्या है?
1: डोज में है मजा। जी हाँ, मजा आ गया।
2: तो बच्चों, तुम सबने तैयारी कर ली अपने एग्जाम की?
0: जी मैम।
2: ओके, तो अभी पता चल जाएगा कितनी तैयारी। और पप्पू, तुम तो बिल्कुल भी नहीं पढ़ते हो। अच्छा चलो बताओ, कुतुब मीनार कहाँ है?
0: मैम दिल्ली में।
2: ओ वेरी नाइस, लगता है इस बार खूब पढ़ाई की है पप्पू ने।
0: जी मैम।
2: शाबाश, अब ये बताओ कि इसे किसने बनाया है?
0: मजदूर ने।
2: पप्पू।
1: जी हाँ, मजा आ गया।
3: नए जमाने की नई तस्वीर, अब छत पर लगे टीवी एंटेना को कहो गुड बाय सदा के लिए। समय के साथ बदलें, आगे बढ़ें, ले आएं आज ही दूरदर्शन का डीडी फ्री डिश। इसमें हैं आपके पसंदीदा 100 से ज्यादा टीवी चैनल्स, इसके अलावा 51 एजुकेशनल यानी पढ़ाई लिखाई वाले चैनल्स और 48 रेडियो चैनल्स। और तो और, सेट टॉप बॉक्स लगवाने के बाद कोई खर्चा नहीं, बिल्कुल नहीं। डिजिटल क्रांति की ओर एक कदम और आपका डीडी फ्री डिश।
2: और हमारे दोस्तों ने भी गोल सेट कर लिया है, क्योंकि उनको पता चल गया है कि गीत आपके नाम सेगमेंट है, तो फिर बस मैसेजेस की बरसात कर दी। तो ये मैसेज आया हमें जॉन डिकेस्ट्रो, रोजी डिकेस्ट्रो और पल डिकेस्ट्रो, विलीज डिकेस्ट्रो का, जो कि है जनकपुरी सहारनपुर से। और इसी के साथ अगला मैसेज हमें आया है रिंगनी छत्तीसगढ़ से, दिनेश वर्मा, करुण वर्मा, और इनका कहना है कि हमें गीत सुना दीजिए, गीत आपके नाम में। तो आइए फिर सुनते हैं ये खूबसूरत सा गीत।

तो दोस्तों ये मैसेजेस का सिलसिला ऐसे ही जारी रहना चाहिए और जल्दी जल्दी करते रहिए हमें मैसेज अपने नंबर 9457078288 पर, जिसमें हम करेंगे आप सभी के नाम शामिल अपने कार्यक्रम में और सुनवाएंगे आपको खूबसूरत गीत। और आज की शाम में बिल्कुल आनंद की प्राप्ति होने वाली है दोस्तों। और देखते हैं कि ये अगला मैसेज हमें किन की तरफ से आया है। भेजने वाले हैं देवशंकर तामोरिया, अजय देव तामोरिया, तुषार देव तामोरिया, डॉली बेबी, पूजा तामोरिया, राधिका और प्रभा देवी तामोरिया और मास्टर अल कबीर। और ये भेजते हैं ढोंडी लोहारा बल्लोद छत्तीसगढ़ से। और अगला मैसेज हमें मिला है मोहला हलवायान जिला बिजनौर से, मोहम्मद वकार फरीदी का। और इनके साथ और भी नाम है और इन नाम को हम शामिल करेंगे अपने कार्यक्रम में, लेकिन उससे पहले सुन लेते हैं ये एक और गीत।

0: तो यूसुफा, अगला मैसेज पढ़ने से पहले मैं ज़रा वो पिछला मैसेज पढ़ना चाहूँगा जिसको मैंने अधूरा छोड़ दिया था। तो वो मैसेज था मौला हलवायान शेरकोट ज़िला बिजनौर से मोहम्मद वकार फरीदी जी का, और इन्होंने और भी नाम दिए हैं जिनमें हैं मोहम्मद इकबाल फरीदी, सितारा बेगम, नसरीन परवीन, रोज़ी परवीन, बिट्टू भैया, साजदा रानी और हीना कौसर। और ये कहते हैं किसी भी गीत में हमें शामिल कर लीजिए, तो ज़रूर करेंगे। और बढ़ते हैं आगे अगले मैसेज की तरफ।
1: और अगला मैसेज हमें आया ग्राम अमना जिला हमीरपुर बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश से, जहाँ से मैसेज करता है राम शरण विश्वकर्मा, साहिल विश्वकर्मा, मंजू, रंजना, बंदना, प्रियल और दिव्यांशी विश्वकर्मा।
0: जी हाँ, तो दोस्तों आइए इन लोगों के सुनवाते हैं ये अगला खूबसूरत गीत, और हम भी सुनते हैं इन सब के साथ।

0: तो यूसुफ अब मैसेजेस हमारे पास लगातार आ रहे हैं और अगला मैसेज देखते हैं ये कहाँ से आया है। ये आया है विलेज एंड पोस्ट राहु नंगली और भेजने वाले हैं आचार्य सत्यवीर सिंह, अलका चौहान, अक्षय चौहान, भूमिका चौहान। और इन्होंने एक बहुत ही बेहतरीन बात लिख के भी भेजी हमें। ये कहते हैं कि आजकल बहुत गर्मी पड़ रही है, हमें अपने आप को हर प्रकार से गर्मी धूप से बचना है। मौसम के फल तरबूज, खरबूजा, खीरा, ककड़ी तथा सब्जी, लौकी, तुरई, करेला, टिंडे का प्रयोग करना है। चाय कॉफ़ी से बचना है। नींबू पानी, बेल का शरबत, शुद्ध दही की लस्सी, पानी आ गया हूँ मैं, और आम पन्ने का प्रयोग करना है और समय के अनुसार योग व्यायाम करना बहुत ज़रूरी है। देखिए व्यायाम तो इतना बेहतरीन खाने के बाद मुझसे तो नहीं हो पाएगा, लेकिन दोस्तों एक बेहतर और हेल्दी जिंदगी के लिए योगा करना बहुत जरूरी है। जी हाँ,
1: और मेरे ख्याल से मुझे अगला मैसेज शामिल कर लेना चाहिए, जो कि है जिला मुरादाबाद ग्राम धुलापुर उत्तर प्रदेश से मुकेश कश्यप, शीतल कश्यप, सोनू सुरेश, राजपाल, पंकज, काजल, सीमा, मानवी, तन्वी, लक्ष्य, सोनी, मोहिनी, ऋतिक और बलवीर सिंह। और इनका कहना है कि हमें किसी गीत में शामिल कर लीजिए।
0: बिल्कुल करेंगे। और ये अगला मैसेज हमें मिला है लाल कुर्ती रोड की कैंट से, राजेश वर्मा, मंजू वर्मा, निशांत वर्मा, कौशिकी वर्मा, दीपाली वर्मा, युवान और आर के राजा। और हमें नेक्स्ट मैसेज हमें मिला है दरियापुर भाबली महाराष्ट्र से, भेजने वाले हैं गजानन ये ले, नवदीप ये ले, विश्वदीप ये ले, अशोक ये ले और आदित्य दामोदर, अरुणा बलदेव दामोदर। और हमें और भी मैसेजेस मिल रहे हैं दोस्तों, और ये हमें आया है रिंगनी छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा, करुणा वर्मा और यूसुफा।
1: और एक मैसेज और आया है जिनका नाम है नबी हसन अब्बासी, शानाज अब्बासी, नवेद हसन अब्बासी, रसीद वारसी, सुहेल हसन अब्बासी, अनम अब्बासी, यशफ अब्बासी और सिकदर राव सहम, मुबीन अब्बासी और इशरत अब्बासी।
0: और ये अगला मैसेज आया है जलालाबाद वेस्ट से, सुरेश गगनेजा, पूनम गगनेजा, विशाल, प्रिया और दिशानी और निमित आहूजा। तो आइए दोस्तों सुनवाते हैं इन सभी को ये खूबसूरत गीत।

तो दोस्तों, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने अपने मैसेजेस हमें भेजे और हमने पूरी कोशिश करी आपके मैसेज अपने प्रोग्राम में शामिल करने की। और इसी के साथ हमें ये अगला मैसेज मिला है, नगीना से भेजने वाले हैं अनिल विनोचा, शमी विनोचा, अक्षय विनोचा, सहज अरोरा, गीत अरोरा, कनिका अरोरा। और एक और जो मैसेज हमें मिला है वो है, भेजने वाले के नाम हैं ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबिर राही और महराज जहां, आज़ाद नगर लक्सर हरिद्वार से ये मैसेज इन्होंने हमें भेजा है। और उम्मीद करते हैं दोस्तों कि आप सभी को आज का ये कार्यक्रम पसंद आया होगा। और घड़ी को देखते हुए, हमें घड़ी इस वक्त हमें देख देख के बहुत ज़ोर से चिल्ला रही है कि अब हमारे जाने का वक्त हो चुका है दोस्तों। तो इसलिए हम इन दोस्तों को कोई गीत नहीं सुनवा पाएंगे, लेकिन हमने पूरी कोशिश करी कि हमने आपका नाम ज़रूर शामिल किया है। तो दोस्तों, ये तो था हमारा आज का कार्यक्रम। हमें उम्मीद है आपको पसंद आया होगा, और बिल्कुल आया होगा। और आपको हमारा प्रोग्राम कैसा लगा हमें बता सकते हैं हमारे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके, जो कि है 9457078288 पर। और आप हमें खत भी भेज सकते हैं। हमारा पता है कार्यक्रम युवाणी अनुभाग द्वारा, केंद्र निदेशक आकाशवाणी नजीबाबाद, पिन कोड 2467। और इसी के साथ दीजिए अपने दोस्त मोहम्मद तौहीद और यूसुफा को कार्यक्रम संपन्न करने की अनुमति। नमस्कार।

0: अभी हमारे युवा श्रोता सुन रहे थे कार्यक्रम युववाणी। ये आकाशवाणी का नजीबाबाद केंद्र है। मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलोहर्ट्ज़ पर। शाम के 6 बजने हुए हैं। थोड़ी ही देर में दिल्ली से हिंदी में समाचार रिले किए जाएंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने आज भारत अमेरिका व्यापक वैश्विक रणनीतिक साझेदारी में लगातार हो रही प्रगति, क्षेत्रीय तथा वैश्विक शांति और सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की। विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने आज नई दिल्ली में सेवा तीर्थ में प्रधानमंत्री से मुलाकात की। श्री मोदी ने कहा कि भारत और अमेरिका विश्व कल्याण के लिए मिलकर काम करते रहेंगे। इस दौरान विदेश मंत्री डॉ. सुब्रमण्यम जयशंकर और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल भी उपस्थित रहे। श्री मार्को रूबियो 26 मई को होने वाली क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में हिस्सा लेने के लिए 4 दिन की भारत यात्रा पर हैं। श्री रूबियो आज कोलकाता पहुंचे, जहां उन्होंने मिशनरीज ऑफ चैरिटी का दौरा किया और मदर टेरेसा की विरासत को श्रद्धांजलि अर्पित की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकारी नौकरियां नागरिकों के जीवन को बेहतर और आसान बनाने का महत्वपूर्ण माध्यम हैं। श्री मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 19वें रोजगार मेले में कहा कि देश ने अपने कर्मयोगियों पर भरोसा जताया है और अब ये उनकी जिम्मेदारी है कि वे अपनी लगन, आचरण और रोजमर्रा के कामों से उस भरोसे का मान रखें और उसे मजबूत करें। श्री मोदी ने कहा कि पूरी दुनिया भारत की विकास यात्रा का हिस्सा बनने के लिए उत्सुक है।
2: दुनिया भारत के युवाओं और भारत की टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस को लेकर बहुत उत्साहित है। आज दुनिया भारत की विकास यात्रा का हिस्सा बनना चाहती है। भारत भी दुनिया के अलग अलग देशों के साथ पार्टनरशिप कर रहा है। इसका उद्देश्य यही है कि भारत के युवाओं को अवसर मिले, रोजगार मिले, उनका सामर्थ्य खिल उठे। साथ साथ मैं चाहता हूं मेरे देश के नौजवानों को ग्लोबल एक्सपोजर भी मिले।
1: रोजगार मेले में आज 51,000 से भी अधिक नवनियुक्त युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपे गए। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि वैश्विक उथल पुथल के बावजूद भारत में बुनियादी अर्थव्यवस्था मजबूत और निर्यात में वृद्धि बनी हुई है। उन्होंने कहा कि अप्रैल के बाद मई माह में भी निर्यात में वृद्धि जारी रही, जो वैश्विक प्रतिकूलताओं के बीच भारतीय अर्थव्यवस्था के लचीलेपन को दर्शाती है। नई दिल्ली में आज श्री गोयल ने कहा कि सरकार ने किसानों को बढ़ती लागत से बचाने के लिए उर्वरकों की बढ़ी कीमतों का बोझ स्वयं वहन किया है। उन्होंने कहा कि सरकार भव्य योजना के माध्यम से कारोबारी सुगमता के लिए देश भर में 100 औद्योगिक पार्क स्थापित करेगी। श्री गोयल ने कहा कि 33,600 करोड़ रुपए से अधिक के आवंटन वाली भारत औद्योगिक विकास योजना के अंतर्गत प्लग एंड प्ले औद्योगिक पार्क बनाए जाएंगे। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि ऑयल इंडिया लिमिटेड ने राजस्थान के दांडेवाला फील्ड में एक नए गैस भंडार का पता लगाया है। श्री पुरी ने कहा कि उथली सानू भौगोलिक संरचना से पहली बार लगभग 25,000 मानक घनमीटर प्रतिदिन की दर से प्राकृतिक गैस का प्रवाह होना एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। उन्होंने कहा कि इससे घरेलू ऊर्जा उत्पादन को मजबूत करने में सहायता मिलेगी। सरकार ने जन परामर्श के लिए विकसित भारत जी रामजी अधिनियम 2025 के अंतर्गत मसौदा नियम प्रकाशित किए हैं। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने कहा कि कोई भी व्यक्ति, हितधारक, संगठन या संस्था अगले महीने की 21 तारीख तक इन मसौदा नियमों पर आपत्तियां या सुझाव प्रस्तुत कर सकता है। पश्चिम बंगाल में आयुष्मान भारत योजना इस वर्ष जुलाई से शुरू होगी। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने आज कोलकाता में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री

जेपी नड्डा के साथ वर्चुअल बैठक के बाद इसकी घोषणा की। राज्य की स्वास्थ्य योजना स्वास्थ्य साथी के अंतर्गत मौजूदा लाभार्थियों को आयुष्मान भारत योजना में शामिल किया जाएगा। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में आज वृद्धि हुई है। दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 87 पैसे बढ़कर 99 रुपए 51 पैसे प्रति लीटर हो गई है, जबकि डीजल का मूल्य 91 पैसे बढ़कर 92 रुपए 49

0: This is Akashvani, the news read by Valsa Williams.
1: मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलोहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 6:05 हो रहे हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम कृषि जगत।

0: कार्यक्रम सुनने वाले सब भाइयों और बहनों को आपके भाई प्रमोद सिंह की राम राम। भैया क्या हाल चाल, सब ठीक ठाक तो हैं? और भैया आपकी खेती बाड़ी, आपकी घर गृहस्थी कैसी चल रही? सब ठीक ठाक है ना भैया? आजकल गर्मी बहुत हो रही, और भाई इस गर्मी में अपने आप को स्वस्थ रखना भी बहुत ज़रूरी है। हम स्वस्थ रहेंगे, ठीक रहेंगे, जभी तो भैया हमारे सारे काम भी ठीक होंगे। अब देखो आजकल जो गर्मी हो रही है भैया, यो गर्मी हमारे स्वास्थ्य के लिए काफ़ी हानि भी पहुंचा सके है। भाई देखो, अपने आप को ठीक रखने के लिए जब भी घर से निकलें तो भाई पानी पी कर निकलें, और पानी की बोतल अपने साथ में ज़रूर रखें, ठीक है ना भैया? याद रखें भैया, शरीर में कभी भी पानी की कमी नहीं होनी चाहिए। और भैया आँखों पर अगर हम चश्मा पहन लेंगे, सिर पर हम कपड़ा रख लेंगे, तो इससे हमें बहुत आराम मिलेगा। और भैया देखो, समय का तो ध्यान हमें रखना ही पड़ेगा भाई। खेतों में काम करना, तो इसमें हमें कुछ सावधानियां बरतनी चाहिए। जैसे दोपहर के समय भैया खेतों में काम बिल्कुल भी ना करें, अगर काम करना है, और करना तो है ही भैया, खेती बाड़ी है, तो खेतों में सुबह को काम करें और शाम को काम करें। अपनी खेती बाड़ी के कामों को भैया टाइम पर पूरा करते रहें। और हम इस टाइम पर जो भैया धान की नर्सरी को बोने की तैयारी कर रहे हैं, कुछ भाइयों ने बो भी दी होगी, तो भाई उसके लिए भी खेतों को अच्छी तरीके से तैयार करने की ज़रूरत है। और सारे काम अगर हम ठीक तरह से करेंगे तो भैया हम भी ठीक रहेंगे, हमारी खेती बाड़ी भी ठीक रहेगी, और हमारा जो पशुधन है वो भी ठीक रहेगा। खैर भाई, बातचीत तो देखो हम आज के इस कार्यक्रम में आपसे करेंगे ही। आपको तो पता ही है भैया, आज है शनिवार, और भाई आज का दिन होता है लोकगीतों और रागनियों को सुनने का। तो भैया आज भी हम आपकी पसंद की बहुत सारी रागनियां और लोकगीत आपको सुनवाएंगे। आपको तो पता ही है, आज हम कार्यक्रम आपके लिए लेकर आए हैं लोकगीतों और रागनियों का सजीव फरमाइशी फोन इन कार्यक्रम हेलो लोक मजरी। तो देखो भैया, ये कार्यक्रम आप ज़रूर सुनेंगे, इसमें आप अपनी पसंद की रागनी और लोकगीत सुनने के लिए हमारे पास में जो है भैया फ़ोन कर सकते हैं। नंबर हम आपको बता रहे हैं, हमारे नंबर हैं 94-570-78-288। दूसरा नंबर है 01-341-230-105। इन दोनों ही नंबरों पे भैया आप अपनी पसंद की रागनी सुनने के लिए हमारे पास में फ़ोन कर सके हैं। और भैया देखो, अभी हम आपको सुना रहे हैं ये कुछ संदेश।
1: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
2: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
1: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
2: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
1: डायल कीजिए 870-001-4242।
2: नंबर एक बार फिर नोट करें, 870-001-4242।
3: कम लागत समृद्ध किसान, यही आज का है अभियान।
0: पोषक

0: तो बचाएं, मिट्टी को स्वस्थ बनाएं।
1: यूरिया और डीएपी का संतुलित उपयोग,
0: खुशहाली का नया प्रयोग।
2: किसान भाई अंधाधुंध उर्वरकों के प्रयोग से बचें और खेती की लागत कम करके प्राकृतिक संसाधनों को बचाएं। भारतीय कृषि प्रणाली अनुसंधान संस्थान मोतीपुरम मेरठ और आकाशवाणी नजीबाबाद द्वारा जनहित में जारी।

0: AIR at 90.
1: तो देखो किसान भाइयों, ये संदेश आपने सुने और भाई आप सोच रहे होंगे कि आज हम आपको आपकी पसंद की रागनी और लोकगीत सुनवाने वाले हैं कार्यक्रम हेलो लोकमंजरी में। बिल्कुल भाई, हम आपको ज़रूर सुनवाएंगे। आप हमारे पास में फ़ोन करने के लिए तैयार रहिए। नंबर हम आपको फिर बताने वाले हैं। भाई थोड़ी सी बातचीत और करो ले। देखो, हम जो कह रहे थे ना कि भैया आजकल गर्मी बहुत हो रही है, अपने स्वास्थ्य का हमें ध्यान रखना है, अपनी फसलों का हमें ध्यान रखना है, वैसे ही भाई हमें अपने पशुओं का भी ध्यान रखना है। हमारे पशु अगर ठीक ठाक रहेंगे, हमारी खेती बाड़ी ठीक ठाक होती रहेगी, तो भैया सब ठीक ठाक होगा। अब देखो, इस गर्मी के मौसम में हमें अपने पशुओं को ध्यान रखने की जहाँ तक बात है, तो सबसे पहले तो भाई हमें ध्यान यो रखना है कि जो हमारी पशुशाला है उसके ऊपर सीधी गर्मी नहीं पड़नी चाहिए, सूर्य का प्रकाश उसके ऊपर नहीं पड़ना चाहिए। मतलब पशुओं को गर्मी से बचाने का काम हमें करना है। भाई अगर हम अपने पशुओं को गर्मी से बचा लेंगे तो इससे हमारे पशुओं का स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा, पशु दूध भी ठीक ठाक देते रहेंगे। तो पशुओं को तेज धूप से बचाएं और भैया पशुशाला का विशेष ध्यान रखें। पशुशाला में हवा ठीक ठाक जानी चाहिए, वो साफ़ सुथरी होनी चाहिए। और भाई देखो, अच्छा तो ये रहेगा कि जो पशुशाला की छत है, अगर हम उसके ऊपर घास फूस या टाट को डाल देंगे तो उससे जो तापमान है वो हम कम कर सकें। और भैया अपने पशुओं के स्वास्थ्य को ठीक रखने के लिए उनका आहार ठीक होना चाहिए। दिन में 2-3 बार उनको साफ पानी पिलावें, ताज़ा पानी पिलावें। और ध्यान यूँ रखें कि भाई इस टाइम पर सूखा चारा ज़रा पशुओं को कम दें। हरा चारा अगर हमारे पास में है तो हरा चारा और संतुलित चारा जो होता है, दाना मिश्रण जो होता है भैया, अगर हम उसको अपने पशुओं को देंगे तो पशु ठीक ठाक रहेंगे। और भाई इस बदलते हुए मौसम में भाई देखो, पशुओं में बहुत सारे रोग भी लग जाए हैं, जैसे कि भाई इस गर्मी के मौसम में हीट स्ट्रेस, खुरपका मुँहपका और गलघोटू जैसी बीमारियाँ लगने का बड़ा भारी खतरा रहे है। तो पशुओं का ध्यान रखें, टीकाकरण समय पर कराते रहें और भैया उन्हें साफ पानी और अच्छा दाना मिश्रण आहार सही समय पर देते रहेंगे, तुम्हारे पशु एकदम ठीक रहेंगे। खैर भाई, बातचीत तो हो ही रही है और देखो आज हमें आपको सुनवाना है लोकगीतों और रागनियों का फरमाइशी सजीव फोन इन कार्यक्रम हेलो लोकमंजरी। इस कार्यक्रम में भैया आप हमारे पास फोन कर सकते हैं। नंबर हम आपको फिर बता रहे हैं, नंबर है 94-570-78-288 और दूसरा नंबर है 01-341-230-105। इन नंबरों पे भैया हमें आपकी फोन कॉल्स का इंतजार रहेगा। तो आओ शुरू करते हैं कार्यक्रम हेलो लोकमंजरी।

0: तो भाई स्वागत है आप सभी का लोकगीत और रागनियों के फरमाइशी सजीव फोन इन कार्यक्रम हेलो लोक मंजरी में। और भाई आज के इस कार्यक्रम के साथ मैं हूँ आपका भैया प्रमोद सिंह। और भाई देखो कार्यक्रम शुरू हो चुका है, आप हमारे पास में फोन करके अपनी पसंद की रागनी और लोकगीत सुन सकते हैं। नंबर एक बार फिर से नोट कर लीजिए, हमारे नंबर हैं 94-570-78-288। और भैया दूसरा नंबर है 01-3-4-1-2-3-0-1-0-5। और देखो इधर हमने आपको नंबर बताया और उधर हमारे श्रोता लाइन पर हैं, देखते हैं कौन है। हेलो,
1: हेलो सर जी, नमस्ते।
0: नमस्ते जी। नमस्ते, थोड़ा तेज बोलिए, बोल लीजिए, आपकी आवाज थोड़ी कम आ रही है। आप कौन, कहाँ से बोल रहे हैं
1: सर मैं किरतपुर के पास कसौर गांव से बोल रहा हूँ सर।
0: जी। अपना नाम भी बता दीजिए।
1: मेरा नाम अमित धीमान है सर।
0: वाह वाह वाह, अमित धीमान जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम हेलो लोक मंजरी में। और आप तो हमारे नियमित श्रोता हैं, बराबर आपके
1: जी
0: फोन हमारे पास में आते रहते हैं। आपकी खेती बाड़ी कैसी चल रही है अमित जी?
1: सर, सर जी बढ़िया है सर।
0: अच्छा, ये जो इस समय गर्मी हो रही है, और अभी हम बात भी कर रहे थे कि हमें अपने पशुओं का इस मौसम में ध्यान रखना चाहिए, पशुपालन करते हैं आप?
1: सर पहले वो कराहा अब्जा नहीं है इस टाइम कुछ।
0: अच्छा, अभी नहीं है, कोई बात नहीं।
1: हाँ
0: तो देखिए, जैसे हम अपने पशुओं का ध्यान रखते हैं, हमें अपना भी ध्यान रखना है। इस लू से बचने के लिए आप किस तरीके से अपना ध्यान रख रहे हैं?
1: सर, पेयजल का ज्यादा इस्तेमाल करें
0: हाँ हाँ
1: और
0: हाँ
1: सफेद अपना ज्यादा से ज्यादा सफेद वस्त्र का पहनावा
0: जी,
1: पहने।
0: बहुत अच्छी बात आपने बताई है। देखिए, आप इसी तरीके से अपना ध्यान रखिए, अपनी फसलों का भी ध्यान रखिए। और आज के इस कार्यक्रम में क्या सुनना चाहोगे अमित जी?
1: जी सर, दहेज के किस्से से कोई रागनी सुना देना।
0: कोई भी रागनी सुना दें?
1: हाँ जी हाँ, कोई सी भी
0: अच्छा, तो ठीक है, हम आपको सुना रहे हैं दहेज प्रथा की ये रागनी।
1: सर जी, कुछ मेरे नाम है मिलने वालों के। जी,
0: हाँ, ले लीजिए ले लीजिए
1: हरपाल शास्त्री जी हैं चिड़ियापुर से,
0: जी।
1: और आचार्य सत्यवीर जी राहु नंगली, और सब आकाशवाणी परिवार और हम सब जितने भी सुनने वाले लोग हैं।
0: जी। तो ठीक है अमित जी, आप सुनिए अपनी पसंद पर कुलदीप सिंह और साथी की गाई ये रागनी।

0: देखते हैं कौन भाई लाइन पर है। हेलो
1: हेलो
0: हेलो,
1: हेलो मंजरी। हेलो,
0: हाँ जी बोलिए। अच्छा
1: मैं ग्राम गढ़ौना जिला हरिद्वार उत्तराखंड से मदन गिरी बोल रहा हूँ।
0: जी जी बहुत बहुत स्वागत है मदन गिरी जी आपका। सब
1: बोलो
0: ठीक
1: फिर
0: ठाक
1: भी
0: हैं
1: राम
0: मदन जी?
1: राम। हाँ जी ठीक ठाक है, पर राम राम जी। अच्छा
0: हमारी भी राम राम जी, हमारी भी राम राम आपको।
1: जी,
0: और सुनाओ जी, सब ठीक ठाक हैं?
1: बस
0: खेती बाड़ी
1: ठीक
0: कैसी
1: ठाक
0: चल
1: है,
0: रही है
1: सब बहुत
0: आपकी?
1: ठीक चल रही है जी, बहुत बढ़िया। हाँ
0: चलो जी बहुत अच्छी बात है। और
1: जी,
0: इस समय गर्मी भी अच्छी हो रही होगी?
1: हाँ जी गर्मी काफी हो रही है जी।
0: जी। तो इस समय आपने धान को बोने की तैयारी तो कर ली होगी मदन गिरी जी?
1: जी हाँ तैयारी कर ली है जी, लेकिन
0: अच्छा
1: एक पचहत्ता होगा गन्ना।
0: हाँ, वो थोड़ा बरसात के कारण हुआ है
1: हाँ
0: ना,
1: जी
0: आपने
1: हाँ,
0: खेत तैयार किया और उसमें फिर आप बो नहीं पाए उसको।
1: हाँ जी 14 तारीख में बोया जी। हो फिर
0: चलिए चलिए, सब अच्छी बात है। चलो थोड़ा लेट बोया है पर फिर भी आप उसकी ठीक तरीके से देखभाल करते रहिए।
1: देसी घास भी गिरवाया हमने।
0: हाँ
1: हाँ
0: जी, अच्छी
1: जी
0: बात है। आज
1: हाँ
0: के
1: जी
0: कार्यक्रम में क्या सुनोगे
1: हाँ जी, वो ये जो लोकगीत है हरियाणवी, हरी
0: जी?
1: भरी तरकारी लीलो।
0: अच्छा, ये लोकगीत आपको बहुत अच्छा लगता है,
1: हाँ जी, असल
0: तो ठीक है।
1: में मेरी ससुराल हरियाणा है।
0: अच्छा ये तो और
1: हाँ
0: अच्छी बात है जी।
1: जी, पत्नी भी सुनती है, मैं
0: अच्छा जी, अच्छा।
1: भी सुनता हूँ। और जो है मैं कुछ नाम देना चाहता हूँ दो तीन,
0: हाँ जी हाँ, ले लीजिए।
1: और वो देखिए आचार्य सत्यवीर सिंह जी चौहान है,
0: जी,
1: और जो है राहुल नगली से और नगीना से अनिल जी नोचा, और ये जो हमारे प्रकाश चंद जी हैं
0: जी।
1: वो उसी को मैं रागनी के उन्हें समर्पित कर रहा हूँ। वो बहुत बहुत दिन है रागनी के
0: जी, ये लोकगीत हम आपको
1: प्रकाश
0: सुना
1: चंद
0: रहे हैं,
1: जी।
0: आप भी सुनिए और अपने सभी जो दोस्त हैं आपके साथी हैं उनको भी आप अवश्य सुनाइए। आपने हमारे पास में फोन किया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
1: धन्यवाद जी, बहुत।

0: हरी भरी तरकारी ले लो। भाइयों ने यू हरियाणवी लोकगीत सुना और भाई हमारे सभी किसान भाई बहन सुन रहे हैं लोकगीत और रागनियों का फरमाइशी सजीव फोन इन कार्यक्रम हेलो लोक मंजरी। किसान भाई जो हमारे साथी अभी इस कार्यक्रम से जुड़े हैं वो अपनी पसंद की रागनी और लोकगीत सुनना चाह रहे हैं तो हमारे पास में फ़ोन कर सकते हैं। नंबर हम फिर बता रहे हैं, हमारे नंबर हैं 94-570-78-288 और हमारा एक और नंबर है 01-341-230-105। और अब देखते हैं कि हमारे कौन भाई लाइन पर हैं। हेलो
1: हेलो भाषा, नमस्ते
0: नमस्ते जी। नमस्ते, अपना नाम बता दीजिए आप
1: जी। मैं उत्तराखंड से निकाल सेनगांव फैक्ट्री से प्रकाश चंद्र बोल रहा हूँ जी। मैं
0: जी। जी जी प्रकाश चंद जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सब ठीक ठाक हैं?
1: आला धन्यवाद दादा, यहाँ तो सब बढ़िया और आकाशवाणी में समस्त स्टाफ और आप लोग सब बढ़िया।
0: जी जी बहुत अच्छे हैं। बताइए आपके यहाँ पर कैसा मौसम है? यहाँ तो बहुत गर्मी हो रही है।
1: ऐसा भी गर्मी, बहुत गर्मी हो रही है। आज मैं ये गाना सुनूंगा नौ डांडे का बीजड़ा, क्योंकि गर्मी बहुत हो रही है यहाँ भी।
0: मतलब आप भी हरियाणवी लोकगीत सुनेंगे, मेरा नौ डांडी का बीजना हम आपको जरूर सुनाएंगे। देखिए आपके यहाँ उत्तराखंड में बहुत सारे दूर दूर के पर्यटक घूमने के लिए जा रहे हैं।
1: वैसा भाई इधर, क्योंकि यहाँ देवभूमि है, उत्तराखंड देवभूमि है यहाँ,
0: जी जी जी
1: इसलिए यहाँ बहुत मतलब ये घूमी है। यहाँ तो उत्तराखंड में पर्यटक घूमने के लिए आते
0: हाँ
1: हैं। आजकल तो इधर बहुत भीड़ लगी हुई है।
0: हाँ भीड़ लगी हुई है और देखिए देवभूमि भी है, उसके साथ साथ वहाँ का जो वातावरण है वो थोड़ा ठीक है और इसीलिए जो है वहाँ घूमने के लिए बहुत सारे पर्यटक दूर दूर से आते हैं। तो हम उनको ये संदेश जरूर देना चाह रहे हैं कि भाई आप घूमने के लिए जाएं लेकिन साफ सुथरा अपना उत्तराखंड रखें और अपने आसपास की साफ सफाई रखें। आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में?
1: भाई साहब, इसमें तो आपने बहुत अच्छी जानकारी दी और हम भी सोचते हैं कि यहाँ ऐसे स्वच्छ, क्योंकि यहाँ स्वच्छता तो खैर होती है यहाँ,
0: जी
1: एक
0: जी
1: बार
0: जी
1: आप जाओ इधर उत्तराखंड में
0: बिल्कुल बिल्कुल
1: और आप भी देखो इधर कितना वो कैसा। ये तो आप लोग आ रखे होंगे इधर।
0: हाँ बिल्कुल बिल्कुल आएंगे। और देखिए अभी हम आपको आपकी पसंद का ये हरियाणवी लोकगीत सुना रहे हैं।
1: भाई साहब, ये दो नाम ले लूं मैं,
0: जी बिल्कुल, आप भी ले लीजिए नाम।
1: कनु प्रिया, उज्जवल कुमार और मंजू देवी और

0: से जो ये औषधि मतलब ये सुनने वाले हैं उनको भी, और ये जो किस जगत में फोन करने वाले श्रोता भी रहता है, क्योंकि किसी जगत एक बहुत अच्छा प्रोग्राम हो गया जो कि ये बहुत अच्छे ढंग से सुनते हैं यहाँ उत्तराखंड में
1: जी
0: भी।
1: जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप हमारे कार्यक्रम को इसी तरीके से सुनते रहिए, हम आपको सुना रहे हैं आपकी पसंद का ये हरियाणवी लोकगीत।
0: ठीक है राजा, नमस्ते जी, नमस्ते।
1: नमस्कार जी, नमस्कार।

0: मेरा नौ डांडी का बीजना। भाइयों ने यो लोकगीत सुना सविता साथी की आवाज़ में। और भाई हमारे सभी किसान भाई बहनों को एक नंबर फिर हम दोबारा बता देते हैं, नंबर है 94-570-78-288। और हमारा दूसरा नंबर है 01-3-41-230-105। इन दोनों ही नंबरों पर किसान भाई हमारे पास में फ़ोन करके अपनी पसंद की रागनी और लोकगीत सुन सकते हैं। अभी हमारा ये कार्यक्रम चल रहा है 6:45 तक। और अब देखते हैं हमारे कौन भाई लाइन पर हैं। हेलो,
1: सर नमस्कार।
0: नमस्कार जी। हेलो लोकमंजरी में आपका स्वागत है। कौन बोल रहे हैं?
1: मैं ग्राम करखेड़ा तहसील टांडा से आदेश सरजावती बात कर रहा हूँ सर।
0: जी जी आदेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। कैसे हैं? हमारे कार्यक्रम को सुनते हैं आप?
1: बिल्कुल सर, डेली सुनते हैं सर हम प्रोग्राम,
0: कैसा
1: हमारे
0: लगता है हमारा
1: पिताजी
0: ये?
1: बहुत बहुत सुनते हैं सर।
0: जी जी कैसा लगता है हमारा ये कार्यक्रम आपको?
1: सर बहुत अच्छा लगता है प्रोग्राम।
0: अच्छा, तो खेती बाड़ी होती है
1: नहीं
0: आपके यहाँ आदेश जी?
1: हाँ सर, खेती बाड़ी होती है थोड़ी।
0: हाँ जी। तो जो जानकारी हम इस कार्यक्रम में आप तक पहुँचाते हैं, कभी उसका लाभ आपको मिला है?
1: हाँ सर, बहुत सारा लाभ मिला है। आप जिस तरह से बताते हैं कि इस तरह करना चाहिए, ये करना चाहिए, तो
0: अच्छा
1: हम इसको यूज
0: अच्छा
1: करते
0: अच्छा
1: हैं तो हमारे क्षेत्र में लाभ मिलता है सर।
0: बहुत अच्छी बात है। देखिए, हमें ये जानकर बड़ी खुशी हो रही है। और हम यही प्रयास करते हैं कि हम जो भी जानकारी अपने जब भी सुनने वालों तक पहुंचाएं, वो सभी किसान भाई हमारे लाभान्वित हों। आज आप क्या सुनना चाहेंगे इस कार्यक्रम में?
1: सर हमारे पिताजी की फरमाइश है, मिस्टर राजाराम जी की
0: जी
1: फरमाइश है, प्रेम सिंह जी की आवाज में कोई सा भी लोकगीत सर, कोई सी राग नहीं।
0: जी जी हम वीर सिंह जी की आवाज में सुना रहे हैं आपको। क्या
1: बिल्कुल
0: आपने
1: सर,
0: नाम क्या बताया था? प्रेम सिंह जी?
1: मिस्टर राजाराम जी।
0: जी राजा राम जी। आपने गायक का नाम बताया था प्रेम सिंह
1: नहीं, गायक का नाम सरन सिंह सर।
0: जी। प्रेम सिंह जी तो देखिए हमारे यहाँ कोई भी लोक गायक नहीं है हमारे स्टेशन पर। हम
1: ठीक है सर,
0: आपको
1: वीर सिंह जी की आवाज में आप सुनवा दीजिए।
0: जी वीर सिंह जी की आवाज में हम आपको सुना रहे हैं। तो आप भी सुनिए और अपने सभी सुनने वालों को आप उनको सुनाइए। हम आपको सुना रहे हैं आपकी पसंद पर ये रागनी।
1: ओके धन्यवाद।

0: भाई लाइन पर हैं। हेलो
1: हेलो हेलो
0: हेलो जी, हेलो लोक मंत्री कार्यक्रम में आपका स्वागत है। अपना नाम बता दीजिए
1: जी, मैं प्रमोजी सेवारा से बात कर रहा हूँ, मुस्तकीम मैम।
0: जी। मुस्तकीम जी, बहुत बहुत स्वागत है। देखिए समय कम है, आप जल्दी से बता दीजिए आप क्या सुनना चाहोगे।
1: सर, मैं राजकुमार जी की आवाज में एक राग सुनना चाहूंगा।
0: अच्छा, तो हम आपको सुनाते हैं राजकुमार जी की आवाज में ये रागनी।
1: ठीक
0: ठीक है
1: है,
0: जी,
1: थैंक
0: आपने
1: यू
0: फोन किया, बहुत
1: थैंक
0: बहुत
1: यू।
0: धन्यवाद।
1: चल,

तो भाई ये था हमारा आज का लोकगीत और रागनियों का फरमाइशी सजीव फोन इन कार्यक्रम हेलो लोक मंजरी। यदि आप भी अपनी पसंद की कोई रागनी या लोकगीत सुनना चाहते हैं तो आप प्रत्येक शनिवार को हमारे इस कार्यक्रम का हिस्सा बन सकते हैं। नंबर आपको पता ही है, हमारे नंबर हैं 94-570-78-288। और भाई आपको हमारा कार्यक्रम कैसा लगता है आप हमें अवश्य बताएं। हमारा पता है कार्यक्रम कृषि जगत द्वारा केंद्र निदेशक आकाशवाणी नजीबाबाद पिन 246763। इसके अलावा आप हमारे पास में व्हाट्सएप मैसेज भी कर सकते हैं, नंबर वही है 94-570-78-288। और भाई अब बस समय हमें इजाजत नहीं देता कि आपसे ज्यादा बातें की जाएं, आज के कार्यक्रम को यहीं पर संपन्न करते हैं। अपने भाई प्रमोद सिंह को दीजिए अनुमति। किसान भाइयों राम राम।

अभी हमारे किसान भाई सुन रहे थे कार्यक्रम कृषि जगत। आकाशवाणी का ये नजीबाबाद केंद्र है, मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलोहर्ट्ज़ पर। शाम के 6:45 हो रहे हैं, आइए सुनते हैं कार्यक्रम विविधा में डॉक्टर ज्ञानचंद्र से एसके नौटियाल की बातचीत। विषय है भेंट वार्ता, ताप घात, लू लगना, कारण लक्षण और बचाव।

0: आप सबका स्वागत, अभिनंदन। आज इस प्रोग्राम में हमारे साथ हैं डॉक्टर ज्ञानचंद्र, और आपसे बातचीत करने का आज का हमारा विषय है तापघात, यानी कि हीट स्ट्रोक, जिसको लू लगना भी कहा जाता है आम भाषा में, कारण, लक्षण और बचाव। डॉक्टर साहब, इस प्रोग्राम में आपका स्वागत है।
1: धन्यवाद।
0: गर्म हवा जब चलती है, जिसको हीट वेव भी कहा जाता है, गर्मी के मौसम में ये जो हवा चलती है, और ये आम आदमी को, या फिर ये कहें कि जितने भी जीव जंतु हैं, उनको परेशान करने का काम करती है। बहुत से कारण भी हो सकते हैं, लक्षण भी होते हैं, लेकिन डॉक्टर साहब, तापघात की जब बात करते हैं, आम भाषा में जिसको लू लगना कहा जाता है, हीट वेव की जब हम बात करते हैं, यानी कि गर्म हवा जब चलती है, मई और जून के दो महीने होते हैं साल में, ये दो महीनों में ये समस्या आती है, और इसमें जब इंसान लापरवाही करता है तो उसका खामियाजा उनको भुगतना पड़ता है। क्या है लू लगना, जिसको अंग्रेजी में हीट स्ट्रोक भी कहा जाता है?
1: इससे पहले आप हीट वेव के बारे में समझिए।
0: जी,
1: आजकल सभी जगह सुनने में रहा होगा कि हीट वेव चल रही है। हीट वेव का मतलब तेज गर्म हवाओं से नहीं है, बल्कि एक ऐसा समय अंतराल जिसमें जो उस रीजन का तापमान है उस रीजन के नॉर्मल तापमान से अधिक बना रहता है। इस पीरियड को हम हीट वेव कहते हैं।
0: अच्छा,
1: तो जैसे हमारे यहाँ अगर 40 डिग्री सेल्सियस से अगर अधिक टेम्परेचर हो जाए या इतना हो जाए तो उसको हीट वेव हम कहते हैं।
0: जी,
1: और हीट वेव का ही एक सबसे खतरनाक ये साइड इफेक्ट है, जिसको हम हीट स्ट्रोक, तापघात या लू लगना कहते हैं। और ये बहुत ही खतरनाक होता है, अगर समय पर इसका उपचार ना किया जाए तो ये जानलेवा हो सकता है।
0: जी जी डॉक्टर साहब, जैसे आपने हीट वेव की बात कही, हीट वेव और एक सामान्य तापमान की जब हम बात करते हैं, और गर्मी का जब मौसम होता है, ये हर साल होता है, कभी कभी ये उसमें कुछ थोड़ा अंतर होता है, यानी कि जो तापमान है थोड़ा कम रहता है, और कभी कभी बहुत अधिक तापमान देखने को भी मिल जाता है। जैसे जैसे तापमान बढ़ता है, गर्मी बढ़ती है, और गर्म हवाएं बड़ी तेजी से चलती है, तो जैसे जैसे आम आदमी, आम नागरिक, काम उनको अपना करना होता है, काम के लिए घर से बाहर जाना होता है, क्योंकि चाहे वो किसी भी रूप में घर से निकलना हो तो वो जरूरी भी होता है, क्योंकि बहुत से काम ऐसे हैं बिना घर से बाहर निकले हो ही नहीं सकते। तो जब वो इंसान लापरवाही करता है, कैसे वो लोग की चपेट में आता है?
1: आप इसको ऐसे भी समझिए, जैसे हम लोगों का, सभी लोगों का एक नॉर्मल टेम्परेचर, हम लोगों का, इंसानों का 37 डिग्री सेल्सियस होता है।
0: अच्छा,
1: अब ये जो हीट वेव की बात हम लोग कर रहे थे, तो इसमें टेम्परेचर, तापमान 40 डिग्री सेल्सियस या उससे अधिक होता है, जिसको हम हीट वेव कहते हैं। तो उस हीट वेव से एक लिमिट तक हमारा शरीर तापमान को नियंत्रित करता है, लेकिन एक उससे अधिक हो जाता है तो फिर नियंत्रित नहीं कर पाता है, और हमारी जो बॉडी की शारीरिक क्रियाएं हैं वो सारी अफेक्टेड हो जाती हैं।
0: जी,
1: जिसकी वजह से ये सारा लू लगना कहते हैं, हीट स्ट्रोक कहते हैं, जो कि जानलेवा भी हो सकता है अगर समय पर उपचार ना मिले।
0: जब नॉर्मल टेम्परेचर से अधिक टेम्परेचर होता है, हमारा जो शरीर है उसको बर्दाश्त नहीं कर पाता है, उसी कारण हम उस लू की चपेट में आ जाते हैं, लू का असर हमारे शरीर पर हो जाता है। तो जब जब ये समस्या होती है कभी कभी, और कहीं कहीं जो तापमान है वो बहुत अधिक होता है, 50 डिग्री को भी क्रॉस कर जाता है, ऐसी स्थिति में हमारे जो आम नागरिक हैं या हमारे जो जीव जंतु हैं, उनको बहुत ध्यान रखने की आवश्यकता है। डॉक्टर साहब, यहाँ सवाल अब ये उठता है कि क्या इस लू का असर पशु पक्षियों पर भी होता है या नहीं?
1: बिल्कुल, हर जीव जंतु पर होगा। हर जीव का एक टेम्परेचर होता है जो नॉर्मल टेम्परेचर होता है, उससे अधिक होगा, एक लिमिट तक कंट्रोल करेगा, उसके बाद अनकंट्रोल हो जाएगा, उसके साइड इफेक्ट होने लगेंगे। अधिक गर्मी, पशु पक्षियों की बात हो रही है, गर्मी लग रही है और उसको पानी नहीं मिले तो तमाम चिड़ियां भी मर जाती हैं, पशु भी मर जाते हैं।
0: बिल्कुल बिल्कुल, और कभी कभी डॉक्टर साहब ये भी होता है कि पशु पक्षी हमेशा खुले आसमान के नीचे रहते हैं। डॉक्टर साहब, जैसे किसी को लू लग जाती है, या जिसको हम हीट स्ट्रोक भी कहते हैं, हीट वेव का कारण तो होता ही है, बच्चों पर इसका असर क्या अधिक होता है या नहीं?
1: हाँ, बच्चों पर और बुजुर्गों पर इसका ज्यादा असर होता है, साथ ही कुछ और बीमारियां जिनको होती हैं उन पे भी ज्यादा असर होता है।
0: अच्छा, क्या जो महिलाएं हैं, हमारी गर्भवती महिलाओं पर भी इसका कोई असर होता है?
1: गर्भवती महिलाओं पर भी असर होता है और जो पैदा होने वाले बच्चे पर भी असर पड़ता है उसका।
0: अच्छा, जो महिला गर्भवती है उसका फिर डिलीवरी यानी कि प्रसव हो जाता है, तो जो बच्चा पैदा होता है वो उसके ऊपर भी
1: उसमें
0: इसका
1: भी तमाम सारे जो लक्षण ऐसे मिल सकते हैं जो कि सही नहीं है,
0: अच्छा उसके इफेक्ट में वो आ सकते
1: इफेक्ट
0: हैं।
1: हो सकता है।
0: बहुत सी समस्याएं आम नागरिक को होती ही रहती हैं, वो पहचान नहीं पाता, उसको समझ में नहीं आता कि क्या हो सकता है, और जब कहीं डायग्नोस होता है या कहीं टेस्ट होता है या फिर कहीं डॉक्टर के पास जब हम जाते हैं तो पता चलता है, तो मुख्य जो उसके कारण क्या हो सकता है कि जब कोई कारण ऐसे हमारे श्रोताओं को बताएं जिससे वो पहचान पाएं कि इसके कारण आपको ये लू लगी है।
1: जी देखिए, जैसे जब गर्मी ज़्यादा होती है हमारा शरीर का तापमान कंट्रोल नहीं हो पाता है। शरीर का तापमान बहुत अधिक बढ़ा हुआ होता है, 40 डिग्री सेल्सियस तक हो सकता है या उससे भी अधिक हो सकता है। शरीर में मसल क्रैम्प हो सकते हैं, जो मांसपेशियां हमारी, उसमें अकड़न, दर्द वगैरह हो सकता है,
0: अच्छा
1: चक्कर आना, उल्टी आना, बेहोशी सी होना और धड़कन तेज होना, सांस तेज होना,
0: अच्छा
1: ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। और जिसका जो सबसे घातक असर है ये यही आपका हीट स्ट्रोक, जिसे कहते हैं लू लगना कहते हैं,
0: अच्छा
1: ये होता है। और सभी के लिए एक सामान्य ज्ञान इस बारे में होना बहुत ज़रूरी है।
0: जी
1: जैसे अब ये बातचीत चल रही है अपने से रेडियो के द्वारा, अगर ये
0: जी
1: लोग सुनेंगे तो इससे काफ़ी लाभान्वित होंगे ही।
0: जागरूक करने का काम करते हैं और उनको जानकारी पहुंचाने का प्रयास करते हैं, कैसे और क्या बचाव करें हमारे जितने भी श्रोता हैं ताकि उनको लू ना लगे या फिर इस तरह की जो गर्मी वाली जो समस्याएं हैं वो उनके सामने ना आए, तो उनको क्या बचाव करना चाहिए?
1: गर्मी हो ही रही है, सबको पता है, जो तेज़ गर्मी में ना निकलें बाहर, अगर निकलना ही है तो कुछ सर ढक करके इस तरीके से, या छाता लेकर के इस तरह से निकल सकते हैं, या जो बहुत सारे जिनको बाहर निकलना ही है,
0: जी
1: मजबूरी है, काम करना है, मजदूर वर्ग है, तो ऐसे लोग बिल्कुल लगातार काम ना करते रहें। जो काम करा रहे हैं उनका भी दायित्व तो होता है कि उनको बीच में आराम करने दें, तो वो अपना काम करें तब आराम करें, लगातार काम ना करते रहें। खासकर वो वर्कर जिन्हें गर्मी के मौसम में गर्म वातावरण में काम करना पड़ता है, बहुत सारी फैक्ट्रीज इस तरह की होती हैं जहाँ बहुत गर्मी होती है, और वैसे भी डायरेक्ट धूप में, तेज धूप में अगर कोई वर्कर काम कर रहा है तो बीच में थोड़ा सा रेस्ट लेना बहुत आवश्यक है। और पानी का इस्तेमाल बहुत करना, खूब
0: जी
1: पानी पीना है
0: डॉक्टर
1: ताकि शरीर का जो है डिहाइड्रेशन ना हो, हाइड्रेशन प्रॉपर बना रहे।
0: जी, क्योंकि डिहाइड्रेशन हो जाता है और डिहाइड्रेशन होने से और समस्या गंभीर हो सकती है। डॉक्टर साहब, जैसे किसान है, किसान को खेत में काम करना होता है, आम आदमी है उसकी अपनी दिनचर्या होती है, वो मजदूर आदमी है उसको अपनी मजदूरी पर जाना होता है, जो सरकारी सेवा में लोग होते हैं उनको अपनी ड्यूटी पर जाना होता है, बहुत सारे काम होते हैं, फेरी वाला है उसको अपना काम करना होता है, सब्जी बेचने वाला है उसको अपना सब्जी बेचने के लिए घर से निकलना होता है, क्या इन सबको ध्यान रखने की आवश्यकता है?
1: हाँ बिल्कुल, जो मैंने अभी कहा था ना कि जो बीच बीच में आराम करना चाहिए,
0: बिल्कुल डॉक्टर साहब, आपने कहा है कि ध्यान रखें और बीच बीच में थोड़ा सा ब्रेक लें और पानी का बार बार इस्तेमाल करते रहें। डॉक्टर साहब, जब किसी को कोई समस्या हो जाती है, सबसे बड़ा जो तरीका है वो उपचार होता है। छोटे मोटे डॉक्टर होते हैं जिनके पास कोई लाइसेंस या कोई डिग्री नहीं होती है, उनसे वो अपना इलाज कराना शुरू कर देते हैं, या फिर अपना कोई घरेलू जो दवाई है वो लेने का प्रयास करते हैं, या फिर वो सीधे मेडिकल स्टोर जाते हैं और वहाँ से कोई भी मेडिकल स्टोर से दवाई ले लेते हैं, उसका इस्तेमाल करते हैं। ऐसे लोगों को हमारे जितने भी नागरिक हैं उनको क्या कहेंगे आप, क्या सलाह देंगे, क्या उपचार के लिए उनको कहेंगे कि वो क्या करें?
1: पानी के बारे में मैं एक चीज़ और बताना चाह रहा हूँ, जैसे ये प्यास लगने का इंतज़ार ना करें कि प्यास लगेगी तभी पानी पियेंगे। गर्मी है, जैसे ही मौका मिले जहाँ भी वो हो बिना प्यास के भी पानी पीते रहें। एक जो पानी की कमी होती है शरीर में तो पेशाब का रंग गाढ़ा हो जाता है।
0: अच्छा,
1: अब जो आप उसके बात कर रहे थे
0: उपचार की
1: घरेलू उपचार की, तो अगर किसी को ऐसा हुआ है तो उसको सबसे पहले तो किसी ठंडे स्थान पर, कवर्ड एरिया में, पेड़ के नीचे, ऐसी जगह उसको लिटाएं, कपड़े उसके उतार दें जो भी, ताकि सही से हवा लगे, ठंडा पानी पिलाएं, ठंडे पानी से उसको नहलाएं, पंखा चलने की जगह हो तो पंखा चलाएं, ठंडे पानी से उसको पोंछते रहें, नहलाते रहें, अगर बर्फ उपलब्ध है तो बर्फ के पानी से उसका शरीर को ठंडा करें।
0: अच्छा
1: लू हीट स्ट्रोक का जो मेन ट्रीटमेंट है, बिल्कुल बर्फ के पानी में उसको लिटा दें बिल्कुल।
0: अच्छा उसको रखा जाए।
1: हाँ, अगर इस तरह की व्यवस्था है तो ये करें, वरना घर में इतना तो कर ही सकते हैं कि अपना ठंडे स्थान पर लाएं, ठंडा पानी पिलाएं, ठंडा पानी से उसको नहलाएं,
0: पेय पदार्थों का

0: से अधिक इस्तेमाल सबको करना चाहिए गर्मी के मौसम में।
1: पेय पदार्थों के अलावा कुछ जो हमारे पसीना निकलता है, जो मिनरल्स बहुत सारे निकल जाते हैं,
0: जी
1: जो पसीना में कुछ चीज़ निकल जाती हैं, तो ORS वगैरह या मिनरल वाटर वगैरह ऐसी चीज़ें, शिकंजी, नींबू की शिकंजी वगैरह, इस तरह के तरल पदार्थ
0: लेने चाहिए
1: देने चाहिए।
0: डॉक्टर साहब। जैसे हमारे शरीर में गर्मी के मौसम में पसीना निकलता है, और पसीना निकलने से शरीर के अंदर नमक की कमी हो जाती है, और नमक की कमी की पूर्ति के लिए आपको पानी की आवश्यकता होती है और पेय पदार्थों की आवश्यकता होती है। उनका इस्तेमाल करते रहें, घरेलू उपचार सबसे पहले करें, और उसके बाद फिर अच्छे किसी डॉक्टर्स के पास जाएं, उसका अपने जो भी पेशेंट है या जो भी जिसको कोई समस्या है उसका इलाज करवाएं।
1: हॉस्पिटल ले जाने से पहले
0: जी
1: अभी जो बात हुई थी कि जो हमने बताया था कि ये कर सकते हैं घर पे, जब तक हॉस्पिटल ले जाने में की व्यवस्था होती है तब तक ये काम अपने घर पे ही कर सकते हैं। जगह जगह गवर्नमेंट के हॉस्पिटल्स हैं, छोटे हॉस्पिटल, बड़े हॉस्पिटल, और इसके अलावा भी कुछ छोटे वर्कर हैं,
0: हाँ
1: तो उन्हीं से राय लेना चाहिए, क्योंकि वो सब ट्रेंड होते हैं, इसी सब बीच बीच में ट्रेनिंग भी होती रहती है। इस तरह के लोगों के पास ना जाएं, क्योंकि उनको इतनी जानकारी सब नहीं होती।
0: बिल्कुल, आपने सही कहा कि ऐसे लोगों से बचने की आवश्यकता है आपको, ताकि आपका सही इलाज हो सके और सही कुशल डॉक्टर के पास आप जाएं, वहां अपना इलाज कराएं। चिकित्सालय यदि आपके आसपास है तो वहां जाएं, और यदि नहीं है तो जो भी कुशल डॉक्टर है, डिग्रीधारी जो भी डॉक्टर हैं, उनसे आप सलाह लें, वहां से अपना इलाज कराएं। कभी कभी इलाज के बारे में बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है, और उस नुकसान की भरपाई बहुत ही मुश्किल होती है। डॉक्टर साहब, बहुत सारी जानकारी आपने दी है, बचाव की बात कही, इलाज की बात कही, हमें क्या करना चाहिए एक नागरिक होने के नाते, और नागरिक जब बचने का प्रयास करते हैं दूसरों को बचाने का प्रयास भी करना चाहिए। हमारे जीवन के साथ साथ या हमारी जो लाइफ में पशु पक्षियों का बहुत बड़ा योगदान रहता है, उनकी सहायता ऐसे हाल में हमारे लोगों को करनी चाहिए या नहीं?
1: बिल्कुल करनी चाहिए। देखिए, पशुओं के लिए पानी की उचित व्यवस्था हो, प्लस कवर्ड एरिया जैसे
0: छायादार,
1: छायादार वृक्ष हो,
0: जी
1: जिसमें पानी की अक्सर जैसे सूख जाता है, तो हम अपनी तरफ से थोड़ा सा चिड़ियों के लिए भी पानी अगर रख दें तो
0: अपने घरों के
1: वो
0: ऊपर,
1: अपने घरों के ऊपर,
0: जी
1: तो चिड़ियाँ भी पानी पी लें। और पशुओं को जो लोग पालते हैं वो ध्यान रखें कि छायादार वृक्षों के नीचे या जो भी कवर्ड एरिया है उसमें रखें, और ज़रूरत पड़ने पर उनको नहलाते भी रहें ठंडे पानी से।
0: हमारे जितने भी आम आदमी हैं, गाय भी रखते हैं, भैंस भी रखते हैं, उनका दूध इस्तेमाल करते हैं। हम लोग सब चाय जब पीते हैं, दूध से बनी हुई चाय हम लोग पीते हैं और इस्तेमाल करते हैं, और उन्हीं पशुओं से वो हमें दूध प्राप्त होता है। उनकी देखभाल करना हम सबकी ड्यूटी है, हम सबका कर्तव्य है, उन सबको भी बचा कर रखने की आवश्यकता है। यदि आप ध्यान नहीं देंगे, हमारे पशुओं को नुकसान भी होगा, आपके घर के जो पशु हैं उनको नुकसान होगा, आपकी जो आर्थिक स्थिति है उसको नुकसान होगा। इन सब चीज़ों से बचने की आवश्यकता है। हमारे जितने भी पशु पक्षी हैं उनका भी ध्यान रखें। आपके घर के ऊपर जो भी छत का एरिया है वहाँ पशु पक्षियों के लिए पानी रखें, हमेशा प्रतिदिन उनको पिलाते रहें, क्योंकि गर्मी के मौसम में पानी की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है, ताकि पशु पक्षी भी हमारे साथ, हमारी लाइफ में, हमारे जीवन के साथ साथ वो भी अपना जीवन व्यतीत करते रहें, सुरक्षित रहें। डॉक्टर साहब, अंत में क्या मैसेज हमारे श्रोताओं को देंगे, ताकि सब लोग पूरी तरह स्वस्थ रहें और अपना
1: अभी
0: ध्यान रखें?
1: ये पशु पक्षियों के बारे में मैं एक चीज और कहना चाहूंगा कि पशुओं का हम दूध भी पीते हैं, जब तक दूध देते हैं उनको घर में रखते हैं, लेकिन बड़े दुख की बात है कि आजकल जब जैसे ही गायों ने दूध देना बंद किया है, कुछ हो गया, उनको लोग छोड़ देते हैं, और वो आजकल बस ऐसे ही इधर उधर ही ठोकरें खाते फिरते हैं। उनको ना सही से भोजन मिल रहा है, ना खाना मिल रहा है, ना पानी मिल रहा है, और जिसका खेत का नुकसान कर रहे हैं उसे डंडे जरूर मिल जाते हैं।
0: जी,
1: तो जब दूध पिया है उनका, तो उनका बाद में भी उनका ख्याल रखना
0: उनका
1: हमारा
0: ख्याल रखने की आवश्यकता
1: रखने
0: है।
1: की आवश्यकता है।
0: जी,
1: और बाकी सब यही है कि जैसे बताया था कि जो पीक आवर्स में घर से ना निकलें, अगर निकलें तो अपने धूप से बचते हुए डायरेक्ट जहां धूप लग रही है वहां, इन दिनों में ये जो हीट वेव्स हैं का पीरियड है, ये अब शुरू होता है सिर्फ जून तक रहता है, और कभी कभी ये इवन जुलाई तक भी जा सकता
0: चला
1: है।
0: जाता है। जी
1: अगर बारिश हो जाएगी तो गर्मी डेफिनेटली कम हो जाएगी,
0: जी जी
1: लेकिन फिर भी धूप तेज होती है, उसमें हमेशा ध्यान रखें, अपना भी, अपने नियर डियर पड़ोसियों का, सबका, और साथ ही पशु पक्षियों का भी ध्यान रखना जरूरी है।
0: बिल्कुल डॉक्टर साहब, आपने बहुत अच्छी बात कही है, क्योंकि अपना ध्यान तो सब लोग रखती हैं, लेकिन अपने जो आस पड़ोस के लोग हैं, अपने आसपास में जो रहने वाले पशु पक्षी हैं, उनका भी आपको ध्यान रखने की जरूरत है। और बस हम इतना ही कहेंगे कि अपना ख्याल

0: रखने के साथ साथ सबका ख्याल रखें और गर्मी से बचकर रहें, ताकि आपका स्वास्थ्य ठीक रहे, आपके परिवार का स्वास्थ्य ठीक रहे, आपके जितने भी अड़ोस पड़ोस के लोग हैं सबका स्वास्थ्य ठीक रहे, सबके स्वास्थ्य के साथ अपना स्वास्थ्य भी ठीक रहे। डॉक्टर साहब इस कार्यक्रम में आप आए, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम विविधा के अंतर्गत डॉक्टर ज्ञान चंद्र से एसके नौटियाल की बातचीत। विषय था तापघात, लू लगना, कारण लक्षण और बचाव। आकाशवाणी का ये नजीबाबाद केंद्र है। मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलोहर्ट्ज़ पर। पेश है कार्यक्रम छाया गीत। आइए सुनते हैं तीसरी मंजिल फिल्म से ये गीत आशा भोसले की आवाज़ में। साथ दिया है मोहम्मद रफ़ी ने, संगीत दिया है आर डी वर्मन ने, गीतकार है मजरून सुल्तानपुरी। तो लीजिए सुनते हैं आशा भोसले और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में ये गीत।

आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम छाया गीत। लीजिए सुनते हैं मिलन फिल्म से ये गीत मुकेश की आवाज़ में। संगीत दिया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने, गीतकार हैं आनंद बख्शी।

इसी गीत के साथ कार्यक्रम छाया गीत यहीं पर संपन्न होता है। आकाशवाणी का ये नजीबाबाद केंद्र है, मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलोहर्ट्ज़ पर।

आकाशवाणी का ये नजीबाबाद केंद्र है। मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलोहर्ट्ज पर। आइए अब डालते हैं एक नज़र आज के शेष और कल प्रसारित होने वाले मुख्य कार्यक्रम पर। आज रात्रि 9:30 पर राष्ट्रीय विज्ञान पत्रिका विज्ञान भारती और रात्रि 10:00 संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम हमारे दिल्ली केंद्र से रिले किया जाएगा। 7:32 पर मजलिस ए अजा दरगाह ए आलिया नजब ए हिंद के संपादित अंश पर आधारित रेडियो रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे। वाचन स्वर एवं प्रस्तुति सहयोग रहेगा अलीना अंजुम और साद अहमद का। साथ ही 7:45 पर आपको सुनवाएंगे श्री खाटू श्याम सेवा समिति किरतपुर द्वारा आयोजित श्याम संकीर्तन आधारित कार्यक्रम की रेडियो रिपोर्ट। वाचन स्वर एवं प्रस्तुति सहयोग रहेगा जसवंत सिंह का। और रात्रि 8:30 पर हम पेश करेंगे कार्यक्रम एक ही फिल्म से। ये थी जानकारी आज प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रम की।

अब एक नजर कल प्रसारित होने वाले मुख्य कार्यक्रम पर। कल रात्रि 9:30 पर नेशनल साइंस मैगजीन रेडियोस्कोपी और रात्रि 10 बजे अखिल भारतीय रविवासरीय संगीत सभा का प्रसारण हमारे दिल्ली केंद्र से रिले किया जाएगा। कल प्रातः 6:40 पर समय रहेगा चिंतन का। प्रातः 7:05 पर कार्यक्रम स्वास्थ्य चर्चा में जानकारी का विषय रहेगा, गर्मी और लू से कैसे बचाव करें। 7:10 पर खेती की बातें कार्यक्रम में जानकारी देंगे किसान की आमदनी बढ़ाने के नए तरीके पर। सूरज के साथ साथ कार्यक्रम प्रस्तुत करेंगे 7:31 पर। 9:20 पर धरती गाती है कार्यक्रम में आपको सुनवाएंगे नीलम सक्सेना की आवाज में चंद रुहिलखंडी लोकगीत। दिन में 10 बजे प्रस्तुत करेंगे भारत में रेडियो प्रसारण के 90 साल के उपलक्ष्य में कार्यक्रम सुहाना सफर। 12:05 पर समय रहेगा कार्यक्रम आपका पत्र मिलाका। 12:30 पर कार्यक्रम फिल्मी संडे में आपको सुनवाएंगे फिल्म सौदागर। 1:15 पर कार्यक्रम बाल वाटिका में देंगे जानकारी राष्ट्रमंडल दिवस पर और साथ ही चर्चा करेंगे सांप्रदायिक सौहार्द आपसी मेल मिलाप को झलकाते भारतीय पर्व पर। 1:45 पर कार्यक्रम लोकधारा में आपको सुनवाएंगे लता कुंजवाल की आवाज में कुमाऊनी लोकगीत। 2:30 पर एक और अनेक कार्यक्रम में आपको सुनवाएंगे सुनील दत्त और साथी कलाकार पर फिल्माए चंद गीत। कार्यक्रम विविधा 6:45 पर कहानी सुनवाएंगे सत्यवीर सिंह की आवाज में। कहानी का शीर्षक रहेगा सिलवटे। ये थी जानकारी आज के शेष और कल प्रसारित होने वाले मुख्य कार्यक्रम की। आकाशवाणी का ये नजीबाबाद केंद्र है, मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलोहर्ट्ज़ पर। शाम के 7:18 हो रहे हैं, थोड़ी ही देर में लखनऊ से प्रादेशिक समाचार रिले किए जाएंगे।

0: घर खर्च के पैसे दो हस्बैंड जी,
1: ये राशन के 15,000, सब्जियों के 2,000
0: और लाइट बिल के
1: अब 0 रुपए कैसे दूं?
0: ओहो, भूल ही गई थी, अब तो सोलर पैनल लग गए हैं ना, तो जो 4,000 बचे हैं उससे शॉपिंग हो जाए।
1: पक्का।
2: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर .gov.in।

आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए विभिन्न सरकारी विभागों के चयनित कर्मचारियों को सौंपे नियुक्ति पत्र। कहा, युवाओं को अवसर, रोजगार और वैश्विक अनुभव प्रदान करने के लिए विश्व के देशों के साथ साझेदारी कर रहा है भारत। राजधानी लखनऊ में केंद्रीय राज्य मंत्री बीएल वर्मा और वाराणसी में केंद्रीय राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल हुई रोजगार मेले में शामिल। आगरा में केंद्रीय राज्य मंत्री एसपी सिंह बघेल ने जताया प्रधानमंत्री का आभार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज लखनऊ में की श्रम और सेवायोजन विभाग की समीक्षा बैठक। नए प्रावधानों के साथ सभी 75 जनपदों में बाल श्रमिक विद्या योजना लागू करने के दिए निर्देश। और प्रदेश में भीषण गर्मी और लू से जनजीवन प्रभावित। बांदा में प्रशासन ने किए बचाव के इंतजाम। पूर्वी उत्तर प्रदेश में अगले 3 दिनों के लिए लू की चेतावनी।

नमस्कार। प्रदेश के समाचारों के साथ मैं श्वेता उपाध्याय और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकारी नौकरियां नागरिकों के जीवन को बेहतर और आसान बनाने का महत्वपूर्ण

0: नमस्कार। प्रदेश के समाचारों के साथ मैं श्वेता उपाध्याय और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकारी नौकरियां नागरिकों के जीवन को बेहतर और आसान बनाने का महत्वपूर्ण का मकसद देश के युवाओं को अवसर, रोजगार और वैश्विक अनुभव दिलाना है। उन्होंने कहा कि देश अब पूरी दुनिया का एक भरोसेमंद सप्लाई चेन पार्टनर बनता जा रहा है। प्रधानमंत्री ने बताया कि युवाओं के लिए रोजगार के नए नए अवसर पैदा किए जा रहे हैं। लखनऊ में आयोजित कार्यक्रम में केंद्रीय राज्य मंत्री बीएल वर्मा ने कहा कि पूरी पारदर्शिता के साथ नियुक्ति की प्रक्रिया सम्पन्न की जा रही है।
1: लखनऊ में 330 अभ्यर्थियों के लिए नियुक्ति पत्र हमने दिए और मैं कह सकता हूँ यह माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में 12,000 से भी ज्यादा लोगों के लिए पारदर्शी तरीके से नियुक्तियां करके इस तरह से महिलाओं के माध्यम से नियुक्ति पत्र देने का काम होता है।
0: वाराणसी के बरेका परिसर में भी कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में केंद्रीय राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुई। इस दौरान 341 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र वितरित किए गए। उन्होंने कहा कि सरकारी नौकरी युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के साथ ही राष्ट्र सेवा का अवसर भी प्रदान करती है।

0: आगरा में रोजगार मेले का शुभारंभ केंद्रीय राज्य मंत्री प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल ने किया। श्री बघेल ने रोजगार मेले के लिए प्रधानमंत्री का आभार व्यक्त किया।
1: मैं प्रधानमंत्री को धन्यवाद देना चाहूंगा कि देश को जो उन्होंने सरकारी नौकरियों के रोजगार के लिए वादा किया था वो पूरा हुआ है। इसके अलावा भी जैसा उन्होंने अपने वक्तव्य में कहा, तमाम स्टार्टअप के माध्यम से अन्य माध्यम से भी रोजगार दिए जा रहे हैं।
0: रोजगार मेले में सरकार के अलग अलग विभागों और संगठनों में चयनित 51,000 से भी ज्यादा युवाओं को नियुक्ति पत्र बांटे गए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज लखनऊ में श्रम एवं सेवायोजन विभाग की विभिन्न योजनाओं, कार्यक्रमों और प्रस्तावित योजनाओं की समीक्षा बैठक की। पेश है एक रिपोर्ट।
2: मुख्यमंत्री ने कहा कि श्रमिक केवल उत्पादन प्रक्रिया का हिस्सा नहीं बल्कि राज्य की अर्थव्यवस्था और प्रगति की सबसे बड़ी शक्ति हैं। सरकार की प्राथमिकता है कि श्रमिकों, युवाओं और कमजोर वर्गों को सम्मानजनक जीवन, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, सुरक्षित कार्य वातावरण और बेहतर रोजगार अवसर उपलब्ध हों। बाल श्रमिक विद्या योजना वर्तमान में 20 जनपदों में संचालित है। मुख्यमंत्री ने इसे नए प्रावधानों के साथ प्रदेश के सभी 75 जनपदों में लागू करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने सेवा मित्र व्यवस्था को रोजगार और जन सुविधा का अभिनव मॉडल बताते हुए कहा कि तकनीक आधारित ऐसी व्यवस्थाएं युवाओं और कुशल कामगारों के लिए नए अवसर तैयार करती हैं। मुख्यमंत्री ने निर्माण श्रमिकों के लिए सभी औद्योगिक शहरों में प्रस्तावित श्रमिक सुविधा केंद्रों यानी लेबर अड्डों को व्यवस्थित रूप से विकसित करने के निर्देश दिए। समाचार कक्ष से राघवेंद्र त्रिपाठी।
0: ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल न्यूज़ ऑन एआईआर लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। दो पैन कार्ड मामले में रामपुर में एमपी एमएलए सेशन कोर्ट ने आज सपा नेता आजम खां और अब्दुल्ला आजम की सजा बढ़ाने की अपील पर फैसला सुनाया। कोर्ट ने आजम खां की 7 साल की सजा को बढ़ाकर अब 10 साल कर दिया है। वहीं उनके बेटे अब्दुल्ला आजम की 7 साल की सजा को बरकरार रखा है लेकिन उनके जुर्माने की रकम को बढ़ाया है। प्रदेश में पड़ रही भीषण गर्मी और लू के चलते जनजीवन प्रभावित है। राजधानी लखनऊ में आज दोपहर में पारा 43 डिग्री दर्ज किया गया। वहीं बांदा लगातार प्रदेश का सबसे ज्यादा तापमान वाला जनपद बना हुआ है। बांदा के अपर जिलाधिकारी कुमार धर्मेंद्र ने बताया कि प्रशासन की ओर से गर्मी से बचाव के लिए व्यापक इंतजाम किए गए हैं।
3: बांदा में जैसा कि टेम्परेचर लगातार उसी स्थिति में बना हुआ है तो इसको ध्यान में रखते हुए प्रशासन नए प्रयोग रोजाना कर रहा है। अभी तक हम लोग सब विभागों को उनकी क्या जिम्मेदारी है, क्या उनके कार्य हैं, वो उन्हें करने के लिए निर्देशित कर रहे थे।
0: अयोध्या में आज तेज आंधी के साथ हुई बारिश की वजह से लोगों को गर्मी से राहत मिली। इस बीच

0: मौसम विभाग ने प्रदेश के पश्चिमी हिस्सों में कुछ जगहों पर बारिश की संभावना जताई है। वहीं पूर्वी उत्तर प्रदेश में अगले 3 दिनों के लिए लू की चेतावनी जारी की गई है। उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा परिषद लखनऊ द्वारा संचालित मुंशी मौलवी सेकेंडरी तथा आलिम सीनियर सेकेंडरी बोर्ड परीक्षा वर्ष 2026 का परिणाम आज घोषित किया गया। इस वर्ष मदरसा बोर्ड परीक्षा का कुल परिणाम 88.26% रहा। परिणाम में छात्राओं का प्रदर्शन छात्रों से बेहतर रहा। उत्तर प्रदेश ट्रांसको के प्रबंध निदेशक मयूर माहेश्वरी ने कार्यों में प्रथम दृष्टया लापरवाही का दोषी पाए जाने पर गाजियाबाद में अधिशासी अभियंता राहुल को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। यह कार्रवाई 220 केवी मुरादनगर बापूधाम लाइन पर कंडक्टर टूटने और बिजली आपूर्ति बाधित होने के मामले में की गई है। फतेहपुर में जल संरक्षण को लेकर जिला प्रशासन ने एक पहल शुरू की है। जिलाधिकारी निधि गुप्ता वत्स ने आज एराया ब्लॉक के सिमौरी गांव से इस अभियान की शुरुआत की। जिलाधिकारी ने बताया कि प्रथम चरण में प्रत्येक ब्लॉक में लगभग 25 तालाब और पूरे जिले में कुल 300 तालाबों को पुनर्जीवित करने का लक्ष्य तय किया गया है।
1: इसमें हम लोग ने फर्स्ट फेज में पूरे जनपद में प्रत्येक ब्लॉक में 25 तालाब लिए हैं, जिनको अभी जो नई योजना हमारी आई है जी राम जी, उसके माध्यम से लोगों को रोजगार देते हुए उनको कब्जा मुक्त करा करके और उन्हीं लोगों को रोजगार देते हुए उन्हीं के माध्यम से इनको खुदवाया जाएगा। तो मुझे लगता है कि जो कब्जा मुक्त होंगे और जो जल संचयन होगा तो वो आने वाले समय में जनपद फतेहपुर में एक विकास का एक नया दौर शुरू करेगा।
0: आईपीएल मुकाबले में आज लखनऊ के भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी इकाना स्टेडियम में लखनऊ सुपर जायंट्स और पंजाब किंग्स के बीच मुकाबला हो रहा है। पंजाब किंग्स ने टॉस जीतकर पहले बॉलिंग चुनी है। मैच को देखते हुए लखनऊ पुलिस ने ट्रैफिक डायवर्जन लागू किया है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए विभिन्न सरकारी विभागों के चयनित कर्मचारियों को सौंपे नियुक्ति पत्र। कहा, युवाओं को अवसर, रोजगार और वैश्विक अनुभव प्रदान करने के लिए विश्व के देशों के साथ साझेदारी कर रहा है भारत। राजधानी लखनऊ में केंद्रीय राज्य मंत्री बीएल वर्मा और वाराणसी में केंद्रीय राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल हुई रोजगार मेले में शामिल। आगरा में केंद्रीय राज्य मंत्री एसपी सिंह बघेल ने जताया प्रधानमंत्री का आभार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज लखनऊ में की श्रम और सेवायोजन विभाग की समीक्षा बैठक। नए प्रावधानों के साथ सभी 75 जनपदों में बाल श्रमिक विद्या योजना लागू करने के दिए निर्देश। और प्रदेश में भीषण गर्मी और लू से जनजीवन प्रभावित, बांदा में प्रशासन ने किए बचाव के इंतजाम। पूर्वी उत्तर प्रदेश में अगले 3 दिनों के लिए लू की चेतावनी। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन रात 8 बजे FM पर प्रसारित किया जाएगा।

0: महात्मा गांधी ने कहा था, स्वयं के साक्षात्कार का अनुपम रास्ता है दूसरों की सेवा में स्वयं को होम कर देना।
1: मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलोहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 7:32 हो रहे हैं। आइए सुनते हैं मजलिस ए अज़ा दरगाह ए आलिया नजव ए हिंद के संपादित अंश पर आधारित रेडियो रिपोर्ट। वाचन स्वर एवं प्रस्तुति सहयोग है अलीना अंजुम और साद अहमद का। तो लीजिए सुनते हैं ये रेडियो रिपोर्ट।
2: इस कार्यक्रम के प्रायोजक है शिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड उत्तर प्रदेश इंडिया। मैं साद अहमद आकाशवाणी नजीबाबाद की ओर से स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे खास कार्यक्रम सालाना मजालिस ए अज़ा दरगाह आलिया नजफ हिंद जोगीरामपुरी के दूसरे एपिसोड में। नजीबाबाद में चल रहे 4 रोजा सालाना मजालिस ए अज़ा का आज दूसरा दिन अकीदत इल्म और अदब के नाम रहा, जहां दिन में आयोजित मजलिस में उलमाओं ने अपने खिताब के जरिए इंसानियत भाईचारे और अहले बैत की तालीमात पर रोशनी डाली। तो वहीं शाम ढलते ही देश के अलग अलग हिस्सों से पहुंचे अंजुमनों ने नोहा खानी पेश की और रात में आयोजित मुसालिमा में मशहूर शौरा ने अपने कलाम से महफिल को यादगार बना दिया। सालाना मजालिस अज़ा के दूसरे दिन बड़ी संख्या में अकीदतमंद दरगाह परिसर पहुंचे, जहां आयोजित मजालिस में देश के अलग अलग हिस्सों से आए उलेमाओं ने अपने बयान पेश किए।
3: अज़ीज़ान मोहतरम, अगर आज के समाज और माशरे ने हर एक इंसान ने अपनी जिम्मेदारी को समझ लिया तो यकीन जानिए कि समाज और माशरा बुलंदियों की तरफ बढ़ता चला जाएगा और यही मकसद अहले बैत अलैहिस्सलाम है कि इसमें अच्छाइयां पैदा हो, समाज और माशरे से बुराइयां खत्म हो और यही इन मजालिस का हदफ और मकसद है।
2: मजलिस के दौरान इंसानियत भाईचारे सब्र और करबला के पैगाम को विस्तार से बयान किया गया। उलमाओं ने कहा कि अहले बैत की तालीमात इंसान को महब्बत और अमन का रास्ता दिखाती है। मजलिस में शामिल होने पहुंचे कई उलमाओं ने भी अपने खिताब से लोगों को एकता भाईचारे और इंसानियत का संदेश दिया।
4: मेरा नाम है मौलाना सैयद शौकत अब्बास नकवी और ये मजलिस इसलिए मुनक़िद की जाती है हर साल कि इंसानियत का पैगाम पूरी दुनिया को दें, हर कौम को दें और इसमें भाईचारा और आपस में मेल जोल की बात की जाती है। इसलिए कि इस्लाम ही वो दीन है जो बताया जाता है कि हर एक को इज्जत दो, खुद भी जियो और दूसरे को भी जीने दो। इंसानियत को करबला के मैदान में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने कुर्बानियाँ देकर इंसानियत को बचाया था, यही वजह है।
5: मेरा नाम ग़ुलाम रसूल नूरी कश्मीरी, मैं कश्मीर से ताल्लुक़ रखता हूँ। अगर किसी इंसान की ज़िंदगी का मकसद सिर्फ बस मैं खाऊँ, खाता रहूँ और किसी की फिक्र नहीं, किसी के लिए कुर्बानी नहीं देता है तो मौला फरमाते हैं इसको इंसान न कहो, ये चौपाया है, इसलिए चौपाया खाता रहता है। और उसकी कीमत क्या है बताइए, अगर आप बकरी को देखेंगे बकरी की कीमत बाजार में कितनी है, 10,000 है, 30,000 है, लेकिन इस इंसान की कीमत क्या है? फरमाते हैं मन कौन है हम हूँ बातनो, जिसकी ज़िंदगी का मकसद बस मैं मेरा घर, मेरा पेट, मेरे बच्चे, सिर्फ बस अपने लिए। फरमाते हैं फ़कीमतुहू, उसकी कीमत उतनी है जितनी वो मुस्तरानी वाशरूम में बाहर छोड़ देता है, बैतुल खला में बाहर छोड़ देता है, बस इसकी कीमत है, ये तो वो है। वह अम्मिबा फाहम महाल दुआन लगा, और अगर इसकी ज़िंदगी का मकसद दूसरों को सताना, दूसरों को डसना, दूसरों को परेशान करना तो मौला फरमाए इसको इंसान न कहो, ये तो दरिंदा है, ये तो दरिंदा की सिफत।
2: मजलिस के बाद देश के अलग अलग हिस्सों से पहुंचे अंजुमनों की जानिब से नोहा खानी पेश की गई, जिसमें बड़ी संख्या में अकीदतमंद मौजूद थे। نوح کے ذریعے کربلا کی قربانیوں کو یاد کیا گیا اور پورا ماحول غم حسین میں ڈوبا نظر آیا۔ कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे जायरीन का कहना है कि यहां का रूहानी माहौल दिलों को सुकून देता है और हर साल बड़ी संख्या में लोग यहां अकीदत के साथ पहुंचते हैं।
6: जी, हमारा नाम फरदीन हुसैन साबरी है, हम नजीबाबाद से हैं, वैसे चंडीगढ़ में रहते हैं। यहां नजीबाबाद के पास जोगीपुरा है, यहां मौला अली अमीरुल मोमिनीन की दरगाह है। इन दिनों यहां सालाना मजलिस चल रही है जो 21 तारीख से लेके और 24 तारीख तक यानी 4 दिनों तक मुनक्किद की गई है। इसमें मौला के जायर दूर दूर से आते हैं और अपनी मन्नत मुरादें लेकर जाते हैं। यहाँ किसी जाति का, किसी धर्म का कोई ऐसा वो नहीं है, यहाँ हर रंग का रूप देखा जाता है। हर आदमी यहाँ पर आता है, अपनी मन्नत मुरादें लेकर जाता है। और दूसरी बात यह है कि यहाँ मौला में अमीरुल मोमिनीन मौला अली की यहाँ दरगाह है, उनके बेटे मौला अब्बास मौला हुसैन। असल दरगाह है उनकी इराक के अंदर मौजूद है, लेकिन यहाँ पर उनकी शबी मंसूब की गई है, यानी इस जगह को उनके नाम से जाना जाता है, इस जगह को मौला के नाम से माना जाता है और इस जगह पर मौला के नाम से इस जगह को मंसूब कर दिया गया है। तो यहाँ पर हर साल मजलिस मुनक्किद की जाती है और मौला के ज़ायर यहाँ पर आते हैं दूर दूर से, दुनिया भर से लाखों की तादाद में यहाँ मजमा आता है और अपनी मन्नत मुरादें लेके जाते हैं।
2: 4 दिनों तक चलने वाले इस कार्यक्रम में हर दिन अलग अलग धार्मिक और अदबी कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, जिनकी व्यवस्थाओं को लेकर शासन प्रशासन और कमेटी लगातार सक्रिय दिखाई दी। सालाना मजाली से अजा के एडमिनिस्ट्रेटर मौलाना शबाब नकवी ने बताया कि इस आयोजन का मकसद केवल धार्मिक कार्यक्रम करना नहीं बल्कि समाज में मोहब्बत, भाईचारा और इंसानियत का पैगाम देना है।
7: درگاہ عالیہ نجف ہند ہندوستان کی مشہور معروف درگاہ ہے اور یہاں ہر سال پروگرام ہوتا ہے، سالانہ پروگرام ہوتا ہے۔ اس سال 21, 22, 23, 24 مئی 2026 کو 4 روزہ پروگرام ہو رہا ہے، جس میں ہندوستان بھر کے سارے بڑے علماء کرام اور مفکر اور دانشور حضرات اپنی اسپیچ کے ذریعے، اپنی تقریر کے ذریعے سے شانتی، محبت، پیار اور محبت کا پیغام دیتے ہیں، میسج دیتے ہیں، امن و امان کی اپیل کرتے ہیں، شانتی کی اپیل کرتے ہیں۔ یہ 4 دن کا ہمارا پروگرام ہر ورگ، ہر دھرم کے لوگوں کے لیے ہیں اور ہر دھرم کے لوگ یہاں شرکت کرتے ہیں، ہر دھرم کے لوگ آتے ہیں۔
2: کارکرم میں شیعہ سینٹرل وقف بورڈ اتر پردیش کے چیئرمین سید علی زیدی بھی پہنچے، جنہوں نے کارکرم کی سراہنا کرتے ہوئے کہا کہ اس طرح کے پروگرام سماجک اور دھارمک ایکتا کو مضبوط کرتے ہیں۔ چیئرمین سید علی زیدی نے کارکرم کی پرانی پرمپرا اور اس کی اہمیت پر بھی وستار سے بات کی۔
8: السلام علیکم، میرا نام علی زیدی ہے، میں چیئرمین ہوں یو پی شیعہ سینٹرل وقف بورڈ کا۔ آج ہم درگاہ عالیہ نجف ہند نجیب آباد بجنور میں موجود ہیں، جہاں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے امام حسین علیہ السلام اور ان کے خانوادے کے ذکر کے سلسلے سے مجالس عزا کا یہ 123 دور ہے۔ اس درگاہ کو بنے 300 سے اوپر ہو چکے ہیں اور 123 ہو چکے ہیں اس پروگرام کو مجالس عزا کے، کہ جس میں بڑے بڑے علماء، ذاکر، خطیب آ کے اپنے خیالات پیش کرتے ہیں۔ اسلام کی، دین کی، انسانیت کی کا پیغام یہاں سے دیا جاتا ہے۔ لاکھوں کا مجمع یہاں موجود ہے، ان کے لیے ہر طرح کے آرام کے انتظامات کیے گئے ہیں کہ ان کو، وہ اس پروگرام کو اچھے سے جو ہے اٹینڈ کر پائیں۔ یہاں کھانا پینے، صاف صفائی، بجلی پانی کی ویوستھا کا خاص انتظام رکھا گیا ہے۔
2: رات میں آیوجت مسالمہ کارکرم دوسرے دن کا خاص آکرشن رہا، جہاں دیش کے کئی حصوں سے پہنچے مشہور شعرا نے اپنے کلام پیش کیے۔
9: دیکھ لیں اور سمجھ لے یہ زمانے والے کیسے ہوتے ہیں محمد کے گھرانے والے. ابھی دو مصرعے بطور خاص پہلا چلے گا کہ کیسے

तो श्रोताओं, ये थी हमारे दूसरे दिन के पूरे कार्यक्रम की रिपोर्ट। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे शिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड उत्तर प्रदेश इंडिया, और मेरे साथ सहयोगी रही अली नांजुम। तो श्रोताओं, मैं साद अहमद आपसे विदा लेता हूं। कल फिर इसी समय आपसे मुलाकात होगी हमारे तीसरे एपिसोड के साथ। धन्यवाद।

0: अभी आप सुन रहे थे मजलिस ए अज़ा दरगाह ए आलिया नजव ए हिंद के संपादित अंश पर आधारित रेडियो रिपोर्ट। वाचन स्वर एवं प्रस्तुति सहयोग था अलीना अंजुम और साद अहमद का। आकाशवाणी का ये नजीबाबाद केंद्र है। मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलोहर्ट्ज़ पर। आइए सुनते हैं श्री खाटू श्याम सेवा समिति किरतपुर द्वारा आयोजित श्याम संकीर्तन आधारित कार्यक्रम की रेडियो रिपोर्ट। वाचन स्वर एवं प्रस्तुति सहयोग है जसवंत सिंह का।
1: इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्री खाटू श्याम सेवा समिति होलीवाला कुआं अतुल कुमार रस्तोगी किरतपुर। श्रोताओं नमस्कार। दिनांक 21 मई 2026 की संध्या को श्री खाटू श्याम सेवा समिति किरतपुर जिला बिजनौर के द्वारा संकीर्तन महोत्सव का भव्य आयोजन किया गया। श्री खाटू श्याम सेवा समिति किरतपुर के सभी सदस्य शाम को विश्वकर्मा शिव मंदिर में उपस्थित हुए। किरतपुर के मोहल्ला जाटान के शिव मंदिर में दिव्य ज्योत प्रज्वलित करने के लिए पुरोहित के साथ एकत्र हुए अतुल कुमार रस्तोगी, शुभम अग्रवाल, ऋषभ सिंघल, मयंक अग्रवाल, रजत अग्रवाल, निखिल अग्रवाल, शोभित अग्रवाल, समक्ष अग्रवाल, संयम अग्रवाल और सौरभ अग्रवाल। इन भक्तों के साथ श्री खाटू श्याम सेवा समिति के परिवारों से महिलाएं और बच्चे भी उत्साह के साथ उपस्थित रहे। मंदिर के घंटों की गूंज और जयकारों के साथ इस दिव्य समारोह का शुभारंभ हुआ। श्री खाटू श्याम बाबा जी के रंगों में सभी भक्त ऐसे रंगे कि उन्हें भीषण गर्मी का भी अनुभव जैसे नहीं हो रहा था। पूरे विधि विधान के साथ पुरोहित जी के द्वारा मंत्रोच्चारण किया।

0: सभी भक्त दिव्य ज्योत जलाने की प्रक्रिया में तन्मयता से रम गए।
1: माल्यादिनी सुगंधिनी माल्यादिनी वै प्रभो मयानि तानि पुष्पाणि ग्रहाण परमेश्वराः पुष्पमालां समर्पयामि नमः विमलासन्नहि नमः धारसक्तहि नमः। ॐ महायाषधि प्रथमो ब्रह्मा पुष्पवती प्रसवरे असवाय वै वरुद्धाः परिष्णवा विमलासन्नहि नमः सर्वभूषादिके शुद्धे लोकलज्जा निवारणे मयोपादते वस्त्रम् ग्रहाण परमेश्वराः युवास्वादनान् भवते जायमाना तं धिरा सकव्ये उन्नयन्ति सवधयो मनसा देवयन्तान् द्रव्याणि समर्पयामि नमः विमलासन्नहि नमः धारशक्तहि नमः। आर्यौ मा यतो यथाः समीयसे तथनो अवयन्न करौ सन्न करौ प्रजाभ्यो नमः।
2: और इस तरह से मंत्रोच्चारण के बीच सबसे पहले इस भव्य मुकुट का तिलक किया गया और तिलक करने के पश्चात ये मुकुट सुशोभित किया गया श्री खाटू श्याम बाबा जी के सर पर। और इसकी भव्यता, इसकी दिव्यता, इसकी सुंदरता निश्चित ही भक्तों को अपनी ओर आकर्षित कर रही है।
0: एक तरफ जहां मंदिर में पूजा अर्चना का काम चल रहा था, तो वहीं श्री खाटू श्याम सेवा समिति के कुछ सम्मानित सदस्यों से भी हमने बात की।
3: रजत कुमार, जय श्री श्याम। यहां से बाबा की ज्योत जाएगी, ज्योत जाने के बाद वहां ज्योत प्रज्वलित होगी, ज्योत प्रज्वलित होने के बाद बाबा का श्रृंगार, बाबा की आरती, इत्र वर्षा और भव्य भंडारे का आयोजन है। बाबा का कार्यक्रम जब तक बाबा की इच्छा होगी जब तक चलेगा।
2: तो वहाँ क्या क्या व्यवस्थाएं श्रद्धालुओं के बैठने के लिए हैं, उनके गीत संगीत और भक्तिमय वो जो एक आयोजन होना है उसकी क्या क्या तैयारियां हैं?
3: श्रद्धालुओं के बैठने के लिए वहाँ गद्दे हैं और कुर्सी वगैरह का अरेंजमेंट है। जिन बुजुर्ग लोग हैं, हमारे माताएं हैं, उनसे बैठा नहीं जाता, उनके लिए कुर्सी है और नीचे गद्दे बिछे हुए हैं, गद्दे पे बैठने का प्रोग्राम है। पंखे सब हवादार पानी के लगे हुए हैं, वहाँ म्यूजिक सिस्टम बहुत अच्छा है, बाबा का गुणगान होगा।
2: चूंकि हम देख रहे हैं गर्मी बहुत ज्यादा है, लेकिन श्रद्धालुओं को ये गर्मी बाधा नहीं बन रही है, बल्कि उनकी आस्था जो इतनी प्रगाढ़ है वो उन्हें खींच कर ला रही है बाबा जी के दरबार में। क्या कहना चाहेंगे भक्तों से?
3: भक्तों से मैं कहना चाहूंगा, भक्तगण बड़ी से बड़ी संख्या में आके बाबा का गुणगान करें, बाबा का आशीर्वाद लें। प्रसाद का वितरण है, सब 56 भोग का बाबा का प्रसाद लेके अपने घर जाएं।
2: श्रीमान, आपका नाम?
4: मयंक अग्रवाल। जय श्री श्याम सभी को। आज हमारे यहाँ चतुर्थ संकीर्तन, श्याम संकीर्तन हो रहा है और इसको लगातार 3 साल से हम लोग सभी समिति के सदस्य कर रहे हैं, जिसमें सभी खाटू श्याम सेवा समिति सभी का आभार प्रकट करती है, क्योंकि सभी के सहयोग से यह संकीर्तन हो पा रहा है। और इसी पे श्याम बाबा की कृपा सभी पे इतनी ज़्यादा बनी हुई है कि इस कीर्तन में जो भी सहयोग किसी भी तरीके से करता है उसका पूरा श्याम बाबा ध्यान रखते हैं और अपना आशीर्वाद उन सब परिवारों पे बनाए रखते हैं। इस संकीर्तन में बहुत दूर दूर से लोग हमारे पास, नजीबात, बिजनौर और किरतपुर का पूरा समाज हमारे पास इस संकीर्तन से जुड़ा हुआ है। इनके लिए हम सभी का धन्यवाद करते हैं और हम आशा करते हैं कि इसी तरीके से हमारी पूरी समिति इस संकीर्तन का हमारा पूरा सहयोग अपनी तरफ से भी पूरा करेगी।
2: और जैसे कि हम देख रहे हैं कि जब से हम आए हैं निरंतर भीड़ बढ़ती जा रही है, तो कौन सा वो आकर्षण है, आस्था की कौन सी वो सीढ़ी है जो इन भक्तों को, इन श्रद्धालुओं को जोड़ रही है, खींच रही है?
4: हम इन संकीर्तन का शुरुआत अपने यहाँ विश्वकर्मा मंदिर से जोत ले जाकर, अपने जहाँ पर हमने इस कीर्तन को प्रारंभ करना है वहाँ पर ले जाकर करते हैं। उसमें श्याम बाबा का दरबार, इत्र वर्षा, पुष्प वर्षा, 56 भोग हमारे और श्याम रसोई, इस तरीके के कार्यक्रम का हम आयोजन करते हैं। उसी में सभी को आनंद होता है, हम इसमें कलाकार बुलाते हैं, बहुत प्यारे संगीत में वातावरण रहता है, उसके लिए हम सभी को धन्यवाद करते हैं।
2: देखिए, अभी आपने संकीर्तन की बात की, हम वो भव्यता, वो आकर्षण भी देखेंगे। उससे पहले हमारे श्री खाटू श्याम सेवा समिति किरतपुर के एक और सदस्य हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आपका नाम?
5: मेरा नाम हिमांशु अग्रवाल है और मैं भी श्याम बाबा का एक सेवादार हूँ। हम सभी मिलके संकीर्तन करते हैं और मेरा तो यही नारा है, हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा। जो भी सच्चे मन से बाबा श्याम को पुकारता है, बाबा उसकी नैया पार लगा देता है। श्याम नाम की ज्योत हर दिल में जलाता है और भक्ति, सेवा, मानवता, यही श्याम परिवार की एक पहचान है जो हम सब लोगों को जोड़े रखती है।
0: और इस भव्यता, इस कार्यक्रम के संकीर्तन को लेकर क्या कहना चाहेंगे?
5: बाबा खाटू श्याम जी, जिनकी असीम कृपा हमारे ऊपर बनी रहती है और जिसके आशीर्वाद से हम यहाँ सब एकत्रित होते हैं। हमारी समिति का उद्देश्य केवल धार्मिक आयोजन करना नहीं, बल्कि समाज में सेवा, प्रेम और भाईचारे का संदेश फैलाना है। आइए हम सब मिलकर बाबा के नाम का प्रचार करेंगे।
0: श्री खाटू श्याम बाबा जी का श्रृंगार संपन्न हुआ और अब वो ज्योति प्रज्वलित कर दी गई है, जिसको लेकर यहाँ से प्रस्थान करेगा ये काफिला और हम पहुँचेंगे अपने निश्चित गंतव्य स्थल पर। लेकिन इस प्रक्रिया में जो पंडित जी मंत्रोच्चारण कर रहे थे वो हमारे साथ हैं, उन्होंने इस कार्यक्रम के विषय में हमें बताया।
1: मेरा नाम पंडित सूर्यदीप शर्मा। प्रथम श्याम जी का ध्यान किया गया, उसके उपरांत आवाहन, वस्त्र इत्यादि के द्वारा षोडशोपचार पूजन के उपरांत सब प्रक्रिया संपन्न की गई। उसके उपरांत भगवान को भोग निवेदित किया गया, उसके उपरांत सभी भक्त लोग अपने स्थान को प्रस्थान करेंगे।
0: तो जैसा कि हम देख रहे थे पंडित जी कि वो हर कोई अपने अपने घर से स्वादिष्ट व्यंजन बनाकर लाए थे, जैसे 56 भोग लगाने की उस प्रक्रिया को पूरा किया जा रहा था, तो इस विषय में श्रद्धालुओं की क्या आस्था है, क्या कहना चाहेंगे आप?
1: अलग अलग प्रकार के व्यंजन का शास्त्रों में अलग अलग फल लिखा हुआ है
0: जी।
1: जो दूध प्रदान करते हैं उनकी मन की अभिलाषाएं तत्काल पूर्ण कर देते हैं खाटू श्याम जी। दही के स्नान करने से पुराने रोग से निवृत्ति हो जाती है और जो मधु के द्वारा स्नान होता है उसके द्वारा समस्त कामनाओं को व्यक्ति प्राप्त कर लेता है। और जो शुक्कर इत्यादि के द्वारा भगवान श्याम जी को अर्पित किया जाता है उससे अभीष्ट मनोरोग की प्राप्ति होती है। उसके उपरांत जो माला इत्यादि अर्पण की गई उससे भक्तों के समस्त परिवार की और वंश की वृद्धि होती है। इस प्रकार की प्रक्रिया शास्त्रों में लिखी हुई है।
0: क्या आप अपेक्षा कर रहे हैं कितने श्रद्धालु इसमें जुड़ जाएंगे?
1: श्रद्धालुओं की संख्या अभी प्रबल होने की संभावनाएं अति प्रबल है। कुछ श्रद्धालु तो रास्ते में सम्मिलित होंगे, कुछ श्रद्धालु आने वाले हैं और कुछ गंतव्य स्थान पर ही मिल जाएंगे।
0: तो पंडित जी, जिस तरह से आपने यहाँ मंत्रोच्चारण के साथ इस कार्यक्रम का भव्य शुभारंभ किया, तो क्या वहाँ पहुँचकर भी कुछ इस तरह की प्रक्रियाएं संपन्न की जाएंगी आपके द्वारा?
1: वहाँ पर सबसे प्रथम गणेश जी इत्यादि समस्त देवताओं का आवाहन पूजन किया जाएगा। समस्त देवताओं का कलश पूजन के उपरांत सबके तिलक इत्यादि की प्रक्रिया होगी, उसके उपरांत खाटू श्याम जी की भजन संध्या की प्रक्रिया संपन्न होगी।
0: श्री खाटू श्याम बाबा जी की श्रृंगार की एक प्रक्रिया ऐसी है जो एकांत में की जानी है और इस एकांत के लिए दोनों तरफ से पर्दे लगा दिए गए हैं। विवश होकर हमें भी अब दरबार के सामने से थोड़ा सा पीछे हटना पड़ रहा है। पूरे विधि विधान के साथ दिव्य ज्योत प्रज्वलित की गई। इसके बाद सैकड़ों की संख्या में उपस्थित श्रद्धालुओं को प्रसाद वितरित किया गया। व्यवस्था इतनी दुरुस्त थी कि प्रसाद भी क्रमवार सभी श्रद्धालुओं को डब्बे में पैक करके दिया गया ताकि प्रसाद का एक भी कण वेस्ट न हो। प्रसाद वितरण के बाद खाटू श्याम सेवा समिति किरतपुर के सदस्यों की अगुवाई में अनेक श्रद्धालु दिव्य ज्योति के साथ संकीर्तन स्थल के लिए रवाना हुए।

नगाड़ों और खाटू श्याम के जयकारों के साथ भक्तों का जत्था किरतपुर के मोहल्ला महाजनान में होली वाला कुआं चौक पर संकीर्तन स्थल तक पहुंचा। इस दिव्य ज्योत को भव्य दरबार में लाया गया, उस दिव्य ज्योत को स्थापित किया गया और इस दिव्य ज्योत को स्थापित करने में पंडित जी ने यहाँ भी पूरे विधि विधान के साथ मंत्रोच्चारण के साथ ज्योति स्थापित की और यहाँ इस कार्यक्रम के मुख्य यजमान बने श्री हर्ष जैमिनी, श्रीमती मनुश्री जैमिनी और संपूर्ण सेवा समिति परिवार। श्री खाटू श्याम संकीर्तन महोत्सव का भव्य और दिव्य आयोजन हजारों भक्त श्रद्धालुओं की उपस्थिति में किया गया। श्री खाटू श्याम सेवा समिति किरतपुर के द्वारा बाबा खाटू श्याम जी का दरबार सजाया गया और ये दरबार इतना सुंदर, इतना आकर्षक था कि वहां एक बार जो पहुंचा जैसे निगाहें उस दरबार पर टिक गई हों और फिर वहां से हटने का मन ही ना किया हो। इस कार्यक्रम के सांस्कृतिक उत्सव में गायक, कलाकार और गीतकार उपस्थित हुए। इस कार्यक्रम में गायक सचिन अलबेला, रोहन लाडला और गायिका प्रीति चौधरी ने श्री खाटू श्याम बाबा के भजनों से श्रद्धालुओं को बांधे रखा। इस सांस्कृतिक कार्यक्रम का संचालन किया श्रीमान

कुमार ने। 21 और 22 मई की रात लगभग 3 बजे तक चले इस भव्य और दिव्य कार्यक्रम का समापन हुआ इस आरती के साथ।

0: इस भव्य कार्यक्रम की सफलता के लिए कार्यक्रम के आयोजक श्री अतुल कुमार रस्तोगी जी ने सभी का आभार व्यक्त करते हुए बताया।
1: आज के दिन श्री खाटू श्याम संकीर्तन महोत्सव का आयोजन बड़ी धूमधाम से किया गया, जिसमें सबसे पहले विश्वकर्मा मंदिर में जो खाटू श्याम मंदिर का दरबार बना हुआ है उनकी पूजा संपन्न कराई गई, जिसमें अतुल रस्तोगी चंचल रस्तोगी द्वारा सहपरिवार बाबा का श्रृंगार किया गया, बाबा को मुकुट पहनाया गया, बाबा को भोग लगाया गया, इत्र पुष्प आदि से उनका श्रृंगार करा गया, बाबा का जयकारा किया गया, फिर प्रसाद वितरण किया गया, फिर वहां पर ज्योत प्रज्वलित कर खाटू श्याम मंदिर विश्वकर्मा से पैदल यात्रा करते हुए भोली वाले कुएं पर, जहाँ पर खाटू श्याम संकीर्तन महोत्सव होना था, वहां पर ज्योत लेकर पहुंचे और फिर वहां पर उस ज्योत से वहां पर ज्योत जलाई गई, बोलो श्याम बाबा की जय। वहां पर कलाकारों द्वारा अतुल कुमार, बिजनौर, रोहन लाडला, प्रीति चौधरी, सचिन अलवेला द्वारा बाबा के बहुत सुंदर सुंदर भजन गाए गए। लोग इतने मंत्रमुग्ध हो गए कि रात के 2 बजे तक वहाँ पूरी पब्लिक उपस्थित थी, लोग बाबा के गुणगान से झूम रहे थे। हर्षोल्लास के साथ बाबा का गुणगान किया गया, बाबा की श्याम रसोई चलती रही, बाबा का इत्र पुष्पों की वर्षा होती रही। आयोजनकर्ता में सभी का बहुत सहयोग रहा, रजत अग्रवाल, ऋषभ सिंगल, मयंक अग्रवाल, हिमांशु अग्रवाल, पल्लव अग्रवाल, सभी समिति के व्यक्ति द्वारा बड़ी धूमधाम से आयोजन संपन्न हुआ। बोलो हारे के सहारे की जय।
0: श्रोताओं, इसी के साथ श्री खाटू श्याम सेवा समिति किरतपुर के द्वारा प्रायोजित ये रेडियो रिपोर्ट यहीं संपन्न होती है। वाचन स्वर और संकलन रहा मेरा यानी जसवंत सिंह का, और प्रस्तुत करता रहे अंकित सैनी। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे श्री खाटू श्याम सेवा समिति होली वाला कुआं अतुल कुमार रस्तोगी किरतपुर।
2: अभी आप सुन रहे थे श्री खाटू श्याम सेवा समिति किरतपुर द्वारा आयोजित श्याम संकीर्तन आधारित कार्यक्रम की रेडियो रिपोर्ट। वाचन स्वर एवं प्रस्तुति सहयोग था जसवंत सिंह का। आकाशवाणी का ये नजीबाबाद केंद्र है। मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलोहर्ट्ज़ पर। रात्रि के 8 बज रहे हैं। आइए सुनते हैं कार्यक्रम गीत संध्या। कार्यक्रम में सुनते हैं बाजीगर फिल्म से ये गीत विनोद राठौड़ की आवाज़ में। संगीत दिया है अनु मलिक ने। गीतकार है रानी मलिक।

0: अपने व्यापार को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाना चाहते हैं?
1: तो इंतजार किस बात का,
0: अभी बुक कराइए अपना विज्ञापन आकाशवाणी नजीबाबाद के संग।
1: विज्ञापन बुकिंग कराने के लिए आज ही संपर्क करें।
0: हमारा मोबाइल नंबर है 8865845809।
1: नंबर एक बार फिर सुन लीजिए 8865845809।
0: और हमारा ईमेल आईडी है
1: akashwaninajibabad@gmail.com।
0: तो देर किस बात की, उठाइए अपना फोन और बुक कराइए अपना विज्ञापन
1: आकाशवाणी नजीबाबाद के संग।
2: आकाशवाणी के नजीबाबाद से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम गीत संध्या। आइए सुनते हैं मनप्रीत कौर और प्रमिला चोपड़ा की आवाज में दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे से ये गीत। संगीत दिया है जतिन ललित ने, गीतकार हैं आनंद बख्शी।

आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम गीत संध्या। लीजिए सुनते हैं सौदागर फिल्म से ये गीत लता मंगेशकर और सुरेश वाडेकर की आवाज में। गीतकार हैं आनंद बख्शी, संगीत दिया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम गीत संध्या। आइए सुनते हैं लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के संगीत से सजा तेजाब फिल्म से ये गीत, नितिन मुकेश, अलका याग्निक और सब्बीर कुमार की आवाज़ में। संगीत दिया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने, गीतकार हैं जावेद अख्तर।

इसी गीत के साथ कार्यक्रम गीत संध्या यहीं पर संपन्न होता है। आकाशवाणी का ये नजीबाबाद केंद्र है, मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलोहर्ट्ज पर। रात्रि के 8:30 हो रहे हैं। पेश है कार्यक्रम एक ही फिल्म से, और आज की फिल्म है चोरी चोरी चुपके चुपके। चोरी चोरी चुपके चुपके फिल्म 2001 में बनी भारतीय हिंदी रोमांटिक ड्रामा फिल्म थी, जिसका निर्देशन किया था अब्बास मस्तान ने। पटकथा श्याम गोयल ने लिखी थी और कहानी लिखी थी नीरज वोरा ने। मुख्य किरदार में थे सलमान खान, रानी मुखर्जी और प्रीति जिंटा। फिल्म के संगीत की बात करें तो संगीत दिया था अनु मलिक ने और सभी गीत लिखे थे समीर ने। आइए सुनते हैं जसबिंदर नरूला की आवाज़ में ये गीत।

सूचना, ज्ञान एवं मनोरंजन से भरपूर प्रसारण के 90 वर्षों से हम हैं आपके साथ, क्योंकि हम हैं आकाशवाणी।

आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम एक ही फिल्म से, और आज की फिल्म है चोरी चोरी चुपके चुपके। फिल्म की पटकथा लिखी थी श्याम गोयल ने और संवाद लिखे थे जावेद सिद्दीकी ने, जबकि कहानी थी नीरज वोरा की। लीजिए सुनते हैं उदित नारायण और अलका याग्निक की आवाज़ में ये गीत।

0: इसी गीत के साथ कार्यक्रम एक ही फिल्म से यहीं पर संपन्न होता है। आकाशवाणी का ये नजीबाबाद केंद्र है। मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलोहर्ट्ज़ पर रात्रि के 8:45।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं मुकेश कुमार बल। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संवाद और कूटनीति के माध्यम से संघर्षों के शांतिपूर्ण समाधान के लिए भारत के निरंतर समर्थन की पुष्टि की। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने भारत को अमेरिका के दृष्टिकोण से हिंद प्रशांत क्षेत्र की आधारशिला बताया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, देश रक्षा विनिर्माण में आत्मनिर्भर बन रहा है। महाराष्ट्र के शिरडी में तोप के गोले बनाने के संयंत्र का भी उद्घाटन किया। केंद्र सरकार ने नई दिल्ली के जिमखाना क्लब को रक्षा अवसंरचना को मजबूत करने के लिए अगले महीने की 5 तारीख तक अपना परिसर सौंपने को कहा। चीन के कोयला खदान में विस्फोट में 90 लोगों की मौत और भारतीय पहलवान सूरज वशिष्ठ और सागर सिंह ने वियतनाम में आयोजित एशियाई अंडर-23 कुश्ती चैंपियनशिप में रजत पदक जीता। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र

0: मोदी और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने आज भारत अमेरिका व्यापक वैश्विक रणनीतिक साझेदारी में लगातार हो रही प्रगति, क्षेत्रीय तथा वैश्विक शांति और सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की। विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने आज दिल्ली में सेवा तीर्थ में प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की। श्री मोदी ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि भारत और अमरीका विश्व कल्याण के लिए मिलकर काम करते रहेंगे। इस बैठक के दौरान विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल भी उपस्थित रहे। प्रधानमंत्री कार्यालय ने एक बयान में कहा कि अमरीकी विदेश मंत्री ने श्री मोदी को रक्षा, रणनीतिक तकनीकों, व्यापार तथा निवेश, ऊर्जा सुरक्षा, कनेक्टिविटी, शिक्षा और लोगों के बीच संबंधों सहित कई क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग में लगातार हो रही प्रगति के बारे में जानकारी दी। श्री मार्को रूबियो ने पश्चिम एशिया की स्थिति सहित विभिन्न क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर अमेरिका का दृष्टिकोण साझा किया। श्री मोदी ने शांति प्रयासों के लिए भारत के निरंतर समर्थन की पुष्टि की और बातचीत तथा कूटनीति के माध्यम से संघर्षों के शांतिपूर्ण समाधान की अपनी अपील दोहराई। श्री मार्को रूबियो इस महीने की 26 तारीख को होने वाली क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में हिस्सा लेने के लिए 4 दिन की भारत यात्रा पर हैं। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा है कि अमेरिका जिस तरह से हिंद प्रशांत क्षेत्र को देखता है उसमें भारत की भूमिका सबसे अहम है। नई दिल्ली में अमेरिकी दूतावास की सपोर्ट एनेक्स बिल्डिंग का उद्घाटन करते हुए श्री रूबियो ने कहा कि भारतीय कंपनियों ने अमेरिका में $20 अरब का निवेश किया है।
1: अब हमारे व्यापारिक संबंध और भी बढ़ गए हैं। इसमें भारतीय कंपनियों का अमेरिका में $20 अरब से अधिक का निवेश शामिल है। हमने हिंद प्रशांत क्षेत्र में सैन्य अभ्यासों के माध्यम से अपनी सुरक्षा साझेदारी को और भी मजबूत बनाया है। निश्चित रूप से इस महत्वपूर्ण रिश्ते को और मजबूत बनाने के लिए एक व्यवस्थित और सुरक्षित काउंसलर प्रणाली की अत्यंत आवश्यकता है।
0: श्री रूबियो ने कहा कि उनकी इस यात्रा से दोनों देशों के आपसी संबंध और मजबूत होंगे तथा उनमें और अधिक प्रगति होगी।
1: इस रिश्ते की बुनियाद राष्ट्रपति ट्रंप और प्रधानमंत्री मोदी के बीच का आपसी संबंध है। ये एक निजी रिश्ता है। इसकी शुरुआत पहले कार्यकाल के दौरान हुई थी जब राष्ट्रपति ट्रंप को भारत आने का मौका मिला था। ये रिश्ता दूसरे कार्यकाल में भी कायम रहा। आप उन दोनों के बीच के जुड़ाव को साफ साफ देख सकते हैं और मुझे लगता है ये बेहद अहम है।
0: विदेश मंत्री रूबियो ने विश्वास व्यक्त किया कि भारत और अमेरिका के बीच संबंधों को और अधिक मजबूत बनाने के लिए दोनों देशों की ओर से आने वाले समय में कई और रोमांचक तथा नई घोषणाएं की जाएंगी। श्री रूबियो ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को दो ऐसे बेहद गंभीर नेता बताया जिनका पूरा ध्यान दीर्घकालिक लक्ष्यों पर केंद्रित है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। AFCAT 1 of 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या afcat.edcil.go.in पर।
2: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज महाराष्ट्र के शिरडी स्थित सावली विहिर औद्योगिक क्षेत्र में स्थापित तोप के गोले बनाने वाले संयंत्र का उद्घाटन किया। इस परियोजना को निबे ग्रुप ने विकसित किया है। इस दौरान श्री सिंह ने कहा कि मेक इन इंडिया पहले

0: के माध्यम से देश रक्षा विनिर्माण में आत्मनिर्भर बन रहा है।
1: हमने यह समझा, सेल्फ रिलायंट इंडिया, आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया के लिए प्राइवेट सेक्टर की एनर्जी का उपयोग आवश्यक है। इसलिए पॉलिसी रिलेटेड रिफॉर्म, नीतिगत सुधार भी किए गए। FDI को, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को लिबरलाइज किया गया। पॉजिटिव इंडिजनाइजेशन लिस्ट लाई गई। हम लोगों ने एक लंबी लिस्ट मोर देन 5000 आइटम्स की तैयार की है। इस पॉजिटिव इंडिजनाइजेशन लिस्ट में आइटम्स हैं, हम उनको निर्धारित समय के अंदर हम भारत की धरती पर बनाएंगे। हम दुनिया के किसी देश से उसको इम्पोर्ट नहीं करेंगे।
0: श्री सिंह ने कहा कि रक्षा क्षेत्र में निजी क्षेत्र की भागीदारी लगभग 30-35% है, जिसे भविष्य में बढ़ाकर 50% किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत के युवा विकसित भारत की ओर अग्रसर होने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। उन्होंने आज वर्चुअल माध्यम से 19वें रोजगार मेले को संबोधित करते हुए ये बात कही।
2: दुनिया भारत के युवाओं और भारत की टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस को लेकर बहुत उत्साहित है। आज दुनिया भारत की विकास यात्रा का हिस्सा बनना चाहती है। भारत भी दुनिया के अलग अलग देशों के साथ पार्टनरशिप कर रहा है। इसका उद्देश्य यही है कि भारत के युवाओं को अवसर मिले, रोजगार मिले, उनका सामर्थ्य खिल उठे। साथ साथ मैं चाहता हूं मेरे देश के नौजवानों को ग्लोबल एक्सपोजर भी मिले।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि पूरी दुनिया भारत की विकास यात्रा का हिस्सा बनने के लिए उत्सुक है। रोजगार मेले में आज सरकार के अलग अलग विभागों और संगठनों में चयनित 51,000 से भी अधिक युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपे गए। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि पिछले 12 वर्षों में सरकार का मुख्य प्रयास भर्ती प्रक्रियाओं में पारदर्शिता सुनिश्चित करना रहा है। नई दिल्ली में 19वें रोजगार मेले को संबोधित करते हुए उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि नए भर्ती हुए लोग वर्ष 2047 तक देश को विकसित राष्ट्र बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण योगदान देंगे।
3: विकसित भारत 2047, जब उस गोल, उस विजन को सामने रखते हैं तो हमारा काम भी बड़ा सुगम हो जाएगा। और हिम्मत से काम करें, अच्छा काम करें, बदलाव में पहल करें। जहां जहां कोई चीज में हमारे नई सोच है, नए आइडियाज है, अगर हम सब ने नई नई टेक्नोलॉजीज को अडॉप्ट किया, हम भी अपने आप को रीट्रेन करें, रीस्किल करें, अपग्रेड करें हमारी नॉलेज, और आगे बढ़ने के लिए कंटिन्यूस लर्निंग शुड बी अ पार्ट ऑफ आवर लाइफ।
0: श्री गोयल ने कहा कि वैश्विक उथल पुथल के बावजूद भारत में बुनियादी अर्थव्यवस्था मजबूत और निर्यात में जबरदस्त वृद्धि बनी हुई है। उन्होंने कहा कि अप्रैल के बाद मई माह में भी निर्यात वृद्धि जारी रही, जो वैश्विक प्रतिकूलताओं के बीच भारतीय अर्थव्यवस्था के लचीलेपन को दर्शाती है। नई दिल्ली में आज श्री गोयल ने कहा कि सरकार ने किसानों को बढ़ती लागत से बचाने के लिए उर्वरकों की बढ़ी कीमतों का बोझ स्वयं वहन किया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि ऑयल इंडिया लिमिटेड ने राजस्थान के दांडेवाला फील्ड में एक नए गैस भंडार का पता लगाया है। श्री पुरी ने कहा कि उथली सानू भौगोलिक संरचना से पहली बार लगभग 25,000 मानक घन मीटर प्रतिदिन की दर से प्राकृतिक गैस का प्रवाह होना एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। उन्होंने कहा कि इससे घरेलू ऊर्जा उत्पादन को मजबूत करने में सहायता मिलेगी। सरकार ने जन परामर्श के लिए विकसित भारत जी राम जी अधिनियम 2025 के अंतर्गत मसौदा नियम प्रकाशित किए हैं। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
4: विकसित भारत जी राम जी एक्ट ने 20 साल पुराने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 की जगह ली है। नए कानून के तहत अब एक वित्तीय वर्ष में रोजगार की गारंटी 100 दिनों से बढ़ाकर 125 दिन कर दी गई है। मंत्रालय के अनुसार इस कानून के मसौदा नियम धारा 33 और अन्य संबंधित प्रावधानों के तहत तैयार किए गए हैं। मंत्रालय ने बताया कि मसौदा नियमों को जनता से सुझाव और राय लेने के लिए सार्वजनिक किया गया है। इनमें संक्रमण प्रावधान नियम, राष्ट्रीय स्तर संचालन समिति नियम, केंद्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी परिषद नियम, प्रशासनिक खर्च नियम और शिकायत निवारण नियम शामिल हैं। नए कानून में मजदूरी का भुगतान समय पर पारदर्शी और जवाबदेही के साथ करने पर विशेष जोर दिया गया है। इसके अलावा तय समय के भीतर काम नहीं मिलने पर बेरोजगारी भत्ता देने का भी प्रावधान किया गया है। वीबीजी रामजी एक्ट 2025 को इस महीने की 11 तारीख को अधिसूचित किया गया था और यह इस साल 1 जुलाई से सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लागू होगा। अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज़ ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं।

0: के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: ये आकाशवाणी है। केंद्र ने रक्षा अवसंरचना को मजबूत करने के लिए भूमि की आवश्यकता के मद्देनजर नई दिल्ली स्थित जिमखाना क्लब को 5 जून तक परिसर खाली करने का निर्देश दिया है। आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय के अधीन भूमि और विकास कार्यालय के आदेश में कहा गया है कि ये भूमि तत्काल संस्थागत आवश्यकताओं, शासन अवसंरचना और जनहित परियोजनाओं को पूरा करने के लिए आवश्यक है। राष्ट्रीय महिला आयोग ने दिल्ली के जामिया नगर में एक दलित महिला के कथित अपहरण, सामूहिक दुष्कर्म और जबरन धर्म परिवर्तन से संबंधित मीडिया रिपोर्ट का स्वतः संज्ञान लिया है। आयोग ने इस संदर्भ में दिल्ली पुलिस आयुक्त से 7 दिन के भीतर विस्तृत कार्रवाई रिपोर्ट मांगी है। चीन के शांक्सी प्रांत में एक कोयला खदान में गैस विस्फोट में मरने वालों की संख्या बढ़कर 90 हो गई है। ये विस्फोट कल क्यूआन काउंटी की लियू शेन्यू कोयला खदान में हुआ। अब तक 201 खनिकों को बचाया जा चुका है। चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग ने व्यापक बचाव अभियान और घायलों के उपचार और दुर्घटना के कारणों की जांच का आदेश दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस हादसे में हुई जानमाल की हानि पर गहरा दुख व्यक्त किया है। भारतीय सूचना सेवा के सेवानिवृत्त अधिकारी त्रिलोकीनाथ का आज दोपहर निधन हो गया। वे 79 वर्ष के थे। वे कुछ समय से बीमार थे। श्री त्रिलोकीनाथ ने आकाशवाणी के हिंदी समाचार कक्ष में संपादक के रूप में वर्षों तक अपनी सेवाएं दी। वियतनाम के दानांग में आज एशियाई अंडर-23 कुश्ती चैंपियनशिप में भारतीय पहलवान सूरज वशिष्ठ और सागर सिंह ने रजत पदक अपने नाम किए। 60 किलोग्राम वर्ग के फाइनल में सूरज वशिष्ठ को एबेक एतबेकोव से, वहीं 67 किलोग्राम वर्ग में सागर सिंह को एतजान खलमा खानव से हार का सामना करना पड़ा। लखनऊ में आईपीएल क्रिकेट में लखनऊ सुपर जायंट्स का मुकाबला पंजाब किंग्स से जारी है। ताजा समाचार मिलने तक लखनऊ ने 17वें ओवर में 4 विकेट पर 158 रन बना लिए हैं। मौसम विज्ञान विभाग ने कल पूर्वी मध्य प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश और विदर्भ में लू से लेकर भीषण लू की स्थिति का रेड अलर्ट जारी किया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संवाद और कूटनीति के माध्यम से संघर्षों के शांतिपूर्ण समाधान के लिए भारत के निरंतर समर्थन की पुष्टि की। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने भारत को अमेरिका के दृष्टिकोण से हिंद प्रशांत क्षेत्र की आधारशिला बताया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, देश रक्षा विनिर्माण में आत्मनिर्भर बन रहा है। महाराष्ट्र के शिरडी में तोप के गोले बनाने के संयंत्र का उद्घाटन किया। केंद्र सरकार ने नई दिल्ली के जिमखाना क्लब को रक्षा अवसंरचना को मजबूत करने के लिए अगले महीने की 5 तारीख तक अपना परिसर सौंपने को कहा। चीन के कोयला खदान विस्फोट में 90 लोगों की मौत। इसके साथ ही समाचार संध्या का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: Good evening, this is Akashwani and I am Valsa Williams with the news at 9. The headlines. Prime Minister Narendra Modi reaffirms India's consistent support for peaceful resolution of conflicts through dialogue and diplomacy. U.S. Secretary of State Marco Rubio terms India as cornerstone of United States' approach towards Indo-Pacific region. Defense Minister Rajnath Singh asserts the country is becoming self-reliant in defense manufacturing, inaugurates artillery shell manufacturing plant at Shirdi in Maharashtra. Center asks Gymkhana Club in New Delhi to hand over its premises by 5th of next month for strengthening defense infrastructure. 90 people killed in a coal mine explosion in China. And Indian grapplers Suraj Vashisht and Sagar Singh clinched silver medals at Asian Under-23 Wrestling Championships in Vietnam.

वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने चीन के शांगची सूबे में कान में हुए हादसे में जान गंवाने वालों के तई दुख का इजहार किया है। सोशल मीडिया की एक पोस्ट में वजीर आजम ने भारतीय अवाम की जानिब से चीन के सदर शी जिनपिंग और चीन के लोगों से अपनी ताजियत का इजहार किया। उन्होंने सभी बाकी लापता अफराद की जल्द और बाहिफाजत बाजियाबी की भी दुआ की और इस मुश्किल घड़ी में सोगवार कुंभों से यकजहती का इजहार किया। फ्रांस ने इसराइल के कौमी सलामती के वजीर एटामार बेन गवीर के फ्रांस में दाखिल होने पर पाबंदी आयद कर दी है। फ्रांस की वजीर खारजा जीन नोएल बेरोट ने एक सोशल मीडिया पोस्ट पर इस फैसले का ऐलान करते हुए कहा कि इस इकदाम से गजा जाने वाले समुद्र फ्लोटिला में सवार सरगर्म कारकुनों के साथ रवा रखे गए बर्ताव के मामले पर बढ़ते हुए गम गुस्से की अक्कासी होती है। फ्रांस के वजीर खारजा ने यूरोपीय यूनियन पर भी जोर दिया कि वो इसराइल के कौमी सलामती के वजीर पर पाबंदियां आयद करे। शुमाल मशरकी यूक्रेन के शहर सूमी के मजाफाती में रूस के ड्रोन हमले में आज एक शख्स हलाक और 9 जख्मी हो गए। यूक्रेन के लुहानसिक खित्ते में रूस के कंट्रोल वाले इलाके में एक कॉलेज के रिहायशी इलाके पर यूक्रेन के ड्रोन हमले के बाद रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने जवाबी फौजी कार्रवाई का हुक्म दिया था। आज वियतनाम के डेनेंग में भारत के कुश्ती खिलाड़ी सूरज वशिष्ठ और सागर सिंह ने एशियाई अंडर 23 कुश्ती चैंपियनशिप के मर्दों के ग्रेको रोमन जुमरों में चांदी के तमगे जीते हैं। 60 किलोग्राम के जुमरे में सूरज वशिष्ठ कजाकिस्तान के कुश्ती खिलाड़ी से खिताबी मुकाबले में 4-0 से हार गए। वहीं 67 किलोग्राम के जुमरे में सागर सिंह को फाइनल में उज्बेकिस्तान के कुश्ती खिलाड़ी ने 9-0 से शिकस्त दी। आखिर में खास खबरें एक बार फिर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने मुजाकरात और सिफारतकारी के जरिए तनाजात का पुरअमन हल निकाले जाने के लिए भारत की लगातार हिमायत का यादा किया है। अमेरिका के वजीर खारजा मार्को रूबियो ने भारत बहरुल काहिल खित्ते के तई अमेरिका की हिकमत अमली में भारत को मजबूत बुनियाद करार दिया है। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने जोर देकर कहा कि भारत दिफाई सामान तैयार करने के शोबे में खुद कफील बन रहा है। वजीर मौसूफ ने महाराष्ट्र में शिरडी के मकाम पर तोपखाने के गोले तैयार करने के प्लांट का इफ्तिताह किया। मरकज ने नई दिल्ली में जिमखाना क्लब से कहा है कि वो दिफाई बुनियादी ढांचे को मुस्तहकम बनाने की खातिर अगले महीने की 5 तारीख तक अपनी जमीन हवाले कर दे। चीन में एक कोयला खान में धमाका होने से 90 अफराद की मौत हो गई और भारतीय पहलवानों सूरज वशिष्ठ और सागर सिंह ने वियतनाम में 23 साल तक की उम्र के खिलाड़ियों की एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में चांदी के तमगे जीते। इसके साथ ही खबरों के बुलेटिन खत्म हुआ।

0: नमस्कार, आकाशवाणी की राष्ट्रीय विज्ञान पत्रिका विज्ञान भारती में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं हूं अल्पी कुमारी।
1: और मैं संजय किशोर।
0: विज्ञान भारती में हम विज्ञान, तकनीक, शोध, नवाचार और समाज पर उनके प्रभाव से जुड़े विषयों को आप तक पहुंचाते हैं।
1: आज के अंक में हम चर्चा करेंगे आकाशवाणी के 90 वर्षों की गौरवशाली यात्रा, विज्ञान और तकनीक के प्रचार प्रसार में आकाशवाणी की भूमिका पर।
0: इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी पटना की उपलब्धियों और सुपर कंप्यूटर,
1: दुर्लभ खनिजों के निष्कर्षण की नई तकनीक,
0: विश्व प्रवासी पक्षी दिवस और बिहार में प्रवासी पक्षियों की गणना, खरीफ फसलों के नई किस्में एवं जैविक उर्वरक,
1: साथ ही सुनेंगे विज्ञान जगत की बातें, मई माह में जन्मे और दिवंगत महान वैज्ञानिकों के योगदान तथा मई माह के प्रमुख विज्ञान दिवस।

गौरवशाली 90 वर्षों की यात्रा इन 9 दशकों में आकाशवाणी ने केवल समाचार और मनोरंजन ही नहीं बल्कि विज्ञान और तकनीक के जन जागरण में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। भारत में रेडियो प्रसारण की शुरुआत होती है वर्ष 1927 से, किंतु वर्ष 1936 में ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना की गई। बाद में 1957 में इसे आकाशवाणी नाम मिला। स्वतंत्रता के समय देश में केवल 6 रेडियो स्टेशन थे और इनके

0: विज्ञान एवं तकनीक के प्रचार प्रसार में आकाशवाणी की भूमिका के बारे में आइए जानते हैं ICMR के पूर्व वैज्ञानिक डॉक्टर वी के श्रीवास्तव से।
1: 1990-92 के बीच में ICMR ने आकाशवाणी के साथ मिलकर के एक रेडियो डेट प्रोग्राम किया। डेट मतलब ड्रग एल्कोहल टोबैको एजुकेशन। ये ऑल इंडिया रेडियो के 84 स्टेशन से ब्रॉडकास्ट हुआ प्रोग्राम 30 एपिसोड का 16 लैंग्वेजेस में। तो ये प्रोग्राम बहुत सक्सेसफुल रहा। सबसे ज्यादा इसका फायदा ग्रामीण क्षेत्रों में हुआ। इसका इवेल्युएशन हम सिर्फ दो जगह कर पाए, कर्नाटक और गोवा के ग्रामीण क्षेत्रों में। उससे पता चलता था 4-6% लोगों में, कहीं 4% कहीं 6% लोगों ने इस प्रोग्राम को सुनने के बाद में इन बुरी आदतों से छुटकारा पाया। एक सबसे और अच्छी बात थी, ये अपने से छोटे बच्चों को सिखाते थे, उनमें बुराइयां बताते थे, उनको शिक्षित करते थे। दो तरह का फायदा हुआ इस प्रोग्राम से। तो हम तो चाहते हैं इस तरह के प्रोग्राम और होते रहने चाहिए। 1986 के आसपास भारतवर्ष में HIV का दौर शुरू हुआ। 1988 में फिर मैंने HIV पर एक नेशनल फीचर, आधे घंटे का फीचर किया। उसमें हिंदुस्तान भर में जा जाकर जो उस समय के अपने एक्सपर्ट थे, मुंबई में डॉक्टर गिलाडा थे, तो चेन्नई में डॉक्टर सोलोमन थे, और यहाँ के उनकी पेशेंट्स के इंटरव्यू किए, यहाँ होम्योपैथिक एक्सपर्ट्स, आयुर्वेदिक एक्सपर्ट्स, एलोपैथिक एक्सपर्ट्स, WHO, इन सबके से इंटरव्यू करके इनकी रिकॉर्डिंग करके 30 मिनट का प्रोग्राम एक फीचर किया।
0: विज्ञान जगत में किए गए अपने योगदान को याद करते हुए आकाशवाणी में कार्यरत पूर्व ADG मनोज पटेरिया ने अपने अनुभव इस तरह साझा किए।
2: मैंने नाटक भी लिखे विज्ञान पर जो ब्रॉडकास्ट हुए। समय नाम का नाटक था जो टाइम मशीन के ऊपर था, एक प्रदूषण के ऊपर था, जिसमें ये था कि किस प्रकार से प्रदूषण आने वाले समय में मुश्किलात पैदा कर सकता है।
3: अब बात करते हैं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी पटना की उपलब्धियों और नवीन अनुसंधानों की। संस्थान में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स, डेटा साइंस, साइबर सिक्योरिटी, सस्टेनेबल एनर्जी और बिहार का पहला सुपर कंप्यूटर जैसे क्षेत्रों में महत्वपूर्ण कार्य किए जा रहे हैं। IIT पटना के निदेशक डॉक्टर TN सिंह।
4: यहाँ पर 3 शोध के एक नए आयाम खुले हैं, जिनको हम इनक्यूबेशन सेंटर कहते हैं, TBI, TIH। इन तीनों का मैंडेट अलग अलग है और इसमें एक नए नवाचार और नए तरह की शोध करने वाले विद्यार्थियों, न केवल IIT पटना के लेकिन बिहार और सुदूर राज्यों से भी आए हुए विद्यार्थी इसमें काम करते हैं। नई एक शोध हमारे यहाँ के एक शिक्षक और विद्यार्थियों ने मिलकर किया है कि डिमेंशिया की बीमारी को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से कैसे डिटेक्ट किया जा सकता है, और उसके तहत उनका पेटेंट भी ग्रांट हुआ है। इस तरह से हमारे यहाँ 100 से ऊपर के पेटेंट फाइल हुए हैं और बहुत सारे ग्रांट भी हुए हैं। अभी वासिनी प्रोजेक्ट चल रहा है जो अंतर इंस्टीट्यूशनल कार्यक्रम है, जिसमें कि कुछ IIT, कुछ NIT, कुछ यूनिवर्सिटी सभी मिलकर के ऐसी व्यवस्था कर रहे हैं जिसमें एक भाषा में यदि कोई व्यक्ति बोल रहा है तो सुनने वाला अपनी लोकल भाषा में उसको समझ सके और उसको सुन सके और प्रश्न भी कर सके अपनी भाषा में, तो वक्ता के पास उसकी भाषा में जिसमें वो बोल रहा है उसको वो प्रश्न का उत्तर देगा। बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम एक बहुत ही सफल प्रयोग है यहाँ के शिक्षक और विद्यार्थियों के लिए, और पहली बार IIT पटना से विदेश में बैटरी गई है अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में। बिहार में पहला सुपर कंप्यूटर IIT पटना के प्रांगण में स्थित है। हमारे यहाँ जो सुपर कंप्यूटर है, ये ब्रह्मास्त्र हम बोलते हैं, ये सुपर कंप्यूटर की टेराबाइट में इसकी स्पीड हो, टेराबाइट बहुत ही फास्ट स्पीड, त्वरित काम को निष्पादित करने का इसके अंदर जो है काम है। AI के क्षेत्र में काफी यहाँ काम हो रहा है। केवल हम भाषा तक ही नहीं, हम AI के क्षेत्र में फॉर्मेशन तक के अंदर किस तरह से 5-6G को स्पीड अप किया जाए उसके लिए भी, और क्वांटम में भी यहाँ का फिजिक्स और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का विभाग जो है वो राष्ट्रीय स्तर के जो मिशन है क्वांटम का उसके साथ जुड़े हुए हैं।
0: दुर्लभ खनिज यानी रेयर मिनरल्स या क्रिटिकल मिनरल्स, ये ऐसे खनिज हैं जो स्वच्छ ऊर्जा, विद्युत, वाहन, रक्षा, अंतरिक्ष, इलेक्ट्रॉनिक्स तथा उन्नत विनिर्माण उद्योगों के लिए अत्यंत आवश्यक होते हैं। वर्तमान समय में वैश्विक स्तर पर 17 खनिजों को दुर्लभ खनिज का दर्जा दिया गया है, जिनकी मांग तेजी से बढ़ रही है, क्योंकि विश्व ऊर्जा परिवर्तन यानी एनर्जी ट्रांजिशन और हरित प्रौद्योगिकी की ओर अग्रसर है। भारत का राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन या ANRF देश के विश्वविद्यालयों, कॉलेजों और अनुसंधान संस्थानों में वैज्ञानिक अनुसंधान और नवाचार के लिए धन देने, बढ़ावा देने और रणनीतिक दिशा प्रदान करने के लिए अनिवार्य सर्वोच्च निकाय है। ANRF ने IIT पटना के

0: सीएट प्रोफेसर डॉक्टर सुब्रत हती के परमानेंट मैग्नेट यानी स्थायी चुंबक से दुर्लभ खनिज के निष्कर्षण के अनुसंधान को ग्रांट दिया है।
1: जो आपका दुर्लभ खनिज है और हम लोग बोलते हैं कि क्रिटिकल मिनरल्स है, ये है कि आपका जो हम लोग का डेवलपमेंट विद रिस्पेक्ट टू एनी काइंड ऑफ इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स या इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स होता है, तो वो सब चीजों में ये दुर्लभ खनिज इस्तेमाल होता है। हर देश में करना चाहते जो हम लोग उनको बोलते हैं कि प्राइमरी सोर्स या प्राइमरी रिसोर्स, तो वो उसके जियोलॉजिकल हैजर्ड्स हो सकते हैं। तो नेक्स्ट जो होता है हमारे पास सेकेंडरी रिसोर्स होता है। सेकेंडरी रिसोर्स ये होता है कि जैसे ई वर्ज्य होता है, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट। इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट जो है आपका जो भी इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट है, जो भी हम लोग डे टू डे यूज करते हैं, तो सारा चीज एक यूजुअल लाइफ पीरियड के बाद वो ऑब्सोलीट हो जाता है। और ऑब्सोलीट हो जाने के बाद क्या है कि उसमें उससे हम लोग सेकेंडरी रिसोर्स से उसको हम लोग निष्कासित करते हैं। निष्कासित करने के लिए आपके पास तरीका जो होता है, टेक्निकल तरीका, वो बोलते हैं कि पायरोमेटलर्जी, हाइड्रोमेटलर्जी एंड बायोमेटलर्जी। पायरोमेटलर्जी में हम लोग क्या करते हैं कि आपको हीट ट्रीटमेंट देते हैं, और उससे क्या है कि अगर आप मेटेरियल प्राइमरी सोर्स पे अगर कोई मटेरियल है, प्लास्टिक्स है, तो उसको जलाया जाता है, तो उससे प्रदूषण हो सकता है। तो इसलिए दूसरा तरीका क्या होता है कि आपके पास हाइड्रोमेटलर्जी होता है। हाइड्रोमेटलर्जी में जनरली लोग क्या करते हैं कि एसिड और अल्काली यूज करते हैं, तो वो जो एसिड और अल्काली होता है वो जनरली कॉन्वेंशनली लोग उसका स्ट्रॉन्ग एसिड और अल्काली यूज करते हैं। तो उसके बदले में अगर कुछ अल्टरनेटिव्स ये है कि अगर आप कुछ नेचुरल ऑर्गेनिक एसिड यूज करें, और नाउडेज क्या है कि नोबेल जो टेक्निक आया है उसको बोलते हैं कि हम लोग डीप यूटेक्टिक सॉल्वेंट, उससे हम लोग इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट जो हमें एनआरएफ से जो रिसर्च ग्रांट मिला है, इससे हम लोग कर रहे सेकेंडरी रिसोर्स परमानेंट मैग्नेट। उससे परमानेंट मैग्नेट जनरली आप देखेंगे व्हीकल्स में यूज होता है, जनरली देखेंगे विंड मिल में यूज होता है। सो परमानेंट मैग्नेट जब वो ऑब्सोलीट हो जाता है, उस परमानेंट मैग्नेट से, और मेजोरिटी ऑफ द सोर्स ऑफ परमानेंट मैग्नेट आपका चाइना है, तो वो सब आप एक्सपोर्ट सब बंद कर दिया। जो डेवलप कंट्रीज है जिनके पास क्रिटिकल मिनरल का मेजोरिटी ऑफ द रिजर्व्स है, वो लोग इसका दुर्लभ खनिज का एक्सपोर्ट बंद कर दिया है। जो अगर स्वावलंबी बनना है भारत को, तो इसलिए क्या है कि हम लोग सेकेंडरी रिसोर्स से ये सब पदार्थ और दुर्लभ खनिज निष्कासित करना है। तो इसी संदर्भ में ये जो परमानेंट मैग्नेट से क्रिटिकल मिनरल निष्कासित करना डीप यूटेक सॉल्वेंट लेके, ये एक हमारा पहल है जिसमें हम लोग काफी शोध कर चुके हैं, और आगे शोध को हम लोग स्केल अप करेंगे।
2: और अब हम जानेंगे प्रवासी पक्षी के बारे में। प्रत्येक वर्ष हजारों लाखों किलोमीटर का सफर तय करके हमारे देश, हमारे शहर और हमारे इर्द गिर्द पहुंचते हैं, और इन्हीं पक्षियों के लिए 9 मई 2026 को विश्व प्रवासी पक्षी दिवस मनाया गया। इस बार विश्व प्रवासी पक्षी दिवस का थीम था हर पक्षी महत्वपूर्ण है, आपका नजरिया मायने रखता है। वैज्ञानिकों के अनुसार पक्षी दो प्रमुख वजहों से प्रवास करते हैं, भोजन और घोंसले की तलाश में ये पूरी दुनिया में प्रवास करते हैं। वर्ल्ड लाइफ के अनुसार विश्व के पक्षियों की 40% प्रजातियां अब घट रही हैं। प्रवासी पक्षी पारिस्थितिकी तंत्र के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, और उनकी घटती संख्या जल की गुणवत्ता, खाद्य सुरक्षा और जलवायु परिवर्तन के प्रति कमजोर सहनशीलता का कारण बन रही है। भारत में हर साल 370 से अधिक प्रजातियों के प्रवासी पक्षी आते हैं। बिहार में 70 से अधिक प्रवासी पक्षियों सहित कुल 260 से ज्यादा प्रजातियों के 10,000 से अधिक पक्षियों की गणना की गई है। आप ई बर्ड बिहार पर जाकर राज्य के विभिन्न क्षेत्रों जैसे पटना, भागलपुर या और भी जो क्षेत्र हैं, उनमें हाल ही में देखे गए पक्षियों की सूची और चेकलिस्ट को देख सकते हैं। बिहार में प्रवासी पक्षियों के बारे में विस्तृत जानकारी देने के लिए हमारे साथ हैं डॉक्टर देव नारायण चौधरी, एसोसिएट प्रोफेसर जूलॉजी डिपार्टमेंट, तिलका मांझी विश्वविद्यालय, भागलपुर।
3: पिछले कई सालों से बिहार का जो वन मंत्रालय है, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, और बॉम्बे की संस्था है बीएनएचएस, बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी, इन दोनों के प्रयास से पक्षियों की गणना शुरू हुई है। 2022 से इसकी शुरुआत हुई और ये 26 लगभग 5 गणना हो चुकी, और इससे काफी अच्छे परिणाम आए हैं। हम लोगों ने बिहार के 3800 जिलों में जितने भी इम्पोर्टेंट वेटलैंड्स है जहाँ पर इन पक्षियों का वास होता है, ये प्रवासी पक्षी जहाँ से आकर के पनाह लेते हैं, वहाँ पर इसकी गिनती शुरू हुई, और इसमें जो भी पक्षी विशेषज्ञ थे, जो बर्डर थे, जो ट्रेनर थे, उन लोगों को इसमें लगाया गया, और हर डिस्ट्रिक्ट में एक कोऑर्डिनेटर की बहाली हुई जो एक्सपर्ट के रूप में काम करते हैं। इससे अच्छे परिणाम आए, तो धीरे धीरे हर साल कुछ कुछ वेटलैंड की संख्या भी बढ़ती चली गई, उसको भी हम लोग कवर करते हैं। तो इसमें देखा गया कि एक अच्छा डाटा तैयार हो गया, और आने वाले दिनों में बिहार के पक्षियों पर एक अच्छा डॉक्यूमेंटेशन हो सकता है। जो इसके पहले 2012 में ही एक बुक पब्लिश हुआ था मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट के द्वारा, बर्ड्स ऑफ बिहार, उसका जो इन्फॉर्मेशन था उससे कहीं ज्यादा इस रिपोर्ट के बाद जो ये

0: छपेगा तो आने वाले दिनों में जो एकेडमिक्स के फील्ड में ये एक अच्छी जानकारी साबित होगी।
1: और अब जानते हैं विज्ञान जगत की नवीनतम घटनाओं के बारे में। वैज्ञानिकों ने चेतावनी दी है कि आने वाला सुपर एल नीनो 1950 के बाद सबसे शक्तिशाली में से एक हो सकता है, जो दुनिया भर में करोड़ों लोगों को प्रभावित कर सकता है। यह कई क्षेत्रों में बाढ़, सूखा, हीट वेव और जंगलों में आग जैसी घटनाओं को बढ़ा सकता है। जलवायु परिवर्तन इसकी प्रकृति को और अधिक अनिश्चित बना रहा है। सुपर एल नीनो का मतलब समुद्र के तापमान में 2 डिग्री सेल्सियस से अधिक की असामान्य बढ़ोतरी से है, जिससे वैश्विक तापमान बढ़ता है। खासकर दक्षिण एशिया पर इसका अधिक असर पड़ता है।
2: भारत के असम के काजीरंगा नेशनल पार्क में पहली बार सैटेलाइट ट्रैक की गई गंगा सॉफ्ट शेल कछुए को छोड़कर संरक्षण के क्षेत्र में एक बड़ी उपलब्धि हासिल की गई है। यह संवेदनशील मीठे पानी की प्रजाति का कछुआ है, जो नदी के पारिस्थितिकी तंत्र के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अब इसके व्यवहार, प्रवास और पर्यावरणीय खतरों के प्रति प्रतिक्रिया का अध्ययन करने के लिए ट्रैक की जा रही है। यह पहल वैज्ञानिकों को इस जलीय सरीसृप प्रजाति के दीर्घकालिक संरक्षण को सुनिश्चित करने में मदद करेगी। इस प्रजाति को असुरक्षित श्रेणी में शामिल किया गया है। और अब स्वाद और सेहत से भरपूर बिहार की पहचान मखाना के बारे में जानते हैं। सुपर फूड बन चुका मखाना अब वैज्ञानिक अनुसंधान के माध्यम से नई ऊंचाइयों तक पहुंच रहा है। मखाना अनुसंधान केंद्र में मखाना की नई प्रजातियों और उत्पादन तकनीकों पर कार्य किया जा रहा है। इस संबंध में ICAR राष्ट्रीय मखाना अनुसंधान केंद्र दरभंगा के वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर मनोज कुमार।
3: कोरोना काल के बाद से जब स्वास्थ्य के प्रति लोगों की जागरूकता काफी तेजी से बढ़ी है, तो मखाना में पाए जाने वाले जितने औषधीय गुण हैं, इसमें पाई जाने वाली जितनी पौष्टिकताएं हैं, तो इन गुणों के प्रति, इन स्वास्थ्य लाभों के प्रति बहुत तेजी से दुनिया भर में जागरूकता हुई है। इसमें मिनरल्स काफी प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं, जैसे मैग्नीशियम, कैल्शियम, फास्फोरस, पोटाशियम। पोषक तत्व तो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है हमारे न्यूट्रिशन के लिए, जैसे आयरन, जिंक इत्यादि बहुत अच्छी मात्रा इसमें पाई जाती है। इसके अलावा ये जीरो फैट फूड इसे मानते हैं। इसमें फैट की मात्रा बहुत ही कम है, कोलेस्ट्रॉल बहुत कम है, ग्लाइसेमिक इंडेक्स इसमें बहुत कम होता है। मधुमेह के जो मरीज हैं वो भी बहुत सुगमता से इसका इस्तेमाल कर पाते हैं। मोटापे की समस्या से जो ग्रसित है वो भी आसानी से इसका इस्तेमाल कर पाते हैं, क्योंकि फैट इसमें बहुत कम है। इसके अलावा इसमें बहुत सारे औषधीय गुण हैं। राष्ट्रीय मखाना अनुसंधान केंद्र दरभंगा के माध्यम से भी एक नई प्रजाति अभी विकसित की जा रही है, और मेरा मानना है कि अगले एक वर्ष में ये वैरायटी आ जाएगी, जिसकी उत्पादन क्षमता यहाँ से करीब 15-20% और ज्यादा होगी। और इसके अतिरिक्त कांटे रहित मखाना के प्रभेदों के विकास पर भी अभी चर्चा हो रही है।
1: हाल ही में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रासायनिक उर्वरकों के उपयोग को सीमित करने की बात कही है, ताकि खाद्य सुरक्षा से पोषण सुरक्षा को प्राप्त किया जा सके। बिहार के 13 जिलों में जैविक खेती की जा रही है। कृषि विज्ञान में खरीफ खाद्यान्न की नई प्रजाति के विकास एवं ब्लू अलगी जैविक उर्वरकों के उपयोग के संबंध में बता रहे हैं डॉक्टर दिव्यांशु शेखर, कृषि विज्ञान केंद्र जाले दरभंगा।
4: जैसा कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी देश को प्राथमिकता में रखा है कि हम रासायनिक उर्वरकों से हटकर प्राकृतिक या जैविक उर्वरकों की तरफ बढ़े, जिससे कि न कि हमारा फसल की उत्पादकता बनी रहे, साथ में ही उसकी गुणवत्ता में भी कोई ह्रास न हो। खास तौर पे धान की फसल में जो हमारा ब्लू ग्रीन एल्गी या जिसको हम अजोला कहते हैं, उसका यदि हम प्रयोग करते हैं तो हमारी नाइट्रोजन की जो रिक्वायरमेंट है या आवश्यकता है वो 10-20% तक हम उसके द्वारा कम कर सकते हैं। साथ में ही इसके प्रयोग करने से हमारे भूमि में कार्बनिक तत्वों की भी मात्रा बढ़ती है और साथ साथ जो खरपतवार होते हैं उनकी भी संख्या कम होती है।
2: और अब अंतरिक्ष की बात। हाल ही में विश्व का पहला ऑप्टो SAR सैटेलाइट मिशन दृष्टि लॉन्च किया गया। यह एक भारतीय अंतरिक्ष स्टार्टअप के द्वारा बनाया गया सैटेलाइट है। अंतरिक्ष क्षेत्र में अर्जित उपलब्धियों के बारे में हमसे बात की भारतीय अंतरिक्ष विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान तिरुअनंतपुरम के कुलपति प्रोफेसर दीपांकर बनर्जी ने।
5: दो चीज होता है, देखिए आप जो 100 साल से हम लोग कोडाईकनाल से सूर्य का अध्ययन कर रहे हैं, ये जरूरी इसीलिए है कि वो हमारे सबसे नजदीकी तारे है, उसका चुंबक क्षेत्र का कुछ परिवर्तन होता है। वो परिवर्तन का एक 11 साल का एक हम बोलते हैं सोलर साइकिल जैसा है, तो कभी कभी उसमें चुंबक क्षेत्र थोड़ा ज्यादा हो जाता है, कभी कभी थोड़ा कम होता है। एंड ये जो बढ़ना और कमना का जो ऑसिलेटर पैटर्न जो है, उसको स्टडी करने के लिए एक डायनमो मैकेनिज्म मैकेनिज्म को हम लोग मैथमेटिकली हम इस्तेमाल करते हैं. सोलर डायनमो एक थ्योरी है जो हमको समझने के लिए ये करते हैं कि क्यों ऐसा सूर्य में चुंबक क्षेत्र 11 साल का एक पीरियोडिसिटी क्यों रहता है. बट ये तो एक थ्योरी हो गया. थ्योरी को तो मैच करने के लिए आपको ऑब्जर्वेशन चाहिए. ऑब्जर्वेशन जितना लंबा होगा तभी इतना ज्यादा अच्छा है. इसीलिए ये कोडाईकनाल में ऑब्जर्वेशन हम लोग 1904 साल से चालू किया. उसी जमाने में तो फोटोग्राफिक प्लेट होता था, फिल्म होता था. हमने वो पूरा जो आर्काइव है उसको पूरा डिजिटाइज किया. आजकल के जमाना में तो कोई हाथ से तो कुछ करते नहीं, आपको इमेज होना चाहिए जो डिजिटल मोड है. एक्चुअली पुराना आर्काइव है उसको डिजिटाइजेशन करना भी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एक प्रोजेक्ट है. तो ये 100 साल का पूरा डेटा डिजिटाइज करने के बाद हमने अभी अध्ययन किया कि ये 11 ईयर साइकिल कैसा होता है. कभी कभी एक साइकिल थोड़ा बड़ा होता है, कभी थोड़ा छोटा होता है. जब बड़ा होगा उसमें सोलर जो तूफान वो और ज्यादा होगा. जब थोड़ा चुंबक क्षेत्र थोड़ा कम होगा तो वो भी जानकारी होना चाहिए. एक तो है कि अभी हाल ही में ये तूफान आने वाला है या नहीं आने वाला, ये जानकारी. और एक है कि पहले ऐसा तूफान होता था कि नहीं होता था. अभी सन जो स्टार वो मिडिल एज में है, वो जब बड़ा हो जाएगा, वो रेड जायंट हो जाएगा, हम तो बच नहीं पाएंगे. अभी मिलियनियर में नहीं होने वाला है तो अभी सोचने का नहीं है. बट ये सब जानकारी होना चाहिए.
1: मई का महीना विज्ञान के इतिहास में बेहद खास है. कई महानतम वैज्ञानिकों का जन्म हुआ जिन्होंने भौतिकी, चिकित्सा और रसायन विज्ञान की दिशा हमेशा के लिए बदल दी. इस महीने देश के कुछ ऐसे महान वैज्ञानिक और गणितज्ञों का जन्म हुआ जिन्होंने न केवल भारत में आधुनिक विज्ञान और परमाणु कार्यक्रम की नींव रखी बल्कि पूरी दुनिया में देश का नाम रोशन किया. डॉक्टर राजा रमन्ना, आप भारत के परमाणु कार्यक्रम के शिल्पकार कहे जाते हैं. आपका जन्म 28 मई 1925 को तुमकुर कर्नाटक में हुआ. के आर रामनाथन, आप भारत के मौसम विज्ञान और ओजोन अनुसंधान के जनक माने जाते हैं. आपका जन्म 28 मई 1893 को पलक्कड़ केरल में हुआ. हरीश चंद्र, जो कि गणित और भौतिकी के महान सेतु कहे जाते हैं, आपका जन्म हुआ 11 मई 1923 को कानपुर उत्तर प्रदेश में. आप महान वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन के सहायक भी रहे. आपने लाइक ग्रुप्स और रिप्रेजेंटेशन थ्योरी में क्रांतिकारी सिद्धांत दिए जिन पर आज भी क्वांटम मैकेनिक्स और आधुनिक गणित टिकी हुई है. हमारे अगले वैज्ञानिक हैं डॉक्टर विजय भटकर, आप भारतीय सुपर कंप्यूटर के जनक हैं. आपका जन्म 11 मई 1946 को मोरंबा महाराष्ट्र में हुआ. आपके नेतृत्व में सीडेक ने साल 1991 में भारत का पहला स्वदेशी सुपर कंप्यूटर परम 8000 बनाया. आगे नाम आता है प्रोफेसर डॉक्टर बलराम भार्गव का, जिनका जन्म 3 मई 1961 को हुआ था. आप भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के महानिदेशक रहे. पूरी दुनिया जब सबसे बड़ी महामारी कोविड 19 से जूझ रही थी तब भारत की वैज्ञानिक लड़ाई का नेतृत्व करने वाले मुख्य चेहरों में डॉक्टर भार्गव का नाम सबसे आगे था. और अब हम जानेंगे मई महीने में दुनिया ने विज्ञान जगत के कुछ बेहद प्रतिष्ठित चेहरों को खोया है. डॉक्टर मोनिका मोंटे फाल्कोन, आपका निधन 14 मई 2026 को हुआ. आपने समुद्री पारिस्थितिकी और जीव विज्ञान के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया है. डॉक्टर विलियम चार्ल्स लिविंगस्टन, आपका निधन 2 मई 2026 को 98 वर्ष की आयु में हुआ. आपने सौर खगोल विज्ञान के क्षेत्र में अभूतपूर्व कार्य किया.
2: आज विज्ञान पत्रिका के इस अंक में आकाशवाणी के 90 वर्षों की गौरवशाली यात्रा को याद करते हुए हमारे सुधी श्रोताओं ने अपने विचार कुछ इस तरह व्यक्त किए. बिहार विधानसभा अध्यक्ष माननीय डॉक्टर प्रेम कुमार,
6: शब्द ब्रह्म के मूलमंत्र को चर्चा करते हुए देश के जन जन की आवाज एवं सूचना क्रांति के उद्घोष के प्रतीक आकाशवाणी ऑल इंडिया रेडियो के गौरवमयी सचित्र के 90 वर्ष पूर्ण होने पर संपूर्ण आकाशवाणी परिवार और इसे करोड़ों श्रोताओं को मैं प्रेम कुमार अध्यक्ष बिहार विधानसभा हार्दिक बधाई एवं शुभकामना देता हूँ. 8 जून 1936 को अपनी औपचारिक यात्रा शुरू करने वाला आकाशवाणी आज केवल एक प्रसारण माध्यम नहीं बल्कि स्वतंत्र भारत के सामाजिक, सांस्कृतिक और लोकतांत्रिक विकास का जीवन साथी. स्वाधीनता संग्राम से लेकर आधुनिक भारत के निर्माण तक आकाशवाणी राष्ट्र के सूत्र में पिरोने का अभूतपूर्व कार्य किया है. संकट और आपदा के समय इसकी प्रमाणिक खबरों ने हमेशा देश का मार्गदर्शन किया है. जिससे इसकी विश्वता आज भी शून्य है। जन जागृति और राष्ट्र निर्माण सुदूर गांव खेतों खलिहानों और सीमावर्ती क्षेत्रों तक ज्ञान और चेतना का प्रकाश फैलाने में इस माध्यम की भूमिका रहती है। कृषि सुधारों से लेकर मन की बात जैसे संवादों के माध्यम से इसने जन जागृति को एक नई दिशा दी है। स्वास्थ्य शिक्षा विज्ञान और सरकारी लोक कल्याणकारी योजनाओं को समाज के अंतिम पावदान पर खड़े व्यक्ति तक सरल भाषा में पहुंचाकर आकाशवाणी ने बहुजन हिताय बहुजन सुखाय के संकल्प को सिद्ध किया है। मैं इस अवसर पर आकाशवाणी के उज्ज्वल भविष्य की कामना करता हूं कि अद्वितीय संस्थान आदि की अपनी स्पष्टता राजभक्ति और सेवा से देश को आलोकित करता रहेगा। रेडियो की वह मधुर पुकार आज भी दिलों में बसती है। आकाशवाणी की हर धुन भारत की आत्मा लगती है।
1: पंचायती राज्य मंत्री बिहार सरकार दीपक प्रकाश।
7: मैं दीपक प्रकाश मंत्री पंचायती राज विभाग आकाशवाणी के 90 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आकाशवाणी की पूरी टीम को बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। हम सब के सामाजिक जीवन में देश के राजनीतिक जीवन में आर्थिक जीवन में और साथ ही साथ जो हमारा देश का इतिहास है उन सब में आकाशवाणी का एक विशेष रोल रहा है। आजादी की लड़ाई हो या विभिन्न कालखंडों में जन आंदोलन को लोगों तक पहुंचाने का काम हो तमाम क्षेत्रों में आकाशवाणी ने कमेंडेबल काम किया है। हम सब के बचपन की यादें भी आकाशवाणी से जुड़ी हैं। क्रिकेट की कमेंट्री आकाशवाणी पे सुननी हो पुराने गाने आकाशवाणी पे सुनने हो या सभी विद्यार्थियों के लिए टॉक शोज के माध्यम से ज्ञानवर्धन करने की बात हो तमाम क्षेत्रों में आकाशवाणी ने काम किया है। टेक्नोलॉजी के साथ साथ आकाशवाणी ने अपने को बदलने का भी काम किया है। एनालॉग से डिजिटल तक का सफर आकाशवाणी का विशेष रूप से कमेंडेबल है। आज के इस चकाचौंध और दिखावटी मीडिया के दौर में आकाशवाणी का एक विशेष स्थान है जो कि हमें अपने जड़ों से जुड़ने के लिए प्रेरित करता है। आकाशवाणी का विशेष रूप से हम धन्यवाद इस बात के लिए भी देना चाहेंगे आकाशवाणी के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा हम सबों के बीच किया जाने वाला मन की बात कार्यक्रम प्रसारित होता है। एक बार पुनः आकाशवाणी को 90 वर्ष पूरे करने के लिए बधाई देते हुए और आकाशवाणी हम लोगों के बीच जीवन का और हिस्सा बने ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे आज के युवा आकाशवाणी से जुड़े इस बात की शुभकामना देते हुए बहुत बहुत धन्यवाद।
8: मेरा नाम नीलम चौधरी है। मैं एक्स IAS ऑफिसर हूं और एक कथक डांसर भी हूं। आकाशवाणी के 90 वर्ष पूरे होने पर मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाइयां। आकाशवाणी का नाम आते ही एक स्पंदन सा होने लगता है और याद आता है अपने स्टूडेंट लाइफ का वो स्टडी टेबल जहां हमेशा एक ट्रांजिस्टर रखा रहता था। क्योंकि मैं म्यूजिक की फील्ड से हूं इसीलिए म्यूजिक के लगभग सब कार्यक्रम मैं आकाशवाणी का सुना करती थी, चाहे वो शास्त्रीय संगीत का हो या फिल्मी गानों का हो, गैर फिल्मी गानों का हो, भजन हो, लोक संगीत हो, मैं सब कार्यक्रम सुनती थी और वो सारे गाने मुझे कॉन्सेंट्रेशन देते थे और मुझे पढ़ाई अच्छी मेरी होती थी। मैंने महसूस किया है कि आकाशवाणी ने समाज के हर क्षेत्र हर वर्ग के लोगों को अपने कार्यक्रम में इनकॉर्पोरेट किया है, चाहे वो कृषि के क्षेत्र से हो, स्वास्थ्य के क्षेत्र से हो, तकनीकी क्षेत्र से हो, नारी सशक्तिकरण की बात हो, लगभग सभी क्षेत्र के लोगों के लिए इसने कार्यक्रम बनाया है। बच्चों के लिए हो, शाम में 7:30 बजे अनंत सिंह का न्यूज होता था, वो तो बहुत ही लोकप्रिय था और बहुत स्पष्ट और बहुत अनबायस्ड कार्यक्रम हुआ करता था। उसके अलावा नाटक में हवा महल और लोहा सिंह का नाटक हम लोग बहुत इंतजार करते थे और सुनना करते थे। तो ये रिचनेस आकाशवाणी में शुरू से रहा है। आज भी हर वर्ग के लिए कार्यक्रम बनाना, उसे सक्सेसफुली प्रसारित करना, ये एक बहुत बड़ी क्वालिटी है आकाशवाणी की और मेरी शुभकामनाएं हैं, मेरी इच्छा है। मैं चाहती हूँ कि जिस तरह से 90 वर्षों का सफर तय हुआ उससे भी और आगे बढ़कर आकाशवाणी अपना कार्यक्रम करे, लोगों में प्रिय रहे और हर वर्ग के लोग इसमें जुड़े रहे।
2: प्रोफेसर दिनेश सिंह पद्मश्री, उपाध्यक्ष जम्मू एवं कश्मीर उच्च शिक्षा परिषद और पूर्व कुलपति दिल्ली विश्वविद्यालय।
9: पूर्ण रूप से अपने हृदय से बधाई दे रहा हूँ आकाशवाणी से जुड़े सारे जो हमारे सहयोगी हैं और मैं चाहता हूँ कि इसको एक त्योहार के रूप में भारत में मनाया जाए, त्योहार के रूप में कि आकाशवाणी ने भारत के लिए क्या किया। मैं आकाशवाणी से बचपन से जुड़ा हूँ और आकाशवाणी से अमृत बरसता है पूरे देश में, विश्व में। मैंने यहाँ से इतनी रचना युक्तियों को ग्रहण किया है, इसने भारत की आत्मा को आकाशवाणी ने सींचा है। अब इसके जो एनिवर्सरी आ रही है, इसके 90 वर्ष पूरे हो रहे हैं, हम सबको इसमें भागीदारी लेनी है और इस उत्सव को पूर्ण रूप से अपने अपनी जगह मनाना है। आकाशवाणी ने भारत का बहुत भला किया है।

0: ये थी हमारी आज की विशेष प्रस्तुति। उम्मीद है आपको हमारा यह कार्यक्रम पसंद आया होगा। अगली बार हम फिर मिलेंगे नई जानकारियों, नवीन शोध परक बातों एवं विज्ञान जगत की हलचलों के साथ।
1: तो सीखें कुछ नया, सोचे कुछ अलग। आज की विज्ञान पत्रिका विज्ञान भारती को तैयार करने में स्वर सहयोग रहा अल्पी कुमारी और संजय किशोर का। संयोजक थे दिलीप झा और प्रस्तुतकर्ता रजत कुमार। आकाशवाणी पटना।
0: नमस्कार।

0: ये आकाशवाणी है। संगीत के अखिल भारतीय कार्यक्रम में आज हम आपके लिए लाए हैं श्री सीपी माधवन नंबूदरी द्वारा प्रस्तुत कर्नाटक शास्त्रीय गायन। श्री सीपी माधवन नंबूदरी, जिन्हें लोकप्रिय रूप से चंगनाशेरी माधवन नंबूदरी के नाम से जाना जाता है, आकाशवाणी के ए ग्रेड वोकल आर्टिस्ट हैं और कर्नाटक संगीत में 2 दशकों से अधिक के उत्कृष्ट योगदान के साथ अत्यंत सम्मानित कलाकार हैं। उन्होंने 500 से अधिक एकल प्रस्तुतियां की है, जिनमें से अनेक में प्रसिद्ध कलाकारों जैसे डॉक्टर टी के मूर्ति, डॉक्टर उमयालपुरम के शिवरामन, श्री श्रीमुष्णम राजा राव तथा श्री मन्नारगुड़ी ईश्वरन ने संगति की है। उनके कार्यक्रम विदेशों में भी आयोजित हुए हैं, जिनमें अमेरिका, पेरिस, दक्षिण पूर्व एशिया तथा खाड़ी के देश शामिल हैं। केरल के चंगनाशेरी में जन्मे माधवन नंबूदरी ने अपनी प्रारंभिक संगीत शिक्षा अपने प्रथम गुरु श्री पी जी पद्म कुमार से प्राप्त की। बाद में वे स्वर्गीय टी वी शंकर नारायणन के शिष्य बने तथा उन्हें श्री पी आर कुमार केरल वर्मा और श्री कलन्यूर चंद्रशेखरन जैसे प्रसिद्ध संगीतज्ञों से उन्नत मार्गदर्शन भी प्राप्त हुआ। वे आरएलवी संगीत एवं ललित कला महाविद्यालय त्रिपोणितरा में पूर्व संगीत प्रवक्ता रह चुके हैं। उन्हें भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय से जूनियर फेलोशिप भी प्राप्त हुई है और मद्रास म्यूजिक अकादमी से सर्वश्रेष्ठ संगीतकार का सम्मान भी प्राप्त हुआ है।
1: दिस इज आकाशवाणी, इंटरनाइट नेशनल प्रोग्राम ऑफ म्यूजिक। वी ब्रिंग यू अ कर्नाटिक वोकल कॉन्सर्ट बाय श्री सीपी माधवन नंबूदरी, पॉपुलरली नोन एज चंगनाशेरी माधवन नंबूदरी। ही इज एन ए ग्रेट वोकल आर्टिस्ट ऑफ आकाशवाणी एंड a highly respected performer with over 2 decades of distinguished contribution to Carnatic music. He has presented more than 500 solo concerts, many of them accompanied by eminent maestros such as Dr. T.K. Murthy, Shri Umayalpuram K. Shivaraman, Shri Shri Mushnam Raja Rao and Shri Mannarkudi Ishwaran. His performances have also reached audiences abroad, including concerts in the United States, Paris, Southeast Asia and Gulf countries. Born at Chengnasheri in Kerala, Madhavan Nambudri began his musical training under his first guru, Sri P.G. Padmakumar. He later became a disciple of late T.V. Shankaranarayanan and also received advanced guidance from renowned musicians Shri P.R. Kumara Kerala Varma and Shri Kalanyur Chandrasekharan, a former music lecturer at the RLV College of Music and Fine Arts, Tripunatra. He is also a recipient of the Junior Fellowship from the Ministry of Culture, Government of India, and has been honored with the Best Musician Award from the Madras Music Academy.
2: The contribution of Akashavani to the growth of artists like me is truly immeasurable. Akashavani has provided a dignified platform that nurtures talent and strengthens the cultural fabric of our nation. Best wishes to Akashavani for completing successful 90 years.
0: आज रात के प्रसारण में इनके साथ संगत कर रहे हैं वायलिन पर विद्वान तिरुविरा विजु एस आनंद, मृदंगम पर विद्वान कोटयम जी संतोष कुमार और घटम पर श्री वाजप

0: अप्रस्तुत है केसी केशव पिल्ले की एक कृति श्री बालकृष्ण पाहिमाम, जो राग पूर्वी कल्याणी पर आधारित है और रूपक ताल में निबद्ध है।
1: यू विल नाउ लिसन टू श्री बालकृष्ण पाहिमाम, अ कॉम्पोजिशन ऑफ केसी केशव पिल्ले। इन द राग पूर्वी कल्याणी सेट टू रूपक ताल।

0: अपने गायन को जारी रखते हुए श्री चंगनाशेरी माधवन नंबूदरी अब प्रस्तुत कर रहे हैं श्यामा शास्त्री द्वारा रचित रावे हिमगिरी कुमारी, जो राग तोड़ी पर आधारित है और आदि ताल में निबद्ध है।
1: The next item is रावे हिमगिरी कुमारी in the राग तोड़ी, set to आदि ताल, composed by श्यामा शास्त्री।

0: ये था तनियावर्तनम। मृदंगम पर थे विद्वान कोटेयम जी संतोष कुमार और घटम पर श्री वाड़ापल्ली आर कृष्ण कुमार।
1: That was तनियावर्तनम played on the मृदंगम by विद्वान कोटेयम जी संतोष कुमार and on the घटम by श्री वाड़ापल्ली आर कृष्ण कुमार।
0: श्री चंगनाश्री माधवन नंबूदरी अपने गायन का समापन पुदुकोड कृष्णमूर्ति की एक रचना श्री हरे से कर रहे हैं, जो कि राग रेवती पर आधारित है और आदि ताल में निबद्ध है।
1: श्री सीपी माधवन नंबूदरी कंक्लूड्स हिज वोकल रिसाइटल विद श्री हरे कंपोज्ड बाय पुदुकोड कृष्णमूर्ति इन द राग रेवती सेट टू आदि ताल।

0: इसके साथ ही संगीत के अखिल भारतीय कार्यक्रम में श्री चंगनाशेरी माधवन नंबूदरी का गायन समाप्त होता है। इनके साथ वायलन पर विद्वान तिरुविजा विजु एस आनंद, मृदंगम पर विद्वान कोटेयम जी संतोष कुमार और घटम पर श्री वाड़ापल्ली आर कृष्ण कुमार ने संगति की थी। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के तिरुवनंतपुरम केंद्र पर रिकॉर्ड किया गया और आकाशवाणी दिल्ली से प्रसारित किया गया।
1: With that, we conclude the vocal recital by Sri C.P. Madhavan Nambudiri in the broadcast of National Program of Music. He was accompanied by Vidwan Tiruvida Viju S. Anand on the violin, Vidwan Kottayam G. Santosh Kumar on the mridangam, and Sri Vaadapalli R. Krishna Kumar on the ghatam. This broadcast was recorded at Akashvani Tiruvananthapuram and came to you from the Delhi station of Akashvani.

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं शक्ति सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने आज भारत अमेरिका व्यापार वैश्विक रणनीतिक साझेदारी में लगातार हो रही प्रगति, क्षेत्रीय तथा वैश्विक शांति और सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की। विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने आज नई दिल्ली में सेवा तीर्थ में प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की। श्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि भारत और अमेरिका वैश्विक भलाई के लिए मिलकर काम करते रहेंगे। इस बैठक के दौरान विदेश मंत्री डॉ. सुब्रमण्यम जयशंकर और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल भी उपस्थित रहे। प्रधानमंत्री कार्यालय ने एक बयान में कहा कि अमेरिका के विदेश मंत्री ने श्री मोदी को रक्षा, रणनीतिक तकनीकों, व्यापार तथा निवेश, ऊर्जा सुरक्षा, कनेक्टिविटी, शिक्षा और लोगों के बीच संबंधों सहित कई क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग में लगातार हो रही प्रगति के बारे में जानकारी दी। श्री रूबियो ने पश्चिम एशिया की स्थिति सहित विभिन्न क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर अमेरिका का दृष्टिकोण साझा किया। श्री मोदी ने शांति प्रयासों के लिए भारत के निरंतर समर्थन की पुष्टि की और बातचीत तथा कूटनीति के माध्यम से संघर्षों के शांतिपूर्ण समाधान की अपील दोहराई। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा है कि अमेरिका जिस तरह से हिंद प्रशांत क्षेत्र को देखता है उसमें भारत की भूमिका सबसे अहम है। नई दिल्ली में अमेरिकी दूतावास स्पॉट एनेक्स बिल्डिंग का उद्घाटन करते हुए श्री रूबियो ने कहा कि भारतीय कंपनियों ने अमेरिका में $20 अरब का निवेश किया है।
1: अब हमारे व्यापारिक संबंध और भी बढ़ गए हैं। इसमें भारतीय कंपनियों का अमेरिका में $20 अरब से अधिक का निवेश शामिल है। हमने हिंद प्रशांत क्षेत्र में सैन्य अभ्यासों के माध्यम से अपनी सुरक्षा साझेदारी को और भी मजबूत बनाया है। निश्चित रूप से इस महत्वपूर्ण रिश्ते को और मजबूत बनाने के लिए एक व्यवस्थित और सुरक्षित काउंसलर प्रणाली की अत्यंत आवश्यकता है।
0: श्री रूबियो ने कहा कि उनकी इस यात्रा से दोनों देशों के आपसी संबंध और मजबूत होंगे तथा उनमें और अधिक प्रगति होगी।
1: इस रिश्ते की बुनियाद राष्ट्रपति ट्रंप और प्रधानमंत्री मोदी के बीच का आपसी संबंध है। ये एक निजी रिश्ता है। इसकी शुरुआत पहले कार्यकाल के दौरान हुई थी जब राष्ट्रपति ट्रंप को भारत आने का मौका मिला था। ये रिश्ता दूसरे कार्यकाल में भी कायम रहा। आप उन दोनों के

बीच के जुड़ाव को साफ साफ देख सकते हैं और मुझे लगता है ये बेहद अहम है। भारत ने पैक सिलिका समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत के युवा एक विकसित भारत की ओर अग्रसर होने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। आज वर्चुअल माध्यम से 19वें रोजगार मेले को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने ये बात कही। प्रधानमंत्री ने कहा कि पूरी दुनिया भारत की विकास यात्रा का हिस्सा बनने के लिए उत्सुक है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज महाराष्ट्र के शिरडी स्थित सावली विहिर औद्योगिक क्षेत्र में स्थापित तोप के गोले बनाने वाले संयंत्र का उद्घाटन किया। इस परियोजना को निबे ग्रुप ने विकसित किया है। इस दौरान श्री सिंह ने कहा कि मेक इन इंडिया पहल के माध्यम से देश रक्षा विनिर्माण में आत्मनिर्भर बन रहा है। केंद्र ने रक्षा अवसंरचना को मजबूत करने के लिए भूमि की आवश्यकता के मद्देनजर नई दिल्ली स्थित जिमखाना क्लब को 5 जून तक परिसर खाली करने का निर्देश दिया है। आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय के अधीन भूमि और विकास कार्यालय के आदेश में कहा गया कि ये भूमि तत्काल संस्थागत आवश्यकताओं, शासन अवसंरचना और जनहित परियोजनाओं को पूरा करने के लिए आवश्यक है। चीन के शांस्की प्रांत में एक कोयला खदान में गैस विस्फोट में मरने वालों की संख्या 90 हो गई है। यह विस्फोट कल क्यूआन काउंटी की लियुशेन्यू कोयला खदान में हुआ। अब तक 201 खनिकों को बचाया जा चुका है। चीन के राष्ट्रपति शी चिनफिंग ने व्यापक बचाव अभियान और घायलों के उपचार और दुर्घटना के कारणों की जांच के आदेश दिए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस हादसे में हुई जानमान की हानि पर गहरा दुख व्यक्त किया। श्री मोदी ने भारत की ओर से राष्ट्रपति शी जिनफिंग और चीन की जनता के प्रति संवेदना व्यक्त की। वियतनाम के दा नांग में आज एशियाई अंडर 23 कुश्ती चैंपियनशिप में भारतीय पहलवान सूरज वशिष्ठ और सागर सिंह ने रजत पदक अपने नाम किए। 60 किलोग्राम वर्ग के फाइनल में सूरज वशिष्ठ को एबेक एटुकोव से, वहीं 67 किलोग्राम वर्ग में सागर सिंह को एहतजान खालमा से हार का सामना करना पड़ा। प्रतियोगिता में कुमार सचिन ने 77 किलोग्राम भार वर्ग और रोहित ने 97 किलोग्राम भार वर्ग के कांस्य पदक के मुकाबले जीतकर कांस्य पदक अपने नाम किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

हमारी दूसरी सभा के प्रसारण अब यहीं पर संपन्न होते हैं। प्रातःकालीन सभा में सुबह सवेरे 5:55 पर हम पुनः आपकी सेवा में उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। जय हिंद।